أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم أدخل عظيم

0: फिर आगे बंदा यूं कहता है, असलह नवायाना व अमालना, हमारी नीयतें भी दुरुस्त कर दे और आमाल भी, क्योंकि बाज़ औक़ात अमल तो अच्छा होता है, नीयत खराब होती है। कभी नीयत अच्छी होती है मगर अमल कमजोर होता है। मोमिन को तो दोनों चाहिए, नेक नीयत भी नेक अमल भी। और इस वजह से मोमिन हर वक्त इस बात पर परेशान रहता है कि कहीं शो ऑफ और दिखावा का काम तो मुझसे सादर नहीं हो रहा। नऊज़ु बिका मिन मज़ाहिरिर रिया व सुमअ, दिखावे और लोगों में नाम कमाने की ख्वाहिश से पनाह चाहते हैं। रिया यानी इबादत लोगों को दिखाने के लिए करना, और सुमा इसका मतलब है अच्छे काम इसलिए करना कि लोग सुने और तारीफ करें, और ये दिल की खतरनाक बीमारियां हैं। फिर रिया और सुमा से पनाह मांगते हुए बंदा मजीद आगे बढ़ता है, कहता है, ए अल्लाह तेरी इबादत मेरे लिए मजा और खुशी का सबब बना दे, यानी नमाज बोझ न लगे, कुरान भारी न लगे, दुआ मुश्किल न हो, बल्कि ये सब आमाल दिल को राहत देने वाले बने। والانس والرضا بمرضاتك, अपने रजा वाले कामों में दिल का सुकून और खुशी अता फरमा, यानी जो अल्लाह को पसंद है वही हमें भी महबूब हो जाए। सामने किराम, आज की इस दुआ में हमारे लिए कई सारे पैगामात हैं। वैसे आज की दुआ दिल की इस्लाह, नफ्स की तरबियत, आजिज़ी, इखलास और इबादत की लज्जत मांगने वाली दुआ है। ये दुआ गोया हमें ये नसीहत कर रही है कि तकब्बुर छोड़ो, नरम मिजाज बनो, नफ्स की इस्लाह करो, नीयत साफ रखो, दिखावे से बचो, इबादत में लज्जत मांगो और अल्लाह की रजा में सुकून ढूंढो। फिर बंदा ये भी जानता है कि अल्लाह की रहमत के सिवा ये सब कुछ नामुमकिन है, तो फिर वो कहने लगता है, अंजिल अलैना मिन औसा रहमातिका या रहीम, निहायत रहम करने वाले रब हम पर अपनी वसी रहमत नाजिल फरमा, ऐसी रहमत अता फरमा जिससे हमारा दीन भी संवर जाए और दुनिया भी। रहमतन तुसलिह बिही दीनना व दुनियाना व अहलना व औलादना, हमारे घर वालों और औलाद को भी अपनी रहमत में ले ले। ارزقنا صون رحمتك بصيانة التقوى والورع, हमें तौफीक दे कि तेरी रहमत को तक्वा और परहेजगारी के जरिए महफूज रखें। واستدامتها بخشيتك في السر والعلن, हमें ऐसा खौफ खुदा दे जो तन्हाई और लोगों के सामने दोनों हालतों में रहे, क्योंकि असल इखलास तो ये है कि इंसान अकेले में भी वही हो जो लोगों के सामने है। फिर मजीद ये कहता है, वज़ियादती है बिशुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अपने नेमतों में इजाफा फरमा हमारे शुक्र और अच्छी इबादत के जरिए, क्योंकि कुरान का वादा है, लैन शकर तुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ा दूंगा। इजअलना मिन अहबाबिक والصالحين من عبادك, अल्लाह हमें अपना महबूब बंदा बना ले और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। सभी करम, हमें चाहिए कि हमारे वक्त अल्लाह की रहमत मांगे, क्योंकि ये रहमत दीन दुनिया की इस्लाह के लिए बेहद ज़रूरी है। साथ साथ तक्वा भी इख्तियार करें, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तन्हाई में भी अल्लाह से डरें। अल्लाह ताला हम और आप सब की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन एफएम 107.107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो,

0: और इंडिकेटर्स का सही काम करना बेहद जरूरी है ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सबरिकराम प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के मेजबान तलहा शरफ़ुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले अपना मोबाइल फोन न देखता हो, अलार्म बंद किया, फौरन नोटिफिकेशन, मैसेजेस, सोशल मीडिया या खबरों की तरफ तवज्जो चली गई। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारी सुबह का पहला लम्हा अल्लाह ताला की हम्द व सना से शुरू हो, तो अगर दिन की पहली आवाज अपने रब की याद से शुरू हो, यही तो सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते तो सबसे पहले ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसका मतलब ये है कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें मौत जैसी नींद के बाद दोबारा जिंदगी अता फरमाई और उसी की तरफ दोबारा उठकर जाना है। समय कराम, हम हर सुबह जागते हैं, सांस लेते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन कितनी बार हम इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि एक नई सुबह दरअसल अल्लाह की तरफ से एक नई मोहलत है, एक और दिन, एक और मौका अपने रब को राजी करने का। फिर इस्लाम में नींद को छोटी मौत कहा गया है। जब हम सोते हैं तो हमें कुछ मालूम नहीं होता, हम बेबस हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला हमें दोबारा जगाता है। इसीलिए इस दुआ में फरमाया गया, जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी दी। ये जुमला इंसान के दिल में आजिज़ी पैदा करता है कि हम चाहे कितने ही मसरूफ, ताकतवर या कामयाब क्यों ना हों, हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर अल्लाह के इख्तियार में है। मजीद सुबह की शुरुआत ही में आखिरत की याद दहानी भी है, वइलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ दोबारा लौट कर जाना है या उठ कर जाना है। सामने कराम, जरा तसव्वुर कीजिए, अगर इंसान दिन का आगाज ही इस सोच के साथ करे कि मुझे आज ऐसा जीना है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तो उसके अल्फाज बदल जाएंगे, रवैया बदल जाएगा, उसके फैसले बदल जाएंगे। तो दुआ बहुत छोटी है, मुख्तसर है, लेकिन उसके अंदर अजीम पैगामात छुपे हुए हैं। आइए एक बार फिर ये दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह ताला हमें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सुबह बखैर नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा

0: क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। वेलकम है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आपके लिए लेकर आई हूँ कतर ग्रीन बीट। और आज पहला एपिसोड है तो बातें होंगी अ जर्नी थ्रू द बीट। हाँ जी, आज का मौसम मैं कहूंगी थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा नर्म है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हवा हम ले रहे हैं, मतलब ये जो सांस हम ले रहे हैं, ये कितनी साफ है? या फिर वो पानी जो हम पीते हैं वो आया कहाँ से? वेल, आज का ये जो पूरा एपिसोड है ये ग्रीन जर्नी के नाम हम करने वाले हैं और हम कोई ब्रेक्स नहीं लेने वाले हैं। यस, बस आप और मैं होंगे और हमारी ये प्यारी प्यारी बातें होने वाली है। और आज हम निकलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां टेक्नोलॉजी और नेचर गले मिलते हैं। तो जनाब, आज का जो एपिसोड है ना, थोड़ा खास है। कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे मुड़कर देखना बहुत जरूरी होता है, टू सी हाउ फार वी हैव कम, है कि नहीं? अगर आप हमारे साथ इस ग्रीन बीट की शुरुआत से जुड़े हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये ग्रीन बीट, कतर ग्रीन बीट सीजन 2 आपके लिए हम लेकर आए हैं और आज हमारी बातें बड़ी स्पेशल होने वाली हैं। तो आपको पता होगा कि हमने कतर के कोने कोने की खाक छानी है, यानी कि हमारे पहले सीजन में हमने बहुत सारी बातें की थी कतर से रिलेटेड और हमने देखा है कि कैसे ये मिट्टी, ये रेत और ये समुंदर मिलकर एक सस्टेनेबल फ्यूचर की कहानी लिख रहे हैं। तो चलिए अब आगे हम बात करेंगे उन्हीं यादों की, एक फ्लैशबैक पे चलते हैं और फिर अपनी नई नवेली बातों को आगे लेके जाएंगे। बस सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी लाइफ टाइम की, दैट इज पानी, यानी कि वाटर। याद है हमने उम अल होल की बात की थी, आई कॉल इट द लिक्विड गोल्ड फैक्ट्री। हाँ जी, कतर जैसे देश में जहाँ बारिश कम होती है वहाँ समुंदर का पानी ही हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन वहाँ का कमाल टेक्नोलॉजी में है। यस, रिवर्स ऑस्मोसिस, सुनने में बड़ा साइंटिफिक लगता है पर सिंपल अल्फाज में कहें तो ये समुंदर के नमकीन पानी को पीने लायक बनाता है, वो भी आधी एनर्जी खर्च करके। इमेजिन 50% एनर्जी सेविंग। जब मैं वहां गई थी, इट फील्स लाइक अ मिरेकल इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। हम अक्सर टैप खोलते हैं और पानी आ जाता है, पर उसके पीछे की ये जो मेहनत है, ये साइंस वाकई तारीफ के काबिल है। पानी से निकल के अब जरा शहर की गलियों में चलते हैं। मुशर्रफ डाउनटाउन दोहा, मेरा पर्सनल फेवरेट। ये दुनिया का पहला फुल्ली सस्टेनेबल डाउनटाउन है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप मुशर्रफ की गलियों में चलते हैं तो बाहर की गर्मी थोड़ी कम लगती है? इसका राज पता है क्या है? वहाँ की इमारतें, यानी कि बिल्डिंग्स, जो कि एक दूसरे से ऐसे जुड़ी है कि वो खुद शैडो या यूं कहे साया बनाती है। वहाँ की बिल्डिंग्स हवा से बातें करती हैं। आर्किटेक्चर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि नेचुरल ब्रीज कैप्चर हो सके, है ना, इट्स जीनियस। पर पुरानी कतरी कल्चर और मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी का ऐसा मेल

0: मैं कहीं और नहीं देख पाई हूँ अभी तक. इट्स लाइक द पास्ट इज प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर. और फिर हमने बातें की है कचरे की. हाँ, कचरा. लोग कहते हैं कचरा फेंक दो, मगर मैं सईद में हमने देखा है कि कचरा ट्रेजर बन सकता है. डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर में हमारा कचरा एनर्जी में बदल दिया जाता है. नथिंग गोज टू वेस्ट. लेकिन अगर हम नेचर की बात करें तो अल थकीरा के मैनग्रोव्स को कैसे भूल सकते हैं. वो हमारे कोस्ट के खामोश मुहाफिज या यूं कहें साइलेंट गार्जियंस हैं. इन दरख्तों की जड़ें समुंदर के थपेड़ों से हमारी जमीन को बचाती है और कार्बन को सोख लेती है. अगली बार जब आप वहां कायाकिंग करने जाएं, तो उन्हें एक थैंक यू जरूर कीजिएगा. हाँ, क्योंकि वो हमारे इकोसिस्टम के लंग्स हैं. अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या आपने डेजर्ट में उगी स्ट्रॉबेरीज खाई है? हाँ, सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना, पर मैंने तो खाई है. क्योंकि हमारे कतर में कुछ ऐसे हाइड्रोफोनिक फार्म्स हैं जिन्होंने इसे मुमकिन कर दिया है. बिना मिट्टी के कम पानी में डेजर्ट की तपिश में मीठी स्ट्रॉबेरीज को उगाना और फिर इन स्ट्रॉबेरीज का स्वाद, उफ, बड़ा कमाल लगता है बॉस. वेल, अब सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो स्टेडियम 974 का जिक्र सबसे अव्वल आता है, क्योंकि 974 शिपिंग कंटेनर से बना वो स्टेडियम है जो कतर का इंटरनेशनल डायलिंग कोड बन गया है. उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक जायंट स्टेडियम भी रिसाइकल हो सकता है. इट्स नॉट जस्ट अ स्टेडियम, इट्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड. तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे पानी, वेस्ट, फूड और एनर्जी, ये सब मिलकर हमारी दुनिया बना रहे हैं. ये सब चीजें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. लेकिन आज हम बात करेंगे उस चीज की जो दिखती नहीं है, मगर जिसके बिना एक पल भी गुजारना नामुमकिन है. एक ऐसी चीज जो हमारे चारों तरफ है पर इनविजिबल है. सो कीप योर ईयर्स ट्यून्ड, क्योंकि अब हम एक्सप्लोर करेंगे कतर की इनविजिबल ब्रेथ को. हम बात करेंगे उस हवा की जिसमें हम सांस लेते हैं. तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ. कतर ग्रीन बीट जारी है. FM 107 सुन रहे हैं आप.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. आप सुन रहे हैं FM 107. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ, और कतर ग्रीन बीट पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. वेल, स्पॉटलाइट पर आने से पहले वक्त है द ग्रीन वायर का, कुछ ताजा ग्रीन अपडेट्स. हाँ, तो क्या आपने सड़कों पर वो ग्रीन लाइसेंस प्लेट्स नोटिस किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने इसे कंफर्म किया है कि अब ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस रिकॉर्ड रफ्तार से लगाए जा रहे हैं. अगले साल के आखिर तक 600 से भी ज्यादा यूनिट्स लग जाएंगे. तो अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं ना, तो ग्रीन प्लेट ही सही है बॉस. हाँ, और एक बड़ा सल्यूट हमारे स्कूल के बच्चों को. अलखोर और दोहा के स्कूल्स में इको स्कूल्स प्रोग्राम के तहत सोलर पावर क्लासरूम बन रहे हैं. हमारे बच्चे 2030 का इंतजार नहीं कर रहे, वो उसे आज अपनी साइंस लैब्स में बना रहे हैं. क्या बात है, इन्हें शाबाशी तो देनी ही पड़ेगी. चलिए जनाब, अब आते हैं आज के सबसे अहम हिस्से पर. एक काम कीजिए, मेरे साथ एक गहरी सांस लीजिए. आ, सुकून. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सांस जो आपने अभी ली, वो कितनी साफ है, कितनी क्लियर है? हमें कैसे पता कि ये साफ है? कतर की गर्मी और यहाँ की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में, जहाँ हर जगह कंस्ट्रक्शन और तरक्की हो रही है, वहाँ हवा की क्वालिटी मेंटेन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है. लेकिन कतर ने इसे एक मास्टरपीस बना दिया है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने हमारे लिए तैयार किए हैं द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क. यस, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है. पूरे मुल्क में, चाहे वो हमदपोर्ट की भागम भाग हो या अलवकरा की पुरसुकून गलियां हो, 40 से ज्यादा हाईटेक मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए गए हैं. अब आप सोचेंगे, अमिता, ये स्टेशंस दिखते कैसे हैं? वेल, ये कोई मामूली थर्मोमीटर नहीं है जो सिर्फ टेम्परेचर बताए. ये सोफेस्टिकेटेड

0: सेंसर्स हैं जो उन दुश्मनों को ट्रैक करते हैं जो हमारी आंखों से ओझल या यू कहें इनविजिबल है. दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सबसे खतरनाक PM2.5. ये PM2.5 क्या है? हाँ, ये वो माइक्रोस्कोपिक धूल के कण है और धुआं है जो इतने छोटे होते हैं कि हमारे फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं. लेकिन फिक्र ना कीजिए, हमारे ये 40 मुहाफिज हर पल इन पर नजर रखते हैं ताकि हम चैन की सांस ले सकें. लेकिन टेक्नोलॉजी यहाँ खत्म नहीं होती. इस नेटवर्क का सबसे बड़ा कमाल है इसका AI ब्रेन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये सिस्टम सिर्फ ये नहीं बताता कि अभी हवा कैसी है, इसका काम है प्रिडिक्शन करना. ये AI वेदर पैटर्न्स, हवा की रफ्तार और ट्रैफिक के डेटा को एनालाइज करता है. ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगर कल हवा का रुख बदला तो किस एरिया में डस्ट लेवल्स बढ़ सकते हैं. ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को रियल टाइम डिसीजंस लेने में मदद करती है. दिस इज द डायरेक्ट पिलर ऑफ कतर नेशनल विजन 2030. हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी बिल्डिंगें ऊंची होंगी, लेकिन हमारी सेहत की कीमत पर नहीं. इट्स अबाउट स्मार्ट सिटीज दैट डोंट जस्ट लुक गुड बट एक्चुअली फील गुड. हाँ जी, वहाँ रहने के लिए. चलिए अब ये बताइए, क्या आपको पता है कि कतर के जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के स्टैंडर्ड्स के बराबर अलाइन किए गए हैं? हम दुनिया के उन गिने चुने कंट्रीज में से हैं. हम दुनिया के उन गिने चुने कंट्रीज में से हैं जहां इतना डेंस और AI इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों की हिफाजत के लिए बनाया गया है. और एक और सीक्रेट बताऊं, अगले बार जब आप दोहा कॉर्निश पर वॉक कर रहे हो ना, तो ध्यान से देखना, वहाँ आपको एक छोटा सा सफेद रंग का फेंस्ड इन यूनिट दिखेगा जिसमें कुछ एंटीनास लगे होंगे. उसे देखकर मुस्कुराना जरूरी है क्योंकि वही है आपके लंग्स का बॉडीगार्ड. वो खामोशी से वहाँ खड़ा है ताकि आपकी जॉगिंग और आपकी शाम की जो सैर है वो सेफ रहे. तो बाहर की हवा का पहरा तो सख्त है, ये तो हमने जान लिया. AI और मिनिस्ट्री ने मिलकर इसे सिक्योर कर दिया है. लेकिन अब हम अपना ज्यादा वक्त कहाँ बिताते हैं? ऑफिस में, घर में या मॉल्स में? तो अब ये सवाल उठता है कि हमारे इंडोर एयर का क्या? हाँ, क्या हम अपने घर के अंदर भी साफ सांस ले रहे हैं? वेल, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे देसी और विदेशी नुस्खे, हाँ, जो नासा के फेवरेट प्लान से लेकर वेंटिलेशन तक, जो आपके घर को एक मिनी फॉरेस्ट बना देंगे. हाँ, और साथ में जो आपके घर की हवा है उसे भी ताजा तरीन कर देंगे. तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. वेलकम वंस अगेन, आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट अपनी अमिता के साथ FM 107 पर. और हमने अभी बात की कि कैसे हमारी मिनिस्ट्री और AI मिलकर कतर की बाहर की हवा का ख्याल रख रहे हैं. लेकिन दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई है, बताऊं, हम कतर में अपना तकरीबन 90% वक्त घरों के अंदर, ऑफिसेस में या मॉल्स में बिताते हैं, खासकर जब गर्मी अपने पीक पर होती है. तो सवाल ये है कि आपके अलसत के अपार्टमेंट में या वेस्ट पे लगून के विला की हवा कैसी है? क्या वो साफ है? हमें लगता है कि खिड़कियां बंद हैं तो हम सेफ हैं, मगर कभी कभी इंडोर एयर आउटडोर एयर से ज्यादा स्टेल या बासी हो सकती है. तो चलिए आज मैं आपको ना कुछ बड़ी मजेदार टिप्स बताती हूँ जो कि आपके घर का एयर क्वालिटी एक्सपर्ट बन जाएगा, हाँ, और आपके इंडोर हाउसेस को परफेक्ट बनाएगा. वेल, अगर हम नासा के सुपरस्टार की बात करें तो इन्हें स्नेक प्लांट और पीस लिली कहते हैं. यस, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर की हवा को स्क्रब कर सकते हैं, वो भी एक कप कॉफी की कीमत में, हाँ, सुनने में थोड़ा सा फिल्मी लगता है मगर ये सच है. नासा, यस, आपने बिल्कुल सही सुना, वही स्पेस एजेंसी

स्नेक प्लांट। ये पौधा एक सुपरस्टार है। क्यों? क्योंकि अक्सर प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन देते हैं, मगर स्नेक प्लांट रात को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता है। इसका मतलब अगर ये आपके बेडरूम में है तो आप सोते वक्त भी ताजी हवा ले रहे हैं। और सबसे मजे की बात, ये हार्ड टू किल प्लांट है। अगर मेरी तरह आप भी थोड़े से भुलक्कड़ है ना, लाइक कभी कभी पौधों में पानी देना भूल जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ये हफ्तों तक बिना पानी के रह सकता है। इसके साथ आप एक पीस लिली भी ले लीजिए, वो हवा से

0: डिजिटल हो जाते हैं. हम हर चीज के लिए ऐप यूज करते हैं, खाना मंगाने के लिए, टैक्सी के लिए, तो हवा के लिए क्यों नहीं. मेक इट अ हैबिट कि सुबह उठते ही या बच्चों को पार्क ले जाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की वेबसाइट या अपने फोन पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर चेक करें. अगर AQI लेवल थोड़ा हाई दिख रहा है या धूल ज्यादा है तो जॉगिंग के लिए बाहर जाने के बजाय जिम चले जाएं. वक्त पर सही जानकारी होना भी असली हिफाजत है, जिसे कहते हैं कि इल्म की ताकत है, नॉलेज इज पावर. जब आपको पता होगा कि बाहर की सिचुएशन क्या है तभी तो आप सही फैसला ले पाएंगे. इट्स अ स्मॉल हैबिट बट ये आपके सर्दी खांसी जुखाम या एलर्जीज को सेव कर सकती है. और अब हम पूरे आखिर में पहुंच चुके हैं कतर ग्रीन बीट शो के, तो एक बड़ा पुराना लेकिन बड़ा बेनिफिशियल नुस्खा वेंटिलेशन का मैं आपको बताती हूँ. तो जब मौसम थोड़ा ठीक ठाक लगे और स्पेशली शाम का टाइम जब आपको लगे कि गर्मी कम है, तो इसका फायदा उठाइए. रोज सुबह और शाम कोशिश करें कि 15-15 मिनट के लिए अपने घरों की खिड़कियां खोल दीजिए, जिससे घर की जो बासी हवा है वो फ्लश आउट हो जाए और ताजी हवा हमारे घर के अंदर आए. हमारे घरों में जो नए फर्नीचर्स की महक होती है या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की स्मेल होती है, इसे साइंटिफिक टर्म में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. ये हवा में जमा हो जाते हैं, खिड़की खोलने से ये बाहर निकल जाते हैं और ताजी हवा घर को रीसेट कर देती है. इट्स लाइक गिविंग आवर हाउस अ फ्रेश स्टार्ट एवरी सिंगल डे. हाँ जी, तो जनाब हमने बाहर की हवा को मॉनिटर कर लिया और घर के अंदर अपना छोटा सा जो ये पौधों का बगीचा है वो भी बसा लिया. तो देखा आपने, सस्टेनेबिलिटी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस ही चाहिए. वैसे अब हम पहुंच गए हैं अपने शो के आखिर में, यानी कि फाइनल स्टेज पर. तो आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम और आप फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कतर ग्रीन बीट पर. तो आप बताएंगे इस हफ्ते का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, हमसे जरूर शेयर करें 6622107 पर 6622107. और आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं FM 107 पर, और अपनी आर जमीता को भी आप सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं. तो मैं कहूंगी कहीं ना जाए, बस बने रहे हमारे साथ. Keep breathing deep and keep the beat. Stay tuned, FM 107, Dil Se Desi.
1: Aap sun rahe hain FM 107.
2: FM 107,
3: Dil Se Desi.
4: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में.
5: MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में
4: वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
5: सब कुछ मिलेगा यहाँ.
4: ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है. MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर. Don't miss it.
5: Don't miss it.
6: बस बहुत हो गया रूटीन. Need an escape. एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम. The ultimate mind workout as pure fun. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है. बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहां कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
0: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se Desi.
7: दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है. जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं. साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है. पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है. अगर साइक्लिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं

0: तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खास तौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों। इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए। अक्सर साइकिलिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। हेलमेट्स सिर्फ साइकिलिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइकिलिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: दोस्तों अरब खलीजी सकाफत की एक बड़ी दिलचस्प कहावत है तराक़ सैफ, यानी गर्मियों की बिजली जो सिर्फ शोर करती है बारिश नहीं लाती। इस कहावत का ताल्लुक उस कुदरती पस मंजर से है जो अरब में अक्सर देखा जाता है कि गर्मी इब्तदाई खरीफ में बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, आवाज जोरदार होती है, लेकिन बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरता, सिर्फ शोर, गरज, खौफ और बस। इसी तरह इंसानों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जबान से बड़ा शोर मचाते हैं, धमकियां देते हैं, मगर अमल में कुछ नहीं, न कोई इकदाम, न कोई हिम्मत, सिर्फ आवाज का तूफान है। ऐसे शख्स के लिए अरब कहते हैं तराक़ सैफ, ऊंची आवाज मगर कोई नतीजा नहीं। हमारे यहाँ भी कहते हैं सिर्फ गरजता है बरसता नहीं, जो ज्यादा गरजता है बरसता नहीं, खाली ढोल ज्यादा बजते हैं। तो कहावत का सबक ये है कि असल कदर अमल की है, अल्फाज की नहीं। जो लोग सिर्फ शोर मचाते हैं उनकी धमकियां उसी तरह होती हैं जैसे गर्मी के बादल, बहुत गरजते हैं मगर बरसते नहीं।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज हम ऐसे मसले की बात करेंगे जो कि हमारी प्लेटों में जो हम खा रहे होते हैं खामोशी से ज़्यादा हो रहा होता है, यानी वो खाने जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, जो कि फैक्ट्री में तैयार होते हैं, जिनमें रंग, खुशबू, फ्लेवर्स और केमिकल शामिल होते हैं। ये हमारे खाने हमारे जिस्म को कई सालों में शदीद नुकसान पहुँचाते हैं, मगर हम में से ज़्यादा अफराद जो हैं वो इन्हें रोज़ाना खाते हैं। ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं ये असल खुराक से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि इसमें मशीनी प्रोसेसिंग होती है, इनमें मसनूई अज्जा शामिल किए जाते हैं और इनका मकसद ये है कि उन खानों को ज़्यादा मज़ेदार, देर पा और जल्द तैयार होने वाली खुराक बनाया जा सके। इसमें फास्ट फूड है या जो फ्लेवर्ड मशरूबात हैं, एनर्जी ड्रिंक्स इसमें आती हैं, इसी तरह जो चिप्स है या निम्को है वो हो सकता है, प्रोसेस्ड मीट है वो हमें देखना है कि क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी तरह ये जो प्रोसेस्ड फूड है वो हमारा वज़न ज़्यादा करते चले जाते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ख़राब कर सकते हैं, दिल के मसाइल हमारे सामने आ सकते हैं, शुगर और इंसुलिन का तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है और कैंसर भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्कान आते हैं, क्योंकि इसमें मसनूई रंग इस्तेमाल किया जाता है, खुशबू ज़्यादा डाली जाती है, प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और लिसंस, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें देखना है। जैसे ही आप कोई पैकेट ख़रीदते हैं तो इंग्रेडिएंट्स पर ज़रूर देखिए, स्टेबलाइजर्स हैं, इमल्सीफायर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, फूड कलर्स हैं और इस तरह हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप ज़रूर देखिए। तो इससे बच हम ऐसे सकते हैं कि घर का सादा खाना सबसे बेहतरीन है, बाज़ार के जो बिस्किट हैं वो आप कम कर दीजिए, उसकी जगह खजूर और जो नट्स हैं और इस तरह आप उसमें अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय आप पानी इस्तेमाल कीजिए, लीमू पानी इस्तेमाल कीजिए, सिनेमन टी या फिर जिंजर टी आप शामिल कर सकते हैं अपनी ग़िज़ा में। और बच्चों के लंच बॉक्सेस में ख़ास तौर पर ध्यान रखिए जो प्रोसेस्ड फूड हैं वो ना जाएं, जैसे चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं और जूस जो हैं वो अगर देना चाहें तो कभी कभार दिए जा सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी खुराक है वो 70-80% जो है हमें कुदरती खुराक हमें लेनी है, जैसे कि दालें, सब्जियां, अंडे, फल और इसी तरह से हमें अपनी खुराक में इन्हें शामिल करना है। बीमारियां एक दिन में नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कमज़ोर करते चले जाते हैं, और अगर आज हम उनका इस्तेमाल 30-40% कम कर दें तो फिर बहुत सारे मसाइल, जैसे कि मोटापा है, शुगर है, डायबिटीज़ है, जैसे दिल के मसाइल हैं, हमारा मेंटल हेल्थ है, वो भी हम उस तमाम जो मसाइल हैं उनसे दूर रह सकते हैं। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107 दिल से देसी।
3: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतर स्पोर्ट्स लेजेंड में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न जनरेशन में कतर स्पोर्ट्स लेजेंड में एक बहुत ही शानदार शाइनिंग नेम मुताज बालचिम। यहाँ दोस्तों मुताज बालचिम को कौन नहीं जानता, आज के दौर में ही बच्चा बच्चा जानता होगा, हर कोई जानता है मुताज बालचिम को। मुताज ईशा बालचिम कतर के सबसे मशहूर और कामयाब एथलीट में से एक है। उन्होंने हाई जंप के ट्रैक में दुनिया भर में कतर का नाम रोशन किया, स्पेशली ड्यूरिंग द ओलंपिक्स। मुताज की पैदाइश दोहा में हुआ और बचपन से ही उनको स्पोर्ट्स का शौक था। अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और लगन की वजह से वो जल्द ही इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाने लगे। मुताज ने ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और एशियन गेम्स में कई मेडल जीते। सिर्फ मेडल्स ही नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल भी अपने नाम किया, ओलंपिक चैंपियन तक बने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने इटली के एथलीट जियामार्को टम्बेरी के साथ गोल्ड मेडल शेयर करके स्पोर्ट्समैनशिप की बेहतरीन मिसाल पेश की। यह लम्हा सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि पूरी स्पोर्ट्स दुनिया के लिए यादगार बन गया। मुताज की जंपिंग टेक्निक, कॉन्फिडेंस और काम पर्सनालिटी ने उनको फैंस का फेवरेट बना दिया है। इंजरीज के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मजबूत कमबैक किया। मुताज बालचिम आज कतर के नौजवान एथलीट्स के लिए इंस्पिरेशन है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि मेहनत और डेडिकेशन से हर ख्वाब पूरा किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: हवा के झोंके आज मौसमों से उठ गए।
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
4: द रिक्वेस्ट शो
3: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ,
4: फजील के साथ
3: संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: Anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now।
0: आप सुन रहे हैं Health Check।
4: Assalamualaikum listeners। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेमत के बारे में जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है, यानी पानी। अक्सर हम मसरूफियात में पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन हमारा जिस्म खामोशी से इस कमी का शिकार होता चला जाता है। इंसानी जिस्म का तकरीबन 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। पानी जिस्म के दर्जा हरारत को मुतवाजन रखता है, इसी तरह ब्लड सर्कुलेशन या खून की रवानी को बेहतर बनाता है, और जिस्म से जो टॉक्सिक मादे हैं उन्हें भी खारिज करने में मदद देता है। अगर जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस करते हैं, सर में दर्द आना शुरू हो जाता है, चक्कर आते हैं, कब्ज हो जाती है, जल्द जो है ये स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, और कमज़ोरी जैसी अलामत जाहिर हो सकती हैं। बाज़ औक़ात बहुत से अफराद समझते हैं कि शायद उन्हें कोई बीमारी है, जबकि असल मसला सिर्फ पानी की कमी होता है, यानी डिहाइड्रेशन होता है। गर्मियों में जैसे कि आजकल मौसम है, एक्सरसाइज के दौरान या रोज़ा रखने की हालत में जिस्म को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए वक्फे से पानी पीना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि कोल्ड ड्रिंक्स या ज़्यादा कैफीन वाले मशरूबात पानी का सही मुतबादल नहीं हो सकते। बच्चों और बुज़ुर्गों में पानी की कमी जल्द हो सकती है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद अक्सर प्यास महसूस ना होने के बावजूद डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इसलिए घर के बुज़ुर्गों को बाकायदगी से पानी पीने की याद दहानी ज़रूर करवाइए। साफ़ और महफूज पानी का इस्तेमाल भी बेहद ज़रूरी है, आलूदा पानी मेदे और आंतों की बीमारियों का सबब बन सकता है। कोशिश करें कि हमेशा साफ पानी इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही आसान सी टिप के साथ कि अपने पास पानी की बोतल रखिए और हर घंटे में चंद घूंट पानी ज़रूर पीजिए। याद रखिए, पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता बल्कि सेहत भी बनाता है। अपना ख्याल रखिए।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
3: One Step to 2030.
2: दोस्तों हम बात कर रहे हैं कतर के नेशनल विजन 2030 की और कतर के नेशनल विजन 2030 की प्रोग्रेस और आइडेंटिटी के बीच गुड बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। देखिए नेशनल विजन 2030 का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि ये मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। विजन ये तस्लीम करता है कि प्रोग्रेस का मतलब अपने वैल्यूज अपने कल्चर्स को छोड़ देना नहीं है। जी हाँ कतर चाहते हैं, ये कंट्री चाहता है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन और इनोवेशन आगे बढ़े, लेकिन साथ ही कतरी कल्चर अरबिक लैंग्वेज फैमिली वैल्यूज और इस्लामिक प्रिंसिपल्स भी मजबूत रहे। ये बैलेंस, जी हाँ ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आइडेंटिटी खो जाए तो सोसाइटी में कंफ्यूजन और डिसकनेक्शन पैदा हो जाता है। विजन ये बताता है कि मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथ चल सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्मार्ट सिटीज के साथ हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करना या ग्लोबल एजुकेशन के साथ लोकल वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करना। इस बैलेंस की वजह से कतर एक मॉडर्न ग्लोबल नेशन होने के बावजूद अपनी पहचान को बरकरार रखता है। कतर नेशनल विजन 2030 ये गारंटी रखता है कि आने वाली नस्लें अपने रूट से जुड़ी रहें और साथ ही आगे जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें खुद को अच्छे और बेहतर तरीके से तैयार भी कर सके। कतर नेशनल विजन 2030 का सबसे अहम मैसेज ये है कि डेवलपमेंट का मरकज इंसान होना चाहिए। अगर लोग सेहतमंद तालीम याफ्ता और स्किल्ड होंगे तो मुल्क खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। शायद इसीलिए मैंने बात की थी ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है दोस्तों? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है बेहतर एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर और ऐसे स्किल्स जो फ्यूचर जॉब मार्केट से मैच करते हो। विजन इस बात पर भी यकीन रखती है कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लेकिन ह्यूमन पोटेंशियल अनलिमिटेड। इसीलिए कतर एजुकेशन रिसर्च इनोवेशन और टैलेंट डेवलपमेंट में हैवी इंस्ट्रूमेंट्स और हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। विजन ये भी इंश्योर करती है कि लोग सिर्फ अर्निंग मशीन्स ना बन जाएं, बल्कि बैलेंस्ड और प्रोडक्टिव सिटीजन्स रहें। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों की इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा, लेकर आई हूं एक और इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। यहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो मिलकर एक बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकती हैं। आज का टॉपिक है प्लास्टिक बैग से इनकार। चलिए कॉमन सिचुएशन इमेजिन करते हैं साथियों मिलकर, ठीक है। आप ग्रोसरी स्टोर गए, सिर्फ दो या तीन चीजें लेनी थी। काउंटर पर पहुंचते ही कैशियर पूछता है, भाई आपको बैग चाहिए? और हम बिना सोचे समझे कहते हैं, हाँ जी दे दें, मुफ्त चीज और हम छोड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए फिर होता क्या है, एक प्लास्टिक बैग मिलता है, हम उसमें अपना सामान लेकर घर आ जाते हैं और फिर क्या होता है, वही बैग या डस्टबिन में चला जाता है या किसी ड्रॉर में फोल्ड होकर पड़ा रह जाता है, या हम लोग अक्सर औकात उसका कचरा वगैरह भी डाल लेते हैं उसके अंदर। और सच ये है कि हर घर में एक सेक्शन ऐसा होता है जहाँ पे प्लास्टिक बैग्स का कलेक्शन पड़ा होता है, जैसे कोई म्यूजियम है। अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं, पता है क्या, प्लास्टिक बैग्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, यानी ये जमीन में आसानी से खत्म नहीं होते। एक प्लास्टिक बैग को डिग्रेड होने में कई साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बैग आज आप यूज कर रहे हैं वो शायद आपके बाद भी एनवायरनमेंट में मौजूद रहेगा। अब जरा सोचिए, जब प्लास्टिक लैंडफिल्स में जमा होता है या हवा से उड़कर समंदर तक पहुंच जाता है तो क्या होता है, आ रही है ना बात समझ में? मरीन लाइफ जैसे कि टर्टल्स, फिश, बर्ड्स, अक्सर ये बेचारे प्लास्टिक बैग्स का फूड, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, इनको फूड समझकर कंज्यूम कर लेते हैं। ये उनके लिए बहुत डेंजरस होता है और उनकी लाइफ के लिए रिस्क बन जाता है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एक सिंपल से डिसीजन से। और वो डिसीजन पता है क्या है, प्लास्टिक बैग्स को पोलाइटली मना कर देना। जब भी आप शॉपिंग पर जाएं ना, अपना रीयूजेबल बैग कैरी करें, या कोई कपड़े का क्लॉथ का बैग जो होता है वो कैरी कर सकते हैं, कैनवस बैग्स भी तो होते हैं, या कोई स्टडी रीयूजेबल टॉट है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये इको स्विच कैसे हेल्प करता है आपको। देखिए सबसे पहला फायदा वेस्ट रिडक्शन होता है, जितना हम कम प्लास्टिक यूज करेंगे उतना ही कम गार्बेज होगा, सीधी सी बात है। दूसरा फायदा ये कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होती है इससे। देखें प्लास्टिक सॉइल और वाटर दोनों को पोल्यूट करता है। जब हम प्लास्टिक को यूज कम करते हैं ना, तो हम अपनी जमीन और पानी दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, इसका तीसरा फायदा क्या है, हैबिट बिल्डिंग है। जब आप कॉन्शियसली प्लास्टिक बैग्स अवॉइड करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप और भी इको फ्रेंडली डिसीजन लेने लगते हैं। और भाई चौथा फायदा क्या है, सफा बता रही है चौथा फायदा, कि आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, लोग आपको देखकर सीखते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बच्चे भी इस हैबिट को आपको देखकर अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग घर से निकलते वक्त सोचते हैं कि भाई रीयूजेबल बैग ले लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन फिर जल्दी जल्दी में हम भूल जाते हैं। मेरे साथ भी अक्सर ही होता है, फिर स्टोर पर पहुंच कर हम मजबूरन प्लास्टिक बैग ले लेते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, अपनी कार में परमानेंटली दो या तीन रीयूजेबल बैग रख दें, या अपने जो डेली का जो आप हैंड बैग कैरी करते हैं ना, उसके अंदर फोल्ड करके कोई भी आपका जो रीयूजेबल बैग है उसको रखें। इस तरह आप कभी भी बैग नहीं भूलेंगे। देखिए आजकल कई स्टोर्स रीयूजेबल बैग्स भी प्रमोट कर रहे हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं और आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं उन्हें। अब थोड़ा आपको बताती हूँ नंबर गेम, अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं हुई मेरी बात से। देखिए अगर एक इंसान रोज सिर्फ एक, ऐसा होता नहीं कि हम लोग सिर्फ एक बैग यूज कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ एक की मिसाल दे रही हूँ, अगर एक इंसान रोज सिर्फ एक प्लास्टिक बैग अवॉइड करे तो एक साल में अराउंड कितने बन जाएंगे, 365 प्लास्टिक बैग्स बचते हैं, ठीक है। अगर एक फैमिली के चार लोग ये हैबिट अडॉप्ट कर लें तो एक साल में 1460 प्लास्टिक बैग्स अवॉइड हो सकते हैं। और अगर एक कम्युनिटी ये करे तो भाई नंबर बड़ा इंप्रेसिव हो सकता है, यानी कि छोटी सी चॉइस का रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या है, प्लास्टिक बैग्स सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं होते, बल्कि कभी कभी हेल्थ के लिए भी कंसर्न बन सकते हैं।

0: ये क्लीन एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं ना और माइक्रो प्लास्टिक्स का इशू क्रिएट करते हैं। इसीलिए प्लास्टिक का कम यूज सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल का हिस्सा है। देखें, आज का इको स्विच बहुत सिंपल है। नेक्स्ट टाइम जब आपसे पूछा जाए ना, भाई बैग चाहिए प्लास्टिक वाला बैग, तो आपने क्या जवाब देना है? ना बाबा ना, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बैग है रियूजेबल वाला, आपके पास इंशाल्लाह, आप कर सकते हैं भी, मुझे पता है। ये एक छोटी सी लाइन है लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। देखिए, हर लिसनर आज से कम एक रियूजेबल बैग अपने साथ रखने की हैबिट डेवलप करे, कोशिश तो करे ना, और पूरे दिन में जितनी बार पॉसिबल हो प्लास्टिक बैग लेकर आप बाहर निकले, या मैंने जैसे बताया कि आप अपने पास रख सकते हैं गाड़ी में। अपने घर वालों को भी ये हैबिट बताएं और उनको भी इन्वॉल्व करें, एक दूसरे को रिमाइंड कराएं और इसे रूटीन का हिस्सा बनाएं। तो भाई, हम अक्सर ये सोचते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लेकिन असल चेंज छोटी छोटी आदतों से आता है। प्लास्टिक बैग से इनकार करना एक ऐसी ही आदत है जो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। तो भाई, आज से एक सिंपल प्रॉमिस करें खुद से, जहां पॉसिबल हो प्लास्टिक बैग को नो कहना है। तो भाई, मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे FM 107 कतर पर इको स्विच। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है। तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती हैं कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी

0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं नाज़िया एफएम 107 से एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू शो कॉल्ड इंस्पायरिंग वुमेन.
1: इंस्पायरिंग वुमेन उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती.
0: दोस्तों, इस शो में हम उन लेडीज से बात करते हैं जो रोशन मिसालें पेश करती हैं, जो हिम्मत, मेहनत और जज्बे से अपनी मंजिलें हमवार करती हैं. हम ना सिर्फ इनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं बल्कि इनके तजुर्बों से बहुत कुछ सीखते भी हैं. ये शो आपके अंदर छुपे टैलेंट को तराशने का मौका भी आपको ही फराहम करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों, आज के इस वेरी फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है इंस्पायरिंग वुमेन. She is a passionate visionary connector. Her journey is profoundly human. Her work is rooted in

0: and what else? Yeah, they can do things around there, you know, just get the support. Don't be shy to ask help, or always believe in their potential, because we were created for a purpose. So for sure, we have that potential inside of us. So even though you are working in a small company as a receptionist or just a secretary, for sure, you have that potential and purpose. You were born here for a reason. So every one of us have this reason to live in a purpose. So
1: बहुत अच्छी बात. थैंक यू कॉन्चिता. यहाँ पर हमारी गेस्ट कॉन्चिता ने बहुत ही अच्छी लाइन, बड़ी इंस्पायरिंग लाइन हम सबको कही है कि देखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे आप किस तरह से कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो काम करना ये बताता है कि आप जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं दूसरे की सक्सेस के लिए भी. तो एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को अपलिफ्ट कीजिए, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे को आगे बढ़ाना है. बहुत ही खूबसूरत मैसेज और बहुत ही अच्छी बात हमारी गेस्ट ने की. सो थैंक यू सो मच for taking out this time and sharing such amazing insights with us. It was lovely talking to you.
0: Thank you so much for giving me this opportunity to speak about my journey.
1: Thank you once again.
0: Thank you.
1: Well, with this, दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107, दिल से दे.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल

0: उसकी जगह पे आना है,
1: ठीक है
0: उसका अलग होता है टाइम। तो ये तकरीबन 6 महीने से 6 साल तक की उम्र में जो है ये आपके दूध के दांत गिरते रहते हैं, कुछ उसके बाद भी गिरते हैं 10 साल की उम्र तक भी। मगर वो एक डेंटिस्ट ही समझ सकता है कि ये वाला दांत कौन सा है और जैसे और वो अब गिर जाना चाहिए था तो नहीं गिरा, तो उसकी क्या वजह है, तो फिर वो और एक्सरे कराएंगे या और जानने की कोशिश करेंगे।
1: ये भी ये भी कहा जाता है कि अच्छा जिन बच्चों के पहले अर्ली टीथ जो हैं वो आते हैं तो वो जब गिरते हैं तो वो भी अर्ली ही गिरते हैं, कैसे?
0: बाज वक्त ऐसा होता है, ये ना एक रेंज होती है।
1: अच्छा,
0: मतलब जरूरी नहीं है कि 6 महीने पे पहले दांत आए, कुछ 2-3 महीना डिले भी हो सकता है, किसी के 9 महीने पे भी आते हैं, तो वो नॉर्मल है। अगर आपका विद इन रेंज आ रहे हैं और विद इन रेंज गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल है।
1: ठीक ठीक
0: जी,
1: तो इस तरह से हो सकता है।
0: बट अगर वो रेंज से ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर जरूरत है कि कुछ किया जाए।
1: ठीक ठीक, और इस तरह से मगर ये कि लिसन्स आप भी सुन रहे हैं कि किस तरह ये हम जो बड़े बड़े प्रोसीजर्स हैं उनसे बच सकते हैं, ये छोटे छोटे मैयर्स जो हैं वो अपना कर। और डॉक्टर साहब हमें बता रही हैं कि क्या किस तरह से हम केयर कर सकते हैं, और अभी जो बताया ये बहुत अहम है। बातों का बच्चों के दांत जो हैं वो गिरते नहीं हैं और फिर उन्हें डेंटिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है, वो फिर उसे एक्सट्रैक्ट तो नहीं, वो एक्सट्रैक्शन ही होती है, वो ऊपर से जो मिल्क टीथ है उन्हें वो निकालते हैं तो फिर नीचे से जो है वो दांत आता है। बात तो पूरे नज़र भी आ रहे होते हैं।
0: जी जी
1: जी, बाज दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो नज़र आ रहे थे। जी लिसन, बिल्कुल इसी तरह से जो हैं वो मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोसीजर्स जो हैं वो करते हुए, और बच्चों की जैसे डॉक्टर साहब ने एजुकेशन और कैरीज कंट्रोल और ये आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं, हम आगे भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह।
2: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: जैसे आज हम बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं, तो अब हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे। जैसे मैनेजमेंट का डॉक्टर साहब ने बताया, तो एक तो बता दिया कि जो परमानेंट जो टीथ हैं उन्हें आने के लिए फिर रिमूव करने पड़ते हैं कुछ
0: जी, जी। कई बार करना पड़ता है, कई बार नहीं जरूरत होती है,
1: ऐसे नॉर्मल अक्सर नहीं जरूरत होती,
0: अक्सर नहीं जरूरत होती है, मगर कई बार जरूरत होती भी है, मगर वो पेरेंट्स को नहीं पता होता है जी। वो कई बार जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं चेकअप के लिए तो वो बताते हैं। अच्छा,
1: इसलिए ये जरूरी है कि रेगुलर चेकअप जो है वो किया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है। और एक पॉइंट मिस हो गया, जैसे कोई दूध का दांत गिर गया है और उसकी जगह पे जो परमानेंट दांत आना था वो अगर 3 महीने तक नहीं आता तो फिर आप जरूर जो है डेंटिस्ट के पास जाएं और दिखवाएं, क्योंकि नॉर्मली 3 महीने में आ जाता है। अगर 3 महीने से भी ज्यादा हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि उसको देखा जाए क्यों नहीं आ रहा है। बाज दफा मिसिंग होते हैं परमानेंट टीथ, या कि या वो ब्लॉक हो रहे हैं किसी वजह से, उनको कोई और दांत की रूट या कुछ ब्लॉक करी, या कोई और भी वजह हो सकती है। तो अगर 3 महीने से ज्यादा हो गया, दूध का दांत गिर गया है, तो आप जरूर जो है जाएं और दिखवाएं।
1: ठीक, इसमें ये तो नहीं है कि जो है कोई डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जैसे कोई कैल्शियम डेफिशिएंसी, मतलब

0: बड़ा रोल होता है और कैल्शियम का, मगर जरूरी नहीं कि उसी की वजह से हो, ये और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनमें ट्रीटमेंट की कई बार जरूरत होती है। तो
1: तो उसमें फिर आप क्या उसमें ट्रीट करते हैं उसे?
0: कई बार ना दांत ब्लॉक हो रहे होते हैं, जो दांत के स्पेशली जो केनाइंस होते हैं, जो कॉर्नर का जो दांत होता है, केनाइन जिसे कहते हैं, वो कई बार उसकी डायरेक्शन गलत होती है, वो गलत डायरेक्शन में आ रहा होता है तो वो अंदर ही रह जाता है, और जब तक आप उसको जो है गाइड करके या ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर से बाहर नहीं निकालें, वो अपने आप नहीं एडेप्ट हो पाता या अंदर के वो जड़ों को ख़राब कर रहा है, तो हम ऐसी सूरत में एक्सरे करके देखते हैं कि क्या वजह है।
1: अच्छा ठीक, तो फिर उसके मुताबिक फिर जो है वो
0: उसके मुताबिक फिर करते हैं।
1: ठीक है जी जी। नेक्स्ट जो हम अब चलेंगे कि किस तरह से हम जो प्रोसीजर्स हैं जिनसे हमें डर भी लगता है उनसे हम दूर रह सकते हैं, क्या क्या हमें करना है। जी
0: जी। अब इसमें जो है ये 6 पॉइंट आता है आपका, हैबिट्स, बच्चों की जो बैड हैबिट्स होती हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: जी। तो इसमें जो है जैसे बच्चे कई बार अंगूठा चूस रहे हैं या कोई और उंगली चूस रहे हैं, या नेल बाइटिंग की हैबिट है।
1: अच्छा
0: जी। या लिप बाइटिंग है, लिप सकिंग की हैबिट है, या कई बार हम देखते हैं कि कोई बच्चा हमेशा मुँह खोल के सो रहा है, या ऐसे भी जगते में भी उसका मुँह खुला हुआ है, मतलब वो नाक से सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है, या उसका जो जो गले में जो सांस की नलियां होती हैं उसमें कुछ मुश्किल हो सकती है। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नोटिस करें, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपका बच्चा उंगली चूस रहा हो, या नेल बाइटिंग की हैबिट हो, या वो टंग थ्रस्टिंग की, टंग गलत जगह पर रख रहा आपको अगर ऐसा लग रहा है, या लिप बाइटिंग है, लिप सकिंग है, या फिर वो मुँह से सांस लेता है आपका बच्चा, तो इनमें से अगर कोई भी सूरत है तो आप ज़रूर डेंटिस्ट के पास ले जाएँ और वो फिर जो है इसको देखेंगे कि इसको हैबिट को कैसे प्रिवेंट करना है, क्योंकि इनके भी बहुत बुरे असर होते हैं इन सारे हैबिट्स के, और ये इजीली जो है डेंटिस्ट की हेल्प से छुड़वाई जा सकती हैं। कई बार हम कुछ रिमूवेबल अप्लायंसेस वगैरह देते हैं, या जैसे नेल बाइटिंग वगैरह, फिंगर सकिंग, कई बार
1: छोटे बच्चे भी
0: हाँ वो कुछ हम नेल पेंट वगैरह ऐसा एडवाइस करते हैं, या कुछ थंब में ऐसी चीजें लगा के, तो वो जो है छुड़वाई कई जी। माउथ ब्रीदिंग भी जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार माउथ ब्रीदिंग की वजह से ना फिर वो जो दांत हैं वो गलत तरीके से डेवलप होने लगते हैं।
1: अच्छा।
0: या जो ऊपर का जो जॉ है वो छोटा रह जाता है, वो नैरो रह जाता है, और भी बहुत सारे वो होते हैं, तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें।
1: ठीक ठीक
0: जी
1: ठीक है कि इस तरह ये बिल्कुल, वैसे तो बच्चे जो वो आपने सारी चीज़ें बताई हैं ऐसे महसूस होता है कि कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये कि जैसे कि इन फ्यूचर बड़े मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं, तो नील बाइटिंग जो है वो उंगली जैसे या थम है, बच्चे जैसे शक करते हैं बहुत से,
0: सकिंग भी अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है जैसे 4 साल तक की उम्र तो ठीक है, मगर अगर उससे ज़्यादा फिर आपके बच्चे अगर चूस रहे हैं तो फिर वो बहुत कंसर्निंग हो जाता है, और आप फिर ज़रूर कंसल्ट करें।
1: छोटे बच्चे तो अक्सर वो करते हैं जैसे
0: अप टू 4 ईयर्स।
1: अच्छा 4 ईयर्स
0: ठीक है, बट उसके बाद आप ज़रूर जो है दिखवाएं, और
1: बल्कि इससे पहले ही, क्योंकि 4 ईयर्स का बच्चा भी थोड़ा बड़ा ही
0: हो जाता है, बट वो क्योंकि हैबिट कई बार ना छुड़वाने में भी बहुत टाइम लगता है, बट ये मैक्सिमम एज है, उससे बेटर है कि आप पहले जो है उसको एड्रेस करें। और
1: आपके पास ऐसे केसेस आते हैं?
0: जी जी आते हैं, कई बार हमें अप्लायंसेस फिक्स लगानी पड़ जाती हैं।
1: अच्छा।
0: ऐसे केसेस में कई बार रिमूवेबल अप्लायंसेस से काम हो जाता है, कई बार सिर्फ प्रॉपर एडवाइस और गाइडेंस चाहिए होती है, बच्चे बाज़ वक़्त उनको पेरेंट्स का अटेंशन नहीं मिल रहा होता है, वो साइकोलॉजिकली अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए भी फिंगर चूसते हैं।
1: अच्छा ठीक ठीक।
0: तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो जब पेरेंट्स हमारे पास लाते हैं बच्चों को तो वो हम देख के उस हिसाब से स्टेप वाइज फिर हम जो है उसका ट्रीटमेंट के पहले ये करना है, ये करना है, इस तरह से।
1: ठीक। इसमें थोड़ी सी डिटेल जरूर पूछना चाहूँगी, बिल्कुल ये बहुत जो है मसला भी है कि बच्चे जो हैं वो बाइट जैसे करते हैं, सकिंग जो है, तो उसमें आपने कहा कि कुछ बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है वो भी ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है, तो उसमें ये इफेक्ट भी आ सकता है कि बच्चे जो हैं इस वजह से भी, तो फिर आप क्या कहते हैं?
0: कई बार बच्चे डिप्रेशन में होते हैं,
1: छोटे इतने
0: छोटे बच्चे भी मैंने देखा है, 6-7 साल के 8 साल के बच्चे भी डिप्रेस्ड होते हैं, और वो उस वजह से जो है

0: अंगूठा चूस रहे होते हैं, और जब उनको गाइड किया जाता है पेरेंट्स को और वो बिजी हो जाते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी इंक्रीज कर दी गई ना, और पेरेंट्स मतलब और चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग गए, फ़ोन या मोबाइल अगर ज़्यादा देख रहे हैं वो छोड़ दिया, और बच्चा ज़्यादा खुश रह रहा है, बिजी रह रहा है फिजिकल एक्टिविटी, तो वो अपने आप ही छोड़ देते हैं बच्चे।
1: अच्छा जी, ठीक ठीक जी, ये बहुत अहम है। और आजकल जैसे कि डिवाइसेस में हर एक सुई में, बल्कि ये कहा जाए कि उसमें काम भी कर रहे होते हैं सब, मगर ये कि ज़रूरी है बच्चों को टाइम देना, और स्पेशली उनके सामने जैसे आपने कहा कि वो भी ये फील करते हैं कि शायद पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं हैं,
0: क्योंकि जो रीज़न है उस हैबिट के पीछे वो हटाना बहुत ज़रूरी है
1: जी।
0: आपने बच्चे को रिमूवेबल अप्लायंस दे दिया लगाने के लिए, मगर जो रीज़न था उसके पीछे कि बच्चा क्यों चूस रहा था, वो आपको एड्रेस करना वो भी बहुत ज़रूरी है साथ में ट्रीटमेंट के।
1: ठीक, तो इसलिए आप हिस्ट्री लेके आपको पता चलता है,
0: प्रॉपर हिस्ट्री लेके, और जब बच्चे कई बार आते हैं, जैसे एक बार आए फिर फॉलोअप के लिए हम बुलाते हैं, तो वो धीरे धीरे फिर हमें पता चलता है कि हाँ कि इसके पीछे वजह क्या है।
1: ठीक ठीक जी, तो ये बहुत अहम पॉइंट है और इस पर हमें फोकस जो है वो भी ज़रूर करना है कि क्यों बच्चे ऐसे करते हैं जी।
0: अब इसमें अगला पॉइंट है सातवां पॉइंट, कि कई बार आपका बच्चा सही से बांध नहीं कर पा रहा, ऊपर और नीचे के दांतों को सही से मिला नहीं पा रहा है
1: जी,
0: नीचे का जो जॉ है उसको थोड़ा बहुत उसको शिफ्ट करना पड़ रहा है ना, कहीं फिलिंग करवाई वो थोड़ी ऊंची थी उस वजह से, या कोई और कई बार कुछ इनामल पर्ल्स वगैरह या और भी कंडीशंस हो सकती हैं जिसके वजह से उसको नीचे का जॉ थोड़ा बहुत शिफ्ट करके बंद करना पड़ रहा है बंद, क्योंकि जो ऊपर और नीचे के दांतों का आपस में रिलेशन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है
1: जी।
0: अगर वो डिस्टर्ब है तो फिर वो ग्रोथ जॉ की उसी डायरेक्शन में होने लगेगी, तो अगर कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चे को दांत मिलाने में ऊपर के नीचे के दांत मिलाने में दिक्कत है या वो थोड़ा बहुत शिफ्ट कर रहा है तो आप ज़रूर दिखवाएं, या वैसे भी अगर आप हर 6 महीने पे जा रहे हैं तो वो डेंटिस्ट अपने आप उस चीज़ को देख के समझ पाएगा कि बच्चे को ये दिक्कत है और हम उसका इलाज कर सकते हैं। कई बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा हो रहा है, बट हम उसे एट अर्ली स्टेज डायग्नोज कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं।
1: और जितने अर्ली डायग्नोसिस होते हैं हर हर ही मसले में ये हम कहते हैं, मगर यहाँ दांतों के हवाले से जो है ये भी बहुत अहम है, क्योंकि जो एज है ये भी बहुत मैटर करती है बच्चे
0: बिल्कुल,
1: जी
0: बिल्कुल
1: ठीक।
0: अब इसमें अगला पॉइंट है कि जैसे स्पेस मेंटेन रखना, कोई जैसे दूध का दांत है किसी वजह से वो निकालना पड़ गया आप उसको नहीं बचा पाए, या वो गिर गया बच्चा, चोट लगी बच्चा गिर किसी भी वजह से, तो वो क्या किया जाए, वो जो स्पेस है दूध के दांत की उसको ऐसे ही हम छोड़ दें या उसको हमें मेंटेन करना है किसी अप्लायंस से, तो उसका जवाब ये है कि उसे हमें मेंटेन करना है। अगर हमें ये लग रहा है कि उस परमानेंट दांत को आने में अभी वक्त है
1: जी,
0: महीनों से ज़्यादा लगना है, तो हम वहाँ पर कुछ ऐसी डिवाइसेस लगाते हैं जिसे हम स्पेस मेंटेनर बोलते हैं, वो नॉर्मली बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल होती है और वो जो है फिक्स्ड होती है, तो उससे क्या होगा कि वो जो जगह थी वो हमने उसको मेंटेन रखा और उस जगह में फिर परमानेंट दांत आराम से आ जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करें तो क्या होगा, अगर हम ऐसा नहीं करें तो जो आसपास के दांत हैं लेफ्ट राइट वो उस जगह में टेढ़े होने लगते हैं, उनका झुकाव उस जगह में होने लगता है, और ऊपर का दांत नीचे या नीचे का दांत ऊपर जैसा भी था वो जो है दूसरे जॉ का दांत भी उस स्पेस में आने लगता है, तो इससे भी फिर जो है दांत टेढ़े मेढ़े आपके होने लगेंगे और जो परमानेंट दांत है उसको तो फिर उस जगह सही नहीं मिल पाएगी, तो फिर वो भी गलत जगह पे आएगा। तो कई बार इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्रॉस बाइट वगैरह भी, जिसमें पूरा जॉ ही शिफ्ट करना पड़ता है बच्चे को बंद करने खोलने के लिए।
1: अच्छा,
0: तो ये इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें, और अगर आपके बच्चे का दांत गिर जाता है या निकालना पड़ा है तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए स्पेस मेंटेनर बहुत ज़रूरी है।
1: ठीक, और ये छोटे जैसे बच्चे हैं जिस एज में, तो वो उनके लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट नहीं होते?
0: नहीं, वो बहुत छोटी सी अप्लायंस होती है, यूजुअली जो अगल बगल के दांत होते हैं ना उनके सपोर्ट से हम बनाते हैं और वो बहुत कंफर्टेबल होता है, उससे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती।
1: ठीक थे, तो उसमें उसको क्लीन करना या हाइजीनिकली?
0: नहीं, उसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि हाइजीन इशूज नहीं होते।
1: अच्छा, आम जो ब्रश है जो जैसे ब्रशिंग की जाती है तो
0: उससे कोई इशू नहीं होता।
1: तो उसमें खाने का या कुछ बताते हैं कि क्या केयर है या कुछ
0: नहीं, सॉफ्ट चीजें नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपका बच्चा आराम से खा पी सकता है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
1: अच्छा अच्छा, तो ठीक। मगर इस पे जो एक पॉइंट वो ये है कि जो दांत हैं उन्हें अपने सिक्योर करना है,
0: जो दांत की जो
1: जगह है उसको,
0: जी उसको सिक्योर करना,
1: ठीक है
0: जी,
1: ठीक। तो और फिर इससे जैसे बाज़ औक़ात इश्यूज़ होते हैं कि बच्चे का मुंह थोड़ा सा वो साइड पर लगता है या कुछ, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं,
0: हो सकते हैं जी। अगर जैसे दांत बहुत पहले गिर गए, 3 साल की उम्र में गिर गए, और उसका जो परमानेंट टूटता वो आना था 7 साल की उम्र में, तो फिर वो काफ़ी लंबा टाइम है। इवन हमारी एडवाइस ये होती कि 3-4 महीने में अगर परमानेंट दांत आ जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको फिर जाए स्पेस मेंटेनर से वो करके रखते
1: अच्छा,
0: हैं। कई कई बार क्योंकि परमानेंट दांत कुछ 11 साल की 10 साल की उम्र में भी आ रहे होते
1: हैं। अच्छा
0: जी,
1: ठीक। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि क्यों, उसकी क्या रीज़न होती है?
0: वो नॉर्मल एज है, 10 साल की उम्र तक भी आते हैं, 10-11 साल की उम्र तक भी जो
1: और गिर पहले जाते हैं,
0: नहीं गिरते उसी के उससे 3 महीने पहले गिरेंगे या उसी के साथ गिरेंगे, बट अगर किसी वजह से पहले गिर गए तो फिर ऐसी सूरत में आपको फिर उस जगह को मेंटेन
1: करना पड़ता है, ठीक। और फिर ये आमतौर पर इस तरह जो है रिटेनर वगैरह, मतलब
0: रिटेनर तो अलग चीज
1: होगी,
0: इसे हम स्पेस मेंटेनर कहते हैं।
1: अच्छा,
0: स्पेस मेंटेनर इसका डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट होता है।
1: ठीक। जी लिसन, आज कुछ नए नए जो पॉइंट्स हैं वो हम डॉक्टर साहब से जो है वो हमारी मालूमात में इजाफा हो रहा है। उसके साथ साथ ये कि बच्चों के जो दांत हैं वो किस तरह से उन्हें मेंटेन किया जा सकता है, और इन फ्यूचर जो कि दांतों के बहुत सारे मसाइल हैं उनसे हम दूर कैसे रह सकते हैं, ये भी जो पॉइंट है बहुत अहम है। जी डॉक्टर
0: जी, एक पॉइंट और बच रहा है प्रिवेंटिव में। कई बार जो टंग होती है उसका जो अटैचमेंट होता है जो वो बहुत ज़्यादा होता है, तो टंग हिलाने में बोलने में दिक्कत होती है। उसके अलावा जो नीचे के दांत हैं, जो नीचे का जॉ है, उसकी ग्रोथ भी इफेक्ट होती है उससे, जिसे हम टंग टाई कहते हैं।
1: जी जी, टंग टाई।
0: हाँ, टंग टाई आम लफ्जों में। तो इससे सिर्फ ये नहीं है कि स्पीच प्रॉब्लम्स होंगी, कई बार स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकता है ना भी हो,
1: ठीक है,
0: मगर अगर वो जैसे कम भी है, टंग टाई के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो अगर स्पीच प्रॉब्लम्स नहीं भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो भी हो सकता है कि वो जॉ ग्रोथ में प्रॉब्लम करे। और कई बार जो फ्रीनम हम बोलते हैं
1: जी, जी।
0: जो अपर लिप्स होते हैं, हाँ अपर, तो वो कई बार बहुत ज़्यादा डीप होता है या बहुत नीचे तक अटैच हो रहा होता है, तो उससे कई बार आगे के दांतों में स्पेस रहती है
1: जी। जो स्पेस होती है टीथ स्पेशली या जो सामने वाले दांत हैं, तो वो क्या नॉर्मल भी होती है बार दफ़ा बच्चों में, या उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है?
0: नहीं, कई बच्चों में तो नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि जो परमानेंट दांत हैं वो दूध के दांत से बड़ा साइज होता है उनका, तो अगर बच्चों में दांतों के बीच में गैप्स हैं तो उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है,
1: ठीक।
0: मगर अगर बड़े जो हैं एडल्ट हैं या जो परमानेंट दांत आ रहे हैं फिर भी अगर गैप्स रह रहे हैं या, तो फिर उसकी
1: उसे कंसल्ट करना, ठीक ठीक। जेनेसिस प्रोग्राम हेल्थ केयर, और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम जो बड़े बड़े प्रोसीजर्स हैं उनसे, दांतों के जो हैं स्पेशली, और उससे कैसे बच सकते हैं, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार की जाएँ, या कौन कौन से ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो हैं वो डॉक्टर साहब हमें बता रही हैं। तो आज जी डॉक्टर साहब, और अभी कुछ और पॉइंट्स हैं इसके अलावा जो सेकंड है वो भी ज़रूरी है?
0: ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे प्रिवेंटिव की,
1: जी,
0: कि हम जो है प्रॉब्लम होने ही ना दें, अपने दांतों का जो नॉर्मल दांत हैं उनका ख्याल रखें और उनको वैसे ही संभाल के रखें,
1: ठीक है।
0: अब अगर किसी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसको वहीं पे रोकना, जो कि इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स हम कहते हैं, उसमें जैसे कई बार हम जो है सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम कई बार देखते हैं कि स्पेस कम है, जॉ छोटा है, तो क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर हम अपने हिसाब से कोई दांत जो है निकालते हैं सीरियल वाइज, दूध के दांत जो है, मगर वो सिर्फ एक डेंटिस्ट ही ऑर्थोडोंटिस्ट ही डिसाइड कर सकता है कि वो करना है उस बच्चे के केस में या नहीं करना.
1: ठीक है.
0: तो इसीलिए जैसे मैंने कहा था कि 6 से 7 साल पे एक ऑर्थोडोंटिस्ट से एक चेकअप जो है बहुत ज़रूरी है.
1: ठीक ठीक.
0: फिर कई बार क्या होता है कि क्रॉस बाइट होती है. क्रॉस बाइट मतलब जैसे जो ऊपर के दांत हैं वो नॉर्मली नीचे के दांतों के आगे होते हैं.
1: अच्छा.
0: मगर अगर ऐसा है कि कोई भी दांत नीचे का ऊपर वाले दांत से आगे आ रहा है तो ऐसे उस सूरत को हम क्रॉस बाइट कहते हैं. तो उससे क्या होता है जॉ बंद करने खोलने में जॉ ग्रोथ में भी डिस्टर्बेंस होते हैं कई बार.
1: उसमें जो बच्चे की फेस की जो शेप है वही जो है वो भी
0: कई बार वो भी डिस्टर्ब होती है कई बार नहीं भी होती है. तो अगर आप अर्ली स्टेज में लेकर आएंगे और उसको हमने एज अर्लीस्ट उसको करेक्ट कर लिया तो फिर वो किसी भी तरह की जॉ ग्रोथ में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी.
1: इसमें जैसे कि बच्चों के जो अंडरलाइन कोई कॉज है जैसे आपने कहा भी था कि उन्हें भी देखते हैं जैसे एडिनाइट्स वगैरह बच्चे जो हैं जिनके होते हैं वो स्पेशली उनका जो फेस है टिपिकल फेस होता है
0: एडिनाइट फेस
1: जी. और जी जी जी इस पे मैं पूछना चाहूंगी कि वो कैसे
0: ये हाँ जी. जो बच्चे जैसे मैंने बताया था मुंह से सांस लेते
1: जी
0: हैं
1: जी.
0: तो ऐसे मुंह से सांस लेते हैं क्यों ये एडिनॉइड जो है लोअर एयरवे में होते हैं जो ये नाक के प्रॉब्लम नहीं है. नाक के नीचे जो जो हमारे नेक में जो सांस की नलियां होती हैं उसमें एडिनॉइड एक चीज होती है जो कि बड़ी हो जाती है
1: जैसे टॉन्सिल्स हैं
0: उसी तरीके से
1: जी.
0: तो ये उसका इलाज जो है वो करना जरूरी होता है. वो आप अगर ऑर्थोडोंटिस्ट या कोई भी डेंटिस्ट देखेगा एक्सरे में नजर आते हैं ये.
1: ठीक है.
0: तो फिर वो आपको ईएनटी के पास हम रेफर कर सकते हैं और ईएनटी के डॉक्टर्स जो है इसका ट्रीटमेंट करते हैं. कई बार सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है कई बार जो है बिना सर्जरी के भी ये ठीक हो जाता है.
1: ज्यादातर तो सर्जरी ही की जाती है इसकी बच्चों के हवाले से.
0: कई बार ये अपने आप भी ठीक हो जाता है तो बहुत अर्ली सर्जरी.
1: तो फिर आप वेट करते हैं?
0: वेट करते हैं जी क्योंकि ये कई बार अब खुद भी ठीक हो जाता है. बट अगर नहीं हो रहा है या दवाइयों से नहीं हो रहा है तो फिर सर्जिकल.
1: ठीक ठीक. तो इस तरह जैसे कोई भी जैसे इसमें डॉक्टर साहब एज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज में ही. जी जी.
0: तो एडेनॉइड्स का यूजुअली सर्जरी हम एडल्ट की ही करते हैं 18 इयर्स या उसके बाद ही. उससे पहले सर्जरी नहीं करते हैं. और ये जो ईएनटी के जो डॉक्टर होते हैं वही करते हैं.
1: जी जी जी बिल्कुल. कोई ईएनटी जो है वो
0: मगर अहम ये है कि आपको पता चल जाना उसकी डायग्नोसिस टाइमली हो जाना कि वो है. कई बार माउथ ब्रीदिंग किसी और वजह से भी हो रही हो सकती है. हो सकता है एडेनॉइड्स नहीं हो कोई और वजह हो. जो नाक में भी कई बार प्रॉब्लम होती है. हाँ पॉलिप वगैरह होते हैं डेविटेड नेजल सेप्टम या और भी चीज़ें.
1: अच्छा ये सारी चीज़ें जो इफेक्ट करती हैं
0: जी. और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं. तो माउथ ब्रीदिंग के कई रीजन हैं
1: आप हमें बता दीजिए क्योंकि जब हम देखें या स्पेशली बच्चों को पेरेंट्स जो हैं वो जो है वो हम पता होना चाहिए क्या क्या, क्या कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं या क्या वजूहत हो सकती है.
0: तो ये एक तो अपर एयरवे आपका इफेक्टेड है जो कि नाक के अंदर या तो आपका लोअर एयरवे इफेक्टेड है एडेनॉइड्स वगैरह हो गए तो ये चीज़ें होती हैं.
1: ठीक.
0: डीएनएस हो गया नेजल पॉलिप्स हो गए आपके एडेनॉइड्स हो गए.
1: जी ठीक ठीक.
0: या कई बार आपका जो है डेंटल से भी रिलेटेड होता है. माउथ ब्रीदिंग हम डेंटली भी करेक्ट कर सकते हैं. जैसे अगर अपर एयरवे का इशू है तो कई बार हम जो ऊपर का जो तारू होता है उसको हम एक्सपेंशन करते हैं उसको थोड़ा चौड़ा करते हैं.
1: अच्छा.
0: वो एक्सपेंशन अप्लायंसेस होती हैं. तो अगर अपर एयरवे से रिलेटेड है तो उससे भी ठीक किया जा सकता है. या अगर लोअर एयरवे है और वो उसका नीचे का जॉ छोटा रह गया है तो हम कुछ फंक्शनल ट्रीटमेंट करते हैं जिससे नीचे के जॉ की ग्रोथ बढ़ती है तो उससे भी लोअर एयरवे का जो है वो. मगर अगर कोई ऐसी पैथोलॉजिकल कोई चीज़ है जैसे एडेनॉइड्स है या पॉलिप तो पहले उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है.
1: अच्छा ठीक. इसमें सब जैसे कि आपने कहा कि इसमें जो एक्सपेंशन की तो इसकी एज कहाँ कब तक ये हो सकती है.
0: जी अगर जैसे बच्चा छोटा है ये तो किसी भी एज पे किया जा सकता है मगर अगर बड़ा बच्चा है एडल्ट हो गया है
1: जी जी
0: तो एडल्ट का फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा या फिर ज्यादा जैसे हमें कुछ स्क्रूज वगैरह इम्प्लांट्स वगैरह डाल के फिर वो करना पड़ेगा एक्सपेंशन मगर अगर छोटा बच्चा है जिसकी जॉ ग्रोथ ऑलरेडी हो रही है ऐसे में सिर्फ रिमूवेबल अप्लायंसेस होती हैं जो बहुत ही आसान होता है बच्चे के लिए लगाना और उसको करना तो आप जितना जल्दी

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतर स्पोर्ट्स लेजेंड के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे एक वीमेन एथलीट और कतरी वीमेन गोल्फर रीम अल शरसानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रीम अल शरसानी कतर की कामयाब खातीन एथलीट्स में से एक हैं और इंटरनेशनल शूटिंग मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी करती हैं। रीम को बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौक था और उनका ताल्लुक एक स्पोर्ट्स पसंद खानदान से है। वक्त के साथ साथ वो कतरी विमेन स्पोर्ट्स की एक अहम हिस्सा बन गई हैं और गल्फ रीजन के नौजवान विमेन एथलीट्स के लिए एक मिसाल बनी हुई हैं। और अक्सर में देखा गया है कि GCC एशियन लेवल या अरब लेवल में रीम को शूटिंग कॉम्पिटिशन में मेडल जीतते हुए हमने देखा है और ख़ास तौर पर स्कीट शूटिंग में माहिर रीम ने कतर की तरफ से कई इलाकाई और बैन अक्वामी चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है, जिनमें ISSF वर्ल्ड कप इवेंट्स, एशियन कॉम्पिटिशंस और मिलिट्री चैम्पियनशिप्स शामिल हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से शोहरत हासिल की और मुसलसल अपनी वर्ल्ड रैंकिंग बेहतर बनाई। इसी साल दोहा के लुसेल शूटिंग रेंज में आमिर ग्रैंड प्री शॉटगन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीते। रीम की मेहनत, डिसिप्लिन और अज़्म ने कई नौजवान कतरी लड़कियों को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की तरफ मुतवज्जा किया है। और रीम सिर्फ एक एथलीट नहीं दोस्तों, बल्कि एम्बिशन, कॉन्फिडेंस और कौमी फ़ख्र की अलामत है। उनकी कामयाबी कतर को बैन अक्वामी शूटिंग में मजबूत मकाम दिलाने में मदद कर रही है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम नहायत अहम सेहत के मौजू पर बात करेंगे और वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक ऐसी इस्तलाह है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन बहुत से अफराद इसका सही मतलब नहीं जानते। ब्लड प्रेशर दरअसल इस दबाव को कहते हैं जो खून दिल की धड़कन के दौरान शरीरों की दीवारों पर डालता है। जब आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो दो नंबर सामने आते हैं, मसलन 120/80। पहला नंबर जैसे कि 120 है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो उस वक्त का दबाव जाहिर करता है जब दिल ब्लड को पंप कर रहा होता है। और दूसरा नंबर है जैसे कि 120/80 है, तो जो 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, जो इस वक्त का दबाव जाहिर करता है जब दिल की धड़कनों के दरमियान कुछ पॉज होता है या आराम कर रहा होता है। आमतौर पर 120/80 मिलीमीटर मरकरी को सेहतमंद ब्लड प्रेशर के तौर पर समझा जाता है। अगरचे उम्र और सेहत की हालत के मुताबिक इसमें कुछ फर्क हो सकता है। जब ब्लड प्रेशर मुसलसल मामूल से ज्यादा रहे तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है और उसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। उसे खामोश कातिल या साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर अफराद को कोई वाज़े जो अलामत है वो महसूस नहीं होती, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता दिल, दिमाग, गुर्दों और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि हम खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल जब

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
4: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। विद RJ सर्वर।
3: रोड ट्रैफिक सेफ्टी सिस्टम को बेहतर बनाने और उसकी मजीद तरक्की के मुसलसल एफर्ट्स के सिलसिले में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक वफद का इस्तकबाल किया। वफद की सरबराही असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी बराए लैंड ट्रांसपोर्ट अफेयर्स अब्दुल्ला सैफ अहमद अल सुलैती कर रहे थे, जिन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक ब्रिगेडियर जाबर अली अल कुबैसी ने रिसीव किया। इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी के डायरेक्टर कर्नल सालिम सुल्तान अल नुएमी भी मौजूद थे, जबकि जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स भी इस मुलाकात में शरीक थे। दौरे के दौरान शरीका ने मुश्तरका कोशिशों का जायजा लिया जो रोड ट्रैफिक सेफ्टी के मेयार को बुलंद करने के लिए की जा रही हैं, और इन्हें मजीद बेहतर और तरक्की देने के तरीकों पर भी गौर वखौज किया गया। ये तमाम एफर्ट्स ट्रैफिक सेफ्टी सिस्टम की हिमायत और सड़कों पर सिक्योरिटी और सेफ्टी के आला तरीन स्टैंडर्ड्स हासिल करने के लिए की जा रही हैं। दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है।

छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। अबू समरा बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए प्री रजिस्ट्रेशन सर्विस जो मैतराज ऐप पर दस्तयाब है। कतरी व्हीकल ओनर्स शहरी और मुकीम अफराद को ये सहूलत फराहम करती हैं कि वो क्रॉसिंग के जरिए सफर के तमाम प्रोसीजर्स को आसानी और सहूलत के साथ मुकम्मल कर सकें। ये सर्विस ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को GCC मुल्कों से और मुख्तलिफ विजिटर्स को एड करने की सहूलत भी देती है, चाहे व्हीकल ओनर खुद सफर करने वालों में शामिल ना हो। ये सर्विस यूजर्स की खिदमात करने के लिए पेश की गई है। मैतराज ऐप के ट्रैवल विंडो के जरिए अबू समरा बॉर्डर के लिए प्री रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुहैया है, जो ट्रैवल के प्रोसीजर्स को आसान बनाती है और इंतजार के वक्त को कम करने में मदद देती है। मैतराज ऐप में ट्रैवल विंडो को ओपन किया जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन टाइप का इंतखाब करिए, एंट्री या एग्जिट, और उसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन फॉर अबू समरा को सिलेक्ट किया जाए। इसके बाद जरूरी मालूमात मुकम्मल की जाती हैं, जिनमें मुतवक्का सफर या पहुंचने की तारीख और व्हीकल का इंतखाब शामिल होता है। दोस्तों, सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमरास ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बाइस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्सानी ने परमानेंट यूनिफाइड कमेटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स कैंडिडेट्स का दौरा किया, जहां उन्होंने मुल्क की खिदमत के लिए क्वालिफाइड नेशनल टैलेंट्स की तैयारियों में कमेटी के अहम किरदार को सराहा। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करना एक्सीडेंट्स को रोकता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने में मदद देता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए कुछ जरूरी इकदाम जानिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल सेफली करें, मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करें, ज्यादा स्पीड पर ना चलें, रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहने और स्कूटर की लाइट ऑन रखें, हमेशा हेलमेट ठीक तरह से पहने। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या ई स्कूटर्स राइडर्स को अपनी और दूसरे रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए। ई स्कूटर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स बाइसाइकिल के बराबर हैं, जैसे राइडर्स का हेलमेट पहनना और फ्रंट और बैक पर लाइट्स लगाना। ई स्कूटर राइडर्स को रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहननी चाहिए जो दूसरे रोड यूजर्स को दिखाई दें। उन्हें रोड पर डेजिग्नेटेड जगह इस्तेमाल करनी चाहिए, जो या तो साइड वॉक्स पर या रोड क्रॉसिंग के साइट्स पर हैं, जो पेडेस्ट्रियंस के लिए डेजिग्नेटेड होती हैं, बिल्कुल साइकिलिस्ट की तरह। याद रखिए, ई स्कूटर से होने वाले वायोलेशंस बाईसाइकिल एक्सीडेंट्स की तरह ही होते हैं। अगर ई स्कूटर राइडर्स एक्सीडेंट का सबब बनता है तो वो दूसरी पार्टी को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार होगा। दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत

बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। वजारत दाखला की जानिब से 3 मार्च 2026 को जारी करदा प्रेस रिलीज की बुनियाद पर जो तमाम किस्म के एंट्री वीजा जो एक्सपायर हो चुके थे या एक्सपायर होने के करीब थे उनकी मुद्दत में तौसी के हवाले से जो ऐलान था, मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि तौसी का फैसला अब खत्म किया जा रहा है जो इतवार 7 जून 2026 से मुअस्सर होगा। वजारत दाखला ने वाजे किया है कि मस्कूरा तारीख के तमाम किस्म के एंट्री वीजा के लिए मंजूर शुदा प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के मुताबिक दोबारा अमल शुरू कर दिया जाएगा जिनमें हर किस्म के वीजा की मुकर्रर मुद्दत और फीस भी शामिल है। मिनिस्ट्री ने तमाम मुकीम अफराद, विजिटर्स और मुतालिका पार्टीज से दरख्वास्त की है कि अपनी लीगल स्टेटस की तस्दीक करें, वीजा की तजदीद को यकीनी बनाएं, मुकर्रर मुद्दत के अंदर फीस अदा करें या फिर अपने वीजा की वैलिडिटी खत्म होने पर मुल्क से रवानगी इख्तियार करें ताकि मुल्क में कयाम की इजाजत मुद्दत से ज्यादा ठहरने की सूरत में किसी भी कानूनी खिलाफवर्जी या कार्रवाई से बचा जा सके। दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं।

0: अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना निहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से फलांगे या पार न कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक तरीके से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के पास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी की हालत में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सकें। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। वजारत दाखला का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

दोस्तों, कैंपिंग सीजन के लिए कैरेवन्स और ट्रेलर्स को टो करने के औकात समाप्त कीजिए। संडे से वेडनेसडे तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, थर्सडे से सैटरडे तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। बराए करम ऑर्बिटल हाईवे और उसकी एग्जिट का इस्तेमाल करें, राइट लेन में चलें और ओवरटेकिंग से बचें। और ये भी याद रखें कि खराब मौसम के दौरान टोइंग मना है। कैरेवन्स के लिए कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करना लाजिम है, इनमें शामिल है फायर एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रेयर लाइटिंग का काम करना, रेयर रिफ्लेक्टर्स यानी रेड और साइड रिफ्लेक्टर्स यानी येलो की क्वालिटी, मैक्सिमम विड्थ 2.60 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड, मैक्सिमम लेंथ सिंगल एक्सल के लिए 3.5 मीटर्स है और डबल एक्सल के लिए मैक्सिमम लेंथ 4.20 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड। इसके अलावा कुछ और इकदामात का ख्याल करें, जैसे टोइंग करते वक्त अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। कैरेवन्स या ट्रेलर

0: के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें। अगर कैरेवंस का लोड ज्यादा है तो उसे ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है। टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टायर्स की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें। टोइंग व्हीकल और कैरेवंस की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही काम करना बेहद जरूरी है, ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो, जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं, तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से टूट गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
3: द रिक्वेस्ट शो
2: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ,
3: फजील के साथ
2: संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
3: दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।
5: दिल से देसी
6: स्कैम अलर्ट।
2: दोस्तों, आजकल फ्रॉडस्टर्स मॉडर्न जनरेटिव AI टूल्स का यूज करके रियल टाइम वॉइस और वीडियो क्लोनिंग कर रहे हैं। इस फ्रॉड में आपको एक ऐसी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आती है जो बिल्कुल आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर्स, दोस्त या कंपनी के बॉस जैसी दिखती है और सुनाई देती है। डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लाइव कॉल पर चेहरे के एक्सप्रेशंस और आवाज की टोन को पहचानना नामुमकिन हो जाता है। फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स सामने वाले का रूप जो है वो लेकर अचानक आपसे पैसे मांगते हैं, किसी बड़ी मुसीबत या मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाते हुए, या फिर अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बोलते हैं। आपको लगता है कि आप अपने सच में किसी खास से बात कर रहे हैं, इसलिए आप बिना सोचे समझे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा कॉल काटने के बाद उस इंसान के पुराने नंबर पर दोबारा कॉल करके वेरीफाई करना चाहिए। कभी भी लाइव डिजिटल मीडिया पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, क्योंकि 2026 में डिजिटल आइडेंटिटी को हैक और कॉपी करना बहुत आसान हो गया है। साइबर क्रिमिनल्स सोशल मीडिया से पब्लिक वीडियोस और ऑडियो सैंपल्स उठाकर कुछ ही सेकंड्स में ऐसी रियलिस्टिक क्लोन्स तैयार कर लेते हैं जो आम भाषा में बिल्कुल नेचुरल लगती है। ये स्कैम्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर्स में बड़े एग्जीक्यूटिव्स के नाम पर फेक इमरजेंसी वायर ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं, जिससे बड़ी कंपनीज को मिनटों में करोड़ों का नुकसान होता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल FM 107 पे आपको मिलेगा इसका सॉल्यूशन भी। दोस्तों, इस हाईटेक AI फ्रॉड से खुद को सुरक्षित करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन हैबिट्स में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक सीक्रेट फैमिली पासफ्रेज यानी एक खुफिया कोडवर्ड तय करें। जब भी कोई इमरजेंसी कॉल आए और सामने वाला पैसा मांगे तो उनसे वो सीक्रेट वर्ड पूछें। अगर सामने रियल AI क्लोन है तो वो ये कोड नहीं बता पाएगा। दूसरी बार ऐसी इमरजेंसी कॉल्स आने पर तुरंत पैनिक ना हो और जल्दबाजी में कोई ट्रांजैक्शन ना करें। कॉल को कट करें और उस पर्सन के ऑफिशियल या ट्रस्टेड नंबर पर खुद कॉल लगाकर सच्चाई का पता लगाएं। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को जितना हो सके प्राइवेट रखें, ताकि स्कैमर्स आपकी वॉइस या वीडियो क्लिप्स डाउनलोड ना कर सके। इसके अलावा अपने डिवाइसेस में एडवांस्ड एंटी डीपफेक और AI वॉइस डिटेक्शन टूल्स का इस्तेमाल करें, जो फेक इनकमिंग स्ट्रीम्स को पहचान सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कोई धोखा होता है तो फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
6: स्कैम अलर्ट।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।
5: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मैं हूं आपकी होस्ट सफा, लेकर आई हूं एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। यहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी डेली लाइफ को इजीयर बनाती हैं और हमारे एनवायरमेंट पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की। चलिए एक सिनेरियो लेते हैं। सुबह का टाइम है, ऑफिस या स्कूल का रश है, आप कार में निकलते हैं अपनी। आप ये सोचते हैं कि भाई आज जल्दी पहुंचा जाए, लेकिन जैसे ही रोड पर आते हैं, ओ भाई ट्रैफिक जैम स्टार्ट। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, हॉर्न्स भी थोड़े बहुत बज रहे होते हैं और टाइम आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा होता है। और आप ये सोचते हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना शायद ज्यादा बेहतर होता, इससे अच्छा था मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेता। अब थोड़ा रियलिटी को समझने की कोशिश करें। जब हर इंसान अपनी पर्सनल कार यूज करता है तो रोड पर ट्रैफिक लोड बढ़ जाता है। इससे सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं होता बल्कि फ्यूल कंजम्पशन और एयर पोल्यूशन भी तो इंक्रीज हो रही होती है। हर एक्स्ट्रा कार का मतलब है एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न और एक्स्ट्रा इमिशंस एनवायरनमेंट में रिलीज होना। देखें अब इको स्विच क्या है इस केस में मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सा आइडिया साथियों, जब पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, बस मेट्रो शटल सर्विस या कारपूलिंग। भाई ये सब अल्टरनेटिव हैं जो एफिशिएंट और इको फ्रेंडली ट्रेवल प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं भाई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से क्या फायदा होता है आखिर। देखिए सबसे पहला फायदा है पोल्यूशन रिड्यूस होना, जितनी कम कार्स होंगी उतना ही कार्बन इमिशन कम होगा। दूसरा फायदा है ट्रैफिक जैम जो है ना वो कम हो जाता है। एक बस में तकरीबन 30 से 40 लोग तो ट्रैवल कर सकते हैं ना, जो 30 से 40 कार्स रिप्लेस कर सकते हैं। तीसरा फायदा है कॉस्ट सेविंग। देखो भाई फ्यूल पार्किंग और मेंटेनेंस के खर्चे सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं बाबू इससे। और चौथा फायदा है स्ट्रेस रिडक्शन। देखिए ड्राइविंग इन हैवी ट्रैफिक बहुत स्ट्रेसफुल होता है भाई, हम सबका मूड खराब होता है सुबह सुबह, होता है कि नहीं होता? शाम को और सुबह को जब ड्राइव कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे मूड खराब होता है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप रिलैक्स करके जा सकते हैं, अपना टाइम आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। सोचिए आप रोज सेम रूटीन पर ऑफिस जाते हैं, हर दिन पार्किंग ढूंढते हैं, फ्यूल चेक करना और ट्रैफिक में स्टक होने की एक रूटीन बन जाती है हमारी। अब एक दिन आप डिसाइड करते हैं कि भाई आज मैं मेट्रो से जाऊंगा, क्या कहते हो? तो भाई आपको सीट मिल जाती है, आप मोबाइल यूज कर लेते हैं बैठे बैठे, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम देते हैं खामोशी में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप स्ट्रेस फ्री पहुंचते हैं, मूड खराब नहीं हुआ होता आपका। देखिए दोहा जैसे सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काफी डेवलप्ड है, मेट्रो लाइंस मॉडर्न है, बसेस एक्सेसिबल है और कनेक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इको फ्रेंडली ट्रेवल अडॉप्ट करना कंपेरेटिवली ईजी है। अच्छा अगर प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करूं तो पहली टिप है रूट प्लान करें। अगर आपको पता हो कि मेट्रो या बस का स्टेशन आपके रूट के पास है तो उसे यूज करें, पीक आवर्स अवॉइड करें, एप्स यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एप्स या मैप्स से आप इजीली टाइमिंग और रूट्स चेक कर सकते हैं। कार पूलिंग अडॉप्ट करें, लाइट ट्रैवल करें, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते वक्त अननेसेसरी लगेज अवॉइड करें ताकि ट्रैवल आपका कंफर्टेबल हो। अच्छा भाई अगर इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखा जाए ना इस चीज का, एक एवरेज बस या मेट्रो ट्रिप डजन

0: of cars को road से हटा देता है. इसका मतलब ये है कि कम traffic, कम fuel consumption और cleaner air. और ये सब सिर्फ इस वजह से होता है कि लोग एक shared transport option use करते हैं. अच्छा, कभी कभी हम सिर्फ comfort की वजह से ना कार को choose कर लेते हैं. Even जब destination बहुत close होती है, फिर भी complain करते हैं कि भाई नहीं नहीं भाई, मुझे जो है ना अपनी गाड़ी में जाना है. लेकिन अगर हम शॉर्ट ट्रिप्स के लिए वॉक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज करें तो सिचुएशन नेचुरली इम्प्रूव हो सकती है. देखिए, अगर सिर्फ नंबर्स के बारे में बात की जा रहा है, तो अगर सिर्फ 10% लोग भी अपनी डेली कम्यूट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना स्टार्ट कर दें, तो सिटीज में ट्रैफिक और इमिशंस दोनों नोटिसेबली रिड्यूस हो सकता है. ये आपको सुनने में एक छोटा शिफ्ट लग रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. जहां पॉसिबल हो, कार की जगह ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें. तो भाई, आज का हमारा चैलेंज ये है कि आज या इस वीक में कम से कम, या वीकेंड पे ऐसा हो सकता है कि एक ट्रिप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करें, चाहे वो मेट्रो हो या बस हो. और हाँ, एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करें, कंफर्ट, कॉस्ट और कन्वीनियंस का डिफरेंस खुद महसूस करेंगे आप. तो साथियों, मोबिलिटी का मतलब सिर्फ जल्दी पहुंचना नहीं होता, बल्कि स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल तरीके से पहुंचना भी होता है. जब हम अपनी ट्रैवल चॉइसेस को चेंज करते हैं ना, तो हम सिर्फ अपना टाइम नहीं बचा रहे होते, बल्कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं. तो मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे FM 107 कतर. मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट, एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ. तब तक के लिए सुनते रहे FM 107, दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन, ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे? हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। वेलकम है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आपके लिए लेकर आई हूँ कतर ग्रीन बीट। और आज पहला एपिसोड है तो बातें होंगी अ जर्नी थ्रू द बीट। हाँ जी, वेल आज का मौसम मैं कहूंगी थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा नर्म है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हवा हम ले रहे हैं, मतलब ये जो सांस हम ले रहे हैं, ये कितनी साफ है? या फिर वो पानी जो हम पीते हैं वो आया कहाँ से? वेल, आज का ये जो पूरा एपिसोड है ये ग्रीन जर्नी के नाम हम करने वाले हैं और हम कोई ब्रेक्स नहीं लेने वाले हैं। यस, बस आप और मैं होंगे और हमारी ये प्यारी प्यारी बातें होने वाली है। और आज हम निकलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहाँ टेक्नोलॉजी और नेचर गले मिलते हैं। तो जनाब, आज का जो एपिसोड है ना, थोड़ा खास है। कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे मुड़कर देखना बहुत जरूरी होता है, टू सी हाउ फार वी हैव कम, है कि नहीं? अगर आप हमारे साथ इस ग्रीन बीट की शुरुआत से जुड़े हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये ग्रीन बीट, कतर ग्रीन बीट सीजन 2 आपके लिए हम लेकर आए हैं और आज हमारी बातें बड़ी स्पेशल होने वाली हैं। तो आपको पता होगा कि हमने कतर के कोने कोने की खाक छानी है, यानी कि हमारे पहले सीजन में हमने बहुत सारी बातें की थी कतर से रिलेटेड और हमने देखा है कि कैसे ये मिट्टी, ये रेत और ये समुंदर मिलकर एक सस्टेनेबल फ्यूचर की कहानी लिख रहे हैं। तो चलिए अब आगे हम बात करेंगे उन्हीं यादों की, एक फ्लैशबैक पे चलते हैं और फिर अपनी नई नवेली बातों को आगे लेके जाएंगे। मैं सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी लाइफ टाइम की

0: पानी यानी कि वाटर. याद है हमने उम अल होल की बात की थी. आई कॉल इट द लिक्विड गोल्ड फैक्ट्री. हाँ जी, कतर जैसे देश में जहाँ बारिश कम होती है वहाँ समुन्दर का पानी ही हमारी लाइफ लाइन है. लेकिन वहाँ का कमाल टेक्नोलॉजी में है. यस, रिवर्स ऑस्मोसिस. सुनने में बड़ा साइंटिफिक लगता है पर सिंपल अल्फाज में कहें तो ये समुन्दर के नमकीन पानी को पीने लायक बनाता है, वो भी आधी एनर्जी खर्च करके. इमेजिन 50% एनर्जी सेविंग. जब मैं वहाँ गई थी इट फील्स लाइक अ मिरेकल इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट. हम अक्सर टैप खोलते हैं और पानी आ जाता है पर उसके पीछे की ये जो मेहनत है ये साइंस वाकई तारीफ के काबिल है. पानी से निकल के अब जरा शहर की गलियों में चलते हैं. मुशरब डाउनटाउन दोहा, मेरा पर्सनल फेवरेट. ये दुनिया का पहला फुल्ली सस्टेनेबल डाउनटाउन है. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप मुशरब की गलियों में चलते हैं तो बाहर की गर्मी थोड़ी कम लगती है. इसका राज पता है क्या है? वहाँ की इमारतें यानी कि बिल्डिंग्स जो कि एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हैं कि वो खुद शैडो या यूं कहे साया बनाती हैं. वहाँ की बिल्डिंग्स हवा से बातें करती हैं. आर्किटेक्चर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि नेचुरल ब्रीज कैप्चर हो सके. है ना, इट्स जीनियस. पर पुरानी कतरी कल्चर और मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी का ऐसा मेल मैं कहीं और नहीं देख पाई हूँ अभी तक. इट्स लाइक द पास्ट इज प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर. और फिर हमने बातें की है कचरे की. हाँ, कचरा. लोग कहते हैं कचरा फेंक दो मगर मैं सईद में हमने देखा है कि कचरा ट्रेजर बन सकता है. डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर में हमारा कचरा एनर्जी में बदल दिया जाता है. नथिंग गोज टू वेस्ट. लेकिन अगर हम नेचर की बात करें तो अल थकीरा के मैनग्रोव्स को कैसे भूल सकते हैं. वो हमारे कोस्ट के खामोश मुहाफिज या यूं कहें साइलेंट गार्जियंस हैं. इन दरख्तों की जड़ें समुन्द्र के थपेड़ों से हमारी जमीन को बचाती है और कार्बन को सोख लेती है. अगली बार जब आप वहाँ कायाकिंग करने जाएं तो उन्हें एक थैंक यू जरूर कीजिएगा. हाँ, क्योंकि वो हमारे इकोसिस्टम के लंग्स हैं. अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या आपने डेजर्ट में उगी स्ट्रॉबेरीज खाई हैं? हाँ, सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना, पर मैंने तो खाई है. क्योंकि हमारे कतर में कुछ ऐसे हाइड्रोफोनिक फार्म्स हैं जिन्होंने इसे मुमकिन कर दिया है. बिना मिट्टी के कम पानी में डेजर्ट की तपिश में मीठी स्ट्रॉबेरीज को उगाना और फिर इन स्ट्रॉबेरीज का स्वाद उफ बड़ा कमाल लगता है बॉस. वेल, अब सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो स्टेडियम 974 का जिक्र सबसे अव्वल आता है. जो कि 974 शिपिंग कंटेनर से बना वो स्टेडियम है जो कतर का इंटरनेशनल डायलिंग कोड बन गया है. उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक जायंट स्टेडियम भी रिसाइकल हो सकता है. इट्स नॉट जस्ट अ स्टेडियम, इट्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड. तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे पानी, वेस्ट, फूड और एनर्जी ये सब मिलकर हमारी दुनिया बना रहे हैं. ये सब चीजें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. लेकिन आज हम बात करेंगे उस चीज की जो दिखती नहीं है मगर जिसके बिना एक पल भी गुजारना नामुमकिन है. एक ऐसी चीज जो हमारे चारों तरफ है पर इनविजिबल है. So keep your ears tuned, क्योंकि अब हम एक्सप्लोर करेंगे कतर की इनविजिबल ब्रेथ को. हम बात करेंगे उस हवा की जिसमें हम सांस लेते हैं. तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ. कतर ग्रीन बीट जारी है. FM 107 सुन रहे हैं आप.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. आप सुन रहे हैं FM 107. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और कतर ग्रीन बीट पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. वेल, स्पॉटलाइट पर आने से पहले वक्त है द ग्रीन वायर का, कुछ ताजा ग्रीन अपडेट्स. हाँ, तो क्या आपने सड़कों पर वो ग्रीन लाइसेंस प्लेट्स नोटिस किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने इसे कंफर्म किया है कि अब EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस रिकॉर्ड रफ्तार से लगाए जा रहे हैं. अगले साल के आखिर तक 600 से भी ज्यादा यूनिट्स लग जाएंगे. तो अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं ना तो ग्रीन प्लेट ही सही है बॉस. हाँ, और एक

0: बड़ा सैल्यूट हमारे स्कूल के बच्चों को। अलखोर और दोहा के स्कूल्स में इको स्कूल्स प्रोग्राम के तहत सोलर पावर्ड क्लासरूम बन रहे हैं। हमारे बच्चे 2030 का इंतजार नहीं कर रहे, वो उसे आज अपनी साइंस लैब्स में बना रहे हैं। क्या बात है, इन्हें शाबाशी तो देनी ही पड़ेगी। चलिए जनाब, अब आते हैं आज के सबसे अहम हिस्से पर। एक काम कीजिए, मेरे साथ एक गहरी सांस लीजिए। सुकून। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सांस जो आपने अभी ली वो कितनी साफ है, कितनी क्लियर है? हमें कैसे पता कि ये साफ है? कतर की गर्मी और यहाँ की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में, जहाँ हर जगह कंस्ट्रक्शन और तरक्की हो रही है, वहाँ हवा की क्वालिटी मेंटेन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन कतर ने इसे एक मास्टरपीस बना दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने हमारे लिए तैयार किए हैं द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क। यस, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पूरे मुल्क में, चाहे वो हमदपोर्ट की भागम भाग हो या अलवकरा की पुरसुकून गलियां हो, 40 से ज्यादा हाईटेक मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए गए हैं। अब आप सोचेंगे, अमिता, ये स्टेशंस दिखते कैसे हैं? वेल, ये कोई मामूली थर्मोमीटर नहीं है जो सिर्फ टेम्परेचर बताए। ये सोफेस्टिकेटेड सेंसर्स हैं जो उन दुश्मनों को ट्रैक करते हैं जो हमारी आंखों से ओझल, या यू कहें इनविजिबल है। दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सबसे खतरनाक PM2.5। ये PM2.5 क्या है? हाँ, ये वो माइक्रोस्कोपिक धूल के कण है और धुआं है जो इतने छोटे होते हैं कि हमारे फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिक्र ना कीजिए, हमारे ये 40 मुहाफिज हर पल इन पर नजर रखते हैं ताकि हम चैन की सांस ले सकें। लेकिन टेक्नोलॉजी यहाँ खत्म नहीं होती। इस नेटवर्क का सबसे बड़ा कमाल है इसका AI ब्रेन, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सिस्टम सिर्फ ये नहीं बताता कि अभी हवा कैसी है, इसका काम है प्रिडिक्शन करना। ये AI वेदर पैटर्न्स, हवा की रफ्तार और ट्रैफिक के डेटा को एनालाइज करता है। ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगर कल हवा का रुख बदला तो किस एरिया में डस्ट लेवल्स बढ़ सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को रियल टाइम डिसीजंस लेने में मदद करती है। दिस इज द डायरेक्ट पिलर ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी बिल्डिंगें ऊंची होंगी, लेकिन हमारी सेहत की कीमत पर नहीं। इट्स अबाउट स्मार्ट सिटीज दैट डोंट जस्ट लुक गुड बट एक्चुअली फील गुड। हाँ जी, वहाँ रहने के लिए। चलिए अब ये बताइए, क्या आपको पता है कि कतर के जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के स्टैंडर्ड्स के बराबर अलाइन किए गए हैं? हम दुनिया के उन गिने चुने कंट्रीज में से हैं, जहां इतना डेंस और AI इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। और एक और सीक्रेट बताऊं, अगले बार जब आप दोहा कॉर्निश पर वॉक कर रहे हो ना, तो ध्यान से देखना, वहाँ आपको एक छोटा सा सफेद रंग का फेंस्ड इन यूनिट दिखेगा जिसमें कुछ एंटीनास लगे होंगे। उसे देखकर मुस्कुराना जरूरी है क्योंकि वही है आपके लंग्स का बॉडीगार्ड। वो खामोशी से वहाँ खड़ा है ताकि आपकी जॉगिंग और आपकी शाम की जो सैर है वो सेफ रहे। तो बाहर की हवा का पहरा तो सख्त है, ये तो हमने जान लिया। AI और मिनिस्ट्री ने मिलकर इसे सिक्योर कर दिया है। लेकिन अब हम अपना ज्यादा वक्त कहाँ बिताते हैं? ऑफिस में, घर में या मॉल्स में? तो अब ये सवाल उठता है कि हमारे इंडोर एयर का क्या? हाँ, क्या हम अपने घर के अंदर भी साफ सांस ले रहे हैं? बोला, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे देसी और विदेशी नुस्खे, हाँ, जो नासा के फेवरेट प्लान से लेकर वेंटिलेशन तक, जो आपके घर को एक मिनी फॉरेस्ट बना देंगे। हाँ, और साथ में जो आपके घर की हवा है उसे भी ताजा तरीन कर देंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर।

0: inspiring stories from Qatar.
1: Qatar Green Beat. वेलकम वंस अगेन. आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट अपनी अमिता के साथ FM 107 पर. और हमने अभी बात की कि कैसे हमारी मिनिस्ट्री और AI मिलकर कतर की बाहर की हवा का ख्याल रख रहे हैं. लेकिन दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई है. बताऊं, हम कतर में अपना तकरीबन 90% वक्त घरों के अंदर ऑफिस में या मॉल्स में बिताते हैं, खासकर जब गर्मी अपने पीक पर होती है. तो सवाल ये है कि आपके अलसत के अपार्टमेंट में या वेस्ट पे लगून के विला की हवा कैसी है? क्या वो साफ है? हमें लगता है कि खिड़कियां बंद हैं तो हम सेफ हैं, मगर कभी कभी इंडोर एयर आउटडोर एयर से ज्यादा स्टेल या बासी हो सकती है. तो चलिए, आज मैं आपको ना कुछ बड़ी मजेदार टिप्स बताती हूँ जो कि आपके घर का एयर क्वालिटी एक्सपर्ट बन जाएगा. हाँ, और आपके इंडोर हाउसेस को परफेक्ट बनाएगा. वेल, अगर हम नासा के सुपरस्टार की बात करें तो इन्हें स्नेक प्लांट और पीस लिली कहते हैं. यस, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर की हवा को स्क्रब कर सकते हैं, वो भी एक कप कॉफी की कीमत में. हाँ, सुनने में थोड़ा सा फिल्मी लगता है, मगर ये सच है. नासा, यस, आपने बिल्कुल सही सुना, वही स्पेस एजेंसी, उन्होंने एक पूरी स्टडी की थी इस पर. उनका टॉप पिक पता है क्या? स्नेक प्लांट. ये पौधा एक सुपरस्टार है. क्यों? क्योंकि अक्सर प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन देते हैं, मगर स्नेक प्लांट रात को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता है. इसका मतलब अगर ये आपके बेडरूम में है तो आप सोते वक्त भी ताजी हवा ले रहे हैं. और सबसे मजे की बात, ये हार्ड टू किल प्लांट है. अगर मेरी तरह आप भी थोड़े से भुलक्कड़ है ना, लाइक कभी कभी पौधों में पानी देना भूल जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ये हफ्तों तक बिना पानी के रह सकता है. इसके साथ आप एक पीस लिली भी ले लीजिए, वो हवा से टॉक्सिन साफ करने में माहिर होते हैं. तो इस वीकेंड मैं कहूंगी कि नर्सरी जरूर जाएं और इन प्लांट्स को अपने घर ले आएं. वेल, पौधों की बात तो हो गई, अब जरा डिजिटल हो जाते हैं. हम हर चीज के लिए ऐप यूज करते हैं, खाना मंगाने के लिए, टैक्सी के लिए, तो हवा के लिए क्यों नहीं. मेक इट अ हैबिट कि सुबह उठते ही या बच्चों को पार्क ले जाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की वेबसाइट या अपने फोन पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर चेक करें. अगर AQI लेवल थोड़ा हाई दिख रहा है या धूल ज्यादा है, तो जॉगिंग के लिए बाहर जाने के बजाय जिम चले जाएं. वक्त पर सही जानकारी होना भी असली हिफाजत है, जिसे कहते हैं कि इल्म की ताकत है. नॉलेज इज पावर. जब आपको पता होगा कि बाहर की सिचुएशन क्या है, तभी तो आप सही फैसला ले पाएंगे. इट्स अ स्मॉल हैबिट, बट ये आपके सर्दी खांसी जुखाम या एलर्जीज को सेव कर सकती है. और अब हम पूरे आखिर में पहुंच चुके हैं कतर ग्रीन बीट शो के. तो एक बड़ा पुराना लेकिन बड़ा बेनिफिशियल नुस्खा वेंटिलेशन का मैं आपको बताती हूँ. तो जब मौसम थोड़ा ठीक ठाक लगे और स्पेशली शाम का टाइम, जब आपको लगे कि गर्मी कम है, तो इसका फायदा उठाइए. रोज सुबह और शाम कोशिश करें कि 15-15 मिनट के लिए अपने घरों की खिड़कियां खोल दीजिए, जिससे घर की जो बासी हवा है वो फ्लश आउट हो जाए और ताजी हवा हमारे घर के अंदर आए. हमारे घरों में जो नए फर्नीचर्स की महक होती है या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की स्मेल होती है, इसे साइंटिफिक टर्म में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. ये हवा में जमा हो जाते हैं, खिड़की खोलने से ये बाहर निकल जाते हैं और ताजी हवा घर को रीसेट कर देती है. इट्स लाइक गिविंग आवर हाउस अ फ्रेश स्टार्ट एवरी सिंगल डे. हाँ जी, तो जनाब, हमने बाहर की हवा को मॉनिटर कर लिया और घर के अंदर अपना छोटा सा जो ये पौधों का बगीचा है वो भी बसा लिया. तो देखा आपने, सस्टेनेबिलिटी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस ही चाहिए. वैसे अब हम पहुंच गए हैं अपने शो के आखिर में, यानी कि फाइनल स्टेज पर. तो आप कहीं मत जाइए, क्योंकि हम और आप फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कतर ग्रीन बीट पर. तो आप बताएंगे इस हफ्ते का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, हमसे जरूर शेयर करें 6622107 पर 6622107. और आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं FM 107 पर, और अपनी आरजे अमिता को भी आप सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं. तो मैं कहूंगी, कहीं ना जाए, बस बने

0: रहे हमारे साथ Keep breathing deep and keep the beat. Stay tuned, FM 107, Dil Se Desi.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाजत नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पर ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुए और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं एक कहानी, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट बना। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशन, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिरी खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वाली जिंदगियों को शेप किया। सामईन, आज हम एक ऐसी पहली कहानी का जिक्र करेंगे जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को एक खूबसूरत शक्ल दे रही है, और वो है कतर की पहली यूनिवर्सिटी यानी कतर यूनिवर्सिटी। तो चलिए जरा माजी में चलते हैं, जहां सन 1973 में कतर में हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। उस वक्त लोग सोच रहे थे कि हमारे मुल्क के लिए यूनिवर्सिटी और एडवांस्ड एजुकेशन का क्या फ्यूचर हो सकता है, और तब एक छोटा सा कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश हुआ जहां पहली बार स्टूडेंट को फॉर्मल हायर एजुकेशन का मौका मिला। ये छोटा सा कॉलेज न सिर्फ एक बिल्डिंग थी बल्कि एक नई सोच का सिंबल था, एक नई राह का स्टार्टिंग पॉइंट। दोस्तों, जरा सोचिए उस वक्त स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी लिमिटेड हुआ करती होंगी, और आज हमारी सोसाइटी का हर कॉर्नर नॉलेज और इनोवेशन से भरा हुआ है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सिर्फ प्लानिंग और विजन की वजह से हुआ है। फिर आगे 1977 तक वही छोटा सा कॉलेज बढ़कर एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बन गया, कतर यूनिवर्सिटी। शुरुआत सिर्फ 150 स्टूडेंट्स के साथ हुई थी, लेकिन ये छोटी सी कम्युनिटी आगे चलकर पूरे मुल्क के लीडर्स, स्कॉलर्स और प्रोफेशनल्स तैयार करने का फाउंडेशन बन गई।

और सोचिए एक स्टूडेंट जो 1973 में इस कॉलेज का हिस्सा था आज के स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जांपल बन गया एक रोल मॉडल ये स्टूडेंट्स सिर्फ अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़े बल्कि कतर के लिए भी एक नई सोच और नई पॉसिबिलिटीज लाए दोस्तों आज के स्टूडेंट्स की दुनिया और भी ज्यादा एडवांस्ड हो गई है टेक्नोलॉजी रिसर्च इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ में हैं लेकिन ये सब शुरुआत यहीं से हुई इस छोटे से कॉलेज से यही तो सबब बनता है एजुकेशन का छोटी सी शुरुआत से पूरे मुल्क का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो जाता है दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और सोशल मीडिया पर कनेक्टेड रहिए क्योंकि आज का शो आपके फीडबैक और एक्सपीरियंसेस के साथ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा अगर आपने खुद कभी यूनिवर्सिटी लाइफ का एक्सपीरियंस लिया हो या आप सोच रहे हो कि कैसे हायर एजुकेशन आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है तो हमें जरूर बताइए हम साथ मिलकर इस जर्नी को और लाइवली और इंगेजिंग बना सकते हैं दोस्तों एक फन थॉट सोचिए अगर आपको चांस मिले कि आप 1973 में इस कॉलेज का स्टूडेंट होते तो आप क्या करते क्या लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करते या अपनी पहली लेक्चर की एक्साइटमेंट फील करते हमारे व्हाट्सएप पे जरूर बताएं तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट

0: दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ। समय कतर में एजुकेशन सिर्फ डिग्री का रास्ता नहीं बल्कि एक मुल्क के मुस्तकबिल का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। कतर में यही सोच ली गई और इसलिए कतर यूनिवर्सिटी का रोल बहुत अहम है। रिसर्च, ग्लोबल पार्टनरशिप और इनोवेशन ड्राइविंग पॉलिसीज के जरिए ये यूनिवर्सिटी एक डाइवर्सिफाइड, रेजिलिएंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सोसाइटी तैयार कर रही है। और ये सफर शुरू हुआ 1973 में जब कतर का पहला कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ, कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यही वो वक्त था जब इमीन ने एक डिग्री के जरिए एजुकेशन को मुल्क की तरक्की का बुनियादी पिलर बनाया। उस वक्त सिर्फ 57 मेल और 93 फीमेल स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, मतलब टोटल 150 स्टूडेंट्स। दोस्तों जरा सोचिए, इतने छोटे से नंबर से एक बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट हुआ था। क्या आपको लगता है कि आज की स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन के सामने उनका स्ट्रगल इजी था? शायद नहीं। फिर 1977 में कतर यूनिवर्सिटी ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुई, महज 4 कॉलेज के साथ। कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, कॉलेज ऑफ शरिया लॉ एंड इस्लामिक स्टडीज और कॉलेज ऑफ साइंस। और धीरे धीरे नए कॉलेजेस शामिल होना शुरू हुए, जैसे कि 1980 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 1985 में कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, 2006 में फार्मेसी प्रोग्राम लॉन्च, जो 2007 में इंडिपेंडेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी बन गया, 2015 में कॉलेज ऑफ मेडिसिन, 2016 में कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, 2019 में कॉलेज ऑफ डेंटल मेडिसिन, 2022 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग और 2024 में कॉलेज ऑफ स्पोर्ट साइंसेज। सोचिए जनाब, एक छोटी सी शुरुआत से आज पूरी यूनिवर्सिटी सिस्टम बन गई जो हर फील्ड कवर करती है। तो जानिए कि यही तो होता है विजन का सबब। दोस्तों अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। कतर यूनिवर्सिटी में 23,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। यही वो नई नस्ल है जो कल के लीडर्स, रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स और इंस्पायर्ड आर्टिशंस बनेंगे। और ये स्टूडेंट्स सिर्फ क्लासरूम्स में ही नहीं, उन्हें मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज, नेशनल कॉम्पिटिशंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, एक्सक्लूसिव स्टडी अब्रॉड और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स और रिसर्च पोजीशंस। बात करें कैंपस लाइफ की तो वाह, आप इमेजिन कीजिए, अवार्ड विनिंग कैंपस, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और इजी नेविगेशन के साथ, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स और एकेडमिक जर्नल्स, स्टूडेंट एक्टिविटीज बिल्डिंग्स जहां नेटवर्किंग और सोशलाइजेशन का मौका मिलता है, स्टूडेंट लर्निंग सपोर्ट सेंटर और काउंसलिंग सेंटर जो एकेडमिक और पर्सनल गाइडेंस देते हैं, कैफेटेरियाज और डाइनिंग ऑप्शंस हर टेस्ट और हेल्थ रिक्वायरमेंट के लिए, और यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर इवेंट और ट्रिप्स जो स्टूडेंट्स की लाइफ को और एक्साइटिंग बनाते हैं। और फैकल्टी ये सिर्फ टीचर्स नहीं, मेंटर्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और कतर के टॉप नेशनल माइंड्स स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं और उन्हें रीजनल और ग्लोबल चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों जब आप कतर यूनिवर्सिटी की कहानी सुनते हैं, समझ आता है कि ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, ये एक विजन है, एक मिशन है और एक पूरे मुल्क के लिए फाउंडेशन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और यहाँ मैं करूँगा आपसे एक छोटा सा सवाल। अगर आपको कतर यूनिवर्सिटी में एक दिन गुजारने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? लाइब्रेरी एक्सप्लोर करेंगे या कैफेटेरिया की कॉफी ट्राई करेंगे? अपने जवाब आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 666-22-107। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि एक यूनिवर्सिटी की असली स्ट्रेंथ सिर्फ उसके कैंपस और स्टूडेंट से नहीं जुड़ी होती, बल्कि उसकी रिकॉग्निशन ग्लोबल और रीजनल स्टैंडिंग से भी होती है। क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन की असली वैल्यू तभी समझ आती है जब दुनिया उसको कैसे परसीव करती है और कितने स्टैंडर्ड्स पर ये खरी उतरती है। तो ये जानिए कि ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो कतर यूनिवर्सिटी ने अपनी एक सॉलिड पहचान बनाई है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कतर यूनिवर्सिटी 201 से 250 तक की रेंज में रैंक करती है और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में ये ग्लोबली 112वीं पोजीशन पर है। अब दोस्तों, थोड़ा रीजन की तरफ नजर डालते हैं क्योंकि यहाँ भी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अरब वर्ल्ड में ये यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है QS अरब रीजन रैंकिंग 2024 के मुताबिक। एशिया में ये 28वीं नंबर की रैंक पर है द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक और ग्लोबली QS 2024 के मुताबिक 173rd पोजीशन पर है। समय जरा सोचिए, ये नंबर सिर्फ नंबर्स ही नहीं, ये दिखाते हैं कि कतर यूनिवर्सिटी हर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर रही है और रीजनल और ग्लोबल लेवल पर स्टूडेंट्स के लिए एक रिलायबल और प्रेस्टीजियस ऑप्शन है। और दोस्तों, क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक्रेडिटेशन। सिर्फ रैंकिंग्स ही नहीं, एक्रेडिटेशन भी गारंटी होती है कि यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरी है। दोस्तों, कतर यूनिवर्सिटी को वास्ट सीनियर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कमीशन

WFCUC से एक्रेडिटेशन मिली हुई है। पहली एक्रेडिटेशन फरवरी 2023 में ग्रांट हुई थी और ये 6 साल के लिए वैलिड है। सोचिए, एक ग्लोबल एक्रेडिटेशन मिलना मतलब दुनिया के टॉप स्टैंडर्ड्स पर इवैल्यूएशन होना और पास करना। ये सिर्फ एक बैज नहीं है दोस्तों, ये एक रिकॉग्निशन है कि कतर यूनिवर्सिटी हर स्टैंडर्ड पर खरी उतरती है और स्टूडेंट्स को टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, ये रैंकिंग्स और एक्रेडिटेशन फ्यूचर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हैं। आप जैसे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स सोच रहे हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, ये नंबर्स और एक्रेडिटेशन आपको ये एश्योरेंस देते हैं कि कतर यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम की नहीं बल्कि क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी में भी वर्ल्ड क्लास है। तो दोस्तों, जब हम कतर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री, स्टूडेंट लाइफ और अब इसकी ग्लोबल और रीजनल स्टैंडिंग्स देखते हैं, समझ आता है कि ये सिर्फ एजुकेशन का एक सेंटर नहीं बल्कि एक विजन और मिशन है जो कतर के फ्यूचर के लिए फाउंडेशन का काम कर रहा है। और इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये एक इंस्पिरेशन है क्योंकि उनका कैंपस सिर्फ क्लासरूम्स का ही नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जो उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रिपेयर करती है। दोस्तों, कतर यूनिवर्सिटी सिर्फ क्लासरूम्स और डिग्री का ही नाम नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ आइडियाज पैदा होते हैं, फ्यूचर शेप होते हैं और हमारी नेशनल आइडेंटिटी मजबूत होती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, एक एलुमनस या आप कोई ऐसे शख्स हैं जो एजुकेशन से इंस्पायर होते हैं, कतर यूनिवर्सिटी हमारे मुल्क की कहानी में एक खास जगह रखती है। और दोस्तों, हर ग्रेजुएटिंग क्लास के साथ ये यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट ही नहीं करती बल्कि कतर के नॉलेज, इनोवेशन और प्रोग्रेस के सफर में एक अहम कंट्रीब्यूशन भी देती है। हर नया आइडिया, हर रिसर्च प्रोजेक्ट, हर स्टूडेंट जो अपनी फील्ड में आगे बढ़ता है, ये सब कतर के फ्यूचर को शेप कर रहा है। तो दोस्तों, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662107 पे, जहां आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। साथ ही आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप सबसे पहले क्या सुनना पसंद करेंगे, कतर में वो पहली बार होने वाली कहानी या किसी और चीज का भी अगर आप इंतजार कर रहे हैं जो आप यहाँ फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मुझे आप जरूर बताइए, मैं इंतजार करूंगा आपके मैसेजेस का। और दोस्तों, याद रखिए, आपकी हर सोच और आइडिया भी एक दिन शायद रियलिटी बन सकता है क्योंकि कतर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और एलुमनाई भी वही कर रहे हैं, ख्वाबों को शेप दे रहे हैं और मुल्क के फ्यूचर को आगे ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कतर यूनिवर्सिटी की इंस्पायरिंग कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। याद रखिए, एजुकेशन की कहानी असल में एक मुल्क की कहानी है और कतर यूनिवर्सिटी की कहानी इस मुल्क के फ्यूचर को शेप कर रही है। अगला शो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जिसमें हम कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, जहां आपको मिलेंगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज। इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देश।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, डिसेबिलिटी वाली पार्किंग स्पेसेस का इस्तेमाल ट्रैफिक का वायोलेशन और बेअदबी है। ट्रैफिक के कानून और गाइडलाइंस को फॉलो करना अमन और दूसरों के हुकूक की हिफाजत करता है। याद रखिए, डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड पार्किंग स्पेसेस का गलत इस्तेमाल ट्रैफिक का ऑफेंस है और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन स्पेसेस का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से मुतासिर हैं, उन्हें आसानी से अपने जरूरी कामों को अंजाम देने का मौका मिले। ये पार्किंग स्पेसेस उन्हें कन्वीनियंस और सहूलत देने के लिए रिजर्व्ड होती हैं और उनका गलत इस्तेमाल उनके लिए अननेसेसरी मुश्किलात का सबब बन सकता है। ये जरूरी है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतरीन और अमन पसंद ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें ताकि सबको बराबर के हुकूक मिल सकें और किसी को भी अपने हक से महरूम ना होना पड़े। FM 107 इस बात की ताकीद करता है कि मुआशरे में हर एक का बराबरी से ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
2: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ। फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें।
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: FM 107 पर हर गाना हिट,
7: हर गाना हिट,
6: हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम नहायत अहम सेहत के मौजू पर बात करेंगे और वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक ऐसी इस्तलाह है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन बहुत से अफराद उसका सही मतलब नहीं जानते। ब्लड प्रेशर दरअसल इस दबाव को कहते हैं जो खून दिल की धड़कन के दौरान शरीरों की दीवारों पर डालता है। जब आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो दो नंबर सामने आते हैं, मसलन 120/80। पहला नंबर जैसे कि 120 है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो उस वक्त का दबाव जाहिर करता है जब दिल ब्लड को पंप कर रहा होता है। और दूसरा नंबर है जैसे कि 120/80 है, तो जो 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, जो इस वक्त का दबाव जाहिर करता है जब दिल की धड़कनों के दरमियान कुछ पॉज होता है या आराम कर रहा होता है। आमतौर पर 120/80 मिलीमीटर मरकरी को सेहतमंद ब्लड प्रेशर के तौर पर समझा जाता है। अगरचे उम्र और सेहत की हालत के मुताबिक इसमें कुछ फर्क हो सकता है। जब ब्लड प्रेशर मुसलसल मामूल से ज्यादा रहे तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है और उसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। उसे खामोश कातिल या साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर अफराद को कोई वाजे जो अलामत है वो महसूस नहीं होती, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता दिल, दिमाग, गुर्दों और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि हम खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल जब करते हैं तब ऐसा हो सकता है। जिस्मानी सरगर्मी की कमी, यानी आप एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, इसके अलावा जो जहनी दबाव है या अनबैलेंस्ड जो डाइट है वो भी इसकी एक वजह हो सकती है, और ख़ानदानी भी हो सकता है यानी हेरिडिटी भी होता है। इस तरह डायबिटीज़ और जुगड़ों की बाज़ बीमारियां हैं वो भी इसकी एक वजह हो सकती हैं। तो इसमें अक्सर सर चकराता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, नज़र कुछ धुंधला जाती है और गैर मामूली थकावट भी होती है। खुशांग बात यह है कि चंद आसान आदतें अपनाकर ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मल या कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले अपनी ग़िज़ा में नमक कम कीजिए, ताज़ा सब्जियों, फल, दालें और सेहतमंद ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कीजिए। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने या किसी भी मुनासिब एक्सरसाइज को जो कि आप पसंद करते हैं अपना मामूल बना लीजिए। ज़हनी दबाव को कम करने के लिए मुनासिब नींद, इबादत और ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और इसके अलावा जो मुस्बत सरगर्मियां हैं वो इख्तियार कीजिए। सबसे अहम बात यह है कि वक्तन फवक्तन अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाइए, ख़ास तौर पर अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है या ख़ानदान में हाई ब्लड प्रेशर के जो अफराद हैं वो मौजूद हैं। ब्लड प्रेशर की बाकायदा निगरानी और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी दिल के मसाइल

0: और फालत जैसे संगीन मसाइल से बचाने में मददगार साबित होते हैं। अपनी सेहत को तरजीह दीजिए क्योंकि सेहतमंद जिंदगी ही खुशहाल जिंदगी है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिना जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन।

0: हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है. Stories of Prophets. Stories of Prophets. जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं. आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें.
1: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आरजे माविश. आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया प्रोग्राम. मैं आपको लिए चलूंगी एक ऐसे सफर पे जो हमें तारीख के और राग से लेकर रूहानी गहराइयों तक ले जाएगा. आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नया शो स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स, यानी अंबिया कराम की कहानियां. ये प्रोग्राम अंबिया कराम की जिंदगियों की कहानियां सुनाएगा जिनसे हम सबक सीख सकते हैं जो हमारी जिंदगियों को बेहतर बना सकता है. इस प्रोग्राम का तसव्वुर बहुत सादा मगर गहरा है. हम हर एपिसोड में एक नबी की जिंदगी, उनकी जद्दोजहद, कामयाबियों और अल्लाह की तरफ से दिए गए सबक पर बात करेंगे. ये कहानियाँ ना सिर्फ इस्लामी तारीख का हिस्सा हैं, बल्कि इनमें रूहानी और अखलाकी सबक पोशीदा हैं, जो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारी रहनुमाई कर सकती हैं. हमारी कोशिश है कि हमारा ये शो तमाम लिसनर्स की दिलचस्पी के लिए हो, वो भी जो इस्लामी तारीख, रूहानी बातों और अखलाकी सबक में दिलचस्पी रखते हैं. और ये शो हर उम्र के अफराद के लिए मौजू साबित हो, बच्चों से लेके बड़ों तक हर कोई इससे फायदा उठा सके. और हमारी थीम यही है कि हर एपिसोड में एक नबी की जिंदगी का जायजा लिया जाएगा, उनकी जद्दोजहद, अल्लाह पर ईमान, मुश्किलात में सब्र और अल्लाह की इताअत को उजागर किया जाएगा. और ये कहानियाँ आज के जदीद चैलेंजेस से जोड़ी जाएंगी ताकि सुनने वाले ये जो लाजवाल इकदार हैं उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकें. आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है और आज हम बात करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, वो पहले इंसान और पहले नबी जिनकी कहानी से इंसानी तारीख, इंसानी कहानी शुरू होती है. तो रहे हमारे साथ क्योंकि आज हम जानेंगे कि अल्लाह ने इंसान को कैसे तख्लीक किया, जन्नत में कैसे रिहाइश दी और फिर जमीन पर भेजा. ये कहानी हमें तौबा, रहम और जिम्मेदारी का सबक देगी.
0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107.
1: अब आइए बात करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी के एक जायजे पर. हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की सबसे अजीम तख्लीकात में से एक हैं. वो पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया और उन्हें जमीन पर खलीफा बनाया. उनका किस्सा कुरान मजीद में बयान किया गया है, खास तौर पे सूरह अल बकरा, सूरह अल एराफ और दीगर सूरतों में. ये किस्सा हमें बताता है कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है और अल्लाह की इताअत की अहमियत क्या है. अब आइए जरूरी वाकयात को तरतीब से देखते हैं. सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पस मंजर. अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला है. फरिश्ते हैरान हुए और पूछा, क्या ऐसा खलीफा जो जमीन पर फसाद करेगा? लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मुझे जो मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम. फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया, उन्हें शक्ल दी और अपनी रूह फूंक कर जिंदा किया. अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए और फरिश्तों से पूछा, क्या तुम जानते हो? लेकिन वो ना बता सके. अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए और फिर फरिश्तों से पूछा तो वो ना बता सके, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए. इससे अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदाए ताज़ीमी करें. सब ने किया सिवाय इब्लीस के, जो गुरूर में आकर इनकार कर बैठा और अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया. अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रिहाइश दी जहां वो सब कुछ खा पी सके.

0: सकते थे सिवाय एक दरख्त के। शैतान ने उन्हें बरगलाया कि उस दरख्त से खाएं तो अमर हो जाएंगे। उन्होंने खाया और उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो पछताए। उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने कबूल की, मगर उन्हें जमीन पर भेज दिया। जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी बने, अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत सिखाई। ये किस्सा हमें बताता है कि इंसान कमजोर है मगर अल्लाह का रहम बहुत वसी है। सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये आयत हमें बताती है कि इंसान की तखलीक का मकसद जमीन पर अल्लाह की नुमाइंदगी करना है। फरिश्तों ने पूछा कि क्या ऐसा खलीफा जो खून रेजी करेगा, मगर अल्लाह ने फरमाया कि मुझे इल्म है जो तुम्हें नहीं। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से तखलीक किया, जैसा कि कुरान में है, हमने इंसान को मट्टी के जौहर से पैदा किया। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए, फरिश्तों से पूछा तो वो ना बता सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सब नाम बताए। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे आसमानों और जमीनों के गैब मालूम है? और फिर सजदे का हुक्म दिया। इब्लीस ने इनकार किया, अल्लाह ने लानत की और उसे निकाल बाहर किया। हजरत हव्वा की तकलीक, जन्नत में दाखला, ममनुआ तरफ, शैतान का फरेब। फिर शैतान ने उन दोनों को बहकाया ताकि वो फल खा लें। उन्होंने खाया, पछताए, तौबा की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, अगर तूने हमें ना बख्शा तो हम खसारा पाने वालों में से होंगे। अब आइए गहराई में जाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी में। हम एक एक करके देखेंगे तमाम पहलुओं को।
1: आज उस गुफ्तगु की शुरुआत है, आज उस गुफ्तगु की शुरुआत है, जिसको सुनकर

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: सबसे पहले जायजा लेते हैं तखलीक के मामले का। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहि सलाम को मिट्टी से तखलीक किया, उन्हें शक्ल दी और अपनी रूह फूंक कर जिंदा किया। कुरान में है, और जब मैंने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। ये तखलीक हमें बताती है कि इंसान अल्लाह की सबसे आला मखलूक है, जो मिट्टी से बना मगर रूह इलाही से नवाजा गया। तसव्वुर कीजिए, अल्लाह ने मिट्टी को गूंदा, शक्ल दी और फिर रूह फूंकी। यह अमल हमें इंसानी अजमत की याद दिलाता है। अल्लाह ने फरमाया, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। ये तखलीक ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी भी है, जो इंसान को दीगर मखलूकात से मुमताज करती है। हम आज की साइंस से मुवाजना करें तो ये तखलीक का मौजजा है, जहां अल्लाह ने मिट्टी के अनासर से इंसान बनाया, जो आज की जेनेटिक्स और बायोलॉजी से मुताबकत रखता है मगर इलाही ताकत से। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहि सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए और उन्हें जमीन पर खलीफा बनाया। फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया, जो एहतराम का इजहार था। ये शर्फ हमें बताता है कि इंसान को इल्म दिया गया है, जो फरिश्तों से भी बढ़तर है। अल्लाह ने फरमाया, और हमने बनी आदम को इज्जत दी। ये इज्जत जिम्मेदारी भी लाती है कि इंसान जमीन पर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चले। आज की दुनिया में ये हमें याद दिलाता है कि इल्म की ताकत इस्तेमाल करके हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। हजरत आदम अलैहि सलाम और हजरत हव्वा अलैहि सलाम को जन्नत में रखा गया, जहां सब कुछ हलाल था सिवाय एक दरख्त के। कुरान में है, ऐ आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ पियो, मगर उस दरख्त के पास ना जाना। जन्नत की जिंदगी बगैर किसी तकलीफ के थी, मगर ये एक इम्तिहान भी था। शैतान ने उन्हें वरगलाया कि ये दरख्त तुम्हें अमर कर देगा। उन्होंने खाया, जो कि एक नाफरमानी थी। शैतान ने कहा, क्या तेरे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या अमर ना हो जाओ? ये फरेब इंसानी कमजोरी को जाहिर करता है। वो फौरन पछताए और तौबा की, अल्लाह ने कबूल की, मगर उस जगह भेज दिया जहां से उनका असल इम्तिहान शुरू होना था, यानी जमीन पर। ये तौबा का सबक है कि अल्लाह गफूर रहीम है। हजरत आदम अलैहि सलाम पहले नबी बने, औलाद को अल्लाह की इबादत सिखाई। उनकी उम्र 1000 साल बताई जाती है रिवायात में। वो इंसानियत के बाप हैं, उनकी कहानी तौबा, रहम और जिम्मेदारी की है।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: इस किस्से से हमने क्या सीखा? तो आए अपने सेगमेंट वर्ड्स ऑफ विजडम की तरफ, जहां हम देखेंगे अखलाकी इकदार, रूहानी पैगामात और आज की जिंदगी की मुताबिकत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी अल्लाह के हुक्म की अहमियत बताती है। एक नाफरमानी से जन्नत से निकाले गए, जो हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी के कुछ नतायज होते हैं। आज की जिंदगी में यह नमाज रोजे की पाबंदी को याद दिलाता है। उनकी खालिस तौबा और पछतावा हमें बताता है कि गलती के बाद आजी से माफी मांगना जरूरी है। खलीफा के तौर पर इंसान को जमीन की हिफाजत और अमाल की जवाबदेही देनी है। अगर हम रूहानी पैगाम की बात करें तो अल्लाह की तौबा कबूल करने से उम्मीद मिलती है कि अल्लाह का रहम बहुत ही वसी है। इंसान अल्लाह को जानने और इबादत करने के लिए बना है। शैतान का असर हमें बताता है कि शैतान हमें बहकाएगा, लेकिन हमने अपने ईमान में मजबूत तर होना है ताकि उसके फरेब से बचा जा सके। आज की जिंदगी में अगर हम मुताबिकत देखें तो गलतियों की जिम्मेदारी लेकर तौबा करें, जो जाती तरक्की तक आपको ले जाएगा। आज की परेशानियों में तौबा रूहानी तजदीद लाएगी, माहौलियात की हिफाजत और अखलाकी क्यादत की तरकीब मिलती है इससे हमें। इंसानी कमजोरी आलमगीर है, मगर तौबा और ईमान से इलाही मकसद से जुड़ा जा सकता है। तो लिसनर्स, आज हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से सीखा कि अल्लाह की इताअत, तौबा और जिम्मेदारी कैसे हमारी जिंदगी को बामकसद बनाती है। हम गलतियां करते हैं, मगर अल्लाह का रहम हमेशा मौजूद है। इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं, तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। डोंट मिस इट।
4: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बाइस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ एफएम 107 हमेशा आपके साथ है।
5: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत

0: हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन एफएम 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है। आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मैं हूं आपकी होस्ट सफा, लेकर आई हूं एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। यहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी डेली लाइफ को इजीयर बनाती हैं और हमारे एनवायरमेंट पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं। तो भाई आज हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की। चलिए एक सिनेरियो लेते हैं। सुबह का टाइम है, ऑफिस या स्कूल का रश है, आप कार में निकलते हैं अपनी। आप ये सोचते हैं कि भाई आज जल्दी पहुंचा जाए, लेकिन जैसे ही रोड पर आते हैं, ओ भाई ट्रैफिक जैम स्टार्ट। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, हॉर्न्स भी थोड़े बहुत बज रहे होते हैं और टाइम आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा होता है। और आप ये सोचते हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना शायद ज्यादा बेहतर होता, इससे अच्छा था मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेता। आप थोड़ा रियलिटी को समझने की कोशिश करें। जब हर इंसान अपनी पर्सनल कार यूज करता है तो रोड पर ट्रैफिक लोड बढ़ जाता है। इससे सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं होता बल्कि फ्यूल कंजम्पशन और एयर पोल्यूशन भी तो इंक्रीज हो रही होती है। हर एक्स्ट्रा कार का मतलब है एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न और एक्स्ट्रा इमिशंस एनवायरनमेंट में रिलीज होना। देखें अब इको स्विच क्या है इस केस में मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सा आइडिया साथियों,

0: जब पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, बस, मेट्रो, शटल सर्विस या कारपूलिंग। भाई ये सब अल्टरनेटिव हैं जो एफिशिएंट और इको फ्रेंडली ट्रेवल प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं भाई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से क्या फायदा होता है आखिर। देखिए, सबसे पहला फायदा है पोल्यूशन रिड्यूस होना, जितनी कम कार्स होंगी उतना ही कार्बन इमिशन कम होगा। दूसरा फायदा है ट्रैफिक जैम जो है ना वो कम हो जाता है। एक बस में तकरीबन 30 से 40 लोग तो ट्रैवल कर सकते हैं ना, तो 30 से 40 कार्स रिप्लेस कर सकते हैं। तीसरा फायदा है कॉस्ट सेविंग। देखो भाई, फ्यूल, पार्किंग और मेंटेनेंस के खर्चे सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं बाबू इससे। और चौथा फायदा है स्ट्रेस रिडक्शन। देखिए, ड्राइविंग इन हैवी ट्रैफिक बहुत स्ट्रेसफुल होता है भाई, हम सबका मूड खराब होता है सुबह सुबह, होता है कि नहीं होता? शाम को और सुबह को जब ड्राइव कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे मूड खराब होता है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप रिलैक्स करके जा सकते हैं, अपना टाइम आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। सोचिए, आप रोज सेम रूटीन पर ऑफिस जाते हैं, हर दिन पार्किंग ढूंढते हैं, फ्यूल चेक करना और ट्रैफिक में स्टक होने की एक रूटीन बन जाती है हमारी। अब एक दिन आप डिसाइड करते हैं कि भाई आज मैं मेट्रो से जाऊंगा, क्या कहते हो? तो भाई आपको सीट मिल जाती है, आप मोबाइल यूज कर लेते हैं बैठे बैठे, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम देते हैं खामोशी में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप स्ट्रेस फ्री पहुंचते हैं, मूड खराब नहीं हुआ होता आपका। लेकिन दोहा जैसी सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काफी डेवलप्ड है, मेट्रो लाइंस मॉडर्न है, बसेस एक्सेसिबल है और कनेक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इको फ्रेंडली ट्रेवल अडॉप्ट करना कंपेरेटिवली ईजी है। अच्छा, अगर प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करूं तो पहली टिप है रूट प्लान करें। अगर आपको पता हो कि मेट्रो या बस का स्टेशन आपके रूट के पास है तो उसे यूज करें, पीक आवर्स अवॉइड करें, एप्स यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एप्स या मैप्स से आप इजीली टाइमिंग और रूट्स चेक कर सकते हैं। कारपूलिंग अडॉप्ट करें, लाइट ट्रैवल करें, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते वक्त अननेसेसरी लगेज अवॉइड करें ताकि ट्रैवल आपका कंफर्टेबल हो। अच्छा भाई, अगर इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखा जाए ना इस चीज का, एक एवरेज बस या मेट्रो ट्रिप डजंस ऑफ कार्स को रोड से हटा देता है। इसका मतलब ये है कि कम ट्रैफिक, कम फ्यूल कंजम्पशन और क्लीनर एयर। और ये सब सिर्फ इस वजह से होता है कि लोग एक शेयर्ड ट्रांसपोर्ट ऑप्शन यूज करते हैं। अच्छा, कभी कभी हम सिर्फ कंफर्ट की वजह से ना कार को चूज कर लेते हैं, इवन जब डेस्टिनेशन बहुत क्लोज होती है, फिर भी कंप्लेन करते हैं कि भाई नहीं नहीं भाई, मुझे जो है ना अपनी गाड़ी में जाना है। लेकिन अगर हम शॉर्ट ट्रिप्स के लिए वॉक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज करें तो सिचुएशन नेचुरली इम्प्रूव हो सकती है। देखिए, अगर सिर्फ नंबर्स के बारे में बात की जा रहा है तो अगर सिर्फ 10% लोग भी अपनी डेली कम्यूट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना स्टार्ट कर दें तो सिटीज में ट्रैफिक और इमिशंस दोनों नोटिसेबली रिड्यूस हो सकता है। ये आपको सुनने में एक छोटा शिफ्ट लग रहा है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जहां पॉसिबल हो कार की जगह ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। तो भाई आज का हमारा चैलेंज ये है कि आज या इस वीक में कम अज कम, या वीकेंड पे ऐसा हो सकता है कि एक ट्रिप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करें, चाहे वो मेट्रो हो या बस हो। और हाँ, एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करें, कंफर्ट, कॉस्ट और कन्वीनियंस का डिफरेंस खुद महसूस करेंगे आप। तो साथियों, मोबिलिटी का मतलब सिर्फ जल्दी पहुंचना नहीं होता बल्कि स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल तरीके से पहुंचना भी होता है। जब हम अपनी ट्रैवल चॉइसेस को चेंज करते हैं ना तो हम सिर्फ अपना टाइम नहीं बचा रहे होते बल्कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट, एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे अल्फाज की अहमियत पर। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमेशा नरमी और मोहब्बत से बात करें। अच्छे अल्फाज सिर्फ बोलने का तरीका नहीं बल्कि एक आदत है। जब हम किसी से प्यार और इज्जत के साथ बात करते हैं तो ना सिर्फ वो खुश होता है बल्कि अल्लाह भी हमसे राजी होता है।

0: कभी एक छोटा सा अच्छा सा जुमला किसी के दिल का बोझ हल्का कर सकता है और कभी एक सख्त लफ्ज किसी का दिल हमेशा के लिए तोड़ देता है। इसलिए जरूरी है कि बोलने से पहले सोचा जाए जो हम कहने जा रहे हैं क्या वो किसी को खुशी देगा या तकलीफ। आज का छोटा सा अमल ये है कि पूरे दिन कोशिश करें कि सिर्फ पॉजिटिव और नरम अल्फाज यूज करें, घर में भी और बाहर भी। याद रखें, अच्छे अल्फाज दिलों के दरवाजे खोलते हैं। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ RJ मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: नूर على نوري يهدي الله لنوره من يشاء
4: रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
5: इंसानों के मसले मसाइल और रोजमर्रा के मामलात पर रोशनी के लिए सुनते रहिए नूर इस्लाम
6: हर जुमा शाम 4 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
7: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
8: Anytime, anywhere.
9: Yes, anytime, anywhere.
8: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
10: FM 107.
8: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी.
2: One step to 2030.
3: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
2: One Step to 2030.
3: देखिए, वन स्टेप टू 2030 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कतर की एक प्लानिंग है, ऑयल के बाद के दौर की तैयारी. कतर का नेशनल विजन 2030 पहले से ये मान चुका है कि ऑयल और गैस हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे, इसीलिए विजन का स्ट्रॉन्ग फोकस पोस्ट ऑयल फ्यूचर पर है. प्रिया दोस्तों, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है और ये डाइवर्सिफिकेशन एजुकेशन, रिसर्च, टूरिज्म, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी पर हैवी इन्वेस्टमेंट से हो रहा है. मिसाल के तौर पे आपको पता ही है कि यहाँ कतर पे एजुकेशन सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ऑयल के अलावा इनकम रिसोर्सेज क्रिएट करता है. यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की तरफ इनक्रेज किया जा रहा है ताकि फ्यूचर जॉब्स सिर्फ एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड ना हो. ये प्लानिंग कतर को फ्यूचर इकोनॉमिक शॉक से बचाती है. यानी वन स्टेप टू 2030 का असल मतलब है आज की स्मार्ट प्लानिंग कतर को पोस्ट ऑयल एरा में भी स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव रखे. कतर नेशनल विजन 2030 इस बात पर यकीन रखता है कि जब तक सोसाइटी खुश, सेहतमंद और सिक्योर ना हो, डेवलपमेंट अधूरा है. जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल वेलबींग से जोड़ना विजन का एक अहम हिस्सा है. एग्जाम्पल के तौर पर जॉब्स क्रिएट करने के साथ हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्कर सेफ्टी लॉज और एजुकेशन एक्सेस को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है. फ्री एजुकेशन और एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज इसी सोच का नतीजा है. दोस्तों, जब लोग हेल्दी, एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट होते हैं तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है. इससे इकोनॉमी खुद ब खुद बेहतर होती है. विजन ये इंश्योर करता है कि पैसा सिर्फ चंद लोगों तक लिमिटेड ना रहे बल्कि सोसाइटी

0: की हर लेयर तक पहुंचे, यानी वन स्टेप टू 2030 हमें ये समझाता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमी वही है जहां इंसान और मार्केट दोनों साथ ग्रो करें। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: एक लुकमा पेट तक पहुंचाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कितना इंतजाम किया है कि अगर वो गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तुर्श है तो जुबान बता देती है, और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस एक चीज का इख्तियार हमें दिया गया है कि हराम है या हलाल, ये फैसला हमें करना है।
1: पैगाम ऑन FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है। सुनिएगा जरूर इकोनॉमिक लेंस, इकोनॉमिक लेंस हर सैटरडे 1:30 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। सिर्फ
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों वेलकम एंड खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं हमारा वीकली प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है कि भाई क्या पैसा आपको मदद कर सकता है, क्या पैसा आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं।
0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा जो मौजू है, जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा टॉपिक है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी जिंदगियों के बीचों बीच ही या इर्द गिर्द ही घूमता है। क्या पैसा असल में खुशी ला सकता है? देखिए सभी लोग पैसा जमा करने की दौड़ भाग में लगे हुए हैं। हर किसी का यकीन है कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसा ही उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है, लेकिन असल बात यह है कि पैसा बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन पैसे की भी एक लिमिटेशन होती है। पैसा आपको कंफर्ट देता है, आपको ऑप्शंस देता है, आपकी बेसिक नीड्स पूरी करता है, आपको एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड दे सकता है। अगर आपको अपने रोजमर्रा की रोजी रोटी की फिक्र ना हो, अपने बच्चों की फीस की टेंशन ना हो, या फिर आपकी हेल्थ का मसला पैसे की वजह से ना हो, तो आप जरूर रिलैक्स फील कर सकते हैं। ये पैसे का पॉजिटिव रोल है, स्ट्रेस कम करता है और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। लेकिन दोस्तों इसकी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाद पैसा असल खुशी नहीं खरीद सकता। चलिए जरा सोचिए, एक आदमी ने सारी जिंदगी पैसा कमाने में गुजार दी, सुबह से शाम तक मेहनत की, ओवर टाइम किया, फैमिली को हार्डली वक्त दिया, एंड रिजल्ट उसके पास पैसा तो आ गया लेकिन रिश्ते टूट गए और फैमिली कनेक्शन खत्म हो गया। आज वो अमीर है लेकिन अकेला है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी जिंदगी खुशी वाली है? पैसा तो सिर्फ एक टूल है, आपका घर बनाने में काम आता है, लेकिन घर को घर बनाने के लिए मोहब्बत और रिश्ते चाहिए होते हैं। और अगर पैसे को सिर्फ अपने लिए खर्च करेंगे तो एक वक्त आएगा चीजें बोरिंग लगने लगेंगी। लेकिन उस पैसे से जब आप दूसरों की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं, किसी जरूरतमंद की मुसीबत दूर करते हैं, तो जो सुकून मिलता है उसकी कोई प्राइस टैग नहीं है। साइंस भी यही कहती है कि खुशी ज्यादा पैसे खर्च करने से नहीं आती, बल्कि मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से आती है। दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, एक लग्जरी कार लेना या फिर अपने बच्चों के साथ एक साल की पुरसुकून वेकेशन स्पेंड करना, आप क्या चूज करेंगे? ज्यादातर लोग पहले कार के बारे में सोचते हैं, लेकिन वक्त के साथ रियलाइज करते हैं कि वेकेशन की यादें और फैमिली के साथ गुजारे हुए लम्हे ज्यादा गहरी खुशी देते हैं। इसलिए पैसा

इम्पोर्टेंट है लेकिन पैसा खुशी की गारंटी नहीं देता। असल खुशी रिश्तों में, सेहत में, एक्सपीरियंसेस में और अपने अंदर के सुकून में है। हाँ, पैसे का इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है ताकि वो आपकी लाइफ को सपोर्ट करे, डोमिनेट ना करे। और याद रखिए, अगर जिंदगी का असल मकसद आपकी खुशियों के पीछे भागना है तो पैसा उस सफर का सिर्फ एक साथी है, मंजिल नहीं। दोस्तों, एक बात का और जिक्र करता चलूं कि इस हमारे नए प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से, FM 107। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर अ हैप्पी लिविंग।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: समीन, चलिए कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करते हैं जो हम आज के एपिसोड में यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेल्थ और इनकम की। इनकम असल में वो पैसा है जो आपको रेगुलरली मिलता है, जैसे सैलरी, बिजनेस का प्रॉफिट या कोई सर्विस की अर्निंग। लेकिन वेल्थ अलग चीज है। वेल्थ का मतलब है वो असेट्स जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे घर है, जमीन है, सेविंग्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं। सिंपल लफ्जों में यूं कह लीजिए कि इनकम है आपकी जेब में गिरता हुआ पैसा, और वेल्थ है आपके पास जमा की हुई दौलत। तो भाई ये तो फर्क वाजे हो गया कि वेल्थ और इनकम में क्या होता है। अब आते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स पर। सेविंग का मतलब है पैसा साइड पर रख लेना, जैसे कि बैंक अकाउंट में डाल देना ताकि इमरजेंसी या फ्यूचर की सेफ्टी हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे को काम पर लगाना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना वगैरह, ताकि कल को ये पैसा और बढ़ सके। और तीसरा कंसेप्ट है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये असल में ये समझने की कोशिश है कि सोसाइटी में पैसा किस तरह बनता है। भाई क्यों कुछ लोगों के पास 1,000 करोड़ होते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों को रोटी की फिक्र ही रहती है। ये है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल। चलिए दोस्तों जरा बात करते हैं एक बिगनर की जिंदगी की। सोचिए कोई नौकरी शुरू करता है, और फिर कोई वेल एजुकेटेड लड़का जो एक गरीब फैमिली से आया है, उसने जिंदगी में कभी ज्यादा पैसा नहीं देखा और अब करियर शुरू करते ही उसके हाथ में सैलरी आती है। कैश देखकर नेचुरली एक एक्साइटमेंट होता है भाई। लेकिन असल में मसला क्या है कि 99% ऑफ बिगिनर्स के पास पैसा हमेशा कम होता है। ये बात तो ऑब्वियस है, रिसोर्सेज लिमिटेड होती है, लेकिन ख्वाहिशें बहुत बड़ी। उन्हें गाड़ी लेनी होती है, सफर करना होता है, नए कपड़े खरीदने होते हैं, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आजकल के हिसाब से सब कुछ चाहिए होता है, मगर सैलरी इतनी नहीं होती कि सब पूरा कर सके। हर वक्त उनका ख्याल होता है कि सैलरी बढ़ जाए, रेज मिल जाए, बोनस मिल जाए और फिर जिंदगी और बेहतर हो जाए। तो ये हम सब की स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है ना। देखिए इस स्टेज पर पैसा वाकई उनके फेवर में काम करता है, इसीलिए लोग अक्सर शेयर्ड एकोमोडेशन में रहते हैं, खासकर जब हम अपने ममालिक से निकलकर मिडिल ईस्ट वगैरह आते हैं या दूसरे ममालिक में जाते हैं, क्योंकि सैलरी इतनी नहीं होती कि इंडिपेंडेंटली रहा जा सके, अकोमोडेशन को अफोर्ड किया जा सके, ना रेंटेड, और अपने खरीदने की बात शुरुआत के दौर में तो दूर ही रही। हर वक्त एक ख्वाब होता है कि कब मैं शेयर्ड रूम से निकल कर अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस हासिल करूंगा। फिर धीरे धीरे ये सफर चलता है। जो स्टूडियो में रहता है वो 1 BHK का सपना देखता है, जो 1 BHK में है वो 2 BHK में चाहता है कि मैं शिफ्ट हो जाऊं, और फिर मल्टीपल BHK। यही वो एक सीढ़ी है जिंदगी की, जहां हर एडिशनल पैसा उनकी लाइफ में नई वैल्यू और अपग्रेड लेकर आता है। लेकिन यहां पे सवाल ये है कि क्या ये इक्वेशन जिंदगी भर चलती रहेगी? मतलब जितना पैसा आता जाए उतनी ही वैल्यू और उतनी ही खुशी बढ़ती रहेगी? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद पैसा सिर्फ कंफर्ट देता है, असल खुशी और सेटिस्फेक्शन नहीं देता। जनाब अब मैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए दूसरे लोगों की जिंदगी का एक एग्जाम्पल देता हूं। भाई दुनिया में बहुत से रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, और उनमें से काफी खुश भी हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा जब ज्यादा होता है तो आदमी फिक्रमंद ही होता है। अब सवाल यह है कि उनकी खुशी का असल सोर्स क्या है? क्या पैसा ही उनकी खुशी का रूट कॉज है? भाई शुरू में जवाब हाँ ही लग सकता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक पहला लेयर या एक पहली परत है। इसके पीछे बहुत सी और चीजें छुपी होती हैं। पैसा उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम हटा देता है, जैसे भाई गाड़ी चकारी, कपड़े, वेकेशन या बेसिक कंफर्ट की फिक्र, मगर उनकी असली खुशी पैसे के अलावा चीजों से आती है क्योंकि वो इतना लाइफ में बोर हो चुके होते हैं पैसे से और आसानियों से कि फिर आप अमूमन सुनते भी हैं कोई एक्ट्रेस कहीं और निकल गया, कोई घूमता हुआ दिख गया, कोई अपना चेहरा बदल के बाहर पब्लिक में आया है, तो वो सुकून की तलाश में होते हैं। भाई एक और मिसाल के तौर पर बात करें कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट सोचिए, भाई ये भी हो सकता है कि वो कोई ऐसे आइडिया पे काम कर रहा है जो जिंदगी में रेवोल्यूशन ले आए। उसकी खुशी हो सकती है कि उसने हजारों लोगों को नौकरी दी है, या फिर उसकी फैमिली, उसके बच्चे,

या उसको जो रेस्पेक्ट मिलती है एम्प्लॉयज से, सोसाइटी से, इंडस्ट्री या कंट्री से। तो देखा जाए पैसा सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, असली खुशी पैसे के अलावा चीजों से आती है। अगर पैसा ही सिर्फ खुशी का सोर्स होता तो हर अमीर इंसान खुश होता, लेकिन असल में इसके जवाब में मैं कहूंगा ऐसा नहीं है। दोस्तों मैं अपनी बात को और वाजे तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए रिच फैमिलीज में भी बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग डिवोर्स, सेपरेशन या लिटिगेशंस का सामना करते हैं। जब वेल्थ बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसके इफेक्ट बच्चों पर भी पड़ते हैं। आपने अक्सर बेशतर सुना होगा स्पॉइल्ड ब्रैट्स। ये क्या है? बच्चे जो हर चीज पाते हैं या हासिल कर लेते हैं या उनको मुहैया होती है जो भी वो चाहते हैं, इससे उनमें ईगो डेवलप होती है, एक ऑरा बन जाता है और वो अपनी जिंदगी में एक्सीलेंस के लिए ड्राइव लूज कर देते हैं। भाई नॉर्मल ग्रोथ मैकेनिज्म जो आम लोगों के बच्चे और जिंदगी में होता है उनमें ऐसा नहीं होता। ऐसे बच्चे कभी कभी सोसाइटी और फैमिली के लिए बोझ बन जाते हैं। तो यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है, पैसा हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता और हमेशा खुशी नहीं देता। कभी कभी पैसा खुद प्रॉब्लम का रूट कॉज बन जा सकता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल ऑब्वियस है कि जिंदगी के इनिशियल फेज में जब आपके पास पैसा कम होता है तो पैसा आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है। थोड़ा पैसा आता है तो वैल्यू है, लाख, मिलियन, 10 मिलियन सब अपनी लिमिट तक वैल्यू देते हैं। मगर जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक वक्त आता है कि जब आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा आपकी जिंदगी में एक्स्ट्रा खुशी या वैल्यू नहीं ला रहा। एक पॉइंट आता है जब पैसा अपनी असल वैल्यू लूज कर देता है जो आपको जिंदगी से चाहिए होता है। बहुत लोग परेशान होते हैं, अमूमन आपने कहते सुना होगा मुझे वो इन्वेस्टमेंट दिखाइए जो हाई रिटर्न दे, जो अच्छा कैश फ्लो दे। मगर असल में जिंदगी में पैसा और खुशी का इक्वेशन सिर्फ नंबर से नहीं चलता। दोस्तों अक्सर आपने लोगों को पूछते कहते सुना होगा कि भाई मैं ये इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, मैं इतना पैसा क्यों कमाऊं। भाई इसी का सिंपल सा जवाब हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले ये बताइए कि आपका मकसद क्या है। हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक पर्पस होना चाहिए ना। तो जनाब इसके बारे में तो यही कहना बेहतर होगा कि अगर आप सेविंग प्लान शुरू करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन पहले अपना स्पेंडिंग प्लान डिफाइन कीजिए। कभी भी सेविंग प्लान शुरू मत कीजिए जब तक आपको नहीं पता कि आप फ्यूचर में पैसा कैसे स्पेंड करेंगे। अगर आपको स्पेंड करना नहीं आता तो फिर सवाल ये उठता है ये पैसा कमाने का असल मकसद क्या है। हमेशा याद रखिए कि आपका सेविंग प्लान आपके स्पेंडिंग प्लान के साथ मैच होना चाहिए। अगर स्पेंडिंग प्लान नहीं है इसका मतलब है कि आप जरूरत से ज्यादा पैसा एक्युमुलेट कर रहे हैं। और क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा पैसा जमा कर लेते हैं? कुछ लोग पैसा कबर्ड्स में रखते हैं, यूज नहीं करते और ये पैसा वैल्यू लूज कर देता है। भाई जैसा कि इंडिया में डीमोनेटाइजेशन के वक्त हुआ, अगर आप सेविंग प्लान के साथ स्पेंडिंग प्लान को मैच करें तो हर बार आपने जो पैसा सेव किया है आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये यूटिलाइजेशन अलग अलग चीजों के लिए हो सकता है, बड़ा घर लेना, बड़ी गाड़ी, चैरिटी, बच्चों की एजुकेशन, सोसाइटी या अपने चाहने वालों के लिए मदद, किसी दोस्त या जरूरतमंद की मदद। ये सब आपके स्पेंडिंग प्लान का हिस्सा है। और दोस्तों वहीं वो पैसा जो आप लाइफ के एंड पर छोड़कर जाते हैं वो पैसा अक्सर लाइफ में डीमोनेटाइज हो जाता है, मतलब उसकी असली वैल्यू खत्म हो जाती है। बहुत लोग वेल्थ को गलत समझते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ पैसा होना ही वेल्थ है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ पैसा होने से ही आप वेल्दी नहीं कहलाते। भाई अगर पैसा ही आपको वेल्दी नहीं बनाता फिर असली वेल्दी इंसान कौन है और वेल्थ का असल सोर्स क्या है? चलिए इसके ऊपर भी अब थोड़ी सी बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, भाई एक कार है, कार के बहुत से पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहां हम बात को समझाने के लिए सिर्फ दो ही पार्ट्स लेंगे। भाई पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट लेते हैं चैसी। ये कार

आपको स्टेबिलिटी देता है, लेकिन सिर्फ चेसी से कार मूव नहीं कर सकती और चेसी कार की वैल्यू भी नहीं बढ़ा सकता। भाई कार का चलना भी जरूरी है और कार तभी चल सकती है जब उसके चार व्हील्स हों, जो परफेक्टली बैलेंस्ड हों, स्ट्रक्चर्ड हों और चेसी के साइज के लिए सूटेड हों। तभी कार एक प्रॉपर व्हीकल बनकर काम करेगी ना भाई। अब ये एनालॉजी फाइनेंस में कैसे फिट होती है? भाई चेसी जो है वो रिप्रेजेंट करता है मनी को। भाई जब तक आपके पास एडुकेट, सिक्योर, फ्लोइंग और अवेलेबल पैसा नहीं है जो आपको जरूरत पड़ने पर मिले, तब तक आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल लाइफ और बेसिक कंफर्ट नहीं बन सकता। चेसी यानी पैसा आपकी जिंदगी को बेस देता है, फाउंडेशन देता है। मगर चेसी या पैसा अकेला आपकी जिंदगी को वेल्दी नहीं बना सकता। अब चलिए देखते हैं कार के पहले व्हील का एग्जाम्पल, जो यहाँ रिप्रेजेंट करता है हेल्थ। हेल्थ वो व्हील है जो आपकी फाइनेंशियल बेस के साथ मिलकर आपकी लाइफ को चलाने लायक बनाता है। अगर पैसा हो मगर हेल्थ ना हो तो आप लाइफ की रियल कंफर्ट और हैप्पीनेस एंजॉय नहीं कर सकते। चलिए अब जरा सोचिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप अंदर से वीक हैं, एक कैबेज की तरह और कुछ नहीं कर सकते, तो ये पैसा आपके लिए क्या काम आएगा? चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी है जिसको डेंटल प्रोसीजर से गुजरना पड़ा और कुछ दिनों के लिए बहुत दर्द में रहा। उस वक्त चाहे लाइफ में कितनी भी अच्छी चीजें हो रही थी, वो लोगों से मिल रहा था या काम ठीक चल रहा था या वो काम देख रहा था, कुछ भी खुशी जो उसकी लाइफ में आ रही थी, क्या वो उसका सही इस्तेमाल कर पा रहा था या वो चीज उसको सही खुशी दे पा रही थी? भाई वो शख्स सिर्फ यही सोचता रहेगा कि ये दर्द कैसे खत्म हो जाए मेरी जिंदगी में से, तो मैं आगे बढ़ूं और कुछ कर सकूं। इस इंसिडेंट से एक चीज बहुत क्लियर होती है, हेल्थ सबसे पहला व्हील है जो वेल्दी लाइफ में जरूरी है। अगर हेल्थ नहीं है तो बहुत सारा पैसा भी यूजलेस है। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ अपनी हेल्थ में भी इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और हेल्थ में इन्वेस्ट करना मतलब सिर्फ डॉक्टर के पास जाना नहीं, बल्कि डाइट मेंटेन करना, एक्टिव लाइफस्टाइल रखना, पॉजिटिव थॉट्स और हैबिट्स अडॉप्ट करना, जो भी आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखें। ऐसे देखिए कि आपके पास पैसा भी है और हेल्थ भी, क्या ये आपको कंप्लीटली वेल्दी बनाता है? जवाब अभी भी है नो। दोस्तों एक बात का और जिक्र करता चलूं कि इस हमारे नए प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे, बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर अ हैप्पी लिविंग।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: चलिए अब आते हैं दूसरे व्हील पर, और वो है टाइम, वक्त। ये व्हील रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ के सबसे प्रीशियस रिसोर्स जो आपके पास हमेशा लिमिटेड होता है। पैसा और हेल्थ होंगे, लेकिन अगर आप अपना टाइम वाइसली यूज नहीं करेंगे तो वेल्थ का असली मजा नहीं ले सकते। दोस्तों, अब आपके पास पैसा भी है, हेल्थ भी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए तो ये दोनों चीजें भी आपके काम नहीं आएंगी। सोचिए, अगर फैमिली कहती है कि चलो मूवी, शादी में चलो, या कोई आउटगोइंग पे चलते हैं, वेकेशन पे चलते हैं, या कहीं घूम के आते हैं, और आपके पास टाइम ही नहीं है, तब हेल्थ और पैसा भी आपको हेल्प नहीं कर सकता ना भाई। इसलिए पैसा और हेल्थ के साथ साथ आपको टाइम का स्पेस क्रिएट करना भी जरूरी है, ताकि आप इन दोनों का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अब हमारे पास वेल्थ के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए, मनी, हेल्थ और टाइम। अब आते हैं छोटा सा सीक्रेट, तीसरा व्हील, आपकी एबिलिटी टू स्पेंड मनी। काफी लोग मेहनत करते हैं, पैसा एक्यूमुलेट करते हैं और अपनी खुशियां बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टीज में ढूंढते हैं, लेकिन एक दिन आता है जब उन्हें ये पैसा स्पेंड करना पड़ता है, बच्चों की एजुकेशन, गाड़ी, प्रॉपर्टी या कोई और जरूरत, और अक्सर लोग इन औकात में अनहैप्पी फील करते हैं। इसलिए वेल्थ बिल्ड करते वक्त एक चीज प्रैक्टिस करें, डिजायर टू स्पेंड मनी। अगर आप पैसा स्पेंड करने की ख्वाहिश नहीं रखते तो खुशी सिर्फ बैंक बैलेंस देखकर मिलेगी, मगर पैसा खर्च करते ही वो खुशी उड़ जाती है। भाई, पैसे का असली वैल्यू तभी समझ में आता है जब उसको सही तरीके से स्पेंड करा जाए, खर्च करा जाए। चाहे आइसक्रीम खरीदना हो, चैरिटी देना हो या किसी की मदद करना हो, वेल्थ बिल्ड करते वक्त आदत बनाइए कि पैसा खर्च करते रहें जब जरूरत हो। अगर पैसा स्पेंड करना आपको अनहैप्पीनेस देता है तो आप अपने आप को वेल्दी नहीं कह सकते। तो भाई, अब वेल्थ का लास्ट व्हील है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ही आपकी जिंदगी को कंप्लीट करती है, फैमिली, फ्रेंड्स और हमारे लव्ड वंस। पैसा, हेल्थ और टाइम तभी मीनिंगफुल हो जाता है जब आप इन रिलेशनशिप में खुशी और वैल्यू क्रिएट करें। चलिए अब जरा आपको फिर से एक सिचुएशन में लेके चलता हूँ। आपके पास पैसा है, हेल्थ है, टाइम है, और आपके पास पैसा स्पेंड करने का डिजायर भी है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं है। हम इंसान नेचुरली अपनी खुशी और दुख शेयर करते हैं किसी के साथ ना, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, कोई भी हो। लेकिन अक्सर जब हम वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं, लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करते हैं और रिलेशनशिप को इग्नोर कर देते हैं, तो सबसे डिजायरेबल लोग, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स हेजिटेट करते हैं आपके पास आने से। क्यों? क्योंकि वो फील करते हैं कि वो आपके घर, गाड़ी, बातचीत और पैसे के लेवल तक मैच नहीं कर सकते, और तब आप फील करते हैं जैसे फिश आउट ऑफ वाटर। हम सबको अपने क्लोज रिलेशनशिप्स की जरूरत होती है अपनी खुशी शेयर करने के लिए, अपने दुख शेयर करने के लिए। लेकिन अगर आप एंथुसियाज्म में वेल्थ एक्यूमुलेट करते करते इन रिलेशनशिप को इग्नोर कर देते हैं तो ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है, यानी पेशेंट डेड, मतलब आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं बचता। तो क्लियरली समझ लीजिए, बिल्डिंग वेल्थ के मल्टीपल पार्ट्स हैं, मनी, हेल्थ, टाइम, एबिलिटी या डिजायर टू स्पेंड मनी, मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप्स। अगर ये सब आपके पास हैं, तभी आप खुद को वाकई वेल्दी इंसान कह सकते हैं। और ये चीज एक प्रोसेस है, ये नेचुरली सबको नहीं आता। जब आप पैसा एक्यूमुलेट करते हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगाएं ताकि ये चार पहिए, हेल्थ, टाइम, स्पेंडिंग की डिजायर और रिलेशनशिप खो ना जाए। यही असली वेल्दी लाइफ का फॉर्मूला है। तो दोस्तों, जिंदगी असल में एक सफर है, एक जर्नी जो दो पॉइंट्स के दरमियान होती है। मैं इन दो पॉइंट्स को कहता हूँ हर्डल्स ऑफ लाइफ। सबके लिए कहानी एक ही है, सबको इन हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। पहला हर्डल है हर्डल ऑफ पॉवर्टी। हर इंसान जो पैदा होता है उसे ये हर्डल क्रॉस करना ही पड़ता है। कोई भी इंसान गरीबी में नहीं रहना चाहिए। हर किसी को मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और जो भी मुमकिन हो वो करना चाहिए ताकि ये हर्डल क्रॉस हो सके। अगर ये हर्डल क्रॉस ना हो तो इंसान जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से ही महरूम रह जाता है, और जब बुनियादी चीजें ही नहीं हो तो खुशी का एहसास भी अधूरा ही रह जाता है। लेकिन जब आप हर्डल ऑफ पॉवर्टी क्रॉस कर लेते हैं तो आप अगले सफर की तरफ बढ़ते हैं, और ये है हर्डल ऑफ प्लेंटी। ये दोनों हर्डल के दरमियान का सफर सबसे रंगीन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप डिप्राइव्ड नहीं होते, आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान होता है। धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाते जाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब आप समझते हैं कि ज्यादा पैसा आपकी खुशी में ज्यादा इजाफा नहीं कर रहा। और जब आप हर्डल ऑफ प्लेंटी क्रॉस कर लेते हैं तो असल चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद प्लेंटी खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है, यानी बढ़ोतरी। उस स्टेज को संभालने के लिए एक नया स्किल सेट चाहिए, एक नई सोच चाहिए। अगर वो ना हो तो पैसा, वेल्थ और आपकी अक्यूमुलेटेड चीजें खुशी देने के बजाय प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। और फिर प्रॉब्लम क्या होती हैं? इंसान एरोगेंट हो जाता है, ज्यादा वेस्ट करता है, अनएथिकल चीजों में पड़ जाता है, अपनी पोजीशन का मिसयूज करता है। तो बहुत से लोग इन पॉइंट्स तक आते आते गिर जाते हैं, ढेर हो जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो इन हर्डल को क्रॉस करके एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जीते हैं। मगर याद रखिए, हर्डल ऑफ प्लेंटी एक वार्निंग साइन है। उसके बाद का सफर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खूबसूरत होता है जो अपनी सोच, करेक्टर और स्किल्स को बेहतरीन बनाकर चलते हैं। दोस्तों, खुशी क्रिएट करना भी एक प्रोसेस है और इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मूवी। भाई मूवी, 2-3 घंटे की लंबी फिल्म और मूवी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मगर सोचिए, उस मूवी का क्लाइमेक्स सीन सिर्फ कुछ मिनट्स का होता है। अगर हम सोचें कि क्या सिर्फ वही क्लाइमेक्स सीन हमें खुशी दे रहा था, तो हम डायरेक्टर से कह सकते थे कि भाई सर, बस क्लाइमेक्स सीन दिखा दीजिए और खुश हो जाएं हम और चले जाएं। लेकिन असल में हमें खुशी पूरे प्रोसेस से मिलती है, इसीलिए मूवी आपको शुरुआत से आखिर तक एंटरटेन करती है। पहले सीन से लेकर क्लाइमेक्स तक का सफर, यानी मूविंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, यही हमें कॉन्स्टेंटली एंगेज और हैप्पी रखता है। और यही बात लाइफ में भी लागू होती है। जब आप लाइफ के एंड पर खुद से कहते हैं, मैं वाकई वेल्दी इंसान हूं, मैंने लाइफ में अच्छा किया, तो असल खुशी आपको उस प्रोसेस से मिलती है। स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व करना, हेल्थ का ख्याल रखना, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, अपना टाइम वाइजली यूज करना, ये सब प्रोसेस का हिस्सा है जो आपको खुशी देता है। मतलब हैप्पीनेस का सीक्रेट क्लाइमेक्स या रिजल्ट में नहीं, बल्कि प्रोसेस में है, और ये ही रियल वेल्थ और सेटिस्फेक्शन का फंडा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जिंदगी को मैनेज करना और वेल्थ का असल मजा लेना सिर्फ पैसा जमा करने से नहीं होता, बल्कि उसके साथ बहुत सी और चीजें हैं जिन पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों, सेहत, करेक्टर और खुशी पर भी फोकस करते हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप अपनी जिंदगी के किसी भी लम्हे में फख्र से कह सकते हैं, हाँ, मैं वाकई एक वेल्दी इंसान हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी एक नए टॉपिक, एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस से सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं, पर reviews वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप interval से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry, भरोसेमंद review देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर review of the week rolling, ताकि every movie experience बने Absolute Cinema.
2: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. क्या है हाल चाल, ये शो रिव्यू ऑफ द वीक. वेल, रिव्यू ऑफ द वीक है.

0: बहुत दिन से मूवी नहीं देखा, क्योंकि ये ना ट्रिगर करती हैं चीजें कि बहुत दिन से कोई ऐसा सिनेमा नहीं देखा जो देखकर दिल जिसको देखकर खुश हो जाए, है ना। तो ये है आज का सिनेमा, ये है एक हॉरर मूवी जिसका नाम है ज़ॉम्बी।
1: तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है?
2: ज़ॉम्बीज।
0: तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी के बारे में बात करना कि पहले जब आप देखेंगे इस मूवी को तो कैसा फील होगा, फिर उसके बाद कितने स्टार इसको मिले हैं। हम फिर फन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि प्रोडक्शन को लेकर किस तरह का फैक्ट रहा है इस मूवी का, और उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टर का विजन कि इस मूवी को बनाने के लिए कोई तो मुद्दा होगा, कोई विजन होगा, वो विजन क्या है, और फिर इस मूवी की लोकेशन क्या रही है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर किसी भी मूवी को बनाने के लिए एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एक्टर जो है वो एक्शन वाला हो और अगर एक्शन वाला हीरो डरे नहीं और एक्शन ही दिखाने लग जाए हॉरर मूवी में,
3: अरे यार ये क्या कर रहा है,
0: फिर यही दिमाग से और जबान से बात निकलती है। उसके अलावा किसी भी मूवी को बेहतरीन एंगल से दिखाने के लिए, और खास तौर पे जब हॉरर मूवी के बारे में बात हो, तो सिनेमाटोग्राफी और साउंड होना चाहिए लाजवाब। एंड देन एक स्पॉइलर फ्री प्लॉट का जो पूरा हिसाब किताब है वो तो हम बात करेंगे कि एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री प्लॉट क्या है इस मूवी का जिसका नाम है ज़ॉम्बीड, और फिर पूरे परफॉर्मेंस पे भी हम डिस्कस करेंगे, एंड एट लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स के नज़र से भी देखेंगे कि इस मूवी में क्या बुरा रहा और डायरेक्टर को क्या बेहतर करना चाहिए था ताकि अगली हॉरर फिल्म हमें अच्छी मिले, या फिर ये अच्छी है और ख़राब ना करें अगली फिल्म। तो ये सारी बातें और फाइनल वर्डिक्ट इस मूवी को देखने के बाद क्या है, फाइनल फैसला हमारा क्या है, इस पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी के बारे में बात करना।
4: कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक वायरस आउटब्रेक है जो कि कोविड की तरह फैल सकता है, जिसमें इंसान एक दूसरे को काटते हैं जिससे ये मजीद फैलता है।
1: कुछ नहीं होगा मुझे, I'll be back।
0: दोस्तों ये मूवी ज़ॉम्बी पर बेस है, जैसे कि अब तक तो आपको नाम से पता चल गया होगा। शुरुआत में जब ये फिल्म शुरू होती है तो बहुत ग्रिपिंग सी लगती है, पहला हाफ ऐसा लगता है कि हॉरर एलिमेंट बिल्कुल सही है, और आखिर तक जब ये मूवी जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। बहुत दिनों बाद एक ऐसी मूवी बनी है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, ऐसा आप सोचेंगे, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आता है कि कहानी में बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं। कुछ सीन्स इतने प्रेडिक्टेबल हैं कि आपको बोरिंग लगने लगेगा, आपका दिल करेगा चलो भैया चलो नींद आ रही है, ये भी ऐसा आपको फील हो सकता है। हालांकि अगर आपको ऐसी वाली मूवी देखनी है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स बैठो, थोड़ा थोड़ा बीच में डर लेंगे, बच्चे हैं साथ में उनको हॉरर देखने का शौक है जिनकी उम्र 12-13 हो गई है, तो आई थिंक ये मूवी आप देख सकते हैं। ज़ॉम्बी ये एक्शन पसंद मूवी लवर्स के लिए है, तो आप इसे थोड़ा तो इन्जॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ओवरऑल आप बिल्कुल ऐसा देखने का, कंजूरिंग जैसी मूवी देखने को मिल जाए, है ना, एकदम ही डरावनी मूवी देखने को मिल जाए, तो ये एक वन टाइम वॉच मूवी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो शुरुआत में ही मैंने आपको ये बात तो बता दी। अच्छा, इसकी हाइप और रियलिटी पर भी बात कर लेते हैं। इस मूवी का जो प्रमोशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर किया गया था। ट्रेलर्स देखकर लगता है कि ये ज़ॉम्बी जॉनर में कुछ नया लेकर आएगी। ट्रेलर में तो आप मतलब इसको देख लेंगे तो आपको ऐसा लगने लगे, अच्छा छोटी स्क्रीन में भी देखेंगे जैसे मोबाइल में, तब भी लगेगा कि अरे गजब यार, क्योंकि छोटी और बड़ी स्क्रीन में बड़ा फर्क हो जाता है। जब आप बड़े स्क्रीन में जाकर देखते हैं मूवी को तो आपको लगता है कि यार ट्रेलर ना ये सिर्फ पहला कदम था ये बताने के लिए कि मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन पहले कदम के अलावा बाकी जो कदम रहे हैं वो बड़े लड़खड़ाते से रहे इस मूवी के। रियलिटी लेकिन इसकी थोड़ी अलग है। फिल्म का पहला हाफ तो अच्छा है और पेसिंग बनी रहती है, सेकंड हाफ में आते आते कहानी थोड़ी भटक जाती है, इधर उधर निकल जाती है, ऐसा लगता है कहीं कहीं ज़बरदस्ती यू नो 2.5 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे बनाने की कोशिश है, और फिर क्लाइमेक्स बहुत जल्दी में ख़त्म हो जाता है। क्लाइमेक्स ही तो इम्पॉर्टेंट है। अब किसी भी मूवी के बारे में बात हो, चाहे वो एक्शन मूवी हो रोमांटिक मूवी हो, क्लाइमेक्स लंबा चलता है तो दिल खुश हो जाता है, और आजकल ना लंबे क्लाइमेक्स चल भी रहे हैं। आप जितनी भी हिट मूवी है वो आप देख लें, मतलब 20 मिनट 15 मिनट का क्लाइमेक्स है ही नहीं, आधे आधे घंटे का एक एक घंटे का क्लाइमेक्स है, और ये लगातार चलता रहता है। आप पुष्पा के बारे में बात कर लीजिए, बहुत लंबा क्लाइमेक्स। अभी धुरंधर ये मूवी आई है, धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज, इसमें कितना लंबा क्लाइमेक्स था, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये बहुत लंबा। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि मूवी ख़त्म हो जाती है और फिर थैंक्स स्पेशल थैंक्स डायरेक्टेड बाय दिस, और आखिर में फिर थोड़ा बहुत चल रहा होता है ना। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।

क्लाइमेक्स जल्दी खत्म ना हो, क्लाइमेक्स बना रहे, और ये डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से क्लाइमेक्स को शूट कर पा रहा है और कितना अच्छा विजन अपना दे पा रहा है। अब क्लाइमेक्स जल्दी खत्म हो जाए तो फिर वो मजा रह नहीं जाता, और अगर क्लाइमेक्स जल्दी खत्म हो रहा तो ये भी समझिए कि अभी जो डायरेक्टर है वो नौधा है। अगर आपको नौधा का मतलब नहीं पता, वो ये कि नया है ना, लेकिन हम बिल्कुल साथ है डायरेक्टर के। डायरेक्टर साहब आप लगे रहे, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और सेकंड हाफ में जैसे कि बताया कि आते आते कहानी भटक जाती है और क्लाइमेक्स बहुत ही जल्दी में खत्म हो जाता है। VFX और मेकअप थोड़े सस्ते से लगते हैं यार। अब आप जब डायरेक्ट कर रहे हैं, आप हॉरर मूवी बना रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका बजट हाई हमेशा रखें VFX के लिए, मेकअप के लिए, और फिर आपको असिस्टेंट बहुत ज़्यादा रखने पड़ेंगे जब आप मेकअप वगैरह के लिए या हॉरर मूवी के लिए अपने जो प्रोस्थेटिक्स हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल पड़ता है मेकअप में, उन सब चीज़ों के लिए बजट आपका बड़ा होना चाहिए। हॉरर मूवी का जो मज़ा है वो ख़राब कर देता है अगर VFX और मेकअप हल्का हो तो। हाइप के मुताबिक फिल्म जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई, क्योंकि ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त, ग्रैंड लेवल पे प्रमोशन, लेकिन फिर इस हाइप में अगर फिल्म हल्का कर जाए तो मज़ा नहीं है। ओवरऑल अगर हम रेटिंग के बारे में बात करें तो इसे 5 में से 2.5 स्टार में देना चाहूँगा। 1 स्टार इसलिए कि बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक किसी हॉरर फिल्म का एटलीस्ट कोर होता है, लेकिन ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक रहा है भले फिल्म कैसी रही हो। उसके अलावा 1 स्टार एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जिन्होंने ख़राब स्क्रिप्ट में भी अच्छी एक्टिंग करके दी है। तो डायरेक्टर आगे कहाँ जाएगा, आई डोंट नो। हाँ, ये जो एक्टर्स हैं ये आगे बढ़ सकते हैं। 0.5 स्टार पहले हाफ का सस्पेंस के लिए, जैसे कि पहले हाफ में आपको बताया कि इतनी अच्छी मूवी थी कि आपको पकड़ के रखती है, सेकेंड हाफ में थोड़ी ही हल्की हो जाती है। अगर आपके पास वीकेंड पर कोई और काम नहीं है, आप दोस्तों के साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, एक बार कोई मूवी देखना चाहते हैं, तो ये मूवी आपके लिए, वरना आप इस मूवी को स्किप भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फन फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्शन। दोस्तों जॉम्बी का एक्स्ट्राज बूट कैंप, इस पर बात करते जरा। प्रोड्यूसर ने हायर किया है प्रोफेशनल डांसर्स को और उनको ट्रेन किया है, एक्स्ट्रा ट्रेन किया है। दे लर्न स्पेसिफिक जर्की बॉडी मूवमेंट्स फॉर द परफेक्ट अनडेड वॉक। क्या मतलब है कि आप देखिए, अब आजकल आप देख रहे होंगे कि जो डांसर्स होते हैं वो ब्रेक डांस करते हैं। अब यही ब्रेक डांसर जो हैं, इनको अगर हम लेकर आ जाए मूवी में और ये डेड वॉक कर दें तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। लेकिन जो फैक्ट है इस मूवी में ये है कि जो डेड वॉक कर रहे हैं इस मूवी में एज अ जॉम्बी बनके, वो एक्चुअली प्रोफेशनल डांसर्स हैं। मूवी देखिएगा तो इनको देखिएगा कि ये पूरा एकदम स्टेप सही कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये बात तो चढ़ेगी। उसके अलावा फेक ब्लड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। प्रोडक्शन टीम ने 10,000 लीटर ऑफ कॉर्न सीरप का इस्तेमाल किया, 10,000 लीटर का कॉर्न सीरप, ताकि हाई ऑक्टेन क्लाइमेक्स सीक्वेंस के लिए फेक ब्लड को दिखाया जा सके। प्रोडक्शन ने इस पर बहुत मेहनत करी है और लाजवाब इस सीन को आप जब देखेंगे ना, इन सारे सीन को मिलाकर जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार, खून का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो इतने ज़्यादा लीटर जो है कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया, एंड दिस इज एक्चुअली क्रेजी। नाउ अबाउट क्राउड और लीक्स के बारे में, हर मूवी का जो सबसे पहला काम होता है वो ये कि किसी भी तरह से जब मूवी शूट हो रही हो या फिर मूवी के स्टार्स हो, परफॉर्मर्स हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, उन सबको ऐसे बांध के रखना कि कहीं से भी स्क्रिप्ट लीक ना हो, मूवी के जो शूट है या जो सीन है वो लीक ना हो, मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो लीक ना हो, मूवी की जो असल स्टोरी है वो लीक ना हो। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बचाया जाता है और इसीलिए मैसिव क्राउड को, बड़े क्राउड को या लीक ना हो, इस चीज़ से बचाने के लिए समर पिकनिक का टाइटल जो है वो इस्तेमाल किया गया था। जब ये मूवी यानी कि जॉम्बी बन रही थी तो प्रोजेक्ट का जब शूट चल रहा था तो जो टाइटल था वो था समर पिकनिक। बस अब लोग समझ भी नहीं पाए कि मूवी की शूटिंग हो रही, क्या हो रही, जब इस चीज़ समर पिकनिक को ज़्यादातर फैलाया गया एज अ फेक टाइटल, तो क्राउड नहीं आया और लीक्स भी नहीं हुए। नाउ अबाउट द लोकल मेकअप आर्टिस्ट, फिल्म एम्प्लॉयड एक्चुअली 50 लोकल प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट हु वर्क्ड इन कंटिन्यूस 12-hour shift डेली। तो जो लोकल आर्टिस्ट थे, अभी जब आपको कुछ देर में पता चलेगा कि ये मूवी कहाँ कहाँ शूट हुई है, फिल्म की लोकेशन जो है, तो अलग अलग लोकेशन पे जब ये शूट हुई तो वहाँ के लोकल जो मेकअप के आर्टिस्ट थे उनको बुलाया गया और 50

0: लोकल प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट थे जिन्होंने 12 घंटे लगातार काम किया और उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है इस मूवी के डायरेक्टर ने। उसके अलावा ब्रेन प्रॉप्स, जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ ऐसे सीन है जिसमें ब्रेन दिख रहा है, तो ब्रेन खाने वाला एक सीन है स्क्रीन पर, जब वो बड़ा सा आएगा तो आपको देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा ये क्या है, लेकिन वो मीठा रेसबेरी ग्लेटिन है, केक फॉन्डेंट है जिसे एक्चुअली में खाया जाता है, लेकिन वो देखने में ऐसा लगता है कि ये ब्रेन है, दिमाग है। तो दीज ऑल ऑफ थिंग्स आर इंटरेस्टिंग, एक्चुअली इन जगहों पे तो मेहनत किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्टर के विजन की तो क्या कुछ है, उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आपको बता दें एक मूवी जॉम्बी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते, जो कि बहुत अच्छी फिल्म तो नहीं है लेकिन 5 में से 2.5 स्टार मिला है ओवरऑल, आप जा सकते हैं, वन टाइम वॉच मूवी है। शुरुआत में ये फिल्म बहुत ग्रिपिंग लगती है, हॉरर एलिमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म जो है वो थोड़ी हल्की हो जाती है। अभी अगर आपने सुना तो हमने फैक्ट्स के बारे में बात करा अबाउट द प्रोडक्शन इस मूवी के, और अब हम जरा बात करते हैं डायरेक्टर के विजन के बारे में कि डायरेक्टर का विजन इस मूवी को बनाते हुए क्या रहा। डायरेक्टर का मेन एम इस कन्वेंशनल जोम्बी जॉनर को एक नया साइकोलॉजिकल ट्विस्ट देना था। वो सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं दिखाना चाहता था बल्कि इंसानी फितरत यानी कि ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते थे जब एपोकलिप्स आता है। तो उनका विजन था कि असल डर ज़ॉम्बीज से नहीं बल्कि उन हालात में इंसान जो एक दूसरे के साथ करते हैं उससे पैदा हो। डायरेक्टर ने फिल्म के एटमॉस्फेयर को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक और टेंस रखने की कोशिश की है ताकि ऑडियंस हर वक्त डर को महसूस कर सके, ऐसा लगे कि डर या कहे वो जो ज़ॉम्बीज हैं उनके अगल बगल है, जो ऑडियंस है उनके अगल बगल है, ऐसा फील हो सके। इस फिल्म में उन्होंने इमोशनल डेप्थ डालने की कोशिश की है जहां एक बाप और बेटी की कहानी सेंट्रल थीम है। वो दिखाना चाहते हैं यानी कि ये डायरेक्टर दिखाना चाहते थे कि एक्सट्रीम सिचुएशन में भी उम्मीद कैसे जिंदा रहती है। हालांकि स्क्रिप्ट की कमजोरियों की वजह से उनका ये ग्रैंड विजन स्क्रीन पर पूरी तरह उतर नहीं पाया, कहानी का जो पेसिंग इशू है उनके डायरेक्शन पर थोड़ा भारी पड़ गया, फिर भी उनका वर्ड बिल्डिंग का तरीका और डायरेक्शन बहुत ही तारीफ के काबिल है।
1: इट्स अ नेशनल डिजास्टर, वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है,
0: उन्होंने जेनेरिक हॉलीवुड ज़ॉम्बी टेम्पलेट्स को कॉपी करने के बजाय एक देसी और लोकलाइज्ड टच देने का बड़ा रिस्क लिया जो काफी हद तक यूनिक भी था। देखिए आसान नहीं होता, अगर किसी को कमर्शियल फिल्म बनानी हो तो वो बॉलीवुड के पुराने फिल्मों से कुछ सीन उठाए, फिर अपना कुछ साउंड तेज डाल दे और उसके बाद कुछ अच्छा मेकअप करने वाले बंदे को उठा ले, वो मेकअप कर दे और दो चार स्क्रिप्ट लिखने वाले उनसे करवा दे। लेकिन इस तरह की राइटिंग जिस तरह का इस डायरेक्टर ने सोचा और फिर उसको पर्दे पे लाना, मेहनत करना, कहीं ना कहीं फेल होता है इंसान लेकिन इसे सीखता है। तो ओवरऑल ये फिल्म मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी है, बट 2.5 स्टार रेटिंग जो है 5 में से वो भी खराब बिल्कुल से नहीं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्मिंग लोकेशन के बारे में, फिर उसके बाद अगर आप साउथ की तरफ रहते हैं तो जानते होंगे, इस दुनिया में अगर आपने मेट्रो कभी इस्तेमाल करी होगी तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे। तो चलिए बात करते हैं फिल्मिंग लोकेशन के बारे में। सबसे पहले ये फिल्म वहां शूट हुई है जहां जाने से पूरी दुनिया जो है वो डरती है, वहां पर कुछ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही फेमस जगह है भांगड़ फोर्ट, और लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, यहाँ पर ऐसा है वैसा है, लेकिन असल में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कई लोगों ने रात रात भर यहाँ पर सोए हैं, यहाँ पर टहले हैं, घूमे हैं, लेकिन दिन में तो ये एक्चुअली एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट जाते हैं भाई यहाँ पे भांगड़ फोर्ट। क्रू ने इस जगह पे भी 9 सीक्वेंस शूट किए हैं और ये एक अबेंडेंट हिस्टोरिकल साइट है, और लोग कहते हैं यहाँ पर एक अलग सी वाइब है, एकदम बिल्कुल डरावनी टाइप की वाइब है, इस वजह से यहाँ पर भी ये मूवी जो है वो शूट की गई है। इसका रीज़न भी है, ऑब्वियसली रीज़न ये है कि क्योंकि लोकली भांगड़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है इसलिए क्योंकि यहाँ पर डरावनी चीज़ें होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है, बट असल में ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, बस रात में जाने से लोग डरते हैं, इतनी सिंपल सी बात है। बहुत ज्यादा कुछ फील किया होगा, उनको लगता है नेगेटिव वाइब है, ऐसा है वैसा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो स्पेशल परमिशन

0: तो रात के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जब पूरी सड़क खाली होती थी तब यहाँ पर शूटिंग की जाती थी, बिल्कुल खाली जगह पे। बड़ा मजेदार हुआ करता था ये, ऐसा डायरेक्टर ने बताया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन इस मूवी को लेकर कैसी रही। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, आप सभी का वीकेंड का दिन। कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे, नहीं हुई कोई प्लानिंग कोई बात नहीं भाई, आप सुन रहे हैं रिव्यू ऑफ द वीक। एक फिल्म का मैं रिव्यू दे रहा हूँ इस वक्त जिसका नाम है ज़ॉम्बी। इंटरेस्टिंग मूवी है, 5 में से 2.5 स्टार मिल गई। पहला हाफ अच्छा है, दूसरा हाफ इतना स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो इस मूवी को देख सकते हैं। ओवरऑल कई बार ऐसा भी होता है कि मैं जो बता रहा हूँ या फिर जो क्रिटिक्स बता रहे हैं वो अपने नजरिए से फिल्म देख रहे हैं और दूसरे लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगती है।
3: को आवाज की तरफ आते हैं।
4: मरवा दिया आपने।
5: I don't want to die as collateral damage.
4: एक भी ज़ॉम्बी इस बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। कल ही है।
3: हम जाएंगे, हम सब यहाँ से बाहर जाएंगे।
4: This is our only chance.
6: आज तेरा दिन है, जीतना है तूने, और अगर हार गया तो।
0: जैसे अगर हम देखें तो कुछ लोगों को एक मूवी थी गुंडे, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, है ना, तो कई लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। कई क्रिटिक्स का ऐसा कहना था ये तो बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी। कमर्शियली भी उस मूवी ने बहुत कोई अच्छा काम नहीं किया, बट क्रिटिक्स का मानना था ये अच्छी है। तो अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, अगर कोई प्लानिंग नहीं है। सेकंड हाफ थोड़ा हल्का है, हाई बीस मूवी की जिस तरह से थी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई।

प्रोफेशनल डांसर्स को ट्रेन किया गया था 500 घंटे के लिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने आपको बताया। डायरेक्टर का विजन भी हमने आपको बता दिया, फिर फिल्मिंग लोकेशन भी बता दी, भांगड़ फॉल्ट, डीप फॉरेस्ट का फिल्म आया हुआ सीन, फिर उसके बाद अनयूज्ड मेट्रो टनल। अब बात कर लेते हैं एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। मेन लीड एक्टर ने दोस्तों इस रोल के लिए बहुत बड़ी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की है। ये तो मानना पड़ेगा कि एक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया है। उन्होंने लगभग 15 किलो वजन कम किया ताकि वो एक एग्जॉस्टेड और भूखे सर्वाइवर जैसे दिख सके। उनका पेल लुक यानी कि हल्का पीला पड़ा हुआ लुक और सनकेन आईज यानी कि ढकी हुई गड्ढे में गई हुई जो आंखें हैं वो नेचुरल दिखाने के लिए उन्होंने शूटिंग से पहले अपनी नींद तक सैक्रिफाइस की थी। यानी कि मैं कभी एक्टर नहीं बन पाता। हर रोज दोस्तों मेकअप चेयर पर उनको यानी कि एक्टर्स को 3 घंटे बैठना पड़ता था ताकि उनके चेहरे पर रियल स्कार्स और डर्ट इफेक्ट्स दिए जा सके। उनकी एक्टिंग में ये फिजिकल टोल साफ नजर आता है और उन्होंने कैरेक्टर की बेबसी को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है, जनता तक पहुंचाया है। अच्छा, दूसरी तरफ जो मेन विलन ज़ॉम्बी बना है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो पहचानी ही नहीं जा पाएगी। हैवी प्रोस्थेटिक लेयर्स, कस्टम सिलिकॉन स्किन, ब्लड रेड कॉन्टेक्ट लेंसेज का यूज किया गया है। उस एक्टर को लिक्विड डाइट पर रहना पड़ता था क्योंकि प्रोस्थेटिक जॉ की वजह से कुछ चबा नहीं सकता था वो। ये ऐसा होता है कि एक बार अगर आपको जबड़े पे या मुंह पे प्रोस्थेटिक्स लगा दिया गया तो आप हिला नहीं सकते, खाने के लिए चबाने के लिए आपके पास फिर मौका नहीं होता। अगर आप करेंगे तो वो क्रैक्स दिखने पड़ेंगे और फिर वो हो सकता है छूट जाए, टूट जाए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर आप लिक्विड पे रहें, तो वो लिक्विड पे रहें। तो जो विलन है वो जब प्रोस्थेटिक जॉक पर अपने लगा लेते थे तो लिक्विड पे रहते थे। एक्टर ने अनडेड क्रिएचर की बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट करने के लिए कई हफ्तों तक शीशे के सामने प्रैक्टिस की। खैर, एक्टर की इस मेहनत पर स्क्रिप्ट ने थोड़ा पानी जरूर फेर दिया पर उनका डेडिकेशन जबरदस्त था, कमाल का था। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी और साउंड के बारे में। दोस्तों, फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन ही इसके सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं। इसका नंबर मैं कहता हूं अगर इस पे स्टार होता तो 5 में से 5 स्टार देने पर मैं तो मजबूर हो जाता। और यही सिनेमाटोग्राफी और साउंड ही है कि इस मूवी को पूरी तरह डूबने से इन दोनों ने यानी कि सिनेमाटोग्राफी और साउंड ने बचाया है। कैमरा वर्क बहुत ही रॉ और ग्रिटी है। डीओपी ने यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने हैंडल्ड कैमरा शॉट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जब भी जोम्बीज अटैक करते हैं कैमरा इतना शेक होता है कि ऑडियंस को लगता है कि वो खुद उस भाग दौड़ का हिस्सा है, उस कैओस का हिस्सा है, ऐसा उनको एहसास होता है। डिम लाइटिंग, शेडोज, नियॉन कलर प्लेट्स, पैटर्स ने फिल्म को एक बहुत ही यूनिक और एपोकलिप्टिक लुक दिया है। रात के सीन्स में डार्क टोन का यूज डर का माहौल डबल कर देता है। साउंड डिजाइन की बात करें तो वो बेहद लाजवाब है। साइलेंस का इस्तेमाल बहुत ही स्मार्टली किया गया। किसी भी मूवी को डरावनी बनाना हो अगर तो डर से ज्यादा साइलेंस का सही इस्तेमाल, ठहराव का सही इस्तेमाल सही पॉइंट पे कर लिया, उसके बाद शोर आया, साउंड आया तो लाजवाब हो जाएगा। और फिर सिनेमा सही जगह पे साउंड को लेकर अगर आ गया तो फिर फिल्म ज़बरदस्त हो जाती है। और मुझे लगता है यही बात है जो फिल्म के फर्स्ट हाफ को स्ट्रॉन्ग बनाती है या ओवरऑल इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है कि ये 2.5 स्टार लेकर तो जाती है एटलीस्ट। फिर जब सीन बिल्कुल खामोश होता है या फिर सडन किसी जोम्बी के गुर्राने की आवाज़ आती है तो जंप स्केयर परफेक्ट बैठता है। 3D ऑडियो डिज़ाइन की वजह से लेफ्ट और राइट से आने वाली आहट बिल्कुल रियल लगती है। बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म के नॉर्मल सीन्स में भी टेंशन बिल्ड करने का बिल्कुल सटीक काम किया है। अगर ये साउंड डिज़ाइन और बेहतरीन कैमरा एंगल्स ना होते तो फिल्म का पहला हाफ भी इतना एंगेजिंग नहीं होता जितना मैं बता रहा हूँ। टेक टीम ने सच में अपना 100% काम किया है। अब ज़रा फ्री या स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये छोटा सा है। ये फिल्म किस पर बेस्ड है, कैसे चलती है, आगे कैसे बढ़ती है, इस पर जरा नजर डालते हैं। दोस्तों, स्टोरी जो है वो शुरू होती है एक पीसफुल और नॉर्मल सिटी से। हर डरावनी स्टोरी यहीं से क्यों शुरू होती है भाई, जहां अचानक एक अननोन बायोलॉजिकल वायरस जो है वो फैल जाता है। ये वायरस नॉर्मल जिंदा इंसानों को वायलेंट
और खतरनाक फ्लैश ईटिंग क्रिएचर्स यानी ज़ॉम्बीज में बदल देता है। कुछ ही घंटों में पूरा शहर एक मौत के कुएं में बदल जाता है और हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। कहानी का जो मेन फोकस है एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास बाप है जो अपनी छोटी बेटी को इस तबाही से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो शहर के एक सेफ जोन की तरफ भागने का फैसला करता है जहां मिलिट्री ने सर्वाइवल्स के लिए कैंप लगाया है। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ और सर्वाइवर से होती है जिसमें एक एक्स आर्मी का सोल्जर और एक रेबेलियस मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल है। वेल, इतनी बात आपने सुनी आपको नहीं लग रहा ये हॉलीवुड टाइप है लेकिन ये है ऐसी जरूर जहां आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। उसके अलावा ये स्टोरी आगे बढ़ती है, इन सभी लोगों को मिलकर इस एपोकलिप्स से लड़ना पड़ता है। सफर के दौरान उन्हें न सिर्फ उन भूखे ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है बल्कि उन हालात में इंसानों की बदलती फितरत और सेल्फिशनेस से भी लड़ना पड़ता है। और ये बिल्कुल सही भी है, जब हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं, जब हमारे सामने परेशानियां आती हैं तो हमारी देखने की, समझने की, बात करने की जो कला है वो भी एक्चुअली दोस्तों धीरे धीरे चेंज होने लगती है, उसमें फर्क साफ नजर आता है। फिर धीरे से ये आगे मूवी बढ़ती है और हर मोड़ पर मौत खड़ी मिलती है। रिसोर्सेज बहुत कम है खाने पीने के, है ना, आप कार आपके पास बहुत लिमिटेड है, आपके पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा दूरी है जो तय करनी है, तो फिर क्या कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ग्रुप जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, फिर सवाल उठता है कि क्या ये छोटा सा ग्रुप सभी खतरों को पार करके सेफ जोन तक पहुंच पाएगा या नहीं, या फिर रास्ते में ही इस डर का शिकार हो जाएगा। ये सब सवाल है, ये जानने के लिए आपको फिल्म एक्चुअली देखनी पड़ेगी क्योंकि क्लाइमेक्स में एक बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं एक तरह से कि पूरी ओवरऑल टीम ने या ओवरऑल एक्टर्स ने क्या कुछ किया। फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस ही इसकी सबसे बड़ी बचत है। मेन लीड एक्टर ने एक मजबूर और प्रोटेक्टिव बाप का रोल बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए डर और उसे बचाने का डिटर्मिनेशन साफ नजर आता है। उन्होंने बिना ज्यादा डायलॉग्स के भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ऑडियंस को इमोशनल कर

0: किया। उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ग्राउंडिंग देती है। छोटी बच्ची का रोल करने वाली चाइल्ड एक्ट्रेस ने भी कमाल का काम किया। डर के सीन्स में उनकी नेचुरल एक्टिंग सच में दिल को छू लेती है। ऐसा लगता है कि ये छोटी लड़की कैसे काम कर सकती है। सपोर्टिंग कास्ट की अगर हम दोस्तों बात करें तो एक्स आर्मी ऑफिसर के रोल में एक्टर्स ने भी बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस और टफ डायलॉग्स फिल्म में एक नया जोश लेकर आता है। मेडिकल स्टूडेंट का रोल करने वाली एक्ट्रेस ने भी अपने किरदार को बेहद ही हौसले और कॉन्फिडेंस के साथ निभाया। उसके अलावा जो विलन जोम्बी है वो एक्टर की फिजिकल एक्टिंग भी बड़ी लाजवाब है और बॉडी मूवमेंट भी जबरदस्त है। स्क्रीन पर आते ही डर का माहौल बना देती है जब ये विलन आते हैं। तो एक्टर्स ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। कमजोर स्क्रिप्ट के बावजूद अपनी परफॉर्मेंस से जान फूंकने की कोशिश की है। लेकिन एक अच्छी फिल्म सिर्फ बेहतरीन विजुअल्स या साउंड से नहीं बनती, बल्कि उसकी आत्मा होती है स्टोरी लाइन। यहीं पर ज़ॉम्बी सबसे ज्यादा मार खा जाती है। सेकंड हाफ में फिल्म का पेसिंग इतना खराब हो जाता है कि आप क्लाइमेक्स का इंतजार करने लगते हैं। सोचिए, पहला जबरदस्त, दूसरे में इंतजार करने की फिल्म खत्म हो। उसके अलावा डर और सस्पेंस पहले हाफ में बिल्ड किया गया था, धीरे धीरे बोरिंग प्रेडिक्टेबिलिटी में बदल जाता है वीएफएक्स के सस्ते इफेक्ट्स और जल्दबाजी में खत्म किया गया क्लाइमेक्स ऑडियंस को डिसअपॉइंट करता है। डायरेक्टर का विजन बड़ा था लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही बिखरा हुआ है। इसलिए फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप जॉम्बी मूवी के हार्डकोर फैन हैं और आपने हॉलीवुड या कोरियन जॉम्बी सिनेमा देख रखा है तो ये फिल्म आपको बहुत पुरानी या सस्ती लगेगी। आप इस मूवी को बिल्कुल स्किप कर दें। लेकिन अगर आप बिना किसी हाई एक्सपेक्टेशन के सिर्फ वीकेंड पर दोस्तों के साथ एक माइंडलेस टाइम पास मूवी देखना चाहते हैं तो ये आपको थोड़ा बहुत एंटरटेन कर देगी। पहला हाफ तो कर ही देगी। ये एक ऐसी मूवी है जिसे आप एक बार देख कर भूल जाएंगे। इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे या वक्त जाया करना किसी भी तरह से जरूरी तो नहीं है। इट इज स्ट्रिक्टली एन एवरेज वन टाइम वॉच मूवी। तो दोस्तों, ये थी मूवी आज की जिसके बारे में हमने बात करी कि इस मूवी का हाइप और बहुत ज्यादा था लेकिन रियलिटी में ये मूवी उतनी खरी नहीं उतरी। इस मूवी को मिला है 5 में से 2.5 स्टार। शुरुआती हाफ ये बहुत ही तगड़ा था, मजेदार था, लाजवाब था, लेकिन उसके बाद फिर ये सेकेंड हाफ में हल्की पड़ जाती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक इसी रिव्यू ऑफ द शो के एपिसोड में, जहां पर हम एक नई मूवी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सी मूवी ऐसी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको देखने जाना चाहिए या फिर नहीं। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
4: FM 107.
2: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करना एक्सीडेंट्स को रोकता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने में मदद देता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए कुछ जरूरी इकदाम जानिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल सेफली करें, मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करें, ज्यादा स्पीड पर ना चलें, रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहने और स्कूटर की लाइट ऑन रखें, हमेशा हेलमेट ठीक तरह से पहने। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या ई स्कूटर्स राइडर्स को अपनी और दूसरे रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए। ई स्कूटर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स बाइसाइकिल के बराबर हैं, जैसे राइडर्स का हेलमेट पहनना और फ्रंट और बैक पर लाइट्स लगाना। ई स्कूटर राइडर्स को रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहननी चाहिए जो दूसरे रोड यूजर्स को दिखाई दें। उन्हें रोड पर डेजिग्नेटेड जगह इस्तेमाल करनी चाहिए जो या तो साइड वॉक्स पर या रोड क्रॉसिंग के साइड्स पर हैं, जो पेडेस्ट्रियंस के लिए डेजिग्नेटेड होती हैं, बिल्कुल साइकिलिस्ट की तरह। याद रखिए, ई स्कूटर से होने वाले वायोलेशंस बाईसाइकिल एक्सीडेंट्स की तरह ही होते हैं। अगर ई स्कूटर राइडर्स एक्सीडेंट का सबब बनता है तो वो दूसरी पार्टी को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार होगा। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi se, desi.
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se, desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है।

0: इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
1: द रिक्वेस्ट शो
0: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतर स्पोर्ट्स लेजेंड के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे एक वीमेन एथलीट और कतरी वीमेन गोल्फर रीम अल शरसानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रीम अल शरसानी कतर की कामयाब खातीन एथलीट्स में से एक हैं और इंटरनेशनल शूटिंग मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी करती हैं। रीम को बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौक था और उनका ताल्लुक एक स्पोर्ट्स पसंद खानदान से है। वक्त के साथ साथ वो कतरी वीमेन स्पोर्ट्स की एक अहम हिस्सा बन गई हैं और गल्फ रीजन के नौजवान वीमेन एथलीट्स के लिए एक मिसाल बनी हुई हैं। और अक्सर में देखा गया है कि जीसीसी, एशियन लेवल या अरब लेवल में रीम को शूटिंग कॉम्पिटिशन में मेडल जीतते हुए हमने देखा है और ख़ास तौर पर स्कीट शूटिंग में माहिर रीम ने कतर की तरफ से कई इलाकाई और बैन अक्वामी चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है, जिनमें ISSF वर्ल्ड कप इवेंट्स, एशियन कम्पटिशंस और मिलिट्री चैम्पियनशिप्स शामिल हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से शोहरत हासिल की और मुसलसल अपनी वर्ल्ड रैंकिंग बेहतर बनाई। इसी साल दोहा के लुसेल शूटिंग रेंज में आमिर ग्रैंड प्री शॉटगन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीते। रीम की मेहनत, डिसिप्लिन और अज़्म ने कई नौजवान कतरी लड़कियों को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की तरफ मुतवज्जह किया है। और रीम सिर्फ एक एथलीट नहीं दोस्तों, बल्कि एम्बिशन, कॉन्फिडेंस और कौमी फ़ख्र की अलामत है। उनकी कामयाबी कतर को बैन अक्वामी शूटिंग में मजबूत मकाम दिलाने में मदद कर रही है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: स्कैम अलर्ट. दोस्तों आजकल फ्रॉडस्टर्स मॉडर्न जनरेटिव एआई टूल्स का यूज करके रियल टाइम वॉइस और वीडियो क्लोनिंग कर रहे हैं. इस फ्रॉड में आपको एक ऐसी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आती है जो बिल्कुल आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर्स, दोस्त या कंपनी के बॉस जैसी दिखती है और सुनाई देती है. डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लाइव कॉल पर चेहरे के एक्सप्रेशंस और आवाज की टोन को पहचानना नामुमकिन हो जाता है. फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स सामने वाले का रूप जो है वो लेकर अचानक आपसे पैसे मांगते हैं किसी बड़ी मुसीबत या मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाते हुए, या फिर अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बोलते हैं. आपको लगता है कि आप अपने सच में किसी खास से बात कर रहे हैं, इसलिए आप बिना सोचे समझे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा कॉल काटने के बाद उस इंसान के पुराने नंबर पर दोबारा कॉल करके वेरीफाई करना चाहिए. कभी भी लाइव डिजिटल मीडिया पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, क्योंकि 2026 में डिजिटल आइडेंटिटी को हैक और कॉपी करना बहुत आसान हो गया है. साइबर क्रिमिनल्स सोशल मीडिया से पब्लिक वीडियोस और ऑडियो सैंपल्स उठाकर कुछ ही सेकंड्स में ऐसी रियलिस्टिक क्लोन्स तैयार कर लेते हैं जो आम भाषा में बिल्कुल नेचुरल लगती है. ये स्कैम्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर्स में बड़े एग्जीक्यूटिव्स के नाम पर फेक इमरजेंसी वायर ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं, जिससे बड़ी कंपनीज को मिनटों में करोड़ों का नुकसान होता है. लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल FM 107 पे आपको मिलेगा इसका सॉल्यूशन भी. दोस्तों इस हाईटेक AI फ्रॉड से खुद को सुरक्षित करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन हैबिट्स में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे. सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक सीक्रेट फैमिली पासफ्रेज यानी एक खुफिया कोडवर्ड तय करें. जब भी कोई इमरजेंसी कॉल आए और सामने वाला पैसा मांगे तो उनसे वो सीक्रेट वर्ड पूछें. अगर सामने रियल AI क्लोन है तो वो ये कोड नहीं बता पाएगा. दूसरी बार ऐसी इमरजेंसी कॉल्स आने पर तुरंत पैनिक ना हो और जल्दबाजी में कोई ट्रांजेक्शन ना करें. कॉल को कट करें और उस पर्सन के ऑफिशियल या ट्रस्टेड नंबर पर खुद कॉल लगाकर सच्चाई का पता लगाएं. अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को जितना हो सके प्राइवेट रखें ताकि स्कैमर्स आपकी वॉइस या वीडियो क्लिप्स डाउनलोड ना कर सके. इसके अलावा अपने डिवाइसेस में एडवांस्ड एंटी डीपफेक और AI वॉइस डिटेक्शन टूल्स का इस्तेमाल करें जो फेक इनकमिंग स्ट्रीम्स को पहचान सकते हैं. अगर आपके साथ ऐसा कोई धोखा होता है तो फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें.
2: स्कैम अलर्ट. आप सुन रहे हैं FM 107.
0: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सफा और आज मैं आपके साथ जुड़ गई हूं, लेकर आई हूं एक बहुत ही दिलचस्प शो जिसका नाम है जूनियर जनाब। अच्छा भाई, क्योंकि पहली किस्त है इस शो की तो आपको जरूर ये दिमाग में आ रही होगी बात कि भाई ये जूनियर जनाब आखिर है किस किस्म का शो। तो भाई मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं कि एक ऐसा शो है जहां हम बच्चों को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनके आइडियाज़ को सेलिब्रेट करते हैं। अब मेरा मानना ये है कि बच्चे आज के दौर में, जैसे हम कहते हैं कि भाई बच्चे हैं, क्या इनके कोई ड्रीम्स होंगे, क्या इनके कोई गोल्स होंगे और क्या इनकी कोई अचीवमेंट्स होंगी, लेकिन मैं इसे थोड़ा मुख्तलिफ सोचती हूँ, तभी ये शो आपके लिए लेकर आई हूँ, पेश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, जो बड़े बड़े गोल्स होते हैं वो एक छोटे से कदम से स्टार्ट होते हैं। तो भाई हर हफ्ते मेरी और आपकी मुलाकात होती है एक ऐसे

0: एज नहीं होती और हर बच्चा अपनी मेहनत, अपने एम्बिशंस और अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली यहाँ आकर शेयर करता है। तो भाई तैयार हो जाइए एक ऐसे मजेदार शो के लिए जिसके अंदर बच्चा पार्टी इन्वॉल्व होती है और इनकी मजेदार मजेदार सी स्टोरीज, इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस हम आपको सुनाते हैं उन्हीं की जबानी। यानी कि हमारे साथ शामिल होते हैं एक जूनियर जनाब जो अपनी लाइफ की अभी तक की जितनी भी उनकी माशाल्लाह से, चाहे वो 9 साल के हों, चाहे वो 15 साल के हों, मतलब अंडर 18 बच्चों की वो कहानियां उन्हीं की जबानी हम आपको बयान करवाते हैं या आप कह लें कि आपको सुनाते हैं जो शायद आपको भी कहीं ना कहीं इंस्पायर कर जाएं। एक ऐसे एडवेंचर पे ले चलते हैं आपको जो कि बच्चा पार्टी की आंख से हम देख रहे हैं। और आज हमारे पास जो हम कह लें कि हमारे पास जो शख्सियत नहीं शक्स। ये शख्सियत हासिल है, देखें शख्सियत शख्सियत हम कहते हैं ना पर्सनालिटी एक शख्स। अच्छा भाई आज हमारे साथ जो बच्चा पार्टी मौजूद है, मैं चाहूँगी कि ये खुद अपना इंट्रोडक्शन आपसे करवाएं। और भाई पहले तो हम आपको अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: तो ये बताएं कि आपका नाम क्या है?
1: मैं हानी हूँ और मैं 10th ग्रेड में पढ़ता हूँ।
0: अच्छा भाई हानी कितने साल के हैं आप?
1: मैं 15 हूँ लेकिन मैं अक्टूबर में 16 हो जाऊंगा।
0: अच्छा बच्चों की ये बात बड़ी मजे की होती है, अपने जब जैसी पास आने लगती है ना, डेट ऑफ बर्थ पास आने, बर्थडे पास आने लगती, मैं 15 हूँ लेकिन मैं 16 का हो जाऊंगा, आप मुझे छोटा नहीं समझे। ये मासूमियत होती है बच्चों की। अच्छा भाई हानी ये बताएं कि आज आपको हमारे साथ ज्वाइन करके कैसा लग रहा है? मुझे याद पड़ता है हानी पहले भी एक दफा पहले कुछ साल पहले हमारे साथ ज्वाइन किया था आपने, ठीक? उस टाइम पर कितने साल के थे हानी? 13-14 साल के?
1: 13 था।
0: 13। अच्छा भाई हानी लॉन्ग को शॉर्ट करते हैं और ये बताएं कि अब दूसरी दफा यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है?
1: अच्छा लग रहा है, मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस तो नहीं है बिकॉज पहले भी किया हुआ है, लेकिन मतलब फिर भी एंग्जायटी थोड़ी सी होती है जब करते हैं सब कुछ,
0: नर्वसनेस। अच्छा ये ऐसा फील हो रहा है कि बेटर देन बिफोर, कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट?
1: या
0: कुछ अपनी पर्सनालिटी को लेकर अगर मैं आप बोलूं कि उस टाइम के हानी में और अभी के हानी में कुछ डिफरेंस है?
1: या लाइक sky and earth like that's the difference. I think so.
0: Mashallah, very good. अच्छा ये होना चाहिए क्योंकि we are all, no matter which age we are all in a learning phase. We will always be in a learning phase. अच्छा ये बताएं कि अब तो माशाल्लाह 2B16 होने वाले हैं आप, तो अपने कुछ इंटरेस्ट के बारे में हमें बताएं ना।
1: मैं आर्ट लाइक करता हूँ एंड गार्डनिंग, तो वो दोनों मेरी हॉबीज हैं प्राइमरली, और मैं और चीजों में भी इंटरेस्ट लेता हूँ लेकिन ये मेरी हॉबीज है प्राइमरली।
0: अच्छा अगर आपकी इसके बच्चों को हम देखें तो मोस्टली हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा स्कूल की अचीवमेंट्स से हम शुरू करते हैं, ठीक है?
1: हाँ।
0: तो आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में कुछ आपने अपने ऐसा कुछ कुछ आइडियाज अपने पेश किए हों, कुछ अचीवमेंट्स आपकी स्कूल में हुई हों, तो वो हमारे साथ जरा शेयर करें।
1: हुई है, मैंने स्कूल में एक कॉम्पिटिशन था आर्ट का, मैंने उसमें अपनी आर्ट सबमिट की थी और मुझे 3rd place मिला था।
0: 3rd place? हाँ। अच्छा तो अगर मैं कहूँ कि बचपन में जब आप छोटे थे तो क्या आपने ऐसा सोचा था कि आई विल बी समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन आर्ट्स? एक होता है ना, हम जब छोटे होते हैं तो बहुत सारे आइडियाज होते हैं हमारे दिमाग में, वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। द ग्रेट थिंग अबाउट किड्स इज दे डोंट हैव अ बॉक्स एक्चुअली। तो आपको शुरू से शौक था आर्ट्स का कि नहीं?
1: शुरू से नहीं था। आई वुड थैंक माई पेरेंट्स फॉर दिस बिकॉज उन्होंने हेल्प किया मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट डालने में। मैं पहले एस्ट्रोनॉमी एंड चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड था एंड आर्ट में भी, तो व्हेनेवर उन्होंने देखा कि मैं कुछ चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ उन्होंने मुझे हेल्प किया, मुझे गाइड किया।
0: अच्छा जी तो ये बताएं कि पेरेंट्स में अगर मैं, वैसे तो सारे बच्चे कहते हैं नहीं नहीं दोनों लेकिन पेरेंट्स में अगर मैं कहूँ कि अम्मी अब्बू में से सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया?
1: मम्मा
0: मम्मा ने किया. अच्छा कभी आपको ऐसा ऐसा हुआ कि एक एक सिनेरियो है ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई नो सोसाइटी में ये सिनेरियो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कभी आपको ये सुनने को मिला है किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेंबर से, कहीं से कि लड़के क्या आर्ट्स में दिलचस्पी लेंगे, लड़कियों का काम है प्ले फुटबॉल, प्ले क्रिकेट, ये क्या ड्राइंग और पेंटिंग लेकर, ऐसा कुछ हुआ है?
1: हाँ.

0: मेरे पापा थोड़ा सा ऐसा सोचते थे, बिल्कुल नहीं, वो ऑब्वियसली ओपन माइंडेड है, लेकिन थोड़ा सा वो बैकवर्ड सोच इख्तियार करते थे.
1: सही.
0: तो वो समझते थे कि जो क्राफ्ट्स है वो गर्ली चीज है, बिकॉज आप देखते यूजली गर्ल्स उसमें होती है. मुझे लगता है बिल्कुल फेक एंड रबिश है, बिकॉज ये मेक सेंस नहीं करता. हम क्यों किसी को सब्जेक्ट करें कि मेल्स ये करेंगे, वेमेन ये करेगी.
1: सही. अच्छा, एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जनरेशन से पूछनी चाहिए, ये बताएं कि इज इट हार्ड फॉर यू. मम्मा के साथ तो मुझे पता है सारे बच्चों का, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है. यू कैन पोर योर हार्ट आउट टू हर. लेकिन अब मैं बड़ा टेक्निकल सवाल करने लगी हूँ, सोचिएगा, देख देख भाल के जवाब देना कि मुझे ये बताएं कि अब्बू को कैसे कन्विंस करें, अगर आपका कोई ऐसा शौक है कि जैसे आपको पेंटिंग्स का, आर्ट्स का शौक है, तो मैं अगर आपसे ये सवाल करूं, क्योंकि आपको इतने सारे लोग सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी बेसिक अप्रोच फॉर योर फादर स्पेशली क्या होनी चाहिए, कि आप उनको ये समझाएं कि अच्छा मेरा ये इंटरेस्ट है. जैसे हमारे पेरेंट्स को कभी होता है ना, एक एग्जांपल मैं दूं, कि हमें कन्विंस करना होता है कि अच्छा मेडिसिन पढ़ लो आप, या इंजीनियरिंग कर लो, या कंप्यूटर्स में कुछ. दे गिव अस फिगर्स एंड फैक्ट्स, हमें समझाने की कोशिश करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि एज अ किड आप कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं, आपने पर्टिकुलरली अपने फादर को, आपने भी कुछ बातचीत की होगी ना फादर के साथ,
0: obviously.
1: तो आप कुछ ऐसी टिप्स, कोई टैक्ट देना चाहेंगे बच्चों को, जब बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, कहते नहीं अम्मा अब्बा तो समझते ही नहीं हमारी बात है ना, ऐसा होता है, we all go through that thing. तो आपने उसको कैसे कोप अप किया?
0: आप बस उनको प्रेजेंट करें फिगर्स एंड सब कुछ के आर्ट एंड ऐसे जो डिफरेंट फील्ड्स है उसमें बहुत पैसे है, उसमें बहुत आप अर्न कर सकते हैं, आप बहुत लर्न कर सकते हैं. तो जब उनको समझाने की कोशिश करें वो समझ जाएगा, बिकॉज आफ्टर ऑल आपके पेरेंट्स हैं, आपके एनिमीज नहीं है.
1: अच्छा, जो आर्ट है, कोई कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसा काम जो आपको इंस्पायर किया होगा, जिसने कि आप कहें कि भाई इस चीज़ ने ना, मैंने फलानी पेंटिंग देखी थी या मैंने फलाने के बारे में पढ़ा था, दैट पर्सन वॉज एन आर्ट पर्सन एंड आई गॉट इंस्पायर्ड बाई देम. कोई ऐसा है नाम आपके पास जिसको देखकर आप फॉलो करते हैं, यू लुक अप टू दैट पर्सन?
0: लियोनार्डो दा विंची, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे थे. एंड एक और आर्टिस्ट के नाम जिन्होंने स्टारी नाइट ड्रॉ की थी, वो बहुत अच्छी है. आपने देखी होगी जरूर.
1: मुझे याद पता है वो ब्लू कलर की पेंटिंग है, वो बहुत मशहूर है. आई रियली डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द एग्जैक्ट पर्सन, लेकिन उनकी पेंटिंग का मुझे याद पड़ रहा है कि इट इज अ वेरी नोन पेंटिंग. ओके, आई गेट इट. अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपने उनके बारे में पढ़ी हो या देखी हो जो उनके आर्ट में आपको पर्टिकुलरली अच्छी लगती हो?
0: मैंने उनकी लाइफ में ये ऑब्जर्व किया है कि जब वो अलाइव थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, जो चीज़ नहीं, लेकिन आफ्टर वो डाई हुए तो लोगों ने रियलाइज किया कि उनकी आर्ट कितनी मीनिंगफुल थी. जैसे मोनालिसा फॉर एग्जाम्पल, जब वो अलाइव थे उस टाइम में वो बस एक मतलब एक वुमन थी.
1: हाँ हाँ, सही सही.
0: किसने इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स लोगों ने देखा कितने लेयर्स लियोनार्डो दा विंची ने पेंट किए उसके अंदर.
1: सही.
0: अपनी होल लाइफ लगाई और फिर उनको फेम मिला.
1: सही.
0: तो मैं इससे मैसेज ये लेता हूँ कि कभी क्विट नहीं करें, डोंट गिव अप.
1: ये एक बहुत अच्छा, हम लोग ये कहने को बात बड़ी आसानी से कह देते हैं कि डोंट क्विट, लेकिन जो जिस बात पे चल रहा होता है ना उसको पता होता है कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन. क्विट नहीं करना, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरा शौक है, मैंने पूरा करना है. अच्छा, अब आर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, अब थोड़ा एकेडमिक की तरफ आए, तो आपको क्या लगता है योर इंटरेस्ट इन आर्ट, डज इट हैज अ थिंग के, मतलब एक होता है ना, हम कहते हैं, अम्मा अब्बा कहते हैं कि भाई तुम आर्ट में इतनी ज्यादा मसरूफ हो गए हो दैट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर स्टडीज. कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कभी?
0: नहीं, मैं एक्चुअली अच्छा हूँ स्टडीज में. मैं बैलेंस कर लेता हूँ, इवन दो ये बहुत हार्ड है बैलेंस करना, बिकॉज आप जब एक चीज को लाइक करते हैं, आप मिल जाता है वही करते रहे.
1: ये होता है.
0: हाँ, लेकिन आपको स्टडी करना ऑब्वियसली, मतलब उसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिलेगी.
1: सही. तो ये बताएं कि आगे चलकर आपके क्या गोल्स हैं, कैसा ये मामला है कि कुछ आर्ट्स में ही करना चाहेंगे, या आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके पास विंडो है एक्सप्लोरिंग की, मोर टू एक्सप्लोर?
0: हाँ, मुझे लगता है मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए.
1: करना चाहिए.
0: पहले मुझे डॉक्टर बनना था, अब बिटवीन में मुझे

0: डायरेक्टर बनना था, अब मैं सोच रहा हूँ फिल्म मेकिंग. तो मुझे लग रहा है मैं एक्सप्लोर करूंगा और ज्यादा.
1: आपके पास माशाल्लाह टाइम है. सो अच्छा एक बात ये बताएं, जैसे आपने अपनी कोई एक हॉबी एक्सप्लोर की, चूज की, तो आप ये बच्चों को बताना चाहेंगे कि ये कैसे, हाउ डिड यू गेट इनटू इट?
0: मैं जब बोर्ड था मैंने बहुत सी चीजें ट्राई की. जैसे मैं यूजली जब मैं छोटा था मैं यूट्यूब देखता था. तो किड्स यूजली कार्टून्स देखते हैं, लेकिन मैंने कभी कभी स्पेस वीडियोस देखना शुरू कर ली थी. हाँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट रश हो गया था उनके अंदर कि स्पेस है क्या. मतलब अभी भी मुझे समझ नहीं आता कि बस एम्प्टी स्पेस ऑफ वॉइड है जो एग्जिस्ट करता है, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं. तो मैं प्लैनेट्स देखता था एंड सब कुछ. उसकी वजह से मुझे एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट आया एंड बाकी चीज़ों में. आर्ट भी ऐसी हुआ था, जब मैंने ड्रॉ करना शुरू किया एंड मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो मैं इंटरेस्टेड हो गया उन चीज़ों में.
1: अच्छा ये बताएं कि ये जो आपके इंटरेस्ट की एक जर्नी जिसके बारे में हम बात करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एज पर माय थिंकिंग, एज पर माय बिलीव. मुझे ऐसा लगता है ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपको ये पता चल जाए कि आपकी हॉबीज क्या है. हमें एक उम्र लग जाती है और हमें पता नहीं चलता व्हाट आर आवर हॉबीज. तो और हॉबीज का कुछ कभी कभी ये भी होता है दैट वी कीप ऑन स्विचिंग देम. मूड ऑफ हुआ ये कर लिया, बोर हुए ये कर लिया. तो हॉबीज डू चेंज. लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी प्लांटिंग भी आपकी, आपने जो बताया था हॉबी है, तो अगर मैं आपकी प्लांटिंग और आर्ट्स की जो हॉबी है इसको लेकर बात करूं, तो आपको क्या लगता है कोई एक ऐसा मोमेंट आपको याद है जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग था आपकी जर्नी में आपके लिए? कि भाई ऐसे एक होता है ना कि जब हम प्लांटिंग करते हैं तो पहली दफा हम जब सीड डालते
0: हैं, बहुत एक्साइटिंग होता है.
1: तो कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है? व्हाट वर योर फीलिंग्स अबाउट इट? व्हाट डिड, हाउ डिड इट हैपन? कुछ ऐसा एक्साइटिंग आपको कुछ याद है?
0: 2 years अगो मैंने एक सनफ्लावर सीड डाला था सॉइल में. तो हम उम्र के लिए गए थे 1 week तक. वो एक्चुअली ग्रो हो रहा था कुछ 3 months से एंड उसने फ्लावर नहीं दिया था. जस्ट आफ्टर उम्र जब वापस आ गए, मैंने देखा कि वो इतने बड़े फूलों के साथ. तो बहुत एक्साइटिंग था, लग रहा था कोई रिवॉर्ड मिला हमें इसके लिए.
1: अच्छा अच्छा, जब ये आपका जो प्लांटिंग का जो शौक है ये किस हद तक है अगर मैं पूछूं? वैसे मुझे जितना मैंने आपके बारे में आपके पेरेंट्स से पूछा और उन्होंने जितनी एक्साइटमेंट से मुझे बताया ना, तो मतलब अगर मैं लिसनर्स को ये बता दूं कि मैंने इनको इसलिए बुलाया था क्योंकि इस एज में किसी बच्चे को इतना प्लांटिंग का शौक हो, कि मैंने इनके पेरेंट्स से ये सुना है कि इनको प्लांटिंग का इतना शौक है कि इनके रूम में, इनके पास गार्डन नहीं है, बट इफ़ यू गो इनसाइड हिज रूम इट्स फुल ऑफ प्लांट्स. और बच्चे छुपा छुपा कर कैंडीज रखते हैं, तो ये छुपा छुपा कर जो है ना खादें बना रहे होते हैं, तो फर्टिलाइजर्स बना रहे होते हैं कि अम्मा को पता ना चले कि मैं सब्जियां और छिलके कहाँ कहाँ लेकर जाकर उनको छुपा कर क्या क्या चीजें बना रहा हूँ. तो कुछ ऐसा है. मुझे इतना एक फनी, इनकी मदर ने एक बात बताई, कहती है मैं रूम साफ कर रही थी. वैसे तो अपना रूम खुद ही साफ करते हैं, लेकिन एक दिन मैं ऐसी उनका रूम साफ करने गई तो पता चला बेड के नीचे से जो है ना छोटे छोटे वो सॉइल मेकिंग के एक्सपेरिमेंट्स इनके चल रहे थे. तो मैं कहूँ ये क्या है डिब्बियों में, ये क्या क्या रखा हुआ है? कहती मुझे इतनी हंसी आई. तो फिर मुझे बाद में जाकर एहसास हुआ ना ही इज प्रीटी मच सीरियस अबाउट प्लांटिंग प्रोसेस.
0: आई एम मैड फॉर हिम.
1: तो ऐसा हमें भी बताएं कुछ ऐसा, आपकी जबानी अगर हम सुनना चाहें कि आइडियाज कहाँ से जनरेट होते हैं भाई. ये जो आप अपनी एक लैब खोल कर बैठे हैं अपने बिस्तर के नीचे, बड़े लोग अपना सामान रख रहे होते हैं और ये सॉइल रख रहे होते हैं और प्लांट्स और सीड्स छुपाई हुई होती हैं इन्होंने.
0: मैं बेसिकली शुरू से बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ. मैं शुरू से बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ. मेरे पेरेंट्स बहुत इससे फेड अप थे पहले कि मैं सोप मिक्स कर रहा हूँ स्लाइम बनाने के लिए और कुछ भी. तो सेम चीज विद प्लांट्स,
1: सही,
0: मैं यही करता हूँ. मैं कभी फर्टिलाइजर मिक्स कर लेता हूँ और कभी सीड्स को डाल देता हूँ कोई सॉइल में, देखने के लिए क्या लिख लेगा उसमें से. मैं बस बहुत क्यूरियस हूँ.
1: क्यूरियोसिटी, इट्स वेरी गुड. अच्छा, ये एक ऐसा स्पार्क है, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन इट, के डोंट लूज इट. होता ये, एज हमारी बढ़ती जाती है, वी गेट इन टू अदर स्टफ एंड वी फॉरगेट अबाउट अवर हॉबीज एंड अवर क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी कहीं गुम हो जाती है, वो फेड आउट नहीं होने देना बेटा, वो रखना. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं

0: कि एज पर नाउ, वैसे तो हम जब बड़े होते जाते हैं ऑब्वियसली वी हैव अवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड अवर ओन सिचुएशंस, लेकिन एज पर नाउ मुझे बताएं कि आपका अभी का सबसे, जैसे कहते हैं, मैं कहूँ कि भाई ये मेरा ड्रीम है, मुझे ये करना ही करना है, तो क्या अभी तक दिमाग में क्या प्रोसेसिंग चल रही है?
1: अभी मेरा 10th ग्रेड है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं अच्छे मार्क्स लूँ बोर्ड एग्जाम के लिए, वो बस मेरा बिगेस्ट गोल है अभी, क्योंकि बहुत ईजी नहीं है, लेकिन जब मैं कर लूँ ये तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल, जो कहते हैं ना, एम फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड इन द स्टार्स, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो एम अच्छा रखता है वो कहीं ना कहीं पहुंचता ही है। अच्छा ये बताएं कि अभी तो आपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो अगर जैसा कि आप बता रहे थे कि आप स्टडीज में भी अच्छे हैं माशाल्लाह से, ये भी एक अचीवमेंट होती है कि अपनी हॉबीज को साथ लो और अपनी एकेडमिक्स को आप साथ लेकर चलो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पढ़ाई खुद करते हैं या अम्मी अब्बू जबरदस्ती बिठाते हैं सर पे को डंडा लेकर बैठेगा?
1: मैं खुद करता हूँ, मैं थोड़ा सा शुरू से रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे
0: अरे वाह
1: बुरा लग रहा है कि मैं तारीफ कर रहा हूँ अपनी, लेकिन सच
0: नहीं, यू शुड बी, ये दिस इज अ थिंग व्हिच यू शुड प्राउडली से दैट आई डू नॉट ट्रबल, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन दिस एज, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो ये बताएं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही आ गई है या इसकी कोई एक स्पेसिफिक वजह है, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई सिचुएशन हुई तो आपने सोचा कि नहीं भाई ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, या शुरू से ही ऐसे?
1: नहीं, मुझे मेरे अंदर ये चीज़ है कि मुझे किसी को तंग नहीं करना, तो मैं शुरू से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ही कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे तंग नहीं करना किसी को कि अपना टाइम वेस्ट करे बताने के लिए, डू योर होमवर्क और क्लीन योर रूम, मुझे खुद ही करना सब
0: गुड गुड। अच्छा अंडरस्टैंडिंग बच्चा है ये माशाल्लाह से, गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि आपका, लोग अचीवमेंट्स के बारे में तो पूछते हैं, अभी तक कोई ऐसा कोई काम, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट गुजरा है जिसके बारे में आप कहें उप्स गलती हो गई, ये वाला तो काम ना मेरे इंटरेस्ट का था और ना मुझसे हुआ ये काम प्रॉपरली, कुछ ऐसा हुआ है कभी, कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, कुछ ट्राई करने की कोशिश की हो एंड इट डिड नॉट वर्क आउट? इट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस कि हम लोग कहते हैं कि भाई
1: बहुत सारे
0: ये हमारे काम की चीज ना थी।
1: हाँ, जैसे मैंने बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स बहुत सेंसिटिव एंड बहुत ज्यादा ही, तो क्या बोलते हैं उनको,
0: आप कह लें कि टेम्परेचर का इसका उसका बहुत
1: एक वर्ड है उसके लिए, मतलब
0: एक वर्ड
1: उसके लिए,
0: बेटा डिक्शनरी लेकर आऊं
1: क्या होता है मतलब?
0: अच्छा कुछ भी
1: नीडी है?
0: अच्छा दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर कंडीशंस?
1: उर्दू में एक लफ्ज है,
0: चले उस वर्ड को स्किप कर जाते हैं।
1: हाँ
0: मतलब यूं समझ लें कि वो बहुत मखसूस एक एनवायरनमेंट चाह रहे होते हैं।
1: हाँ, बहुत नीडी एंड बहुत ज्यादा ही मतलब सेल्फ अब्सॉर्ब।
0: अच्छा चलें, आपकी प्लांटिंग के बारे में, आपका सबसे फेवरेट टाइप का पौधा या कोई नाम या कुछ ऐसा होगा कि आपका फेवरेट पौधा है, कौन सा वाला?
1: मनी प्लांट फॉर श्योर, उसने बहुत चीजें, मेरे बहुत सारे अब्यूसेस
0: बर्दाश्त किए।
1: हाँ सच में, मैंने उसको पानी ही दिया, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाल दिया, उसने फिर भी लव कर लिया। सो
0: अच्छा, मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके बारे में कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट प्लांट्स, ये अगर आप पानी में डालें तब भी चल जाता है, खाली पानी में, अगर आप सॉइल में डालें तब भी चल जाता है। तो हाँ, ये इनकी बात सही है कि बेचारे ने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया तो वो बेचारा मनी प्लांट चल जाता है, लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर मेरे पास नहीं चलता, इट्स ओके, वो एक अलग दुख है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
4: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: यूटिलाइज कर ले उसके केयर.
1: सही,
0: अपना को बर्डन नहीं करे बेसिकली कोई भी चीज़ के साथ. आप नहीं कर सकते तो नहीं करे.
1: अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट तो है कि बच्चा समझदार है भाई, प्लांट्स भी उगा रहा है, अपने कमरे को गार्डन भी बना लिया है, वॉक इन पार्क बनाया हुआ है उन्होंने अपने अपने कमरे को उन्होंने वॉक इन पार्क बनाया हुआ है. तो ये बताएं कि अगर एक ऐसी सिनेरियो लेते हैं कि भाई आपका रूम का अगर कोई स्पेशल किस्म का नाम रखना हो तो क्या क्या होगा आपके रूम का नाम? आप अपनी अपनी नज़र से अपने रूम को देखें तो
0: फॉरेस्ट.
1: फॉरेस्ट, वाह बड़ा ही सिंपल सा.
0: हाँ मतलब और क्या.
1: अच्छा तो फॉरेस्ट के अंदर जो सुपर हीरो बैठा होगा उसका क्या नाम होगा? अपने आप को क्या नाम देंगे?
0: मुझे नहीं पता, मैं हानी हूँ.
1: अच्छा ये भी नहीं, बच्चे कहते हैं ना भाई मैं फलानी पावर हूँ मेरे पास, मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ. अच्छा तो ये बताइएगा कि आपके आगे जाकर अगर मैं कहूँ कोई प्लान्स हैं कि आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे, अपनी हॉबीज को फॉलो करेंगे या ये सोचेंगे कि नहीं भाई एक होता है ना नहीं सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, उसको फॉलो करेंगे या अपनी हॉबीज की तरफ जाना पसंद करेंगे?
0: आइडियली अपनी हॉबीज, लेकिन मैं कभी भी सोचता हूँ कि मे बी मैं अर्न नहीं कर पाऊँ, लेकिन अगेन ये मतलब बस ऐसे ही लोग बोलते हैं कि आर्ट के अंदर इतना फ्यूचर नहीं है सब कुछ, लेकिन हाँ है. आप जब ट्राई करें अपना वर्क डालें तो आप कर लेंगे कुछ ना कुछ, आप अल्लाह के अंदर यकीन करें.
1: सही. अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक होता है ना हम बात करते हैं कि आज से अपने आप को रिमाइंडर देने के लिए जब हम बड़े हो जाते हैं, देर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन लाइफ कि हम वी लूज दैट स्पार्क समहाउ.
0: या
1: अपने आप को अगर कोई एक रिमाइंडर कोट आपने हमेशा के लिए साथ रखना हो जो आप कहें कि वो दूसरों को भी इंस्पायर करे और चाहे आप कितने ही बड़े हो जाएं, यू जस्ट रिमेंबर दैट थिंग इन योर माइंड, कोई कोट हो कोई वर्ड हो, वो क्या होगा कि जो आज से 15 साल बाद भी आपको एकदम से बात याद आए, इट ब्रिंग्स द स्पार्क बैक इन यू.
0: डोंट लेट योर इनर चाइल्ड डाई लाइक फॉर श्योर. लाइक यू शुड ट्राई टू लाइक कीप मेमोरीज ऑफ व्हाट यू डिड व्हेन यू वर अ किड. तो आप जब बड़े हो गए तो आप देख पाए उनको कि आपने क्या क्या किया है. इनकेस आपने उस स्टॉप कर लिया करना तो आप समझ जाए कि आपने क्या लूज कर लिया.
1: सही सही सही. अच्छा ये एक बात बताएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एज पर योर अचीवमेंट, ठीक है आपको माशाल्लाह स्कूल से भी आपने मुझे बताया आपको अचीवमेंट्स रही हैं आपकी, आप पेंटिंग वगैरह, किस किस टाइप की पेंटिंग आपको करना पसंद है? कुछ लोगों को होता है ना भाई हमने फ्लावर बना लिए, हमने नेचर पेंट कर ली, हमने टेक पेंट कर लिया, आपको किस किस्म की पेंटिंग पसंद है?
0: पोर्ट्रेट पेंटिंग.
1: पोर्ट्रेट पेंटिंग
0: हाँ इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ फेस के जो सिमेट्री है जो प्रोपोर्शंस है बहुत हार्ड है समझना, लेकिन सेम टाइम इंटरेस्टिंग है बिकॉज हर चीज इंटरेस्टिंग होती है बेसिकली.
1: अच्छा ये उन बच्चों में से हैं जो कहते हैं कि जितना मोटिवेशन इसीलिए है क्योंकि इट्स डिफिकल्ट. अच्छा वाह नाइस गुड. कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं नहीं भाई ये हमसे ना हो पाएगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल है. अच्छा भाई ठीक है बहुत अच्छी बात है, ये मोटिवेशन इनका यही है कि हर चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम भागते रहें उसके पीछे. ठीक है. अच्छा भाई ये बताइएगा कि आपसे अगर मैं ये पूछूं कि कोई एक ऐसी कूल सी एडवाइस जो जितने आपके एज ग्रुप के बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको, अब हर किसी का समझाने का लेवल अलग होता है और समझने का लेवल अलग होता है और समझाने का तरीका अलग होता है, तो अगर आप अपनी एज ग्रुप के बच्चों को कोई एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी?
0: डोंट डू व्हाट पीपल योर एज आर डूइंग बिकॉज वो हमेशा कुछ सिली कलर होते हैं यूजली कि वो अपने गॉसिप्स में लगे हुए होते हैं, चीज़ों में लगे होते हैं. आप बेटर है कि अपने ऊपर फोकस करें, आप अपने ऊपर वर्क करें कि आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में सब कुछ. तो आप अफ्रेड नहीं हो यूनिक होने में और डिफरेंट होने में बिकॉज वो आपकी खूबी है, खामी नहीं है.
1: योर यूनिकनेस इज योर स्ट्रेंथ. वेरी गुड. आई लाइक दिस थिंकिंग. अक्सर औकात होता है बच्चे शर्मा जाते हैं घबरा जाते हैं कि वॉट इफ अदर किड्स मेक फन ऑफ मी. कभी कभी ऐसा होता है.

0: कि हमारी स्टाइलिंग डिफरेंट होती है. कभी कभी हम कुछ कलर ब्राइट पहनते हैं तो लोग कहते हैं कि अच्छा भाई बहुत ब्राइट किस्म का बच्चा है, या कुछ कभी बच्चे हेयर स्टाइल ऐसा बना लेते हैं, या कुछ बात करने का अंदाज या कुछ सोच अलग होती है तो उसके ऊपर. बट योर एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी इज डिफरेंट.
1: एग्जैक्टली.
0: ओके अच्छा भाई ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ये बताएं कि सबसे

0: चैलेंज आपके सामने आया हो तो वो क्या चीज थी?
1: सबसे टफ चैलेंज,
0: और उसको आपने कैसे हैंडल किया? कोई ऐसी चीज होगी ना, कभी स्कूल में दोस्त बनाते हुए हुआ हो या अम्मी अब्बू को कोई बात अंडरस्टैंड करते हुआ हो?
1: रिसेंटली मैंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन कम्पीट किया था, तो बहुत टफ था बिकॉज मैंने कभी सिंग नहीं किया, वो भी लाइक अराउंड 100 पीपल उनके सामने मैंने सिंग किया स्टेज में, तो मेरे पास स्टेज फ्राइट है, तो उसमें कॉन्कर करने के लिए वो बहुत टफ था एक्चुअली, बिकॉज वो इतना ईजी नहीं है मेरे लिए बिकॉज मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ.
0: Okay, but this is also an achievement. If you think that you're an introvert and you go face your fears.
1: Yeah.
0: आपको, I believe हम सबको ही होता है स्टेज फोबिया, तो 100 लोगों के सामने आपको खड़ा कर दो तो चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, it takes a lot of effort to actually talk in front of people.
1: Yeah,
0: आप
1: so
0: अपने
1: hard.
0: दिमाग में कितना भी कुछ सोच लो, लेकिन जब आप कितने भी प्रिपेयर्ड हो जाओ, जब आप चार लोगों के सामने आते हैं ना तो साइलेंट मोड पर आ जाते. अच्छा जी, ये भी एक अचीव, और वो भी सिंग किया.
1: हाँ,
0: गुड.
1: लेकिन मैंने मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपनी आईज बंद की बिकॉज कई दफ़ा मैं देखता नहीं था लोगों के वो मुझे देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन मैंने अपना फियर कॉन्कर किया, अच्छा सिंग किया था.
0: वेरी अच्छा. ये आपकी इस बात ने ना मुझे एक चीज़ याद दिला दी. I remember when I was in my, I believe, 10th grade or second year में थी मैं, हायर सेकेंडरी में थी, तो मुझे याद है आई लव डिबेट्स, तो मैंने एक डिबेट में कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था. मामला ये होता था कि उस ज़माने में ना हमारी असेंबली होती थी बहुत बड़ी, एंड इट वॉज़ अ ह्यूज स्कूल, तो सारे बच्चे असेंबली में खड़े होते, सारे टीचर्स, प्रिंसिपल एंड एवरीबडी वॉज देयर, एंड डिबेट हमें करनी थी, एंड आई वॉज अ काइंड ऑफ शाई पर्सन, आई डोंट, मुझे ये था कि भाई उस जमाने में आप इतने 5,000 बच्चों के सामने, टीचर के सामने खड़े कैसे. मेरे भाई ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी, उसने कहा बेटा देखो बोलना तो वैसे भी तो आपने करना ये है कि आपने किसी को नहीं देखना, वो सामने दरख्त नजर आ रहा है ना, ट्री, जस्ट लुक एट द ट्री एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, आई थिंक एवरीबॉडी एल्स इज आल्सो अ ट्री, एंड इट हेल्प मी अ लॉट.
1: इट डज, लाइक
0: आप, यह होता ये कि अगर आप किसी डिबेट में या किसी सिंगिंग कंपटीशन में या किसी में भी आप हिस्सा लेते हो ना, तो द ट्रिक इज कि आप ऑडियंस में जाहिर बात है आपकी नजर तो जाएगी किसी एक ऐसे इंसान की तरफ, बेशक यू डोंट नो देम, यू डोंट नो हु इज सिटिंग इन द फ्रंट, किसी एक ऐसे बंदे की तरफ आप देखो आई टू आई जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको लग रहा हो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका, दे लुकिंग, दे आर इंटरेस्टेड इन मी.
1: कभी बेस्ट फ्रेंड्स को नहीं करवाएंगे वो आपके ऊपर हंसेंगे.
0: दोस्तों को तो आप भूल ही जाए ना, दोस्तों की तरफ आपने देखना ही नहीं है, क्योंकि आपने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो बस
1: आप फिर शुरू हो जाएंगे,
0: वहाँ डिबेट वहीं पे खत्म हो जाएगी. तो आपने करना है किसी एक सीरियस इंसान को, लेकिन आपको लग रहा हो कि भाई दे आर एक्चुअली लिसनिंग टू मी, तो आप बस उन्हें फोकस करके आप कुछ भी जो भी आपके दिमाग में, इट्स सिंगिंग, इट्स अ डिबेट, इट्स अ स्पीच, व्हाटएवर इट इज, आप बोल दो और यूं सोचो कि आसपास कोई नहीं है. इट हेल्प्स यू, नेक्स्ट टाइम इट विल हेल्प यू. अच्छा, नेक्स्ट टाइम में आपको क्या लगता है, यू विल बी द सेम पर्सन व्हेन यू गो ऑन द स्टेज, और यू विल बी अ बिट डिफरेंट एंड कॉन्फिडेंट?
1: आई विल बी अ बिट डिफरेंट बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस अब आ गया है, एंड मैंने अच्छा किया फर्स्ट टाइम में, तो मैं कर सकता हूँ उससे बेटर.
0: अच्छा, ये बताएं कि क्या आप ये एडवाइस करेंगे कि अगर आपको किसी चीज से डर लगता हो येट यू फेस इट. कभी कभी होता है ना, हम राइड्स पे जाते हैं, थीम पार्क में जाते हैं, राइड्स पे जाते हैं, यू आर स्केयर्ड ऑफ इट, टू मच हाइट, गोल घूम रहा है, ये हो रहा है, इट्स अ रोलर कोस्टर, मोस्टली पीपल आर स्केयर्ड ऑफ रोलर कोस्टर्स. वुड यू एज अ पर्सन, मतलब जैसे आपकी नेचर है, आप कहेंगे डर लग रहा है लेकिन करना चाहिए,
1: मजा आएगा,
0: ऐसा आप एडवाइस करते हैं लोगों को एक दफा लाइफ में ऐसा कोई एडवेंचर करना चाहिए?
1: हाँ, एग्जैक्टली करना चाहिए. आपके पास हाइट फोबिया है तो आप एक टॉल जगह में जाए, वहाँ पर हाइकिंग करें, आप अपने फियर कॉन्कर करें, बिकॉज ये फियर्स हमने मेकअप किए हुए, ये एग्जिस्ट नहीं करते.
0: अरे वाह, क्या तो बात बोली. अच्छा, मैं एक मजे का एक फैक्ट बताऊं कि जो फियर का फैक्टर है ना, ये हमारे जब हम छोटे होते हैं ना, वी आर नॉट बॉर्न विद इट.
1: या
0: टिल द एज ऑफ आई बिलीव 3 or 5 ये डिवेलप होता है हमारे अंदर, और ये सोसाइटी डिवेलप करती है हमारे अंदर. तो आई लाइक दिस थिंग अबाउट एवरी किड, आई अप्रिशिएट इट कि जो अपने फियर्स को कॉन्कर करते हैं, कहते नहीं हमें डर लगता है, लेकिन येट इफ इट्स अ पॉजिटिव थिंग
1: आई विल एटलीस्ट

0: ट्राई इट. तो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग. और ये लाइफ में जब हम छोटे होते हैं तब हमें पता नहीं चल रही होती है, जब बड़े होते चले जाते हैं ना होता है वो, हम कहते हैं खतरों के खिलाड़ी, हम खतरों के खिलाड़ी हैं. तो पॉजिटिव नोट पर जो कोई डिसेंट सी चीज हो.
1: बुरी चीजें नहीं कर रहे, जैसे रॉब नहीं करने के बैंक को.
0: हाँ जी, बुरी चीजें नहीं, पॉजिटिव. ऑन अ पॉजिटिव नोट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे बच्चे कहते हैं कि भाई स्कूल में ही ले लें. ऑन अ पॉजिटिव नोट कुछ बच्चों का ये क्राइटेरिया होता है कि नहीं भाई हम स्पेलिंग बी में क्यों हिस्सा लें, हमारी स्पेलिंग अच्छी नहीं है. एटलीस्ट पार्टिसिपेट. स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है?
1: थोड़ा सा, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हूँ.
0: इट्स नॉट अबाउट अच्छा होना, इट्स अबाउट आप पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं.
1: हाँ, कोशिश करता हूँ. कोशिश करते हैं ना? यूजुअली फेल हो जाता हूँ.
0: इट्स ओके, यू ट्राइंग, यू आर गिविंग योर बेस्ट इन एवरीथिंग. दैट्स हाउ वी एक्चुअली गेट टू नो व्हाट वी आर गुड इन. नॉट एवरीबॉडी इज गुड एट एवरीथिंग, ऑब्वियसली समवन इज गुड फॉर समथिंग. तो ये बताएं कि आपको, अगर मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट ऐसा है जो आप कहेंगे हाँ ये चल जाएगा, मैं हैंडल कर लूंगा?
1: बैडमिंटन, वो अच्छा स्पोर्ट है बिकॉज वो इतना हार्ड नहीं है, रूल्स थोड़े से कम है कम्पेयर टू फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. तो वो अच्छा स्पोर्ट है ना, आप खेल सकते अपने फ्रेंड्स के साथ. वो
0: सही सही सही. अच्छा ये बताइएगा कि कोई ऐसा चैलेंज, अभी हम चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे थे, जो अभी तक आपकी हिम्मत नहीं हुई है करने की लेकिन आपका दिल करता है कि हाँ भाई इसको ट्राई जरूर किया जाए?
1: डिबेटिंग. डिबेट, हाँ बहुत मुझे मुश्किल लगता है लेकिन मुझे करना है सेम टाइम में, पता नहीं क्यों.
0: अच्छा, सोच रहे हैं अभी इंशाल्लाह. हाँ. और कोई ऐसा टॉपिक मिले तो उसके ऊपर डिबेट. अभी हमारे कबीर भाई भी एक शो कर रहे हैं डिबेटिंग का, उसके अंदर कभी कोशिश कीजिएगा पार्टिसिपेट करने का,
1: जरूर
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा ये बताएं कि हम कहते हैं ना एक हर इंसान की एक बकेट लिस्ट होती है. बकेट लिस्ट इन द सेंस कि एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हमने लिखा होता है कि भाई हम क्या क्या करना चाहते हैं लाइफ में. कुछ ऐसा है आपके पास, कुछ कोई बकेट लिस्ट है कि हाँ भाई
1: मुझे स्काई डाइविंग करनी चाहिए मुझे चांस मिले. हाँ,
0: हाइट से डर नहीं लगता आपको?
1: डर लगता है इसलिए मुझे करनी है.
0: ओ नाइस, स्काई डाइविंग मुझे भी करनी है बेटा. चलो दोनों साथ चलेंगे, कोई बात नहीं. आप पहले चले जाना. नहीं, मैं पहले जाऊंगी क्योंकि मुझे अक्सर ओकार डर लगता है जब मैं लोगों की हालत देख लेती ना चीखते चाखते, फिर मैं बैकआउट कर जाती हूँ. अब जैसे मुझे याद है कि राइड्स में ना एक बहुत मशहूर राइड्स है कि इट्स कॉल्ड फ्राइट होती है, वो एंग्री बर्ड वाली.
1: हाँ,
0: है
1: स्लिंग शॉट.
0: स्लिंग शॉट की एक राइड है. तो उसको जो है ना लोग बड़े मतलब डरते भी हैं लेकिन हाँ. वो राइड वो उनको एक्सपीरियंस भी करनी है. तो मैंने 2-3 दफा कोशिश की है और मैं कहती हूँ कि जब तक मेरा नंबर आता है तब तक मैं वापस पलट जाती हूँ क्योंकि मैं लोगों को सिर्फ चीखते हुए देखती हूँ. I really want to try.
1: सच में मैं गया था 1 month ago.
0: You've been there?
1: हाँ.
0: स्लिंगशॉट.
1: हाँ, मेरे लेकिन मम्मा ने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया, वो डर गई देख के.
0: मम्मा डर गई बच्चे. अच्छा ये भी एक फैक्ट है, मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि अक्सर औकात ये होता है वी आर लिविंग अवर पेरेंट्स फियर्स. तो पेरेंट्स जितने भी सुन रहे हैं ना, मेरी तो उनसे दरखास्त है कि आपके जो अपने फियर्स हैं ना वो आप अपने तक रखें, जो बच्चों के फियर्स, बच्चों के अंदर अपने फियर्स इम्प्लांट नहीं करें. इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग एंड इफ यू फील कि नहीं मेरे बच्चे को इस चीज से डर नहीं लगना चाहिए तो डोंट गिव देम द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग स्केयर्ड. जैसे अभी आपने बोला कि स्लिंग शॉट से मम्मा को डर लगता है, मम्मा जो है ना बेटे को खींच के पीछे कर रही है लाइन में, करने दे, मजा एक्सपेरिमेंट है. तो भाई पेरेंट्स से ये गुजारिश है अपने फियर्स इम्प्लांट नहीं करें बच्चों में. देयर आर डिफरेंट जनरेशन, ये खतरों के खिलाड़ी हैं सारे के सारे. अच्छा भाई ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 10 साल बाद 10 years अराउंड 26 माशाल्लाह 26 years के हो जाएंगे, क्या सोचते हैं? वेयर डू यू सी योरसेल्फ? वॉट वेयर कहाँ क्या कर रहे होंगे, कुछ सोचा है? क्योंकि टाइम तो यूं गुजरता है.
1: हाँ, मेरा प्लान है कि मैं बिजनेस शुरू कर लूँ. तो मुझे देखना है कि मैं फ्यूचर में कोई बिजनेस जॉब कर रहा हूँ और मैं बिजनेस अपना मैंने शुरू कर लिया, जस्ट स्टार्टअप.
0: हाँ अच्छा, वेरी गुड. अच्छा ये तो है कि एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है तो कुछ दिमाग में चल रहा है किस जॉनरा में जाना चाहेंगे, क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे?
1: अभी

0: एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं एवरीडे, सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ.
1: ठीक है, क्योंकि एक टाइम मुझे याद है जब पेरेंट्स का एक टाइम ऐसा भी हमने देखा है कि जब मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा ना कोई और फील्ड नहीं थी, तो बच्चे जब जिद करते थे ना कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, कंप्यूटर्स की तरफ जाना है, तो पेरेंट्स कहते थे इट्स गुड फॉर नथिंग, इट्स गुड फॉर नथिंग, क्या है, कुछ भी नहीं. उस जमाने में ना वो अब तो इस जनरेशन को तो पता भी, फ्लॉपी डिस्क का पता है, फ्लॉपी डिस्क नहीं पता मुझे, पता है सीडीज का पता है.
0: हाँ,
1: सीडीज का पता है. वो जो मैं बात कर रही हूँ डॉस के जमाने की, डॉस और फ्लॉपी डिस्क के बारे में, जब कंप्यूटर्स और एक्चुअली दिस ब्लैंक स्क्रीन्स और उसके ऊपर सिर्फ कोडिंग चलती थी, तो उस जमाने में भी एक जनरेशन ऐसी थी जो बिल्कुल इस बात पे आमादा नहीं थी कि वी है, उनको ये था कि नहीं हमें कंप्यूटर्स ही करना है. और पेरेंट्स कहते थे कि नहीं देर इज नथिंग इन कंप्यूटर्स. और आज देखें, आज एआई का दौर, एआई के बगैर कुछ चलता नहीं. तो तभी मैंने आपसे पूछा कि मैं एक एक रिव्यू लूँ आपसे कि भाई वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 years. So, चलें, ये भी एक अच्छी बात है that you're thinking about being an entrepreneur. It's not that easy. लेकिन आजकल का दौर यही कह रहा है कि हाँ, most of the people are going towards entrepreneurship. तो वो
0: because अब jobs कम हो गई है market में, इसलिए
1: jobs का कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अपना काम अपना होता है. यू आर अ बॉस ऑफ योर ओन थिंग.
0: वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि अब वो कंट्रोल नहीं कर रहा.
1: हाँ हाँ हाँ. अच्छा, ये बताइएगा कि जो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी की बता दें या कोई एक ऐसी एडवाइस दे दें जो सारे बच्चों को दिमाग में रखनी चाहिए,
0: जिसमें आपको इंटरेस्ट, आप वही करते रहें, गिव अप नहीं करें, तो सेम चीज जो मैंने पहले बोला.
1: और आपके लिए अगर आप कोई दोस्त बनाते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है, अगर आप कोई दोस्त बनाते हैं, अगर आप चार लोगों में उठते बैठते, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी डू यू सी कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त बनने के लायक है, या ऐसा होना चाहिए इंसान को कि जिससे मैं दोस्ती करूँ, या किसी और की भी अगर किसी से दोस्ती हो तो भाई इसके अंदर ये बात बैड हैबिट ये वाली नहीं होनी चाहिए और ये वाली होनी चाहिए अच्छी बात.
0: तो बेसिकली हम्बल हो, वो लोगों की बैक बाइट नहीं करे बिल्कुल भी, वो बहुत बुरी आदत है. एंड वो अंडरस्टैंडिंग हो, आपके प्रॉब्लम समझ पाए, आपको हेल्प कर पाए जब आपको नीड है, एंड आप भी उनको हेल्प कर पाए. बेसिकली आपको बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड गुड क्वालिटीज.
1: अच्छा भाई, अब एक और सवाल की तरफ आते हैं, और वो ये है कि ज़रा ये बताइएगा कि आपने बताया कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, दोस्त वगैरह हैं आपके?
0: हाँ है, लेकिन एक स्मॉल ग्रुप है जिसके साथ मैं वाइब करता हूँ.
1: ठीक है, तो वो जो स्मॉल ग्रुप है, कभी ऐसा हुआ है उनके बीच में, मतलब कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या किसी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या लड़ाई झगड़ा ना भी हो, एक होता है ना एक डिफरेंस ऑफ थॉट आ जाता है, यस और नो का फर्क आता नहीं, आई एग्री ऑन इट एंड आई डोंट, तो उस मैटर को कभी सुलझाया, ऐसा ऐसा कोई टॉपिक आया?
0: हाँ, बहुत दफा ऑब्वियसली, लेकिन मैंने उसको एक न्यूट्रल वे में देखा कि आप लाइक कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, एंड मैं डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन हम दोनों दोस्त हो सकते फिर भी.
1: अच्छा, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझदारी की, कि हमारी दोस्ती या हमारे जो घर के भी फैमिली के रिलेशंस होते हैं बहन भाइयों के अंदर, अम्मा अब्बा के साथ, हमारे रिलेशंस चलते ही तभी हैं व्हेन वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस.
0: या एग्जैक्टली,
1: लोग कहते हैं ना कि दोस्त आपकी मेंटालिटी का हो, इट्स नॉट दैट कि दोस्त आपकी मेंटालिटी का हो, ये होता है कि आप किस तरीके से उसे हैंडल कर जाते हैं, कि जो डिफरेंसेस होते हैं ना वो एक रिस्पेक्ट होती है. वो जहां पे भी होगी ना. अच्छा, एक बात बताएं, क्या आपको ऐसा लगता है कि घूमते फिरते आप भी स्कूल में हैं, दोस्तों के अलावा भी योर अ सोशल पर्सन के, चलें कह लें कि स्कूल में इंटरेक्शन है, तो क्या आपको लगता है कि आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा मैं आ गया है, या बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या यू थिंक दैट नो वी आर फाइन दैट हाउएवर लेवल वी आर ऑन एट, तो हम इसी में अच्छे हैं?
0: मैं बोलूंगा कि हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं, हम इनफ कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अपना को बिलीव, हम अपने अंदर बिलीव नहीं करते एनीमोर.
1: अंडर कॉन्फिडेंस चल रहे हैं.
0: हाँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपने अंदर बिलीव नहीं करते, वो अपने फियर्स से कॉन्कर नहीं करते, एंड वो मतलब ओवरऑल इतने
1: वो नहीं है कि मतलब अपने अपने ऊपर एतमाद नहीं
0: है, एतमाद नहीं है।
1: अच्छा ये एक बात बताएं कि ये आप क्या आपको पता है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? एक होता है ना कि देखें बात ये होती है कि हमें चार बुराइयां सामने वाले में नजर आ रही हो, ठीक है, ये बात नहीं करता, ये ड्रेसिंग ऐसी करता है, अच्छा इसका हेयर स्टाइल कैसा है, अच्छा ये है, ये एक्स वाई जेड, इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर मैं ये बात आपसे पूछूं कि व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर इट, उसका सॉल्यूशन क्या है? फॉर एग्जांपल इफ यू आर सीइंग दैट समबडी इज अंडर कॉन्फिडेंट, तो आप अगर अपने आप को उस शू में डालकर देखें तो आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे होता है?
0: आप सपोर्ट करें उस पर्सन को, जेन्युइनली आप सपोर्ट करें, आप उसको एवरी में सपोर्ट करें जो आप कर सकते हैं। जब वो कोई कंपटीशन में टेक पार्ट करे आप उसको बोले वो कर सकता है, गुड लक एंड ऑल दैट, तो उसको आप कॉन्फिडेंस देते हैं।
1: अच्छा भाई जाने से पहले अब हमारा टाइम भी जो है वो थोड़ा बहुत तकरीबन ख़त्म होने को आ गया है, तो जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि हमारे साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे,
0: ठीक है?
1: चलिए मैं आपसे एक वैसे रैंडम से क्वेश्चन करूँगी, आई जस्ट थ्रो सम क्वेश्चन, यू हैव टू कैच देम, लेकिन सेकेंड्स का सोचना नहीं है, सोचना कुछ भी नहीं है इसके अंदर,
0: ठीक है?
1: ठीक है, तो चलिए भाई मैं आपसे कुछ यूँ समझ लें 10 questions करूँगी, ठीक है?
0: ठीक है,
1: ताकि मैं सिर्फ एक फन के लिए। चलिए भाई शुरू करते हैं अपना, हम इसे कहेंगे द रैपिड फायर राउंड, ठीक है? तो ये बताइएगा चाय या कॉफी?
0: कॉफी।
1: होमवर्क या प्ले टाइम?
0: प्ले टाइम।
1: ये बताइएगा समर या विंटर?
0: विंटर।
1: पेट्स और नो पेट्स?
0: पेट्स।
1: क्रिकेट और फुटबॉल?
0: फुटबॉल।
1: चॉकलेट और आइसक्रीम?
0: आइसक्रीम।
1: ड्रॉइंग और डांसिंग?
0: ड्रॉइंग।
1: ओके गुड। A morning person or a night owl?
0: Night owl for sure.
1: What? Maths or science?
0: Science.
1: Okay, last question ye batayega ki bike achhi lagti hai ya car?
0: Car.
1: Oh, you are a car person. Acha, wow. Sports car?
0: No, like any car.
1: Four wheel drive.
0: Yeah.
1: Sports car ya four wheel drive? Yeah, a truck. Wow. Mujhse puchhe to main to sports car. Oh my god. वुम वुम। अच्छा भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबी दे और आपकी जो बकेट लिस्ट है इंशाल्लाह उसके अंदर और चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें ऐड होती रहें। एंड मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्टे मोटिवेटेड बिकॉज आई सी अ ब्राइट पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही ब्राइट रखे, ऐसा ही समझदार रखे, एंड रिमेंबर नॉट टू लूज योर स्पार्क। तो भाई साथियों जाने से पहले हम आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ भी, एनीथिंग टू द लिसनर्स हु आर एक्चुअली लिसनिंग टू यू, समथिंग नाइस?
0: डोंट गिव अप।
1: अरे वाह गुड, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है कि डोंट गिव अप, ऑलवेज रिमेंबर देयर वाज अ रीजन व्हाई यू स्टार्टेड, हमेशा उस रीजन को याद रखिएगा। कभी कभी हम लाइफ की भागदौड़ में भूल जाते हैं दैट व्हाई डिड वी एक्चुअली स्टार्टेड। तो आपकी कोई हॉबीज हैं वो भी एक अचीवमेंट है कि आपकी कोई हॉबी है। देर आर पीपल हु कैन नॉट फिगर आउट व्हाट देयर हॉबीज आर, हु कैन नॉट फिगर आउट व्हाट टू डू व्हेन दे आर बोर्ड। तो भाई अपनी हॉबीज को जिंदा रखें अपने अंदर, क्या पता यही हॉबीज आगे चलकर आपके लिए अचीवमेंट बन जाए, आपके लिए एक पाथ बन जाए, और आपको पॉजिटिव रखने के लिए, आपको कामयाब रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी टेक केयर करें। जो इंसान अपनी टेक केयर नहीं कर सकता वो दूसरों की भी नहीं कर सकता। यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल करें, सबसे ज्यादा ख्याल अपना करें। क्यों? क्योंकि आप जरूरी हैं भाई, आप यू आर इम्पोर्टेंट टू योर सेल्फ। जो अपना ख्याल नहीं सकता दूसरों का भी ख्याल नहीं सकता। तो भाई हमें दीजिए इजाजत, चले हानी
0: जी
1: भाई हम लोग चले स्टूडियो से बाहर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से फिर एक नए जूनियर जनाब के साथ मुलाकात होगी, उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा। तब तक के लिए आरजे सफा को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: News at 7 PM only on FM 107, Dil Se Desi।
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। वहाँ कतर में इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर FM 107। फरकान शाही से समात कीजिए आज की ताज़ा तरीन खबरें। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने स्वीडन के कौमी दिन के मौके पर स्वीडन के फरमारवा शाह कार्ल गुस्ताफ शांस दोहम के नाम तहनीती तार रवाना किया। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने स्वीडन के कौमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टरन के नाम तहनीती नाम प्रसार किया है। कतर ने कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए उन्हें दोनों बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और बैन अल-अक़वामी कानून की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया है। कौमी इंसानी हकूक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुल्तान बिन हसन अल जमाली ने कहा है कि हकीकी अमन अमान की बुनियाद इंसान और रियासती इदारों के दरमियान एतमाद और बिला इम्तियाज इंसाफ पर कायम होती है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियाँ। अब समाप्त कीजिए उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज With RJ Sarwar Mirza. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी. Only on FM 107, दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आप सबका एक बिल्कुल नए और दिल से जुड़े हुए प्रोग्राम में. भाई वो प्रोग्राम जहां हम हर रोज की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे बड़ी प्यारी कहानियों में बदल देते हैं. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में छुपी यादें, और कभी रोड या मेट्रो के सफर की पहली एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं. भाई हर शख्स के पास एक कहानी होती है और एक एहसास, एक याद जो उसके अपनी वर्चुअल डायरी का एक हिस्सा होती है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं. और यही वो यादें हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती हैं. भाई एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है. तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और भी करीब लाती हैं. यह है आपका अपना प्रोग्राम दोहा डायरीज, जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी. और इसी सिलसिले में सामईन, हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान. और आज के जो हमारे मेहमान हैं, दोहा की प्रोफेशनल और सोशल हलकों में कॉरपोरेट सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर काफी दिनों से मवसलात कतर में एक तवील अरसे से अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं. एजुकेशन के हवाले से बात करें, एजुकेशन की अगर बात करें, तो आपने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल किया, और वहीं आपकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में है. मजीद ये कि मार्केटिंग के साथ और बिजनेस एनालिस्ट का कीमती तजुर्बा रखते हुए इन्होंने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में एक मजबूत पहचान बनाई है. सोशल और कम्युनिटी हलकों और अदबी महफिलों में एक मशहूर और मारूफ नाम. ख्वातीन हजरात, आज के प्रोग्राम में हम मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो अपनी सलाहियतों के साथ अपनी शख्सियत से भी लोगों को मुतासर करते आ रहे हैं, जिनका नुमाया और काबिले एहतराम नाम है ख्वाजा निजामुद्दीन जुनेद, जिनको दोहा में जुनेद निजाम के नाम से जाना जाता है और आपने वाकई सुना होगा. आइए अब उनके हुजूर चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और उनका हाल चाल भी जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम जुनेद निजाम साहब. अहलन वसहलन सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए और अपने कीमती वक्त में.
3: मैं भी ममनून और मशहूर हूँ आपकी और 107 की टीम का, जो मुझे आपने इनवाइट किया है, और इट्स प्लेजर टू बी विथ यू ऑल.
2: अहलन वसहलन, वेलकम सर. और मैं दोस्तों को बता दूं, हमारे जितने सामईन इस वक्त हमारे साथ हैं, कि ये बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड मामला है यहाँ पर. जो आप जिस तरीके से जुनेद निजाम को जानते हैं, वो आज आप बिल्कुल जैसे कि ड्राइंग रूम में बैठ के और बातें सुन रहे होते हैं चाय पे, उस तरीके से आप जुनेद निजाम को देखेंगे. जहां हम इस प्रोग्राम में दोहा के हवाले से, इनकी दोहा की जिंदगी के हवाले से बातचीत करेंगे इंशाल्लाह ताला, और किस तरीके इन्होंने मजीद कामयाबी हासिल करी और दोहा इनके लिए क्या है, इन सारी चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए बातचीत करेंगे. तो अब सवाल जवाब से शुरू करूं.

0: निजाम साहब, तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को तीन अल्फाज में डिस्क्राइब करें तो वो क्या?
1: सवाल है आपका माशाल्लाह। वैसे तो हर एक की अपनी पर्सनालिटी होती है, मैं कहूंगा अगर तीन लफ्ज में अगर आप उसको डिफाइन करेंगे तो मैं कहूंगा कि पॉजिटिविटी, मेहनती, और मैं दोस्ती और भाईचारगी में बहुत वो रखता हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत अहमियत रखती
0: है।
1: पॉजिटिविटी, मेहनत और
0: इस बात की गवाही मैं भी देता हूँ अलीजान साहब। अच्छा तो ये बताइए कि दोहा में आपके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट दिन कैसे होता है या कैसे शुरू होता है? आज का दिन इंशाल्लाह आपके लिए परफेक्ट होगा।
1: हाँ, मेरे लिए तो बहुत परफेक्ट है कि मैं आपके साथ हूँ और माशाल्लाह हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने पसंदीदा उर्दू चैनल 107 जिसको हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। तो आप का जो सवाल है रिलेटेड टू वो परफेक्ट दिन क्या होता है, मेरे हिसाब से परफेक्ट दिन वो है किसी का भी, यानी मेरा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सुबह की शुरुआत हम्द व सना से करें और शुक्र गुजारी के साथ आप स्टार्ट कर लें, और सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करें कि हमको और एक दिन दिया है आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, और अपने आप को यानी आगे ले चलना है। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट दिन वो है जिसमें आप ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत करते हैं और उसको प्लान एंड प्रोग्रेस, आपके डेली रूटीन को आपने कैसे प्लान करना है व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस, और कैसा आपको क्या मीटिंग्स है, ये स्केड्यूलिंग, तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है।
0: सुभानअल्लाह भाई, बहुत अच्छे। चलिए एक बात और थोड़ी पर्सनल करता हूँ कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें, और जब मैंने आपसे कहना चाहिए जिद करी तो आप कैसे मान गए? क्या क्या कोई वजह थी?
1: पहले तो ये मतलब ये प्लेटफॉर्म्स पर मैं, मतलब मुझे उतना, मतलब यानी ओपनली यानी आना उतना वो नहीं है, मगर आपको मालूम है कि यानी नॉर्मल डे टू डे में आई एम वेरी फ्रेंडली एंड कम्युनिकेटिव पर्सन, पर मुझे जो लगा है आने की एक वजह खास ये है, मुझे लगता है हर इंसान में कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है जो वो जाहिर नहीं होती है या जाहिर होने में टाइम लगता है। अगर मेरी कहानी और मेरी जर्नी एक शख्स को भी हिम्मत, उम्मीद और मोटिवेट दे सकती है तो मेरे लिए ये बहुत खुशी का बायस होगा।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। चलिए जुनेद निजाम साहब, अब हमारे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ रुख करते हैं जहां कुछ ओरिजिन स्टोरी के हवाले से मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा। तो उसमें सबसे पहले ये कि आप,
1: बड़ा भारी सवाल है तो बिल्कुल, यानी हम सब, यानी जो एक्सपर्ट्स होते हैं हम, और सब हम इसीलिए आते हैं कि हम अपना बेहतर मुस्तकबिल की तरफ एक प्रोफेशनल ग्रोथ, और मेरा ये था कि साथ में नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में मैं दोहा आया था, बस अपने यानी फैमिली को मैं कैसे सपोर्ट कर सकूं, और अल्लाह का शुक्र है कि ये यहाँ बहुत कुछ सीखने और हासिल करने का मौका मिला
0: भाई। हमारी दोहा है ही ऐसी जगह, हमारा कतर है ही ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह कि सबके लिए सब कुछ, मैं तो हमेशा ये ही कहता हूँ। तो जब आप पहली बार यहाँ आए, आपके जहन में क्या
1: एक्सपेक्टेशन? अगर मैं कहूँ तो मैं बिल्कुल ब्लैंक था। मुझे हाँ, कोई भी नहीं बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल अपना दिल खोल कर
0: मैं जी, बिल्कुल वही हमारे प्रोग्राम का असली मसला यही से शुरू होता
1: है। बस मेरा ये था मोटिव कि भाई मुझे मेहनत करना है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और कुछ नया सीखना है मुझे, और अपनी फैमिली के लिए बेहतर जिंदगी का हम और इसमें यानी बनाऊंगा, बल्कि मुझे ये था कि मतलब कुछ ना कुछ मुझे अपने को हासिल करना है, और उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ब्लैंक था, पर वो बोलते हैं कि मतलब स्टेप बाय स्टेप होते होते अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह इस मुकाम पे पहुंचा हूं।
0: अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अगर एक और सवाल करूं मैं, तो एयरपोर्ट के हवाले से मेरा सवाल है अगला, तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्लाह ताला हमेशा अच्छा रखे और कामयाबी दे, तो ये तो नहीं था जब आप आए हैं, आप एक तवील अरसे से यहाँ मुकीम हैं,

0: दोहा एयरपोर्ट होगा गालबन है ना, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बजाय, क्योंकि मुझे जो याद पड़ता है तो दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही हम लोग आते जाते थे। तो जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकले तो आपका पहला इंप्रेशन क्या था, मतलब एकदम आप कतर में जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले?
1: मुझे तो क्या बहुत मनज़म, साफ और एकदम क्लीन एंड
0: साफ, क्लीन क्या बात है, क्या बात है, यही हमारे दोहा की खासियत है वाकई जी।
1: हाँ, और साथ में एकदम से मॉडर्न शहर बिल्कुल। और आई थिंक मैं आया था, जब लैंड किया था तो शायद 9:30-9:10 का कुछ टाइम था।
0: अच्छा, सुबह का।
1: बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि यानी मतलब हर कोई, यानी आप देख सकते हैं कि ऑफिस आवर्स वगैरह स्टार्ट हो चुका था, मतलब और उमूमन हमारे कंट्रीज में या तो बहुत ट्रैफिक होती है या नहीं तो फिर आप ऑफिस के दिखते हैं। यहाँ ट्रैफिक एकदम स्मूथ, साथ में सब लोग अपने कामों पे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि टैक्सीज बसेस, तो बिल्कुल एक अलग।
0: और आज तक ऐसा ही माहौल है दूसरी जगहों से, जब भी लोग आते हैं तो उनका कहना यही है कि भाई माशाल्लाह मॉडर्नाइजेशन के साथ।
1: और एक चीज में जो देखा वो डिसिप्लिन दिखा मुझे, बिल्कुल ट्रैफिक फ्लो में देख लीजिए, आप ड्राइविंग स्टाइल में देख लीजिए, मैं बस रास्ता देखता रहा।
0: सही। तो क्या ऐसा कुछ था जो आपके लिए बिल्कुल नया या सरप्राइजिंग था, मतलब ये जो आपने बात अर्ज करी है अभी,
1: और जो
0: उसके अलावा भी
1: मुझे लगा राइट फ्रॉम लैंडिंग और मैं अपने होटल तक पहुंचने तक और अपने रूम तक पहुंचने तक, मुझे एक चीज बड़ी दिलचस्प लगी, ये मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट लगा मुझे, कोई एक नेशनलिटी नहीं, मल्टी नेशनल।
0: वाह, क्या सच्ची बात
1: मतलब
0: हो रही है दोहा के हवाले से, क्या सच्ची
1: कर रहे हो और आप पूरा अपना लगेज आगे बढ़ते जा रहे हो, हर हर नेशनलिटी आपको मिले। मैं समझता हूँ 10-15 नेशनलिटीज में स्टार्टिंग से एंड तक मैं देख चुका था, मतलब आप देख के भी हम अपीयरेंस भी बोल सकते हैं कि एशियन है उसमें, अफ्रीकन है।
0: और इतनी पुरानी बात हो रही है माशाल्लाह, जब से आज तक यही सिलसिला कायम है। अच्छा, तो अब ये भी बताएं जुनैद निजाम साहब के पहले दिन या पहले हफ्ते में सबसे मुश्किल कोई चीज आपको सामने आई या लगी?
1: बस अगर मैं कहूँ पहली चीज जो मैं कभी अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं आता, क्योंकि अमूमन जो भी पहली आते हैं यहाँ तो फैमिली तो वहीं रहती है, हम नहीं आते ना, एक हर एक की यही कहानी होती है। तो वो जो फैमिली के बिना जो टाइम था, आई एम स्टार्टिंग जो पहला हफ्ता जो बोल सकते हैं, वो बहुत यानी टफ था और ऐसा लग रहा था कि मैं वापस जाऊं या फिर मुझे फिर रोक रही थी मेरे टारगेट।
0: यही हमारे प्रोग्राम दोहा डायरीज की खासियत है, आई कैन रिलेट। और इस वक्त जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि सब रिलेट कर रहे होंगे आपकी इन बातों से। और देखिए, सभी के साथ ऐसा है और माशाल्लाह आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और दोहा आपको सीढ़ी चढ़ा।
1: और मैं उसमें एक और चीज ऐड करूं ताकि आपके लिसनर्स के लिए एक हिम्मत, जो नए हमारे लोग जो आ रहे हैं और जो
0: बिल्कुल
1: बच्चे और जो लोग यहाँ अपना मुस्तकबिल ढूंढने के लिए आते हैं, देखिए फर्स्ट आप जब आएंगे तो आपको जब बहुत मेहनत करनी है और सब्र करना है मेन चीज, आपकी फैमिली दूर रहेगी आपसे। यानी मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, मैं कभी जिंदगी में यानी फूड हमको कोई परेशानी नहीं थी, लॉन्ड्री घर में माशाल्लाह, तो आई वाज अ स्पून फीडिंग किड बोल सकते हैं आप, मगर मुझे हर चीज स्टेप बाय स्टेप, आज मैं कहीं भी दुनिया के कोने में मुझे छोड़ दीजिए मैं रह लूंगा।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोहा सिखाता है। एक्चुअली आई कैन टोटली रिलेट विद यू, क्या बात है भाई। तो ये बताएं कि आपका पहला वर्क प्लेस एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर अब हम काम के हवाले से बात करें तो?
1: जी बहुत, यानी मैं तो कहूंगा कि इतने सपोर्टिव मेरे पूरे करियर में, अभी तो माशाल्लाह 17-18 साल 20 साल का करियर मेरा
0: माशाल्लाह,
1: उसके अंदर मुझे ऐसी टीम, ऐसे मोहब्बत वाले और यानी सीनियर्स भी ऐसे कि आपको सिखा रहे हैं और हर हर चीज में आपको मेंटर कर रहे हैं और आपको नई चीज लर्निंग का अपॉर्चुनिटीज दे भी रहे हैं और फिर उसको आगे आपको माशाल्लाह उसको अपॉर्चुनिटीज देना भी बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत अच्छे मेंटर्स और कलीग्स मिले हैं और
0: क्या इसका मैं अल्लाह ताला उनको हमेशा
1: शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ऊपर वाले का।
0: क्या बात है जुनैद निजाम साहब, क्योंकि आप मवासलात से रिलेटेड हैं और वहाँ पर अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं और कतर ने काफी कुछ हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी यही दुआएं हैं अल्लाह ताला से, और आपने काफी बदल बदलते हुए देखा ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक्चुअली. तो अगर मैं ये सवाल करूं कि मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज करते वक्त कोई पहला यादगार मोमेंट, कुछ यादें हैं?
1: हाँ, मुझे याद है. मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं 10-11 साल पुरानी बात बता रहा हूँ. तब उतना आपको पता था, उतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नेटवर्क बहुत बेहतरीन था जबी भी. आज तो हमने देख रहे हैं कि बहुत इनोवेशंस आ गई हैं, और उसको आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और बहुत बहुत इनोवेटिव फील्ड्स में तरक्की कर रहा है दोहा. आप उसका नजारा आज देख रहे हैं, मतलब. मगर उस टाइम पर मेट्रो तो नहीं थी. मैं कुछ सालों के बाद फिर मेट्रो आई है.
0: मैं उससे रिलेट करते हुए जानना चाह रहा हूँ कि वो जो शिफ्ट हुआ और स्विच हुआ. जी
1: हाँ, वो जो स्विच का टाइम था कि हम जो उस ओल्ड स्कूल से हमने एकदम इनोवेशन में कदम रखा और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं. इसकी कोई मतलब आप दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल कर रहे हैं हम लोग इनोवेशंस में. और AI अगर बोले आप, और ड्राइवर प्लस बोले आप, माशाल्लाह आप देखें, आप माशाल्लाह दोहा इज ड्रास्टिकली चेंजिंग, और हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में.
0: क्या बात है. क्या आपने कभी ऐसा फील किया कि ये डिसीजन सही था या नहीं दोहा आने का?
1: हर नए सफर में देखिए डाउट्स वगैरह आते हैं, और जैसा मैं बता रहा हूँ शुरुआत में आपको लगता है कि यार मैंने सही किया, मगर अब अगर मैं देखूं तो ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसलों में से एक था. माशाल्लाह,
0: क्या बात है भाई, माशाल्लाह. चलिए तो साहब, ये हुए आपकी ओरिजिन कहानी के जवाब और जो मुझे मिले, और बड़ी अच्छी तरीके से आपने बड़ा रिलेट करा हम लोगों ने अपने आप को. अब आगे बढ़ते हैं और कुछ हार्ड डेज स्ट्रॉन्ग डेज की तरफ बात करते हैं, कुछ इमोशनल, कुछ स्ट्रगलिंग टाइम. तो क्या कभी आपको दोहा में तन्हाई महसूस हुई, और वो कैसा वक्त था?
1: जी बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में हम अपने वतन को छोड़कर एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ आते हैं. हम बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, आपको पता है. आपके लिसनर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ आपके इस शो के जरिए कि देखिए बहुत यानी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी तन्हाई, थोड़ी सी यानी कमी पेशी, मगर उसका मतलब हम आगे बढ़ना रुकना नहीं. हमको स्टार्टिंग में मुश्किलात होते हैं, जैसा कि मेरे बहुत मुट्ठी भर दोस्त थे, बहुत कम यानी आप बिल्कुल कम पहचान वाले या रिश्तेदार बोले आप फैमिली वाले, मगर आज अगर देखो मैं तो माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आज मतलब बहुत इतने अच्छे प्यारे यानी दोस्त मिले हैं, और कई ऐसे मतलब मुझे मेंटर्स मिले, मैनेजर्स मिले, और कम्युनिटीज में भी हमारे तकरीबन इंडिया पाकिस्तान की तकरीबन कम्युनिटीज में मैं जाता हूँ. तो माशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ ये चीज चली जाएगी. तो मगर स्टार्टिंग में तो तन्हाई महसूस होती है, हमको अकेलापन लगता है, मगर आपको यानी स्ट्रांग रहना है स्टार्टिंग में. और
0: बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, वर्क प्रेशर या न्यू एनवायरमेंट का स्ट्रेस कैसे फेस किया आपने?
1: देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेशेंस और पॉजिटिविटी थिंकिंग के जरिए कोई भी प्रेशर को आप हैंडल कर सकते हो. यानी हर चैलेंज एक नई लर्निंग एक्सपीरियंस समझकर आप उसको आगे लेना है. तो मैंने भी वही किया, प्रॉपर प्लानिंग की, पेशेंस रखा, और पॉजिटिव थिंकिंग मेरा की था.
0: क्या बात है भाई. तो क्या कभी ऐसा लगा कि सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है?
1: हाँ, ये कई बार ये फीलिंग्स आई मुझे कि क्या मुझे यानी लेकिन जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, मगर लेकिन शुरू कहीं ना कहीं से तो हमको जीरो से करना पड़ता है. मतलब एक अगर आप देखें
0: जो भी चीज है नहीं हमेशा सही बात
1: आपको,
0: और वही
1: देखिए इतना खूबसूरत सफर का इब्तिदा होती है, मतलब मगर जीरो से हो यानी हर चीज. हम आए इस दुनिया में जीरो से और जाएंगे नंबर के बाद.
0: क्या बात है. तो आपकी फैमिली ने आपके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस दिए, जान सकता हूँ अगर आप शेयर करना चाहें?
1: जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मेरी वालिदैन और मेरे फैमिली की दुआएं हैं, सपोर्ट है. उन्होंने मेरे स्टार्टिंग में बहुत यानी सपोर्ट किया मोरली और इमोशनली, जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा और मुझे स्ट्रांग बनाने में यानी मैं कह सकूंगा कि उनका बहुत बड़ा हाथ था मेरी फैमिली का.
0: क्या बात है भाई. तो चलिए अब कुछ सवाल स्किप करके आगे बढ़ते हैं, और अब हम जाते हैं अपनी मेमोरी बिल्डिंग की तरफ. आपके लिए दोहा का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी कुछ सवालात, क्योंकि प्रोग्राम हम आखिरी हलके में जा रहे हैं प्रोग्राम के, तो ये जवाब आपसे मैं लेना पसंद करूंगा। तो आपके लिए दोहा

0: मतलब क्या है?
1: अगर मैं खुले लफ्जों में कहूँ दोहा मेरे लिए क्या है, दोहा मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और दूसरा घर है।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। वर्क प्लेस या मॉल में कोई ऐसा मोमेंट जो आज भी याद हो?
1: या मुझे मतलब बहुत स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि कभी देखिए पार्किंग्स की टेंशन होती थी, कहीं अपने को जाना है, और कभी यानी मॉल्स में अगर आप कहीं जा रहे हो तो थोड़ी सी मतलब अपने को
0: क्या बात है
1: स्ट्रगल करना पड़ता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप नए ड्राइवर हो नहीं का, तो उसकी वजह से अपने को थोड़ा और यहाँ का एनवायरमेंट में फिट होना
0: सही,
1: कुछ चीजें, क्योंकि देखिए कल्चरल डिफरेंसेस तो है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस कल्चर में पूरे ढा गए हैं।
0: क्या
1: और
0: बात है,
1: तो हमारे
0: ये है इतना खूबसूरत, बिल्कुल सही है, इतना खूबसूरत के अक्वायर करने का, एक्सेप्ट करने का दिल करता है। सही।
1: और एक चीज कहूँ, पेशेंस बहुत मैं देख रहा हूँ अभी जो लोग आ रहे हैं, थोड़ी पेशेंस की कमी हो रही है, उन लोग को चाहिए कि पेशेंस बहुत जरूरी है हर चीज में।
0: भाई ये सभी नए लोगों के लिए कि पेशेंस बहुत जरूरी है। ओके, तो क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बना, बिल्कुल अनफिल्टर्ड?
1: बिल्कुल, कुछ मेंटर जो स्टार्टिंग में मुझे बहुत सपोर्ट किए थे, और बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मेरी सोच और कैरियर को पॉजिटिव डायरेक्शन दी माशाल्लाह, और मेरे मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, कोवर्कर्स, और तकरीबन मेरी जो कम्युनिटी के जो दोस्त अहबाब थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
0: क्या बात है भाई। आपकी डेली लाइफ का सबसे फेवरेट रूटीन क्या है दोहा में, सबसे एक एक बताइएगा चूज करके? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मेरे खुद के हैं।
1: मैं बताऊं कि मुझे फर्स्ट मॉर्निंग होते ही सुबह की कॉफी होनी पड़ती है, और मैं जब अपनी कॉफी लेके बैठता हूँ सुकून से, तो वो मुझे बहुत बहुत सेटल करती है एकदम, बहुत,
0: और चार्ज भी करती है, और चार्ज भी करती
1: है, वो जरूरी है।
0: क्या बात है भाई। अगर आप अपनी जिंदगी को एक डायरी एंट्री बनाएं तो उसका टाइटल क्या होगा?
1: ओहो, मैं एक टाइटल बोल सकता हूँ कि हम एक जिंदगी में, यानी अगर एक नाम देना चाह रहे हैं डायरी एंट्री में, तो तीन मीम बोलूंगा, मीम एम यानी
0: अच्छा
1: उर्दू में।
0: अच्छा, बहुत अच्छा है, क्या है वो?
1: मेहनत, मशक्कत, मुस्कुराहट का सफर।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने,
1: तीन मीम जिंदगी के,
0: मेहनत, मुस्कुराहट,
1: मशक्कत।
0: अच्छा।
1: नहीं, मेहनत, मशक्कत और मुस्कुराहट का सफर।
0: क्या बात है, मेहनत, मशक्कत और मुस्कुराहट का सफर, क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह। चलिए साहब, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फन से रिलेटेड बात भी आपसे करना चाहता हूं मैं, थोड़ा लाइट कहना चाहिए क्वेश्चन करके। क्या आपके साथ कभी कोई फनी इंसिडेंट हुए दोहा में जो यादगार रह गए हो, बड़ी हंसी आई और आज भी हंसी आती हो याद करके? एक्चुअली
1: बिल्कुल जी हाँ, शुरू में यानी कुछ प्लेसेस या जगहों के नाम प्रोनाउंस करने में बहुत तलफुज करने में यानी मुश्किल होती थी, तो उसके लिए यानी कोई दोस्त को मैं कहीं कह रहा है तो मैं कुछ हाँ, तो वो थोड़ा दोस्त वगैरह मजाक उड़ाते थे, और कुछ याद रख के अभी भी पूछते हैं कि भाई तुम ऐसा करते थे,
0: अभी सही
1: तो
0: बोल पा रहे हैं या नहीं?
1: हाँ, बिल्कुल अभी तो पूरा।
0: अच्छा, अगर अभी की बात करें, और आप तो माशाल्लाह मशगूल होते ही हैं मेट्रो वगैरह से, अगर मैं बात करूं तो उसकी कोई यादगार स्टोरी ऐसी जो बन गई हो या याद रहे हमेशा के लिए, मेट्रो से, मेट्रो लाइन से कोई ली हो, गलत चढ़ गए हो, या शुरू में जो प्रैक्टिस होती है, कुछ इस तरीके का शेयर करना चाहते हैं?
1: हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं बताऊं, मेट्रो का फर्स्ट डे था, तो मुझे इन्विटेशन आया था कि यानी फर्स्ट डे मेट्रो का था, तो मुझे, मैं समझता हूँ 10-11 बजे उसकी ओपनिंग थी, तो हम लोग, मैं और एक मेरे दोस्त थे, तो वो इन्विटेशन आया था, तो हम लोग गए वहाँ, और साहब बिल्कुल नया एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, और हमको ये था कि बस हम ये, एक तो ड्राइवरलेस है वो, तो हमको डर भी लग रहा है,
0: चला कौन रहा है,
1: चला कौन रहा है, और ये डर है कि कहीं मतलब, और फीलिंग ये आ रही सामने ठहरने का, जो मौका मिला हमको वहाँ पर थोड़ी देर के बाद, भीड़ बहुत थी, तो ऐसा लग रहा था कि हम ही चला रहे हैं, डर हो रहा है। और बहुत मजा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस,
0: क्या कहने भाई, बहुत खूब, बहुत खूब,
1: यानी इनोवेशन का एक नया नमूना कहूंगा मैं, और माशाल्लाह अब और उसमें मजीद रूट्स बढ़ रहे हैं
0: और माशाल्लाह अब हमारे कतर में बहुत आम बात हो गई है इनोवेशन से मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला और तरक्की दे। अब एक बहुत खूबसूरत और जरूरी सवाल मैं समझता हूँ जो हम सब एक दूसरे से करती हैं, क्या कभी किसी स्ट्रेंजर ने आपकी हेल्प की हो जो आपको याद रह गई जब आप

0: को जरूरत पड़ी हो, जो हमारे कतर में बहुत आम है। और मैं अगर हम कतरियों की भी बात करूं तो बहुत ही यूजुअली जो सब शेयर करते हैं कि भाई गाड़ी खराब हो गई थी तो वो एकदम से वो जो कहते हैं वायर लेके आए और गाड़ी स्टार्ट करी, पानी से मुतालिक जिस तरीके से हेल्प करते हैं एक दूसरे की गर्मियों में, तो इस तरीके कुछ मोमेंट आपके साथ हुआ हो?
1: आप यकीन जानिए अल्लाह का बहुत बड़ा फजल रहा है हमेशा। यानी आप ये कम्युनिटी ऐसी है, मैं बोलूंगा, मैं कोई झूठ नहीं बता रहा हूँ, एक हमदर्दी बहुत है यहाँ पर, यहाँ के स्पेशली लोकल्स में। आप यानी हम बोलेंगे कि एक ही सफ में ठहर गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा,
0: ना कोई बंदा।
1: आप देखिए आप इतनी सिंपलिसिटी, कहीं आपकी गाड़ी कहीं रुक रही, आपको वहां कोई ना कोई एक दो मिनट में रुक जाएगा साहब, कोई आप कहीं अकेले ठहरे हुए कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ एक नहीं चार लोग रुक जाएंगे आपके लिए। और हम उमूमन ये देखते हैं यहाँ बहुत ज्यादा ये हेल्पिंग नेचर। आप देखिए बड़ों का अदब, मैं देख रहा हूँ साहब कहीं हम जाते हैं, कहीं हमारे साथ बड़े रहते हैं, जो रेस्पेक्ट द लेवल ऑफ रेस्पेक्ट ये लोग देते हैं हमारी कम्युनिटी में जो अरब से यहाँ पर, माशाल्लाह साहब बड़ों का अदब और बच्चों से प्यार और मुस्कुराहट से मिलना,
0: क्या बात।
1: आप मॉल्स में जा रहे हैं, बच्चे बच्चों को ईदियां मिल रही हैं, पिछले दो हफ्ते की बात बता रहा हूँ मैं, माशाल्लाह। मतलब आप देखिए हमारे पुराने जमानों में कल्चर होता था कि बड़े बच्चों, वो चीज यहाँ है सुन्नतों को लेकर एक की हेल्प करना, और बहुत हेल्पिंग नेचर।
0: मैं बहुत खूब,
1: एक इंसिडेंस तो नहीं है, ये डे टू डे लाइफ में रिपीटेड इंसिडेंस होते हैं। मैं लिस्ट कहूंगा तो आप
0: लंबी हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट का आखिरी सवाल ये कि अगर आप अपने दोहा के सफर को एक फनी टाइटल दें तो वो क्या होगा?
1: अगर मैं फनी टाइटल दूं उसका, तो देखिए आपको भी ये चीज का एहसास होगा कि करक यहाँ बहुत मायने रखती है। तो करक चाय,
0: क्या बात,
1: दो चीज मुझे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, करक चाय और गूगल मैप्स। करक चाय और
0: मैप्स, मैप्स की बात, करक चाय और मैप्स, क्या बात है भाई। चलिए साहब अब आखिरी हमारे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और कुछ इमोशनल क्लोजिंग क्वेश्चन भी आपसे कर लेता हूँ। अगर आप दोहा को एक खत लिखें तो उसमें क्या लिखना चाहेंगे? आपको शौक रहा ही होगा, खैर मैं समझता हूँ कि खत ही एक जरिया भी थे दोहा से एक दूसरे को कनेक्ट करने का, जब वो लोग यहाँ आ जाते हैं तो इसका कुछ जवाब देना चाहते हैं।
1: बिल्कुल जरूर, मैं अगर खत लिखूं दोहा को तो मतलब ऐसा हो सकता है टाइटल उसका, डियर दोहा शुक्रिया कि तुमने मुझे सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि तजुर्बा, दोस्त, यानी इतने प्यारे लोग और जिंदगी के नए नए तजुर्बे और बहुत से खूबसूरत सबक दिया है, यानी दोहा ने मुझे दिया
0: वो,
1: और जिंदगी यानी इतनी हसीन है और इतनी बेहतर और बेहतरीन हो सकती है मुझे यहाँ आके। देखिए हम आए थे यहाँ, लड़कपन था, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम आए हैं और हमने एक फेस देखा है, तो मैंने दोहा से बहुत सीखा है। तो दोहा खतर एक ऐसी प्लेस है, मैं बताऊंगा कि एक बार यहाँ कोई आ जाए, एक बार आ जाए तो यहाँ का हो जाता है भाई,
0: क्या बात, क्या
1: एक बार यहाँ का हो जाए। हम यकीन मानिए आप सरवर साहब, मैं यहाँ आया था प्लान करके, हर एक का प्लान होता है कि मैं 3 साल रहूंगा यहाँ पर और इसके बाद मैं मेरा कुछ मूव कर लूंगा यहाँ से, यानी आज देखिए वैसे 3-3 साल के 3-4 सेट चले गए।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है। तो जुनैद निजाम साहब, आज के नए लोगों को जो दोहा आ रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक लैंड है अपॉर्चुनिटीज के लिए और प्रॉस्पेरिटी और पीस है यहाँ पर, तो आपके लिए ये बहुत एक ऐसा यानी दुनिया में नुमाया नाम है दोहा, यकीन मानिए आप, जब तक यहाँ नहीं आता उसको एहसास नहीं होता। तो मैं बता रहा हूँ, मैं दोहा को अल्लाह यानी इस कंट्री पर मैं अल्लाह ब्लेस दिस कंट्री एंड विद मोर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस और भाईचारा और इंसानियत का एक नमूना कहूंगा मैं इसको, तो नए लोगों के लिए ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है सर।
0: क्या बात है भाई। जुनैद निजाम साहब, क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में कि दोहा ने आपको ज्यादा बदला या आपने दोहा को, अगर मैं इस तरीके से सवाल को रखूं?
1: साहब दोहा ने मुझे बहुत बदला सर, मैं तो उस काबिल नहीं कि दोहा को बदल पाऊं, मगर दोहा ने मुझे बहुत सिखाया है और मैंने बहुत सीखा है यहाँ पर, और यकीन मानिए दोहा ने मुझे बहुत बदला, यानी

0: I can say like a 365 degree badal diya mujhe. What I used to be back in 2008 and 10 hamare college ke life mein went on. So ab main mere purane dost agar mujhe milenge to wo relate kar payenge ki aur positivity ke sath mashallah bahut yani main khud feel karta hu aur bahut badla hai duaen aur humko bahut diya hai Allah ka fazl hai aur alhamdulillah iska hum shukr ada kar sakte hain Allah ka
1: shukr hai bhai baharal bhai bahut bahut shukriya Junaid Nizam sahab aap mere sath jude aapne apna keemti waqt nikala aur badi hi sukoon ki jagah mein aap is waqt mashallah peeche chidiya chehcha rahi hain aap coffee leke mere sath hain mujhe lag raha hai is waqt
0: bilkul main ye nahi chaha ki kahin band room mein baithu main matlab nature ka
1: kya
0: maza lete hue aapko main aapke sath main doob
1: Allah taala aapko khush rakhe aur Junaid Nizam sahab आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अपनी जिंदगी का जो कतर का सफर है उसको हमारे साथ बड़ी खूबसूरती से शेयर किया बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए
0: शुक्रिया सरवर मिर्ज़ा साहब और आपकी पूरी टीम का मैं ममनून और मशकून हूं हमेशा मैं आपके शो सुनता हूं बड़ी दिलचस्पी से जब भी मुझे टाइम मिल जाता है
1: वेलकम सर
0: और खास करके आपके जो शोज हैं और आप तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग एक नए-नए शोज और लाते हैं मतलब हमारी जिंदगियों में बहुत एक पार्ट ऑफ द लाइफ है आप लोग हमारे और उर्दू को लेके चलते हैं वो बहुत बड़ी चीज है और आप लोग की मेहनत काबिले सताइश है आप सब
1: थैंक यू सर
0: और शुक्रिया मुझे आपने मधु किया इस शो में बहुत बहुत शुक्रिया
1: प्लेजर सर प्लेजर थैंक यू सो मच और दोस्तों आप सबसे भी बस इतना ही कहना है कि जिंदगी का हर सफर बहुत खास है हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए अपनी पहचान को संभाल कर रखिए क्योंकि कहानी सिर्फ शहर नहीं लिखता कहानी आप भी लिखते हैं इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं अपना ख्याल रखिए मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक और कहानी के साथ तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी
2: दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448-888-806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi. Dil Se Desi.
3: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आर यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
3: टॉप 10 काउंटडाउन।
4: भाई अस्सलाम वालेकुम मुंडियों और कुड़ियों, क्या हाल है? मैं क्या जी, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड वेलकम टू द लिस्ट जिसका इंतजार मुझे था। मुझे मौका नहीं मिल रहा था टॉप 10 की लिस्ट बनाने का, कहने का। इसमें बड़ा मजा आता है, बिकॉज ये लिस्ट जो होती है ये जब तैयार होती है तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक लैब में बैठ के रिसर्चर रहे और रिसर्चर्स सारे के सारे मिल बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कौन सा गाना किधर रखें। और वेरी डिफिकल्ट लिस्ट, और जितनी डिफिकल्ट उतना ही मजा आता है। तो इस हफ्ते बहुत सारे गाने रिलीज हुए हैं, पिछले महीने हुए हैं, मगर अभी तक जो टिके हुए हैं, जो लिस्ट में आ पाए हैं टॉप 10 की ऑन एफएम 107, उनके बारे में बात करेंगे। सो वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो एनएफएम 107 पर। ये जो सहूलत ही बड़ी अच्छी कि आप हमें बताइए कौन सा गाना लिस्ट में आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट्स अप टू यू। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका गाना लिस्ट में आए। जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक मुझे कैसे पता लगेगा ये गाना भी तो है। तो जितने हमें दिखे, जितने हमने देखे या फिर हमने उनको एनालाइज किया या उनकी लिस्ट देखी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, नंबर ऑफ व्यूज एंड एवरीथिंग अक्यूमुलेटेड टुगेदर, उसके बाद ये लिस्ट बनी। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कुछ लिस्ट ऐसी होती हैं जहां पर हम देखते हैं कि गाने को तो बहुत ज्यादा व्यूज आए हुए हैं, बट वो गाना वैसा नहीं है जो चलाया जा सके। बट समटाइम्स व्यूज आर लेस, बट देन गाने की रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो आज की लिस्ट शुरू करने से पहले अगेन सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 कतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज जुड़िएगा। एंड लिस्ट शुरू करेंगे फ्रॉम 10 एंड देन विल गो अप टू द टॉप ट्रैक ऑफ दिस वीक, ठीक है? सो गाना नंबर 10, गाना नंबर 10 है रूप दी रानी।
5: रूप दी रानी तू पर रांदे को संभालनी।
4: पति पत्नी और वो दो से मूवी मैंने देखी नहीं है, पर इसमें आयुष्मान खुराना, वामिका, सारा, रकुल प्रीत और गुरु रंधावा ने गा दिया है, तनिष बागची का संगीत है, ही राजेश साथ में। देखो पिक्चर के बारे में भी अच्छे रिव्यूज हैं, बट गाना इज अमेजिंग, इट श्योरली डिजर्व्स द लिस्ट। 10 पे तो ये आ ही सकता है। रूप दी रानी ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको नॉस्टैल्जिया फील कराएगा, बिकॉज गाना बॉलीवुड को आदत हो चुकी है कि रिंस एंड रिपीट करते चले जाएं। तो रूप दी रानी इज एट नंबर 10। कुछ जगहों पे आपको आई थिंक फंक्शंस में ये बजता हुआ जरूर नजर आएगा। आई एम नॉट श्योर कि आप अपनी ऑक्स केबल लगा के सुनेंगे कि नहीं, बट डेफिनेटली जब ये गाड़ी में प्ले होगा, FM 107 में प्ले होगा, सो यू विल लिसन टू इट। ये गाना ऐसा है एंड इट डिजर्व द स्पेस। सो अ सेलिब्रेटेड ट्रैक ऑन द 10th नंबर, विच इज रूप दी रानी, पति पत्नी और वो दो। पता नहीं इतने लंबे लंबे नाम क्यों लिखने लग गए बॉलीवुड वाले, थोड़ा छोटा करो भाई।

0: एंड आई एम नॉट सरप्राइज. मुझे लगता है कि सात भाई को किसी ने बोला भाई इधर ही है पैसा, इधर ही है पैसा, इधर ही रहो तुम. तो साध रामचरित और नेहा कक्कड़ का ये गाना, वेरी कलरफुल ट्रैक बाय द वे, वेरी कलरफुल ट्रैक. स्पेशली जब आप वीडियो देखेंगे तो साध जो है वो एक एक कुर्सी बैठे हुए, इट्स लाइक अ थ्रोन एंड ही इज वेयरिंग द ब्लैक क्लोक. होगा भाई क्या लग रहा है आदमी, बॉलीवुड का रंग चढ़ रहा है इन पे धीरे धीरे वीडियो में. वीडियो में एक और बड़ी खास बात है, इन केस यू हैवंट सीन द वीडियो, बिकॉज मुझे बड़ा शॉक लगा था. वीडियो में शहनाज गिल भाई साहब बॉलीवुड वाला डांस करवा दिया है साथ से. तो ये जो कोलैबोरेशन है बड़ा कमाल का है. एक चीज है साथ की, वो जो उनकी अदायगी है, जो मौसीकी है, वो अभी भी वैसी की वैसी है. देयर इज नो चेंज एट ऑल. बट ऑफ कोर्स बेजाफ गाना बड़ा जबरदस्त है. एंड अभी तो ये अवेलेबल है विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो स्क्रीन पे आते रहते, तो यू कैन अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ इट. एंड बड़ा कमाल का गाना है. ब्यूटीफुल ट्रैक, नेहा कक्कड़, साध रामचरित, बेजाफ एट नंबर 9 ऑन द लिस्ट. शहनाज गिल की वजह से भी ये नंबर 10 पे नहीं है, नंबर 9 पे है. एंड शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल इन द ट्रैक. एंड जैसे मैंने कहा काफी कलरफुल है, कुछ ज्यादा ही कॉस्ट्यूम्स हैं इसमें जो इस्तेमाल की गई हैं, विच इज ऑल्सो अ न्यू थिंग. आजकल बॉलीवुड के गानों में उतनी कॉस्ट्यूम चेंजिंग नहीं देखने को मिलती है, बट आजकल जो सिंगल ट्रैक्स निकल के आते हैं उनमें जो सिनेमेटोग्राफी और जो डायरेक्शन हो रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल है. एंड For the video itself, you should listen to this track. I know abhi audio sunenge, but iska jaake uske baad aap video bhi zarur dekhiyega, because that is also something unique to see. Okay, aage badhte hain. Agla jo gana hai at number 8. ये गाना FM 107 पर मैंने अभी कुछ दिनों पहले चलाया था अपने शो में शाम में. एंड ये गाना है चांद मेरा दिल से, इसमें अनन्या पांडे हैं और लक्ष्य है.
1: खासियत है आपकी,
0: सचिन जिगर का संगीत है. एंड राघव है इसमें, जोनिता है और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स हैं. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. मैं लिरिक्स की सबसे पहले बात करूंगा, बहुत बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं. अमिताभ भट्टाचार्य को क्रेडिट उतना दिया नहीं जाता है, बट देना चाहिए, ही टोटली ट्रूली डिजर्व्स इट. अच्छा, ये जो मूवी है चांद मेरा दिल, मुझे पहले लगा था कि इस मूवी को सैयारा की तरह प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज आई डोंट नो इट. It seemed like it. ऐसा लगा जैसे सैयारा ने बोला था ना, भाई देखो पिक्चर देखते रहना, पहले गानों से मतलब रखो. So, गानों से जो मतलब रखा गया है उसमें से गाने आए हैं सामने. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि दे आर चार्ट बस्टर्स, जैसे सैयारा के गाने एकदम से, वो कहता है ना देसी भाषा में, फट गए थे, आ गए थे, तो वैसे भी नहीं है, मगर काफी अच्छे वेल रिटन सॉन्ग्स हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें कोई ऐसा ट्रैक नहीं जो मैं बोलूं कि अरे फिर से रीमेक कर दिया, अरे लो फिर से रिमिक्स कर दिया, वैसा नहीं है. सो ओरिजिनली रिटन, इसलिए मैंने अमिताभ भट्टाचार्य को क्रेडिट दिया. वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक. सचिन जिगर को दूसरा क्रेडिट जाता है. अमेजिंगली डन. खासियत, ये गाने के लिरिक्स भाई इतने डीप लिखे हुए ना, और इतना बढ़िया लिखा हुआ है ना, स्पेशली लाइक द हुक एज वेल. तो इसका जो हुक है, इसके जो लिरिक्स हैं, काफी ज्यादा फ्रेश. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फ्रेशनेस सुनने को मिल रही गाने में. आई एम रियली रियली रियली हैप्पी फॉर इट. तो ये जो ट्रैक है ये आप जरूर जरूर सुनिएगा. एंड लेट मी नो बाय द वे ऐसा कोई और ट्रैक सिमिलरली आपको स्ट्राइक जरूर करने वाला है, बिकॉज ये गाना सुन के आपको 2-3 गाने याद आ जाएंगे जो आपने रिसेंट टाइम्स में शायद सुने होंगे. सो मैं दोहरा देता हूं, गाना नंबर 10, 9 और 8. गाना नंबर 10 है रूप दीरानी, पति पत्नी और वो 2 से. गाना नंबर 9 है बेजाफ, साध रामचरित और नेहा कक्कड़. नंबर 8 पे खासियत, चांद मेरा दिल, अनन्या पांडे इसमें, लक्ष्य है, सचिन जिगर का संगीत है, एंड ऑफ कोर्स राघव जोनिता गांधी ने गाया है, और अमिताभ भट्टाचार्य के कमाल के लिरिक्स हैं. विल बी बैक, और उसके बाद डिस्कस करेंगे 7, 6 और 5 पे कौन से गानों ने गद्दी जमा ली है. FM 107 पर, this is Top 10, जाना नहीं, stay tuned.
2: FM 107 Top 10, number 10.

0: Madina.
1: FM 107 Top 10.
2: Assalamualaikum, Doha wala kabir FM 107 pe, and welcome back to Top 10. Top 10 ki list mein gana number 10, 9, 8 ho chuke hain. Roop Dirani, Bezaaf Khasiyat. Ab hai gana number 7, 6 aur 5 Diwari. Number 7 pe gana, my God, ye kuch alag hua hai. Ek animated love story in a track? Kya baat hai? पहले मुझे लगता था कि हिप हॉप के जरिए, रैप के जरिए स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी की जाती है, मगर दे हैव डन इट, दे हैव नहीं, बैरान हैज डन इट. सो बैरान, ये गाना है बंजारे एंड अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक. बैरा, एक्चुअली बैरान भी नहीं, मैं बैरा बैरा
3: साम साम रखी बहुत छाती के लगाई मुन्ने जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई.
2: ये लैंग्वेज जो है मैं जानता हूँ, उसके बाद भी मैंने ऐसे बोल दिया. तो आप देखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर, पहले सुनिएगा, क्योंकि आप अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बना लेंगे, बिकॉज ये एक एक सच में एक लव स्टोरी है पूरी के पूरे गाने में. अब वेरी गुड स्टोरी टेलिंग बाय द वे, और उसके सुनने के बाद, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर लैंग्वेज अलग होने के बावजूद आपके समझ में आ जाएगी, हिंदी के उर्दू के आसपास ही है. उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे, यू विल बी ब्लोन अवे, बिकॉज इसमें जो स्टोरी टेलिंग है वो सिर्फ गाने के अंदर नहीं है, गाने से निकल कर जो एनिमेशन किया गया है वो भी काबिल तारीफ है. ओके, सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. नंबर 7 पे बहरा, एनिमेटेड लव स्टोरी. ओके, मूविंग ऑन. गाना नंबर 6 की बारी है अब. गाना नंबर 6 पे हमने काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया था ऑफिस में बैठ के, क्या कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए. एंड देन तेरा हो जाऊं इज द ट्रैक. है जवानी तो इश्क होना है, ये मूवी का नाम है. मैंने जैसे बोला ना, बॉलीवुड को लंबे लंबे नाम रखने के लिए कोई पता नहीं, कोई कह रहा है कि कोई किसी ने कह दिया है कि पिक्चर हिट हो जाएगी, आई डोंट नो, मगर है जवानी तो इश्क होना है ये मूवी का नाम है, गाने का नाम है तेरा हो जाऊं. ट्रैक में नजर आ रहे हैं वरुण धवन, पूजा हेगडे, स्टीवन बैन और जोनिता गांधी ने गाया है, और साथ में है वायु. गाना बहुत बहुत जबरदस्त है, बहुत बहुत, दो बार बहुत बहुत, तीसरा नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त है. वेरी वेल रिटन बाय द वे, वेरी वेल रिटन. मुझे ये भी लगा था, मैंने कहा वरुण धवन दिख गए, वरुण धवन प्लीज रीमेक गाना मत करना प्लीज, और नहीं है रीमेक गाना, अच्छा गाना है, ओरिजिनल गाना है, फ्रेश है. टिपिकल बॉलीवुड डांस नंबर है, समझ रहे हैं, बॉलीवुड क्या करता है, एकदम से हीरो को खड़ा कर देता है, पीछे अंग्रेज होते हैं नाच रहे होते हैं. तो ये टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल का कोरियोग्राफ्ड गाना है, बड़ा ही कलरफुल है, बहुत ही कलरफुल कॉस्ट्यूम्स है. एक बात और मुझे लगती है कि पूजा हेगडे के करियर को रिवाइव करने के लिए उसकी पीआर टीम बहुत ज़्यादा लगी हुई है. पूजा हेगडे किसी मूवी में होती हैं तो मूवी चल जाती है पर उन पर फोकस नहीं हो पाता है, लाइक कोई याद नहीं रख पाता है, ऑल्दो शी इज ब्यूटीफुल. लेकिन इस बार मुझे लगता है कि शायद उनका पता चल जाए. पीआर का गेम है भाई, पीआर की टीम बढ़िया काम करेगी तो बढ़िया काम हो जाएगा. हमारा काम तो बताना है आपको गाना कौन सा है. तेरा हो जाऊं, ये गाना सुनिए, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पैपीएस्ट नंबर्स दिस मंथ, यू विल एब्सोल्युटली लव इट. और ये गाना है एट नंबर 6. अब गाना नंबर 5 की पारी है, तो गाना नंबर 5 भी सुन लीजिए. गाना नंबर 5, देखो जी, दूसरा पार्ट मुझे बहुत डर लगता है जब कोई पिक्चर कहती है कि अब दूसरा पार्ट आने वाला है, एंड दिस इज स्कैरी फॉर मी बिकॉज सेकंड पार्ट इज कमिंग आउट, कॉकटेल 2. गाना है जब तलक. शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका. प्रीतम दा का संगीत है, अरिजीत सिंह की आवाज है, अमिताभ भट्टाचार्य की लिरिक्स हैं. देखो, आई वॉन्ट टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे पिक्चर से उम्मीद ज्यादा तो नहीं है. शाहिद कपूर का थोड़ा सा सितारे थोड़े से जगमगा नहीं रहे, मगर गाने से पूरी पूरी उम्मीद है. जब तलक इज एक्चुअली अ नाइस ट्रैक, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक. प्रीतम दा कुछ तो, प्रीतम के पास कुछ तो है भाई, प्रीतम दा कुछ तो कर लेते हैं बढ़िया, जो गाने को एकदम उठा देता है. एंड थैंकफुली इस पिक्चर में एक दो गाने हैं जो पुराने गानों की याद दिलाएंगे, पुराने एज इन के 2010s 15s वाले आसपास उसके, मगर ये गाना बहुत फ्रेश है. जब तलक इज एब्सोल्युटली अ बैंगर एट नंबर 5 ऑन आवर लिस्ट. अब है बारी नंबर 4 की. ये गाना लिस्ट पे नंबर 1 भी रह चुका है, बड़ा एक्सपीरियंस गाना है इस लिस्ट में, और अब बारी है इसी गाने की, क्योंकि ये गाना थोड़ा सा एक दो पायदान नीचे आ चुका है एट नंबर 4, और गाना है वाओ. गाने का नाम ही यही है जी, वाओ. आर डी सांधू का गाया हुआ ये गाना नंबर वन भी रह चुका है, मेरे ख्याल में टू भी रह चुका है, हमारे फज्जू भाई ने रखा था इसे, अभी गाना है नंबर चार, वाओ आर डी सांधू की आवाज में, बढ़िया गाना है, चंगा गाना है, मजा आ जाएगा सुन के और इसलिए अपनी जगह पर है। आई डोंट नो अगले हफ्ते क्या होगा, कोई गाना इसे हटा पाएगा क्या, इसे पांच से नीचे ले जाएंगे या फिर क्या होगा, बट ऑल द बेस्ट टू आर डी सांधू, राइट नाउ इट्स एट नंबर फोर ऑन द लिस्ट। सुनिए और लौट के आइएगा एफ एम 107 पर, टॉप 10 ऑन द लिस्ट, अभी 3-2-1 बाकी है।
1: एफ एम 107 टॉप 10 नंबर

0: FM 107 Top 10.
1: Assalamu alaikum, main dua wala kabir FM 107 pe and welcome to Top 10. Once again, FM 107 ki list jari hai. 10 se lekar abhi tak aa chuke hain, seedha 4 tak aur abhi 3 2 1 baaki hai. 10 pe tha Roop Dhirani from Pati Patni aur wo do, then Bezaaf Sadla Mujarrid aur Neha Kakkar, then Khasiyat Chand Mera Dil Se, then Behra phir hai Tera Ho Jaun Hai Jawani To Ishq Hona Hai, then Jab Talak Cocktail 2 se, phir number 4 pe Wow Haddi Sandhu aur ab bari hai number 3 on the list. Ye gana, ye collaboration itna khas itna special hai main bata nahi sakta. Only one guy can do this right now. Aur constantly ye jo drop karna hai ki ye aate hi hit ho jana, ye sirf abhi ek hi banda kar raha hai aur wo hai apna Daljeet Dosanjh. Daljeet paaji ne bhai kya gana bana diya yaar, ye Ranjha. Ranjha jo gana hai, David Guetta ka music hai bhai. डेविड गेट्टा का म्यूजिक लिया है, गुट्टा होंगे तो डेविड गुट्टा तो डेविड गेट्टा का म्यूजिक है साथ में सिया अगेन वंस मोर. और क्या वीडियो है, क्या वीडियो है, वो थिएट्रिकल प्रेजेंस और कैमरे के सामने दलजीत दोसांझ का जो प्रेजेंस है भाई, इंटरनेशनल क्वालिटी. वीडियो भी इंटरनेशनल क्वालिटी है, बहुत चार्मिंग लग रहे हैं, काफी ब्यूटीफुल कलर्स हैं एंड एक स्टोरी टेलिंग है पूरे के पूरे गाने के अंदर. वो थिएटर, वो स्टेज, इट्स ब्यूटीफुल. प्रॉप्स का जो इस्तेमाल किया है भाई, क्या डायरेक्शन किया गाने का. आई एम नॉट जस्ट ब्लोन अवे बाय द सॉन्ग बट ऑल्सो द वीडियो, द विजुअल्स ऑफ इट, अमेजिंगली डन. सो नंबर 3 पर है दलजीत दोसांझ, दलजीत पाजी का गाना रांझा. कति जहर गाना भाई. अब बारी है गाना नंबर 2 की, वो गाना जो नंबर 1 से एक पायदान चूक गया. गाना नंबर 2 है एक बंदे का रिटर्न, उसका कमबैक, और ये बंदा बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, बहुत टाइम से. आई एम एक्चुअली इस फैन, बहुत सारे गाने दिए हैं जो एक नंबर हैं एंड वी आर वेटिंग कब आएंगे, फाइनली आ चुके हैं. जस्ट माना कि इज बैक एंड बैक विद अ बैंगर. गाने का नाम है रहो बच के. जानी है साथ में एंड अमरिंदर सिंह भी हैं. और लेटेस्ट पंजाबी गानों की लिस्ट में भाई साहब बहुत बढ़िया जा रहा है. यो गाना हरियाणवी में बोल दिया मैंने, बट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट राइट. सो जस मानक रहो बच के एक पायदान से चूक गया है और ये गाना है एट नंबर 2 ऑन द लिस्ट. और अब बारी है फाइनली FM 107 पर टॉप 10 के गाना नंबर 1 की. FM 107 पर आप सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जरूर जुड़े रहिएगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ FM 107 कतर इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. इस लिस्ट में हो सकता है आपका गाना ना हो सकता है आपको बहुत पसंद हो, तो प्लीज सेंड अस, लेट अस नो कि कौन सा गाना आपके जहन में है और लिस्ट में नहीं है, वो कितना अच्छा है. लेट्स डिसाइड मिलजुल के. ओके, तो FM 107 कतर हमारे DMs में जरूर जरूर आइएगा एंड बताइएगा जरूर. आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया पे दोहा वाला कबीर के नाम से. सो ऑन द लिस्ट एट नंबर 1, ये ट्रर नहीं करना चाहिए था, मैं ड्रम रूल करना चाहता था. नंबर 1 पे शुभ दा गाना, शुभ ने गाया है बाउंस. द ट्रैक इज एट नंबर 1. व्हाट अ ट्रैक. जिस बीट पे इन्होंने गाया है गाना, आई नो शुभ कैन समवॉट रैप, समवॉट राइम, समवॉट सिंग, सब कुछ एक साथ कर लेते हैं उनके गाने को. मैं क्या बताऊँ, एक अलग किस्म की टोनैलिटी है शुभ की, एक अलग किस्म का जॉनरा है. R&B भी कर लेते हैं, वो हिप हॉप भी कर लेते हैं, वो एक रोमांटिक गाना बना लेते हैं. बंदा बहुत बहुत कलाकार आदमी है और ये गाना भी बहुत बढ़िया है, बाउंस. जैसे मैंने कहा ना, इस बीट पे गाना किसी के लिए भी मुश्किल है, किसी के लिए भी. एक ट्रेंड सिंगर को भी बहुत मुश्किल से इस पे लिरिक्स बिठाने को टाइम लगेगा. सो शुभ हैज डन अ ग्रेट ग्रेट जॉब. ब्यूटीफुल ट्रैक एट नंबर 1, बाउंस एंड शैडो टू ऑल द पंजाबीज आउट देयर. ये गाना आ चुका है हमारी लिस्ट में नंबर 1. अगले हफ्ते क्या होगा नहीं पता, बट अभी नंबर 1 पर है. एंड एज आई मेंशन, आपको कोई गाना जो लिस्ट पे आना चाहिए जरूर बताएगा. बट फॉर नाउ द लिस्ट इज एंडिंग विद अ बैंगर, शुभ का बाउंस. अब मैं दोहा वाला कबीर आपसे लूंगा इजाजत इंशाल्लाह. अगले एपिसोड आपसे मुलाकात होगी टॉप 10 के. बट याद रखिएगा कि आपके जो व्यूज हैं, ओपिनियन से बड़े मैटर करते हैं. सो डू सेंड अस योर सॉन्ग्स एज वेल. दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मा सलामा.
0: FM 107 टॉप 10 नंबर 3.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मैं हूं आपकी होस्ट सफा, लेकर आई हूं एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। यहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी डेली लाइफ को इजियर बनाती हैं और हमारे एनवायरमेंट पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की। चलिए एक सिनेरियो लेते हैं। सुबह का टाइम है, ऑफिस या स्कूल का रश है, आप कार में निकलते हैं अपनी। आप ये सोचते हैं कि भाई आज जल्दी पहुंचा जाए, लेकिन जैसे ही रोड पर आते हैं, ओ भाई ट्रैफिक जैम स्टार्ट। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, हॉर्न्स भी थोड़े बहुत बज रहे होते हैं और टाइम आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा होता है। और आप ये सोचते हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना शायद ज्यादा बेहतर होता, इससे अच्छा था मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेता। आप थोड़ा रियलिटी को समझने की कोशिश करें। जब हर इंसान अपनी पर्सनल कार यूज करता है तो रोड पर ट्रैफिक लोड बढ़ जाता है। इससे सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं होता बल्कि फ्यूल कंजम्पशन और एयर पोल्यूशन भी तो इंक्रीज हो रही होती है। हर एक्स्ट्रा कार का मतलब है एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न और एक्स्ट्रा इमिशंस एनवायरनमेंट में रिलीज होना। देखें अब इको स्विच क्या है इस केस में मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सा आइडिया साथियों, जब पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, बस मेट्रो शटल सर्विस या कारपूलिंग। भाई ये सब अल्टरनेटिव हैं जो एफिशिएंट और इको फ्रेंडली ट्रेवल प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं भाई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से क्या फायदा होता है आखिर। देखें सबसे पहला फायदा है पोल्यूशन रिड्यूस होना, जितनी कम कार्स होंगी उतना ही कार्बन इमिशन कम होगा। दूसरा फायदा है ट्रैफिक जैम जो है ना वो कम हो जाता है। एक बस में तकरीबन 30 से 40 लोग तो ट्रैवल कर सकते हैं ना, जो 30 से 40 कार्स रिप्लेस कर सकते हैं। तीसरा फायदा है कॉस्ट सेविंग। देखो भाई फ्यूल पार्किंग और मेंटेनेंस के खर्चे सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं बाबू इससे। और चौथा फायदा है स्ट्रेस रिडक्शन। देखें ड्राइविंग इन हैवी ट्रैफिक बहुत स्ट्रेसफुल होता है भाई, हम सबका मूड खराब होता है सुबह सुबह, होता है कि नहीं होता? शाम को और सुबह को जब ड्राइव कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे मूड खराब होता है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप रिलैक्स करके जा सकते हैं, अपना टाइम आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। सोचिए आप रोज सेम रूटीन पर ऑफिस जाते हैं, हर दिन पार्किंग ढूंढते हैं, फ्यूल चेक करना और ट्रैफिक में स्टक होने की एक रूटीन बन जाती है हमारी। अब एक दिन आप डिसाइड करते हैं कि भाई आज मैं मेट्रो से जाऊंगा, क्या कहते हो? तो भाई आपको सीट मिल जाती है, आप मोबाइल यूज कर लेते हैं बैठे बैठे, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम देते हैं खामोशी में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप स्ट्रेस फ्री पहुंचते हैं, मूड खराब नहीं हुआ होता आपका। देखिए दोहा जैसे सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काफी डेवलप्ड है, मेट्रो लाइंस मॉडर्न है, बसेस एक्सेसिबल है और कनेक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इको फ्रेंडली ट्रेवल अडॉप्ट करना कंपेरेटिवली ईजी है। अच्छा अगर प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करूं तो पहली टिप है रूट प्लान करें। अगर आपको पता हो कि मेट्रो या बस का स्टेशन आपके रूट के पास है तो उसे यूज करें, पीक आवर्स अवॉइड करें, एप्स यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एप्स या मैप्स से आप इजीली टाइमिंग और रूट्स चेक कर सकते हैं। कारपूलिंग अडॉप्ट करें, लाइट ट्रैवल करें, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते वक्त अननेसेसरी लगेज अवॉइड करें ताकि ट्रैवल आपका कंफर्टेबल हो। अच्छा भाई अगर इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखा जाए ना इस चीज का, एक एवरेज बस या मेट्रो ट्रिप डजंस ऑफ कार्स को रोड से हटा देता है। इसका मतलब ये है कि कम ट्रैफिक, कम फ्यूल कंजम्पशन और क्लीनर एयर। और ये सब सिर्फ इस वजह से होता है कि लोग एक शेयर्ड ट्रांसपोर्ट ऑप्शन यूज करते हैं। अच्छा कभी कभी हम सिर्फ कंफर्ट की वजह से ना कार को चूज कर लेते हैं, इवन जब डेस्टिनेशन बहुत क्लोज होती है फिर भी कंप्लेन करते हैं कि भाई नहीं नहीं भाई मुझे जो है ना अपनी गाड़ी में जाना है। लेकिन अगर हम शॉर्ट ट्रिप्स के लिए वॉक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज करें तो सिचुएशन नेचुरली इम्प्रूव हो सकती है। देखिए अगर सिर्फ नंबर्स के बारे में बात की जा रहा है तो अगर सिर्फ 10% लोग भी अपनी डेली कम्यूट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना स्टार्ट कर दें तो सिटीज में ट्रैफिक और इमिशंस दोनों नोटिसेबली रिड्यूस हो सकता है। ये आपको सुनने में एक छोटा शिफ्ट लग रहा है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जहां पॉसिबल हो कार की जगह ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। तो भाई आज का हमारा चैलेंज ये है कि आज या इस वीक में कम अज कम या वीकेंड पे ऐसा हो सकता है कि एक ट्रिप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करें, चाहे वो मेट्रो हो या बस हो। और हाँ एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करें, कंफर्ट कॉस्ट और कन्वीनियंस का

डिफरेंस खुद महसूस करेंगे आप। तो साथियों, मोबिलिटी का मतलब सिर्फ जल्दी पहुंचना नहीं होता, बल्कि स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल तरीके से पहुंचना भी होता है। जब हम अपनी ट्रैवल चॉइसेस को चेंज करते हैं ना, तो हम सिर्फ अपना टाइम नहीं बचा रहे होते, बल्कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे एफएम 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट, एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें एफएम 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे एक वीमेन एथलीट और कतरी वीमेन गोल्फर रीम अल शरसानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रीम अल शरसानी कतर की कामयाब खातीन एथलीट्स में से एक हैं और इंटरनेशनल शूटिंग मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी करती हैं। रीम को बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौक था और उनका ताल्लुक एक स्पोर्ट्स पसंद खानदान से है। वक्त के साथ साथ वो कतरी वुमेन स्पोर्ट्स की एक अहम हिस्सा बन गई हैं और गल्फ रीजन के नौजवान वुमेन एथलीट्स के लिए एक मिसाल बनी हुई हैं। और अक्सर में देखा गया है कि GCC एशियन लेवल या अरब लेवल में रीम को शूटिंग कॉम्पिटिशन में मेडल जीतते हुए हमने देखा है और ख़ास तौर पर स्कीट शूटिंग में माहिर रीम ने कतर की तरफ से कई इलाकाई और बैन अक्वामी चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है, जिनमें ISSF वर्ल्ड कप इवेंट्स, एशियन कॉम्पिटिशन और मिलिट्री चैम्पियनशिप्स शामिल हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से शोहरत हासिल की और मुसलसल अपनी वर्ल्ड रैंकिंग बेहतर बनाई। इसी साल दोहा के लुसेल शूटिंग रेंज में आमिर ग्रैंड प्री शॉर्ट गन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीते। रीम की मेहनत, डिसिप्लिन और अज़्म ने कई नौजवान कतरी लड़कियों को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की तरफ मुतवज्जह किया है। और रीम सिर्फ एक एथलीट नहीं दोस्तों, बल्कि एम्बिशन, कॉन्फिडेंस और कौमी फ़ख्र की अलामत है। उनकी कामयाबी कतर को बैन अक्वामी शूटिंग में मजबूत मकाम दिलाने में मदद कर रही है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
1: One Step to 2030.
0: देखिए वन स्टेप टू 2030 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कतर की एक प्लानिंग है ऑयल के बाद के दौर की तैयारी. कतर का नेशनल विजन 2030 पहले से ये मान चुका है कि ऑयल और गैस हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे, इसीलिए विजन का स्ट्रॉन्ग फोकस पोस्ट ऑयल फ्यूचर पर है. रिया दोस्तों, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है और ये डाइवर्सिफिकेशन एजुकेशन, रिसर्च, टूरिज्म, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी पर हैवी इन्वेस्टमेंट से हो रहा है. मिसाल के तौर पे आपको पता ही है कि यहाँ कतर पे एजुकेशन सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ऑयल के अलावा इनकम रिसोर्सेज क्रिएट करता है. यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की तरफ इनक्रेज किया जा रहा है ताकि फ्यूचर जॉब्स सिर्फ एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड ना हो. ये प्लानिंग कतर को फ्यूचर इकोनॉमिक शॉक से बचाती है. यानी वन स्टेप टू 2030 का असल मतलब है आज की स्मार्ट प्लानिंग कतर को पोस्ट ऑयल एरा में भी स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव रखे. कतर नेशनल विजन 2030 इस बात पर यकीन रखता है कि जब तक सोसाइटी खुश, सेहतमंद और सिक्योर ना हो, डेवलपमेंट अधूरा है. जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल वेलबींग से जोड़ना विजन का एक अहम हिस्सा है. एग्जाम्पल के तौर पर जॉब्स क्रिएट करने के साथ हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्कर्स सेफ्टी लॉज और एजुकेशन एक्सेस को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है. फ्री एजुकेशन और एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज इसी सोच का नतीजा है. दोस्तों, जब लोग हेल्दी, एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट होते हैं तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है. इससे इकोनॉमी खुद ब खुद बेहतर होती है. विजन ये इंश्योर करता है कि पैसा सिर्फ चंद लोगों तक लिमिटेड ना रहे बल्कि सोसाइटी की हर लेयर तक पहुंचे. यानी वन स्टेप टू 2030 हमें ये समझाता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमी वही है जहां इंसान और मार्केट दोनों साथ ग्रो करें. आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: स्कैम अलर्ट। दोस्तों आजकल फ्रॉडस्टर्स मॉडर्न जनरेटिव AI टूल्स का यूज करके रियल टाइम वॉइस और वीडियो क्लोनिंग कर रहे हैं। इस फ्रॉड में आपको एक ऐसी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आती है जो बिल्कुल आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर्स, दोस्त या कंपनी के बॉस जैसी दिखती है और सुनाई देती है। डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लाइव कॉल पर चेहरे के एक्सप्रेशंस और आवाज की टोन को पहचानना नामुमकिन हो जाता है। फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स सामने वाले का रूप जो है वो लेकर अचानक आपसे पैसे मांगते हैं किसी बड़ी मुसीबत या मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाते हुए।

0: या फिर अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बोलते हैं। आपको लगता है कि आप अपने सच में किसी खास से बात कर रहे हैं, इसलिए आप बिना सोचे समझे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा कॉल काटने के बाद उस इंसान के पुराने नंबर पर दोबारा कॉल करके वेरीफाई करना चाहिए। कभी भी लाइव डिजिटल मीडिया पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, क्योंकि 2026 में डिजिटल आइडेंटिटी को हैक और कॉपी करना बहुत आसान हो गया है। साइबर क्रिमिनल्स सोशल मीडिया से पब्लिक वीडियोस और ऑडियो सैंपल्स उठाकर कुछ ही सेकंड्स में ऐसी रियलिस्टिक क्लोन्स तैयार कर लेते हैं जो आम भाषा में बिल्कुल नेचुरल लगती है। ये स्कैम्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर्स में बड़े एग्जीक्यूटिव्स के नाम पर फेक इमरजेंसी वायर ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं, जिससे बड़ी कंपनीज को मिनटों में करोड़ों का नुकसान होता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल FM 107 पे आपको मिलेगा इसका सॉल्यूशन भी। दोस्तों, इस हाईटेक AI फ्रॉड से खुद को सुरक्षित करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन हैबिट्स में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक सीक्रेट फैमिली पास फ्रेज यानी एक खुफिया कोड वर्ड तय करें। जब भी कोई इमरजेंसी कॉल आए और सामने वाला पैसा मांगे तो उनसे वो सीक्रेट वर्ड पूछे। अगर सामने रियल AI क्लोन है तो वो ये कोड नहीं बता पाएगा। दूसरी बार ऐसी इमरजेंसी कॉल्स आने पर तुरंत पैनिक ना हो और जल्दबाजी में कोई ट्रांजैक्शन ना करें। कॉल को कट करें और उस पर्सन के ऑफिशियल या ट्रस्टेड नंबर पर खुद कॉल लगाकर सच्चाई का पता लगाएं। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को जितना हो सके प्राइवेट रखें ताकि स्कैमर्स आपकी वॉइस या वीडियो क्लिप्स डाउनलोड ना कर सके। इसके अलावा अपने डिवाइसेस में एडवांस्ड एंटी डीपफेक और AI वॉइस डिटेक्शन टूल्स का इस्तेमाल करें जो फेक इनकमिंग स्ट्रीम्स को पहचान सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कोई धोखा होता है तो फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
1: स्कैम अलर्ट।

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम नहायत अहम सेहत के मौजू पर बात करेंगे और वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक ऐसी इस्तलाह है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन बहुत से अफराद इसका सही मतलब नहीं जानते। ब्लड प्रेशर दरअसल इस दबाव को कहते हैं जो खून दिल की धड़कन के दौरान शरीरों की दीवारों पर डालता है। जब आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो दो नंबर सामने आते हैं, मसलन 120/80। पहला नंबर जैसे कि 120 है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो उस वक्त का दबाव जाहिर करता है जब दिल ब्लड को पंप कर रहा होता है। और दूसरा नंबर है जैसे कि 120/80 है, तो जो 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, जो इस वक्त का दबाव जाहिर करता है जब दिल की धड़कनों के दरमियान कुछ पॉज होता है या आराम कर रहा होता है। आमतौर पर 120/80 मिलीमीटर मरकरी को सेहतमंद ब्लड प्रेशर के तौर पर समझा जाता है। अगरचे उम्र और सेहत की हालत के मुताबिक इसमें कुछ फर्क हो सकता है। जब ब्लड प्रेशर मुसलसल मामूल से ज्यादा रहे तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है और उसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। उसे खामोश कातिल या साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर अफराद को कोई वाज़े जो अलामत है वो महसूस नहीं होती, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता दिल, दिमाग, गुर्दों और आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि हम खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल जब करते हैं तब ऐसा हो सकता है। जिस्मानी सरगर्मी की कमी, यानी आप एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, इसके अलावा जो जहनी दबाव है या अनबैलेंस्ड डाइट है वो भी इसकी एक वजह हो सकती है, और ख़ानदानी भी हो सकता है यानी हेरिडिटी भी होता है। इस तरह डायबिटीज और जुगड़ों की बाज़ बीमारियां हैं वो भी इसकी एक वजह हो सकती हैं। तो इसमें अक्सर सर चक्कर आता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, नज़र कुछ धुंधला जाती है और गैर मामूली थकावट भी होती है। खुशांत बात यह है कि चंद आसान आदतें अपनाकर ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मल या कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले अपनी ग़िज़ा में नमक कम कीजिए, ताज़ा सब्जियों, फल, दालें और सेहतमंद ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कीजिए। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलने या किसी भी मुनासिब एक्सरसाइज को, जो कि आप पसंद करते हैं, अपना मामूल बना लीजिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें और अलग इराज़ हैं। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा? Generation Talk, दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे। और जब कुछ नई शुरुआत करनी होती है तो सबसे पहले नहीं, अब उससे भी पहले सवालात बहुत होते हैं और पूरे हफ्ते सवालात चलते आए, क्या होगा, कैसे होगा, कौन आएगा, क्या पूछूंगा, क्या इम्पैक्ट आया, क्या नहीं होगा। और हर कोई चाहता है कि शुरुआत बढ़िया हो। ये फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात भी नहीं है, वो तो जमाना जा चुका जहां फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता था।

0: बहुत सारी चीजें और मैटर करती हैं, पर आज की जो मेरी मेहमान हैं और दो मेहमान हैं, तो इन दोनों के साथ एक जो सबसे स्ट्रांग बात है वो इनकी पर्सनालिटी जो शो में इंशाल्लाह दिखने वाली है, और इसी वजह से जो स्टार्टर पैक होना चाहिए ना शो का वो एकदम सही है। तो आज मैं इंट्रोड्यूस मैं चाहता हूँ, क्योंकि इनकी आवाज़ से लोग वाकिफ हैं, इनसे मिले भी हैं, तो सबसे पहले तो वेलकम टू द स्टूडियो स्मृति जी, अपने बारे में जरा लोगों को बता दीजिए, हालांकि लॉट ऑफ पीपल नो यू बट स्टिल बताइए।
1: नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, सभी को प्रणाम, दोहा वाले। आप सब मुझे जानते होंगे ऐसा मुझे लगता है, पर हो सकता है बहुत लोग हैं जो नहीं भी जानते हैं। मेरा नाम स्मृति त्रिवेदी है और मैं यहाँ पे DPS में टीचर शिक्षिका रह चुकी हूँ, और मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, और फिलहाल मैं अपना एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ, बिहार जोहार सांस्कृतिक परिषद, जिसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी फेसबुक पे काफ़ी लोग मुझे
0: और कुछ करने का मन है आपका, मतलब इतना सब कुछ तो हो चुका है।
1: नहीं नहीं, अभी आपने कहा बताना नहीं है तो वरना लिस्ट खत्म ही नहीं होगी।
0: अच्छा, तो क्योंकि बहुत ज़रूरी गेस्ट है हमारी दूसरी, इनफैक्ट राइट, वेलकम अगेन टू द स्टूडियो, एंड आपके बारे में बहुत कुछ हमने सुन लिया है ऑफ एयर भी, अब जरा ऑन एयर बता दीजिए अपने बारे में।
2: फर्स्टली थैंक यू इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मेरा नाम श्लेषा है और मैं अभी अपने लास्ट ईयर ऑफ स्कूल में हूँ, एंड मैं द फेमस स्मृति जी की बेटी हूँ, एंड आई होप टू वॉक इन हर स्टेप्स एंड बी एज सक्सेसफुल एज हर, शी इज माय वन एंड ओनली मोटिवेशन।
0: क्या बात है यार, और नाम का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने ये बहुत कम सुना है।
2: ये मम्मा ज्यादा अच्छे तरीके से
0: मम्मा जी बता दीजिए आप।
1: श्लेषा मैंने नाम रखा क्योंकि श्लेष अलंकार होता है हिंदी में, मैं आयतिक परिवार से हूँ, अच्छा okay. तो इसमें अलंकार जो ये बहुत अलंकार का मतलब ही होता है कि जो खूबसूरती को बढ़ा दे, और दूसरा होता है श्लेष नक्षत्र जो कि बहुत ही खूबसूरत नक्षत्र होता है, और जो अलंकार होता है उसमें एक ही वाक्य के एक ही शब्द के दो मतलब हो जाते
0: हैं। हाँ, क्या बात है, ये नाम जो है आपने इतना पहले सोच के रखा हुआ था कि ये अचानक से सोच दिमाग ज़हन में है?
1: नहीं, जब वो पैदा हुई तो मुझे देख कैसे लगा ये मेरी श्लेषा है।
0: तो ये छोटी है इनसे बड़ी है राइट?
1: बड़ी है श्लोकिया।
0: अच्छा, चलो माशाल्लाह, एंड वेलकम टू बोथ ऑफ यू इन द स्टूडियो, और आप खुद एक टीचर हैं राइट?
1: अभी
0: पर यू हैव बीन अ टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है आपके मदरहुड पे, क्योंकि ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है ना, तो उनसे पूछूंगा इस बारे में, कितना इम्पैक्ट रहा है आपका दोनों को मिला के?
1: अगर मैं सही बताऊं तो मेरी डॉटर शी हैज लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी, शी वाज इंस्पिरेशन फॉर मी दैट टाइम, एंड शी हैज टोल्ड कि नहीं मामा आप आओ स्कूल में, और उसको ऐसा लगता था कि मेरी मॉम आएगी तो स्कूल की दुनिया बदल देगी, कि हर माँ अपने बच्चों के लिए कुछ प्रेरणा होती। सो मैंने ज्वाइन किया, एंड उसके पहले भी मैं काम करती थी, मैंने बीच में छोड़ा था उन्हें पैदा हुई थी, एंड ज्वाइन करने के बाद मुझे सब कुछ पॉजिटिव लगा, बिकॉज मुझे लगता है एक टीचर से बेहतर कोई मदर नहीं हो सकती, और एक मदर से बेहतर कोई टीचर नहीं हो सकती, क्योंकि वो बच्चे की साइकोलॉजी को समझती है, जिस तरह से अपने बच्चों को वो ट्रीट करती हैं। वो वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे इतना प्यार मिला बच्चों से, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, सिखाते तो हम हैं ही पर सीखना कम चाहते हैं।
0: तो देखो, मम्मी तो मम्मी है, वो तो एक अलग किरदार उन्हें निभाना ही निभाना है। घर पे कभी इनके अंदर का टीचर बाहर आता है जो लगता है कि अरे अभी अभी दुग्गल साहब टीचर बने हैं, तो ऐसा
2: बाहर नहीं आता, बाहर ही रहता है, वो अंदर नहीं आता।
0: अच्छा, ऐसा है क्या? ये तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स
2: है। He's a teacher घर पे, she keeps giving us

0: जो गुड आजकल कर्मा जिसको बोलते हैं कि आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, और अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है. बाकी हाइजीन एंड चप्पल एंड ऑल जो ये सारी चीजें हैं ना, ये एक डिसिप्लिन है. ये इसको रूल बोल के हम लोग उसको थोड़ा ये कर देते हैं. एक्चुअली ये डिसिप्लिन अनुशासन है, हर घर में एक तरीका होना.
1: हाँ, वही अनुशासन होती है. तो
0: अनुशासन से पूरा देश देखिए चलता है, पूरा घर चलता है.
1: आपकी तरफ से क्या
0: अनुशासन नहीं होना चाहिए कि वो आपको भारी लगने लगे या ओस लगने लगे.
1: ओके, तो इज देयर एनी रूल दैट कोई मिस हो गया हो तो तुम्हारा कुछ समय लगता है कि रूल है कोई?
2: एक्चुअली रूल नहीं है, बट उनके एक्सप्रेशन को देख के समझ में आता है क्या रूल है क्या नहीं है. सो मेनली इट्स लाइक कि अगर मैं कुछ ऐसा चीज कर रही हूँ जो उनको पसंद नहीं आया तो उनका एक दिख जाता है चेहरे पे कि हटाओ यहाँ से, ये मत करो, वो मत करो. She doesn't say it out loud.
1: देखो, आँखों का डर आज भी जिंदा है. पर क्योंकि घर में जो भाई साहब हैं, अब वो तो मतलब उनका तो ऐसा है कि तीन देवियां उनके सामने कैसे, मतलब उनका क्या रूल रहता है? What is his rule right now? क्योंकि अब तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं ना. So, उनका ऐसा होता है ना, फैमिली का एक मैकेनिज्म होता है जो चेंज होता है विद किड्स. How is that changed?
0: He is very disciplined.
1: Very disciplined.
0: Very disciplined. और timely उठना, timely हर काम करना. और ऐसा है उनका कि वो चाहते हैं कि हर पेरेंट्स चाहते हैं, फादर चाहते हैं कि मैं जैसे मैं और आपने सुना होगा कि मैं तो 12 घंटे पढ़ता था.
1: हाँ, ऑफ कोर्स.
0: शायद आपके फादर ने भी कहा हो.
1: लाइट के नीचे.
0: हाँ, और वो कहानी ईश्वर चंद्र विद्या सागर तो गली की लाइट्स और बत्तियों में पढ़ते थे, लैंटर्न में, लैंप्स में पढ़े. ये सब कहते हैं, बट जनरेशन वाइज चीजें बदलती हैं और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. जितनी जल्दी आप चीजों को आप एक्सेप्ट करने लगे, और परिवर्तनशील जीवन होता है अभी समाज का, तो उसको जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करें तो कष्ट कम होता है. पर वो बहुत स्ट्रिक्ट है और उनका बहुत सारा नियम है, उनका ही नियम चलता है घर में. चूंकि मैं भी फॉलो करती हूँ. सच कहा जाए तो हम तीनों बच्चे ही है उनके.
1: हाँ.
0: और लोग उनसे डरना शब्द मैं नहीं कहूंगी. मेरे
1: इज्जत वाला डर है.
0: मेरे जनरेशन में उसको इज्जत वाला डर.
1: इज्जत वाला डर है. ओके,
0: तो सम्मान करते हैं हम लोग. और वो कोई भी गलत बात ऐसा नहीं बोलते जिसको हम लोग कहें कि नहीं, हम नहीं फॉलो करेंगे.
1: ओके.
0: और खुद अनुशासित हैं तो यू हैव टू फॉलो.
1: सो ओके, तो कमिंग बैक टू यू नाउ, दोनों से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी. मम्मी पापा के दोनों के ट्रेड्स भी अच्छे से अब तक तो समझ में आ ही गए होंगे. व्हाट आर द ट्रेड्स दैट यू रियली रियली लव अबाउट बोथ ऑफ देम? लाइक कुछ ना कुछ पापा का पसंद आता होगा, मम्मी कुछ पसंद आता होगा, कुछ ना पसंद आता होगा, बट यू कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट. सो क्या क्या सीन क्या है ये बताओ मुझे.
2: आई थिंक the one thing that both of them have applied on me and my sister is the fact that hamesha kind raho, always be kind and always be grateful. I think gratitude is the one thing that runs in my blood.
1: Chalo, bahut badhiya, mashallah. Okay.
2: So everywhere you go, jo bhi socho, jo bhi khao, jiske bare mein socho, hamesha thankful raho.
1: Be grateful.
2: That. Yeah, that you have gotten this in your life and you're in this position. So that's the one thing I love.
1: Okay.
2: And I think डैड से ये आया है कि अगर उनको किसी चीज से डर लगता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो ये लोगों को दिखाना कि आई एम नॉट स्केयर, जब अंदर आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो तो उस चीज को दिखाना नहीं है. एंड यू डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी स्केयर, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ पीपल. आई थिंक दैट्स द वन थिंग आई लाइक अबाउट हिम, बिकॉज एक्चुअली जब आप दिखाते हो तो अंदर में वो खुद हो जाता है, वो ताकत आ जाती है. हाँ भाई, तो आई थिंक दैट्स वन थिंग. एंड अदर थिंग इज डिसिप्लिन. अगेन मम्मा ने बोला ही था, कोशिश करती हूँ.
1: हाँ.
2: कोशिश लगी रहती है.
1: Okay.
2: वो अलग बात है, होता नहीं है. But cautious, of course. And mamma say, I think everything. I have gotten everything from her. All her traits are absolutely amazing.
1: But dono mein se kisko manana aasan hai kisi kaam ke? Like, ye, for example, you need some.
2: Dono ko nahi. They are very hard to mana. They're very,
1: but
2: very hard.
1: Kiska aasan hai? Kuch levels hai ki manana aasan hai?
2: Actually, it's more of a give and take relationship hum log ke family mein. It's like ki agar आपको जो चीज करनी चाहिए आप वो कर रहे हो तो यू विल गेट दैट इन रिटर्न एज वेल. दैट्स ऑलवेज लाइक दैट. बस आप
1: सुनो, आप दिखाएंगे बीच में कि अपना पढ़ देंगे. तो फिर आप यू सेट गोल्स फॉर देम कि ये कर लोगे तो ये हो जाए, क्योंकि हमारी जनरेशन में तो यही होता है ना कि बेटा अगर इतने नंबर आ गए ना कुछ हो गया.
0: परंपराएं शायद ये मेरे घर में रन कर रही हैं. एंड मेरे हस्बैंड का जैसे है कि तुम अगर पढ़ रहे हो तो रिजल्ट अच्छा होगा ही, नहीं भी होगा तो तुम पढ़ तो रहे हो, तुमने अपना एफर्ट तो लगाया, ईमानदारी से पढ़ाई करो. तो स्टूडेंट्स के लिए और क्या, ये विद्यार्थी हैं और कहीं ना कहीं ये इनकलकेट होता है आपके जो बच्चे होते हैं. मेरे बच्चों में ये आया है. आई एम रियली ब्लेस्ड एंड मैं हमेशा कहती हूँ काउंट योर ब्लेसिंग्स.
1: अच्छा, क्योंकि आजकल तुमने देखा होगा बहुत जनरेशन टॉक्स होती रहती है, हर जगह लोग बात करते हैं, देयर इज अ
3: shift, there's a gap, है ना? Do you see that gap?

0: कितना सिखाने मुश्किल आती है, आज की चीजें सिखाने की कोशिश करती हूँ मम्मी को या पापा को?
1: एक्चुअली वो हमारे मिस्टेक से उनने सीख लिया, आई थिंक दे रियलाइज्ड फ्रॉम आवर मिस्टेक्स की ओके वी हैव टू चेंज फॉर आवर किड्स. फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल कतन में इंडिया में जैसे बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता बाहर जाने का बिकॉज ऑफ द सेफ्टी फिशेस रीजंस एंड एवरीथिंग, यहाँ पे वो चीज वो लोग इंडिया में रहे हैं देयर एंटायर लाइफ, सो ऑफ कोर्स वी डोंट ब्लेम देम एज चिल्ड्रन कि हाँ आप वो माइंड सेट रखो कि सेफ्टी फर्स्ट एंड एवरीथिंग, बट कतन इज अ सेफ प्लेस सो लेट अस गो आउट लेट अस हैव सम फन एंड एवरीथिंग. तो वो विद टाइम उनको समझ में आया है, बट आई डोंट थिंक वी हैड टू फोर्स देम टू लर्न इट, वो खुद उन लोगों ने सीखा. But I think that is the only main
0: और
1: thing.
0: और जैसे music taste होता है या खाने का कुछ taste होता है कुछ?
1: हमारा taste उनसे match करता है.
0: Really?
1: Yes, everything. मेरी और मेरी बहन दोनों को पुराने गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं, पुराने movies. मैं अपनी माँ के साथ बचपन से पुरानी movies देखते आई हूँ.
2: क्या बात है, ये कैसे?
3: और एक सातवां आश्चर्य आठवां आश्चर्य कह सकते हैं आप, इसके लिए मुझे प्राउड नहीं है बट कभी कभी सोचती हूँ की आज के जनरेशन में और आप किसी के घर में, अपने मेरी शादी को 25 साल हो गए और 5 years एंड किसी के दरवाजे पे ऐसा नहीं हुआ कि तालाबात और फूड डिलीवरी नहीं होती होगी, पर मेरे घर में नहीं हुई है.
2: अच्छा.
3: और ये एक बहुत बड़ा आठवां सर है क्योंकि नए जनरेशन के बच्चे हर 2 दिन पे बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, बाहर का खाना खाना चाहते हैं और मैंने कोई फोर्स नहीं किया.
0: पर टिप्स एंड ट्रिक क्या, ये कैसे किया आपने?
3: मुझे नहीं पता है वो क्या बोल,
0: ऐसे सुनिए आप राज नहीं बता रही है. ये राज बताना बोले
3: कुछ और ही ऐसा है.
0: खेल खत्म कर दिया उन्होंने?
3: नहीं नहीं कुछ तो मतलब
1: I think they always gave us the autonomy कि आपको जो करना है करो, like खाना wise और ये सब जो करना.
0: But शादी में इनकल दिया.
3: मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ तो वो हर माँ बनाती है, या मैं कहूँ कि मैं ऐसे दुनिया की सबसे बड़ी कुक हूँ नहीं, पर मेरी कोशिश रही कि हर माँ को, हर माँ बाप की कोशिश होती है न्यूट्रिशन फूड हेल्दी फूड, बच्चों को कोई बैड हैबिट नहीं हो, हर माँ बाप प्रयास करता है. पर जैसे इसमें मैं सक्सेसफुल रही हूँ इसके लिए आई एम थैंकफुल टू.
0: पर जैसे इनिशियल एफर्ट होता है ना कि पेरेंटहुड में लोग कहते हैं कि मुझे अगर बच्चे को इस तरफ ले जाना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर बनाना है तो मैं वो फीड करना शुरू कर दूंगा या शुरू कर दूंगी इन्फ्लुएंसिंग टुवर्ड्स दैट.
1: यस.
0: हैव यू डन दैट?
1: दे डू रिवर्स साइकोलॉजी.
3: या हां, कोर्स विदाउट एफर्ट यू कांट गेट एनीथिंग.
0: ये आप सही जा रहा.
3: अभी अभी एफर्ट तो डालना ही पड़ता है आप अपने बच्चों के साथ, जो भी जो चाहत किसी भी फील्ड में, आप बच्चा भी आपका एक तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि पूंजी है.
0: तो आपका क्या एम्बिशन क्या है, व्हाट यू हैव यू मस्ट बीन यू नो कॉम्प्रिहेंडिंग इतने साले सालों में कि ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, या फिर मुझे अब ये करना है पक्का हो गया मामला?
1: दिमाग में एक आइडिया तो है बिकॉज बहुत टाइम से है, बट आई थिंक माई मेन गोल इज टू बी अ काइंड एंड अ गुड ह्यूमन बींग एज अ होल एंड टू वॉक इन टू माई मॉम स्टेप्स एंड जस्ट इन जनरल सबके लिए अच्छा करो, अच्छा कर्मा करो. And yeah, that's all. Mera main goal wahi hai, but of course, aspirations wise, ki kya banna hai, then I want to be a lawyer eventually, which is very different from what's happening in my entire family. But
0: चलिए वकालत करो और क्या अच्छी बात. So इन्होंने वकालत चूज करी है तो इसके सारी सब तरह से ग्रीन लाइट है, या आपने इसमें भी इनपुट दिया थोड़ा? यू ट्राइड?
3: छोटी जब थी ये तो अब फिर मेरी बात आएगी कि मैं भी बचपन में ऐसी जैसे डिबेट्स होते थे स्कूल में, मतलब स्पीचेस होते हैं तो बहुत अच्छा, तो बचपन में मुझे लोग बोलते हैं ये रिपोर्टर बनेगी, मेरे पेरेंट्स बोलते थे रिपोर्टर बनेगी, अच्छा बोलती है, रेडियो में काम करेगी, टीवी में जाएगी, उस वक्त बहुत बड़ी बात हो रही थी. तो वो चीज़ें इसमें आई और ये छोटे से अच्छे यहाँ प्लेटफॉर्म मिला. ऑफ कोर्स कतर और वेरी गुड प्लेस मेरे लिए, तो मैं कहूँगी कि हमने जो किताबों में पढ़ा था कि एक ऐसा देश जहाँ पर कोई अराजकता नहीं है, चोरी नहीं होती है कहीं कुछ, तो मैंने ये 20 सालों में फील किया, इधर बेटियां यहाँ बड़ी हुई हैं, दोनों पैदा हुई हैं और बहुत सेफ कंट्री है, सो आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड.
0: तो आपने इन्हें झूठ भी पकड़ा कभी या फिर ये सच में इतने शातिर हैं?
3: छोटी छोटी बातों में अगर टिफिन दिया है तो बहुत स्मार्टली उसको बाहर डस्टबिन में डाल देंगे और कहेंगे कि मैंने तो खा लिया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो कोई बात अपनी रखनी होगी तो बहुत अच्छे से रख सकती है, और एक लॉयर का यही काम होता है सच को सच और झूठ को झूठ साबित करना, नहीं कि झूठ को सच करना, गलत चीज तो मैं सिखाऊंगी नहीं, तो जो भी साबित करती वो कर देती है. घर में भी कई बार ऐसा होता है कि मैंने बड़ी बेटी को देखा बेचारी, वो कुछ भी नहीं बोल पाती. जनरेशन में तो यही फर्क आ जाता है कि बड़ी वाली 7 साल इससे बड़ी है.
0: अच्छा.
3: 7-7 years का गैप है, तो वो जब कुछ भी होता है तो वो बेचारी पकड़ी जाती है.
0: ओके. बट आज की जनरेशन से सिंस यू टोल्ड मी कि अभी मम्मी के रास्ते में हैं आप, इनकी राह पर हैं, तो आज की जनरेशन से डू यू कनेक्ट और डिसकनेक्ट, एंड व्हाट डू यू लाइक फ्रॉम योर जनरेशन एंड व्हाट इज समथिंग यू डोंट लाइक अबाउट योर जनरेशन?
1: आई थिंक

0: I disconnect to a more higher level from my generation. It's mainly because मैं अपने parents से बहुत close हूँ and I think the reason why is because मैं बचपन से psychology and philosophy पढ़ते आ रही
1: हूँ.
0: So I used to learn about how child अपने बचपन में जैसा the environment they live in is how what they adapt to and what they grow into. And I realized that मेरे parents जो भी सिखाते करते that's something they've learned. And they're just they're giving us those ideas and ideologies to walk into. So it's not their fault ki generation badh raha hai, aage badh raha hai, future mein distances aa rahi hain. It's not their fault. Something they have to adapt to as well. And instead of forcing it on them, I try to delete it to
2: them. Thodi main chalun, thodi aapse nahi, beech raste mein mil
0: jaye. Beech raste, bilkul. I think that's the thing. So I give them, I patiently, wo mere saath kaam karte hain and I work with them and I just do as they say and they do as I say. It's a very good
2: relationship. Aur kya, aaj ki generation se positive, what do you see in your generation jo positive
0: hai? I think it's just freedom. It's just the freedom of doing whatever you want to do. I think that's something that I love a lot is ki agar aap kahin kisi field mein for example ja rahe ho aur aapko beech raste pata chala ki nahi mujhe ye bhi karna hai to aap wo kar sakte ho but I think wo cheez purane zamane mein was not such a big deal like it was not possible because you had to listen to your parents you had to respect everyone around you but now even your parents are like supporting you so you can just do whatever you want and you have everyone support around you and that's something I absolutely adore
3: aap sun rahe hain generation talk With Doha Wala Kabir, only on FM 107.
2: And on the topic of ye azadi, so-called, aap kya samajhti hain aaj ki tarikh mein azadi ka matlab kya hai? What is your definition? Aaj ki rate ke saab se, not for from our generation, of course, was back in the day azadi alag hogi. Abhi kya hai aapke liye azadi?
4: Aaj ke bachon ko azadi ka matlab hai, wo jo karna chahte ho kare. जो हमारे समय नहीं थी आपको भी पता है हमारे जमाने में नहीं था कि आपकी सोच आपके अपनी हो ही नहीं सकती आपके माँ ने कहा या फादर ने कहा दिन है तो दिन रात है तो रात और हम वो करते भी थे और हम वो मानते भी थे कहीं कहीं पे वो बात सही भी हो सकती है आपके पेरेंट्स से आपसे ज्यादा अनुभवी हैं आपको ज्यादा अच्छा बट आज का जनरेशन बहुत ग्रो कर चुका है वो ज्यादा स्मार्ट है वो ज्यादा समझता है वो आज का जनरेशन जो है मैं देखती हूँ कि मैं अपनी बेटी का अगर एग्जाम्पल दूँ तो वो कुकिंग में भी हेल्प कर देती है मेरा पढ़ाई भी अच्छा कर लेती है ऐसा नहीं है कि हाँ लड़की है तो या फिर जो भी होता है आजकल का या हमारे टाइम में था कि नहीं पढ़ाई अच्छा कर लो फिर ठीक है हालांकि मेरी फैमिली में नहीं था सॉरी मेरे पेरेंट्स बहुत प्रोग्रेसिव थे लेकिन आज का जनरेशन जो बेहतर काम कर रहा है उसको उसका फोकस जो है वो एकदम क्लियर है उसका गोल उसका जो है वो क्लियर है अगर उसको पता है मुझे ये करना है मुझे कैसे करना है कैसे अचीव करना है हमारे टाइम में ये नहीं था
2: ना मेरी लाठी मेरी भैंस वाली आते हैं आजकल
4: मेरी लाठी मेरी भैंस नहीं हो सकता वो चीज
2: को कैसे नहीं हो सकता
4: कम्प्लीटली आप नहीं कर सकते और जरूरी नहीं कि आप वो कर भी लेंगे जैसे अभी मेरी बिटिया ने कहा कि पेरेंट्स भी साथ देते हैं और हम जो करना चाहते हैं भी पहले था कि आपको इंजीनियर ही बनना है तो बचपन में दिमाग से डॉक्टर ही बनना है आज भी बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन बच्चों को आप थोड़ा कहते हैं ना पंख दे दो तो आज नया जनरेशन जो है उसको पंख मिला है अब उस पंख को वो लेकर उड़ते हैं या अपना पंख खुद ही काट लेते हैं या जमीन पे ही रह जाते हैं ये उनका चॉइस है बट आज जो माँ बाप है ना उन्होंने पंख दिया है जितनी उड़ान भरनी है आप भर लो
2: तो ये एक एक थिन लाइन है जो और ज्यादा थिन हो चुकी है ओवर द पास्ट टू इयर्स लगता है कि ये दोस्त बनने में और पेरेंट बनने में एक एक लाइन आती है बीच में वो कहते हैं दोस्त बन जाए अपने बच्चों के पर वो पूरी तरह से नहीं बन सकते हाउ व्हाट इज योर टिप ऑन दैट कि ये लाइन भी रहे और दोस्ती भी रहे और ये पेरेंट रोड भी रहे वो हाउ डू यू मैनेज बिकॉज़ आई कैन क्लियरली सी एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी है सो व्हिच इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ इट बट
4: मेरा ऐसा मानना है मेरी जो सोच है कि कोई भी रिश्ता नॉट ओनली डॉटर्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स पति पत्नी हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड व्हाटएवर जो भी रिलेशनशिप होता है हर रिश्ते में ना एक थिन लाइन तो होनी चाहिए
2: right.
4: तभी वो लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन कहते हैं ना ज्यादा अगर रिस्क का बड़ा घोड़ा बनना है ना तो आपको स्पेस देना है आपको थिन लाइन रखनी है कैसे रखनी है अब कैसे रखनी है थोड़ा आपको उसके हिसाब से सोचना होगा और अगर आपको जो कहते हैं ना क्लू या जो आपको कह रहे हैं सच बताऊं तो आप अंदर क्या सोचते हो सोचते रहो
2: हाँ.
4: आप जो भी सोच रहे हो अंदर हाँ. सोचते रहो पर उसके सामने आप उसके जनरेशन के बन के रहो
2: हाँ, राइट,
4: उसको
2: ओके,
4: ये
2: ओके.
4: बताओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ताकि आप उसको जान सको अगर मैं अपनी बेटी को बोलने के पहले ही रोक दूँ क्या बोल रही हो तुम नहीं उसको सुनो उसके मन में क्या उथल पुथल है क्या चल रहा है टीनेजर बच्चे नया जनरेशन मतलब जो टीनेजर्स होते हुए ये

0: ऐसे ही बहुत मतलब केमिकल लोचा जो आप लोग आजकल की भाषा है केमिकल लोचा जो है वो चलता रहता है, लेकिन उस केमिकल लोचा आपने भी झेला है ना अपने टाइम पे, जो सुना नहीं किसी ने, आपको सुनना है, आपको सुन, यू हैव टू लिसन योर मतलब पार्टनर, जो आपकी फ्रेंड है, दोस्त है, हस्बैंड है, सुनिए पहले, सुनने और समझने की पहले अपने अंदर
1: मतलब बेसिकली अगर आप लिसनर नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते।
0: वी आर गुड लिसनर बिकॉज अपॉर्चुनिटी नॉक्स सॉफ्टली, वो सबने पढ़ा था, तो बहुत जरूरी है सुनना, जरूर उसको सुनो, मैं उसको सुनती हूँ उसके अंदर क्या चल रहा है, फिर मैं अपना उसको, और वो भी सुनती है मुझे। फिर कई बार होता है कि चीजें बहुत सिमिलर होती हैं कबीर, बहुत सिमिलर होती हैं, आप देखोगे कि उसको भी वही फीलिंग्स हो रही है जो आपको होती थी उस टाइम।
1: राइट राइट राइट।
0: बस आपको बताना है कि बेटा आपको कैसे इन चीजों को कंट्रोल करते हुए, वो थिन लाइन को लेते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। चीजें वही होंगी आपके आसपास, पढ़ना वैसे ही, एग्जाम वही देना है, डर वही है, एग्जाम का डर उस समय भी लगता था, तो चीजें वही है, हॉर्मोन्स वही है, बस उसको मैनेज करने के लिए आपको फ्रेंडली होना, मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी कर रहे हो, दोस्ती का मतलब ये नहीं, दोस्त का मतलब एक दूसरे के बात को सुनो, समझो, एक दूसरे का
1: फिर सही गलत का इनपुट दो,
0: बिल्कुल इनपुट दो, सपोर्ट दो, और कहीं कहीं एक पैर, जैसे शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आ गया कि वो प्यादा उनके फादर ने जो दिया था चेस बोर्ड में, एक पैर एक बार पीछे जाते हैं फिर आगे आते हैं, तभी ये जिंदगी में ऐसे ही चलता है।
1: ब्यूटीफुल आंसर, ओके। अब ये नॉट रैपिड फायर, मगर मेरे पास कुछ सवाल है लगातार, घर में सबसे अच्छी बार्गेनिंग में कोई है, मतलब बार्गेनिंग करने में कोई, यू आर द वन। देखो मैनिपुलेटिव मुझे कहना पड़ेगा ये तो मुझे कहना पड़ेगा, तो ये स्किल कहाँ से, ये मम्मी है क्या? आर यू गुड एट बार्गेनिंग?
2: यस आई थिंक माय यंगर डॉटर्स आर गुड एट बार्गेनिंग।
1: आर यू?
2: आई एम द यंगेस्ट, सो आई एम द यंगर डॉटर।
1: अच्छा जी,
0: बढ़िया बार्गेन करती हूँ, पॉकेट से 500 तक भी ला सकती हूँ।
1: अरे भाई क्या बात है,
0: अंदर नंबर भी लेगा अगली बार, बोला मैडम फिर आइए आप, एक साथ ज्यादा लूंगी आपके साथ सवाल।
1: अच्छा मम्मी के साथ बैठी भी, साथ में बैठ के कोई पिक्चर देखी है जो पसंद आई है, कोई मूवी, कोई समथिंग दैट यू
2: वाज़ सेंस इज माय ऑल टाइम फेवरेट, इट्स राजेश कुमार की, राजेश हां, इट्स जस्ट ऑल टाइम फेवरेट, द आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट फिल्म।
1: व्हाट हैव यू लर्नड?
2: इट्स अबाउट हाउ लाइफ लंबी नहीं अच्छी होनी चाहिए, बहुत फेमस डायलॉग,
0: बाबुल मुसाहिब, जिंदगी
2: बड़ी नहीं होनी चाहिए,
1: इट्स टू बी होनी चाहिए,
2: सो इट्स समथिंग दैट आई think about every day.
1: अच्छा तो अब आज की जनरेशन मुझे लगता है सॉफ्ट हो चुकी है, लोग हमेशा इस बात पर डिबेट करते हैं कि इमोशनली पीपल आर नॉट रियली स्ट्रांग एनीमोर, ऐसा डू यू थिंक सो?
2: स्ट्रांग इज नॉट द राइट वे टू गो, आई थिंक
1: व्हाट इज योर डेफिनेशन?
2: वी हैव एक्सेप्टेड
1: व्हाट?
2: Psychological disorders and problems and opening up more than they did in the past.
1: Okay, तो इनको जब पता नहीं था तो इनको तो आराम से जा रहा था, हमारा तो ये था ना कि कुछ चीज़ पता ही नहीं है तो उसका खौफ ही नहीं है।
2: हाँ,
1: but now that you know things,
2: maybe you went through it and you did not know you were.
1: Yeah, exactly.
2: That's the progress. I think it's just ये बोलना कि पता ही नहीं था तो go, you didn't go through it is not right. I think you went through it, you just did not know.
1: हाँ, वही मतलब पता ही नहीं चला कि कब क्या किधर कहाँ निकल गया, किस होम में नहीं आया।
2: I think one line that helps me go through my days, जो भी है वो गुजर जाएगा, ये भी एक पल है, ये पल गुजर जाएगा।
1: Very good.
2: And it's something that you will pass through, जो भी आप whatever you're facing in life, you will get through it eventually. And the entire idea कि ये generation soft नहीं है, I think हाँ, I agree to a certain extent कि अब लोग ज़्यादा emotionally open हो चुके हैं, they talk more, they listen.
1: Definitely. अच्छा ओके, एंड लास्टली बिफोर आई लेट यू गो बोथ गो, मैं एक ये सवाल पूछ चाहता हूँ आपका, टू योर जनरेशन क्या मैसेज है, एंड योर मैसेज टू एवरीबडी आउट देयर, स्पेशली आपका तो पूरा गांव में कुनबा बना हुआ है, तो उनको क्या कहेंगे आपके? एक होता है ना, हाउ डू आई पुट दिस, ओके, अब मैं 12 लोगों को जानता हूँ, आई कैन नॉट गिव एंड पुट माई आइडियाज इन टू देयर हेड, बट एटलीस्ट आई कैन गाइड देम कि भाई देखो ऐसा भी है, हमने देखो कितना बढ़िया पाल लिया है, तुम भी ऐसे कुछ करो, वट इज़ योर एडवाइस या फिर your message to all those people who would listen to you because they are a part of your community?
0: Okay. Community क्यों? मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगी, जिंदगी लोग कहते हैं ना छोटी है, मैं नहीं कहती हूँ छोटी है, जिंदगी छोटी नहीं है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है आपको कब बुला ले, पर आपको जब जिंदगी जो मिली है ना वो बहुत प्रेसियस है। लाइफ में हेट्रेट, लोगों की लेग पुलिंग, लोगों के ग्रोथ को देख करके दुखी हो जाना, इन चीज़ों में अगर टाइम देते हैं इट्स बेटर, बिल्कुल कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, आप खुद को ग्रो करो, खुद के लिए जीना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाओ, है ना, इसका मतलब ये नहीं, सेल्फिश का मतलब ये होता है मेरा यहाँ पे कि अपनी ग्रोथ

0: के बारे में, एक फिर से मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, इससे उसका डायलॉग याद करती हूँ कि जब वो सुबह उठता है तो बोलता है कि आई एम द बेस्ट. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो है वो बुरे हैं, खुद को हर तरह बेहतर समझिए, बेहतर बनाने में जितनी मशक्कत हो सके लगाइए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए. आप कहते ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, आप अपने पे टाइम दीजिए, खुद को ग्रो कीजिए. अब सेल्फ जब आपका ग्रोथ होता है ना, तो आप एक कम्युनिटी तभी बना पाते हो. आज अगर मैं कम्युनिटी बना पाई हूँ तो शायद ये मेरी सोच है कि मैंने सोचा कि हाँ, अपने आप को नहीं तो ये सोचती रह जाती कि वो बेहतर है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा. तब आप कभी एक लीडर नहीं बन सकती. एक लीडर को पहले खुद को ग्रो करना होता है, तब आप दूसरों को ग्रो कर सकते. खुद खाना नहीं खाइए, खाली पेट है तो दूसरों को फिर कहाँ से आप दीजिए.
1: जाहिर है,
0: जो आपके पास है वो बांटिए और वो प्यार खूब दीजिए लोगों से. आई एम वेरी लविंग पर्सन.
1: आप क्या कहना?
2: आई थिंक वी शुड ऑल गिव पीपल अ चांस टू टॉक. यू शुड पुट योरसेल्फ आपके आगे जो खड़ा इन देयर शूज एंड उनके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो आप कि सिचुएशन कैसा है. बिकॉज आई थिंक एवरी इंडिविजुअल के दिमाग में उनके एक्शंस जस्टिफाइड होते हैं, इसलिए आपको कभी नहीं लगता कि हम गलत है और आप सही.
1: Absolutely.
2: तो आई थिंक इन माई the best way to put it is that you listen, you understand and you try to accept what's in front of you and don't lose patience, be very patient. बहुत टाइम है सुनने के लिए, बस आप सुनो और समझने की कोशिश करो.
1: Beautifully said and I completely agree कि तुम्हें वकील बनना चाहिए.
2: Thank you so much.
1: तो आप, I'm really really thankful and honored to have you both studio में. ये पहले episode की शुरुआत है, इससे बेहतर तो क्या हो सकता था. And I really love the combination that you both have and I wish you all the best. आपके programs के, आपकी life के लिए. And I'm really happy to see you again. And you as well. बहुत बढ़िया हो, आगे जाते हो.
0: Honored actually.
1: नहीं नहीं, thank you so much.
2: Very honored.
1: But thank you so much for coming and thank you for your time. JazakAllah. Thank you.
0: Thank you. Have a great day.
3: आपने सुना हमें on air. Now follow us on Facebook and Instagram @FM107 Qatar. दिल से देसी.

हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत. सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107.

0: एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी स्ट्रेस हो बिजी रूटीन हो फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हर हफ्ते एक नई हदीस एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम हदीस टू हैबिट हदीस टू हैबिट दिल से सुनिए जिंदगी में अपनाइए
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महवश खान और शो है ये हदीस टू हैबिट ये है एक नया शो जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी में हदीस को हैबिट के तौर पे ले सकते हैं मतलब इसको आदत बना सकते हैं यकीनी तौर पे हम सब लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसको हम हमेशा ही बहुत अकीदत से लेते हैं हमारे लिए बहुत बाइज अकीदत होता है और हम हदीस को सुनना और उसको दूसरों से शेयर करना एक अपने फरीजे के तौर पे लेते हैं लेकिन ज़रूरी यह है कि हम इन अहदीस को अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट भी करें इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खसूसी शो जिसका नाम है हदीस टू हैबिट और हम हर हफ्ते एक हदीस को अपनी आदत में ढालने की कोशिश करेंगे क्योंकि हदीस और खूबसूरत सुन्नत के बारे में जो बात की जाती है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए होती है क्योंकि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि खूबसूरत आदात नरम रवैयों और अच्छे अखलाक का भी दीन है मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से हमारा जो सफ़र शुरू हो रहा है हर हफ्ते हम इसी तरह से एक हदीस सुनेंगे भी और उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे ढालना है इसको जानेंगे भी तो आज की जो हमारी एपिसोड है इसका टॉपिक है मुस्कुराना भी सदका है जी हाँ एक मुस्कुराहट एक इतनी छोटी सी चीज़ लेकिन असर इतना बड़ा कि किसी का दिन बदल जाए किसी का दिल हल्का हो जाए किसी की थकन कम हो जाए कभी आपने गौर किया बाज़ लोग हमें सालों याद रहते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमसे बहुत अच्छे अंदाज में मिले थे उनके चेहरे पे नरमी थी अपनाइयत थी मुस्कुराहट थी और बाज़ औकात हम किसी मुश्किल दिन से गुजर रहे होते हैं ज़हनी दबाव घर के मसाइल काम की परेशानी या फिर अंदर की खामोश थकन फिर अचानक कोई शख्स खुलूस से मुस्कुराकर थोड़ी बात करता है और दिल इसे थोड़ा सा हल्का हो जाता है आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की महसूस होती है वो है गर्म जोशी लोग एक दूसरे के साथ मौजूद तो हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं हैं घरों में लोग साथ बैठे होते हैं मगर हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है दफातर में लोग एक दूसरे के पास से गुजरते हैं मगर चेहरों पे थकन बेजारी होती है सोशल मीडिया पे हजारों रिएक्शंस होते हैं मगर हकीकी जिंदगी में मुस्कुराहटें कम होती जा रही हैं और ऐसे माहौल में अगर कोई शख्स खुलूस के साथ थोड़ा मुस्कुरा दे तो वो सिर्फ एक फेशियल एक्सप्रेशन नहीं रहता वो इंसानियत बन जाती है मोहब्बत बन जाती है सदका बन जाती है इस्लाम की खूबसूरती यही है कि हमें बड़ी बड़ी इबादत के साथ छोटी छोटी नेकियों की भी तालीम देता है ऐसी नेकियां जिनके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए सिर्फ नीयत चाहिए होती है आज हम जिस दौर में रह रहे हैं वहां हर शख्स किसी ना किसी दबाव में है कोई माशी परेशानी है कोई इमोशनल स्ट्रेस में है कोई फैमिली प्रेशर में है कोई अपनी पढ़ाई और मुस्तकबिल के खौफ में और कोई अंदर से इतना थक चुका है कि बात करने का दिल ही नहीं चाहता ऐसे वक्त में एक नरम लहजा एक अच्छा रवैया एक सच्ची मुस्कुराहट किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है बाज़ औकात हम ये सोचते हैं कि नेकी तो बड़ी बड़ी चीज़ों में होती है مطلب بہت زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، بہت بڑے کوئی کام کریں یا پھر لمبی لمبی عبادات. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں

देखते ही आप अपने बच्चों या वालदैन या शरीके हयात को मुस्कुरा कर सलाम करते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। घर का माहौल बदल सकता है, किसी का मूड बेहतर हो सकता है, किसी को ये एहसास हो सकता है कि वो अहम है, अप्रिशिएटेड है। आजकल अक्सर घरों में मसला सिर्फ बातों का नहीं, रवैयों का है। लोग एक दूसरों से नाराज कम और इमोशनली डिसकनेक्टेड ज्यादा हैं। हम एक दूसरे से बात तो करते हैं लेकिन नरमी से नहीं, सलाम तो करते हैं मगर मुस्कुरा कर नहीं। घर तो साथ होता है मगर दिल साथ नहीं होते, और इसीलिए आज की ये सुन्नत बहुत जरूरी है। एक और दिलचस्प बात, मुस्कुराहट सिर्फ सामने वाले पर असर नहीं डालती, खुद हम पर भी असर डालती है। जब इंसान मुस्कुराता है तो उसके अंदर की कैफियत भी बदलने लगती है, दिल हल्का महसूस होता है, गुस्सा कम होता है, तनाव कम हो जाता है। यानी इस्लाम ने जो सुन्नत हमें 1400 साल पहले सिखाई, आज साइकोलॉजी और इमोशनल वेलनेस भी इसी की अहमियत बता रही है। लेकिन अफसोस यह है कि आज मुस्कुराना भी कंडीशन बेस्ड हो गया है। लोग सिर्फ उनके सामने मुस्कुराते हैं जिनसे उन्हें फायदा हो, यहाँ पे सोशल मीडिया की पिक्चर्स के लिए। हालांकि सच्ची मुस्कुराहट तो वो है जो किसी थके हुए इंसान को राहत दे, किसी एंजस इंसान को सुकून दे, किसी लोनली इंसान को एहसास दिलाए कि दुनिया में अभी भी नरमी खुश इखलाकी बाकी है। और याद रखिए, बाज लोग अपनी जिंदगी में खामोश जंगे लड़ रहे होते हैं, इतनी खामोश कि जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। हो सकता है आपकी एक अच्छी सी मुस्कुराहट उनके लिए एक उम्मीद बन जाए। इसीलिए आज के शो में हम सिर्फ मुस्कुराने की बात नहीं करेंगे बल्कि इसको एक हैबिट बनाने की बात करेंगे, एक ऐसी आदत जो हमारे घरों को बेहतर करेगी, हमारे ताल्लुकात को नरम करेगी और हमारी शख्सियत को खूबसूरत बना देगी। आज के पूरे शो के दौरान आप खुद से एक सवाल पूछते रहिएगा, क्या मेरी मौजूदगी लोगों के लिए सुकून बनती है या फिर स्ट्रेस? क्योंकि मोमिन जहां जाता है वहां आसानी, नरमी और रोशनी लेके जाता है, और कभी कभी वो रोशनी सिर्फ एक मुस्कुराहट से शुरू होती है। जी, मैं हूं मैविश और आप सुन रहे हैं हदीस टू हैबिट। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो हमारी अहदीस हैं इसको हम अपनी जिंदगी की फाउंडेशन बना सकते हैं। आज की हदीस, तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। ये हदीस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलती है और इसमें इस्लाम की वो खूबसूरती नजर आती है जो दीन को सिर्फ इबादात तक महदूद नहीं रखती बल्कि इंसान के रवैये, इखलाक और रोजमर्रा के अंदाज को भी इबादत बना देती है। जरा गौर कीजिए, हम आम तौर पर सदका किस चीज को समझते हैं? अमूमन पैसे देना, किसी गरीब की मदद करना और सबसे बढ़कर खाना खिलाना। हाँ, और यकीनन ये सब बहुत बड़ी नेकियां हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि इस्लाम में सिर्फ माल खर्च करना ही सदका नहीं बल्कि हर वो अमल सदका बन सकता है जिससे किसी दूसरे इंसान को खैर, सुकून या खुशी मिले। इसीलिए एक मुस्कुराहट जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें कोई खर्च नहीं आता, उसे भी सदका कहा गया है। इस्लाम की कितनी खूबसूरत टीचिंग है। इस हदीस का एक
बहुत गहरा पैगाम।

ये नहीं कि दिल में तकब्बुर हो, चेहरे पे मस्नूई स्वीटनेस सजा के घूम रहे, जैसे आजकल होता है खासतौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर में। इस्लाम सिंसियरिटी सिखाता है, दिल साफ हो, नीयत अच्छी हो और रवैया नरम हो। आज सोशल मीडिया ने भी हमारे रवैयों को काफी इफेक्ट किया है। लोग ऑनलाइन बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। हम इमोजीज बहुत भेजते हैं मगर घर वालों को मुस्कुराकर कम ही देखते हैं। कभी कभी एक बच्चा सिर्फ इस इंतजार में होता है कि उसके वालदेन उसे खुशी से देखेंगे, उससे मुस्कुरा के बात करेंगे। और कभी आपका लाइफ पार्टनर आपसे सिर्फ सॉफ्ट एक्सप्रेशन चाहता है। कभी वालदेन सिर्फ ये चाहते हैं कि औलाद मोहब्बत से बात करे। लेकिन हम इतने बिजी हो चुके हैं कि बेसिक काइंडनेस भी कम होती जा रही है। इसीलिए ये हदीस पहले से कई ज्यादा रेलेवेंट महसूस होती है। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि हर नेकी एक्सपेंसिव नहीं होती, हर इबादत मुश्किल नहीं होती और हर सदका माल से ही नहीं होता। बाज़ औक़ात एक छोटी सी मुस्कुराहट अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती हो सकती है और शायद कयामत के दिन इंसान हैरान हो कि इतनी छोटी सी आदत ने उसके नामा अमाल में कितनी रोशनी डाल दी। इसीलिए आज के बाद जब भी आप मुस्कुराएं तो सिर्फ आदत के तौर पे नहीं बल्कि नीयत के साथ मुस्कुराएं, क्योंकि नीयत ही वो चीज है जो आम अमल को भी इबादत बना देती है। अब हम बात करते हैं कि हमने मुस्कुराना कहाँ खो दिया। ये तो हमारी फितरत का हिस्सा है ना, लेकिन अगर हम आज सच्चाई से अपने माशरे को देखें तो एक चीज बहुत वाज़े नजर आती है। लोग शायद पहले की निस्बत आज ज्यादा कनेक्टेड हैं लेकिन इमोशनली ज्यादा डिस्टेंट हो गए। कम्युनिकेशन बढ़ गई है, कन्वर्जेशन कम हो गई है। आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ गए हैं लेकिन रिलेशंस कमजोर हो गए हैं और शायद इसीलिए आज लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी कम होती जा रही हैं। पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे तो चेहरों पर एक गर्मजोशी होती थी, घर में दाखिल होते ही सलाम, मुस्कुरा के देखा, हाल पूछना, ये सब मामूल था। मोहल्ले वाले एक दूसरे को जानते थे, रिश्तों में सॉफ्टनेस थी। लेकिन आज की जिंदगी बहुत तेज हो गई है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल स्क्रीन सामने आ जाती है, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इंसान दिन शुरू होने से पहले ही खुद को मेंटली टायर्ड महसूस करने लगता है। ऐसे में सबसे पहले गुम हुआ तो मुस्कुराहट। आज अक्सर लोग फिजिकली थके हुए कम हैं और इमोशनली एक्सॉस्टेड ज्यादा हैं। ऑफिस में जाएं तो लोग प्रेशर में होते हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल्स में स्टूडेंट्स एंजाइटी में हैं, घरों में पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ओवरवेल्म्ड हैं और नौजवान फ्यूचर के खौफ में। ऐसे माहौल में आहिस्ता आहिस्ता हम इमोशनली एक तरह से बिल्कुल ही थक चुके हैं और फिर यही होता है, सलाम भी एक फॉर्मेलिटी बन जाती है, लहजे खुश्क हो जाते हैं, चेहरा संजीदा रहने लगता है और मुस्कुराहट बहुत ही रेयर हो जाती है। हालांकि हकीकत यह है कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत ही सॉफ्टनेस नरमी की होती है। कभी कभी हम समझते हैं कि हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ बड़े सोल्यूशन से ही हल होंगी, लेकिन बाज दफा छोटे छोटे रवैये जिंदगी को आसान बना देते हैं। मसलन घर में एक वालिद पूरा दिन काम करके जब वापस आता है वो थका हुआ होता है, स्ट्रेस्ड है, खामोश है।

बच्चे उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके चेहरे की सख्ती को देखकर करीब आने से घबराते हैं। अब अगर वही शख्स दरवाजा खोलकर थोड़ा सा मुस्कुराकर सलाम करे तो पूरे घर की एनर्जी बदल सकती है। इसी तरह एक माँ सारा दिन घर और बच्चों के कामों में बिजी रहती है, वो इमोशनली ड्रेन्ड होती है। अगर घर वाले एप्रिसिएशन के साथ मुस्कुरा कर बात करें तो उसकी थकन जो है वो अचानक से उसको कम महसूस होने लगती है। बिल्कुल यही हाल वर्क प्लेसेस का भी है। आज बहुत से लोग काम से नहीं बल्कि अपने काम के माहौल से, ऑफिस के माहौल से टायर्ड होते हैं, जहां हर चेहरा टेंस होता है, हर गुफ्तगू में एक इरिटेशन होती है, वहां इंसान नेचुरली खुद को इमोशनली सफोकेट महसूस करने लगता है। और ऐसे माहौल में एक शख्स जो हमेशा मुस्कुरा, रिस्पेक्ट दे, थोड़ी गर्म जोशी दिखाए, वो लोगों को याद रह जाता है, क्योंकि नरमी आज बिल्कुल नायाब होती जा रही है। सोशल मीडिया ने भी हमारे जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उसको काफी हद तक बदल दिया है। हम ऑनलाइन तो बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन रियल लाइफ में हम बिल्कुल इम्पेशेंट हो चुके हैं। हम इमोजीज भेजते हैं, वो भी चेहरे को सख्त करके, लेकिन सामने वाले इंसान को देख के तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुराते। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाज़ औकात लोग घर वालों से ज्यादा स्ट्रेंजर्स के साथ अच्छा रवैया रखते हैं। बाहर लोग पोलाइटली बात करते हैं, मुस्कुरा भी लेते हैं, लेकिन घर आके खामोश, इरिटेटेड, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। हालांकि इस्लाम में सबसे ज्यादा अच्छा अखलाक घर वालों के साथ अहम है। हम में से बहुत से लोग अनोइंगली अपने घर के माहौल को हैवी बना देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस की वजह से। कभी बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया होता लेकिन पेरेंट्स की मुसलसल संजीदगी उन्हें डरा देती है। कभी स्पाउस सिर्फ सॉफ्ट अटेंशन चाहता है लेकिन सामने वाला हमेशा स्ट्रेस मूड में होता है। आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगता है और ये डिस्टेंस हमेशा बड़ी लड़ाइयों की वजह से नहीं होता, कभी कभी छोटे छोटे कोल्ड बिहेवियर्स ही इसके लिए काफी होते हैं। यही वजह है कि आज मुस्कुराना सिर्फ एक सुन्नत नहीं बल्कि एक इमोशनल नीड बन चुका है, क्योंकि हर इंसान अंदर से चाहता है कि कोई उसे वार्मली ट्रीट करे, कोई उसे इम्पोर्टेंस दे, कोई उसे देखकर खुशी महसूस करे। कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत खूबसूरत होने के बावजूद अच्छे नहीं लग रहे होते, आपको पसंद नहीं होते, लेकिन कुछ लोग मामूली शक्ल सूरत के होते हैं लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चेहरों पर सॉफ्टनेस होती है, उनकी स्माइल सिंसियर होती है और उनके अंदर तकब्बुर नहीं होता। और कुछ लोग बहुत ही परफेक्ट होते हैं लेकिन उनके एक्सप्रेशन में इतनी सख्ती होती है कि खुद ब खुद डिस्टेंस आ जाता है। यकीनन अभी जब मैंने दोनों नक्शे खींचे हैं तो आपके जहन में कोई ना कोई ऐसा आया होगा जिसको शायद आप नाम से ना जानते हो लेकिन उसका चेहरा अचानक से एक हंसता मुस्कुराता चेहरा आपके सामने आ गया होगा, जो आपसे जब भी मिला मुस्कुरा के सलाम किया। और वो भी आया होगा जो हर वक्त बहुत ही गुस्से में और जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं खड़ूस बन के घूम रहा होता है ना। तो असल खूबसूरती इखलाक की होती है और मुस्कुराहट इखलाक का पहला दरवाजा है। एक और अहम बात, कभी कभी हम ये एक्सक्यूज देते हैं कि मेरा मूड ही नहीं था, मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैंने मुस्कुरा के नहीं देखा, लेकिन इस्लाम सिर्फ मूड बेस्ड कैरेक्टर नहीं सिखाता, इस्लाम कंसिस्टेंसी सिखाता है। यानी अगर आप थके हुए भी हों तब भी लोगों के लिए अच्छे अखलाक से और उनके लिए आसानी बनने की कोशिश करें। यहाँ ये मतलब नहीं है

0: आने वाले कम से कम एक हफ्ते में आप ये स्माइल सुनना चैलेंज को अपनी जिंदगी में शामिल करें। छोटे छोटे कॉन्शियस स्टेप लें जिसमें आप लोगों से मुस्कुरा के बात करें, किसी से भी। वो आपका सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है, ऑफिस का कोई कोलीग भी हो सकता है, क्लासमेट, शॉपकीपर, कोई भी। लेकिन उससे अच्छे स्माइल करके सिंसियर वे में बात करें, और जब भी बात करें, कोई अगर डिफिकल्ट कन्वर्सेशन हो तो उसमें अपने आप को कंपोज करते हुए थोड़ा मुस्कुरा कर, अगर डिसएग्रीमेंट हो भी रहा है तो इखलाक के साथ अगले बंदे को समझाएं। तो ये आपका इस हफ्ते का चैलेंज है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक हफ्ता अगर आपने इस तरह से गुजार लिया तो इंशाल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आप बहुत बेहतरी देखेंगे, तब्दीली देखेंगे, लोगों का अपने साथ बदलता हुआ रवैया महसूस करेंगे, और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये था हमारा आज का शो, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक एक और अच्छी सी सुन्नत, एक और अच्छी सी हदीस के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: थे, इस तरह आपस में सरगोशियां कर रहे थे कि आज किसी इस मिसकीन को बाग में दाखिल न होने देंगे। गौर कीजिए, यह तखाफतून यानी आहिस्ता आहिस्ता बात करना, ये उनकी कंजूसी और खौफ को कितना खूब जाहिर करता है। लेकिन जब बाग के करीब पहुंचे और उसे देखा तो हैरानी से कहने लगे, इन्ना लदालून, शायद हम रास्ता भूल गए हैं, हम जरूर रास्ता भटक गए हैं। फिर कुछ देर बाद किसी ने कहा कि नहीं, बल्कि हम सब लुट गए हैं, बल नहनु महरूमून। तो समीन ये इजहार नदामत है, लेकिन उस वक्त जब बहुत देर हो चुकी थी। قال اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون, उनमें जो शख्स सबसे अच्छा था वो कहने लगा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं कर लेते, यानी इंशाल्लाह वगैरह कह लेते, अल्लाह को याद रखते। तो यहाँ औसत यानी मुतदिल और उनमें से सबसे अच्छा शख्स, इस तरह हम इसकी तफसीर कर सकते हैं। قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين, कहने लगे, हम अपने परवरदिगार की तस्बीह करते हैं, यकीनन हम जालिम थे। समीन, ये जुमला उनके इतराफ है जुर्म और नदामत की अलामत है, लेकिन नदामत उस वक्त फायदा देती है जब अमल का मौका बाकी हो। فَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ, फिर एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर एक दूसरे को मलामत करने लगे। قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ, फिर सब ने मुत्तफिक होकर कहा कि अफसोस है हम सब पर, यकीनन हमने सरकशी इख्तियार कर ली थी। आसा रब्बुना अन युबदिलना खैरन मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून, क्या बईद है कि हमारा परवरदिगार हमें इस बाग के बदले उससे अच्छा अता फरमा दें, बेशक हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। इस आयत से ये बात जरूर जहन में आती है कि तौबा और उम्मीद का दरवाज़ा हमेशा खुला है, बस इंसान को इखलास के साथ वक्त के होते हुए अल्लाह की तरफ लौटना है, इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए और नदामत का कोई फ़ायदा न रहे। كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون, अजाब ऐसा ही होता है और आखिरत का अजाब यकीनन सबसे बड़ा है, काश ये लोग जानते। ज़मीन, अक्सर रिवायतों के मुताबिक ये वाक़या यमन के शहर सना से कुछ फासले पर ज़रवान नामी एक इलाके में पेश आया था। ये इलाका अब भी ज़रवान कहलाता है। वहाँ चारों तरफ फैले हुए सब्ज़े के दरमियान एक काले काले पत्थरों वाला वैरान इलाका है, जिसके बारे में मशहूर है कि यही उस बाग की जगह थी जो बाद में आबाद नहीं हो सकी। ज़मीन, ये थी अस्हाबुल जन्नत के वाक़े से रिलेटेड आयात की लुग़वी वजाहत, और हम रुख करते हैं हमारे आज के वाकये की तरफ।
1: आप सुन रहे हैं قصص القرآن طلحة أشرف الزمان के साथ Only on FM 107।
0: ओ फटी और नसीम सुबह, फरहत और इंबसात के फूल बिखेरने लगी। एक बूढ़ा थके कदमों टूटते सांसों के साथ एक बाग में आ निकला। बुढ़ापे ने उसके हाथ में लाठी थमा दी थी, कमर कमान की माने दोहरी हो चुकी थी। वो अपनी उम्र का लम्हा लम्हा गिन रहा था, बाग की सैर उसका मामूल बन चुका था। ये बाग ज़रवान में बड़ी शोहरत रखता था। बूढ़ा रोजाना सुबह उसके दरवाजे पर अपनी लाठी से दस्तक देता था। ये बाग था जन्नत का एक टुकड़ा, जैसे जमीन पर आ गया हो बुलंद बाला। दरख्त फलों से लदी टहनियां, रवा दवा पानी की नदियां, किस्म किस्म के फूलों की क्यारियां, जमीन पर लहलहाता सब्जा, परिंदों की नगमा सराई, लाला वो गुल की मातर महक, गोया बूढ़े को मरने से कबल ही जन्नत की तस्वीर पेश कर दी गई थी। बाग में सब फल सब रंग मौजूद थे। ये बाग सिर्फ बूढ़े के लिए ही फरहत और मसरत का सबब नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी जाए अमनो मसरत था। लोग उसकी छाव में बैठते, बातचीत करते और एक दूसरे को किस्सा सुनाते। बूढ़े का घर बाग के कोने में था। वो सब्ज पौधों और खूबसूरत दरख्तों के दरमियान चलता और फूलों की महक से मश

0: से हमारी दौलत बढ़ जाएगी और हम बड़ी इज्जत और शान के मालिक बन जाएंगे। मंजले ने कहा, उसकी सोच और तबीयत बाप से मिलती थी और वो दूसरों के लिए खैर का जज्बा रखता था। नहीं, तुम जैसे खैर गुमान कर रहे हो उसकी तहों में शर लिपटा हुआ है। इस इकदाम से तुम्हें नफा की उम्मीद है, उसे मुझे नुकसान की बुआ रही है। ये बाग जड़ों से उखड़ जाएगा। अगर मिस्कीनों और फकीरों को हक न दिया तो तुम उनके बद्दुआओं और आहों से मुतमईन नहीं रहोगे। अगर तुमने उन्हें महरूम किया तो वो तुम्हारे खैर खा नहीं रहेंगे। हकदारों को उनका हक दो और अपने वालिदे ग्रामी के तरीके को मत छोड़ो। फकीरों को उनका हक देकर जो बच जाएगा वो भी कुछ कम नहीं होगा। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल देगा और उसको अपने फजल से बढ़ा देगा। वो ये बातें सुनकर आपे से बाहर हो गए और कहने लगे, ऐसे वित्त की बातें मत करो, बंद करो अपनी ये तकरीर, हम तुम्हारी ये नसीहतें नहीं सुनना चाहते। वो फिर बोला, ठीक है, तुम्हें मेरा ये मशवरा कबूल नहीं न सही, तुम मेरी बात नहीं मानते तो ना मानो, लेकिन जाओ नमाज पढ़ो और अल्लाह को याद करो, क्योंकि नमाज बुराई और बेहयाई से रोक देती है। हो सकता है अल्लाह तुम्हारे दिल से गफलत के पर्दे हटा दे और तुम्हारे दिलों में इन खामा खराबों का दर्द जाग उठे। लेकिन उन्होंने एक न सुनी और खामोश रहे। सारी रात मशवरे होते रहे, हत्ता के रात की तारीकियां सुबह के उजालों में तब्दीली हो गई। इससे पहले के दिन की रोशनी पूरी तरह फैल जाती और फकीर लोग नींद से बेदार होते, फल चुनते और अपने अपने हिस्से का फल बाहम तकसीम करने का इरादा करते। उन्होंने कसम उठाई कि वो जरूर तोड़ लेंगे उसका फल सुबह सवेरे, और उन्होंने इंशाल्लाह भी नहीं कहा। तो अल्लाह ताला जो नीयतों का जानने वाला और दिली ख्यालात से वाकिफ है, उसने उन्हें मोहलत ही न दी कि वो मिस्कीनों को महरूम करे और साइल और महरूम के हक को गस्प करे। बाग पर एक मुसीबत नाजिल कर दी जिसने पौधों को जड़ से उखाड़ फेंका, फलों को गिरा दिया और टहनियों और पत्तों को खुश्क कर दिया। जब रोशनी अच्छी तरह फैल गई और सूरज तुलू हो गया तो एक अजीब मंजर था। बाग की दीवार पर खड़े वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या हमारा बाग यही है? कल जब हम उसे छोड़कर घर गए तो यहाँ घने दरख्त थे, पानी की नदियां रवा थी, फूल महक रहे थे, खोशे लटक रहे थे, हर तरफ बहार ही बहार थी, लेकिन सिर्फ एक रात के अंदर ये तब्दीली, आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? शायद ये हमारा बाग ही नहीं, हम किसी और के बाग में आ निकले हैं। मंजले भाई ने कहा, नहीं, ये वही बाग है। इससे पहले कि तुम फकीरों को महरूम करते, अल्लाह ताला ने तुम्हें महरूम कर दिया। तुमने बुरा सोचा, ये सब उस बुरी नीयत का नतीजा है। अब अपनी हरमान नसीबी पर मातम करो। क्या मैं तुम्हें नहीं कहता था, अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, कि तुम उसकी तस्बीह क्यों नहीं करते? अब वो कहने लगे, सुभान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, पाक है हमारा रब, बेशक हम ही जालिम थे। अक़बल बादुहुम अला बादी यतलावमून, फिर एक दूसरे की तरफ मुंह करके एक दूसरे को मलामत करने लगे, कहने लगे, तुफ है हम पर, हम ही सरकश थे। लेकिन फैसला हो चुका था, अब सिर्फ अफसोस किया जा सकता था। उन्हें अपने किए की सजा मिलने चाहिए थी। कदालिका العذاب, अजाब ऐसा ही होता है। والعذاب الآخرة أكبر, और आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है। لو كانوا يعلمون, काश ये लोग इस हकीकत को जानते। सूरतुल कलम की 33 नंबर आयत पर इस वाक़े का इख्तिताम होता है। तो चलें अब हम अस्हाबुल जन्ना या बाग वालों के वाक़े के असल पैगाम और तफसीर की तरफ रुख करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं क़ससुल क़ुरआन तलहा अशरफुज़्ज़मा के साथ, ओनली ऑन FM 107।
0: समाअत कीजिए ख़ुसूसी सेगमेंट बिहाइंड द स्टोरी। सामीन, इस वाक़े में मुश्रिकीन मक्का और हम सब के लिए बेशुमार नसीहतें मौजूद हैं। वैसे सूरतुल क़लम की पहली चंद आयात में अल्लाह सुबहान व तआला ने पहले उन काफिरों का जिक्र किया जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झुठलाते थे। वो अपने माल दौलत और औलाद पर गुरूर करते थे और समझते थे कि ये सब उनकी इज्जत की निशानी है। लेकिन कुरान वाज़ह करता है कि ये सब नेमतें इम्तिहान हैं, इज्जत की जमानत नहीं। इन आयत की तफसीर में इमाम राज़ी कहते हैं कि अल्लाह ने ये सब कुछ इसलिए दिया ताकि हम शुक्र करें और इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
2: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
4: द रिक्वेस्ट शो
3: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: आप सुन रहे हैं FM 107
6: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वजारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

गुलाम न पाए वो दो महीने के पै दर पै रोजे रखे कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं और जो इस पर भी कादिर न हो वो 60 मिसकीनों को खाना खिलाए। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक सजा है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं वो उसी तरह जलील व खार कर दिए जाएंगे जिस तरह इनसे पहले के लोग जलील व खार किए जा चुके हैं। हमने साफ साफ आयात नाजिल कर दी हैं और काफिरों के लिए जिल्लत का आजाब है। उस दिन ये जिल्लत का आजाब होना है जब अल्लाह इन सब को फिर से जिंदा करके उठाएगा और इन्हें बताएगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं। वो भूल गए हैं मगर अल्लाह ने उनका सब किया धरा गिन गिन कर महफूज कर रखा है और अल्लाह एक एक चीज पर शाहिद है।

क्या तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने दोस्त बनाया है एक ऐसे ग्रोह को जो अल्लाह का मग़ज़ूब है, वो न तुम्हारे हैं न उनके, और वो जानबूझकर झूठी बात पर कसमें खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब मुहैया कर रखा है। बड़े ही बुरे करतूत हैं जो वो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है जिसकी आड़ में वो अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं। इस पर उनके लिए जिल्लत का आजाब है। अल्लाह से बचाने के लिए न उनके माल कुछ काम आएंगे न उनकी औलाद। वो दोजख के यार हैं, उसी में वो हमेशा रहेंगे। जिस रोज अल्लाह उन सबको उठाएगा वो उसके सामने भी उसी तरह कस्में खाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने खाते हैं, और अपने नजदीक ये समझेंगे कि इससे उनका कुछ काम बन जाएगा। खूब जान लो वो परले दर्जे के झूठे हैं। शैतान उन पर मुसल्लत हो चुका है और उसने खुदा की याद उनके दिल से भुला दी है। वो शैतान की पार्टी के लोग हैं। खबरदार रहो, शैतान की पार्टी वाले ही खसारे में रहने वाले हैं। यकीनन जलील तरीन मखलूकात में से हैं वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करते हैं। अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब होकर रहेंगे। फिर वाक़े अल्लाह जबरदस्त और जोरावर है। तुम कभी ये ना पाओगे कि जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं वो उन लोगों से मोहब्बत करते हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की है, खाह वो उनके बाप हों या उनके बेटे या उनके भाई या उनके अहले खानदान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान सब्त कर दिया है और अपनी तरफ से एक रूह अता करके उनको कुव्वत बख्शी है। वो उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। वो अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। खबरदार रहो, अल्लाह की पार्टी वाले ही फलाह पाने वाले हैं।

तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मुनाफिकत की रविश इख्तियार की है। ये अपने काफिर अहले किताब भाइयों से कहते हैं, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात हरगिज न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह गवाह है कि ये लोग कतई झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ हरगिज न निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये उनकी हरगिज मदद न करेंगे, और अगर ये उनकी मदद करें भी तो पीठ फेर जाएंगे और फिर कहीं से कोई मदद न पाएंगे। इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा खौफ है, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। ये कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला न करेंगे, लड़ेंगे भी तो किला बंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुपकर। ये आपस की मुखालिफत में बड़े सख्त हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। इनका ये हाल इसलिए है कि ये बेअक्ल लोग हैं। ये उन्हीं लोगों के मानंद हैं जो इनसे थोड़ी ही मुद्दत पहले अपने किए का मजा चख चुके हैं, और इनके लिए दर्दनाक आजाब है। इनकी मिसाल शैतान किसी है कि पहले वो इंसान